0: हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम स्वर रंजनी में अभी आप सुन रहे थे गायन। कलाकार थे डॉक्टर गरुण मिश्रा, आपने प्रस्तुत किया राग नट भैरव। आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है, सुबह के 6 बजने वाले हैं। लीजिए अब सुनिए समाचार, पहले हिंदी में और फिर अंग्रेजी में।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। झारखंड में जेपीएससी और जेएसएससी उम्मीदवारों के 24 दिन से जारी विरोध प्रदर्शन के बाद राज्य सरकार ने जेएसएससी सीजीएल परीक्षा 2024 और टीडीपीएल एजेंसी द्वारा संचालित सभी प्रतियोगी परीक्षाएं रद्द कर दी हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कल शाम मंत्रिमंडल की विशेष बैठक के बाद ये घोषणा की। राज्य सरकार ने झारखंड लोक सेवा आयोग और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा 2014 से संचालित भर्ती परीक्षा की व्यापक जांच का भी आदेश दिया है। छात्र नेता पीयूष कुमार ने कहा है कि यह निर्णय केवल पहला कदम है। उन्होंने कहा कि प्रदर्शनकारी विद्यार्थियों की 11वीं से 13वीं जेपीएससी परीक्षा और सीबीआई जांच की मांग अब भी लंबित है। विद्यार्थियों ने घोषणा की है कि वो शेष मांग पर विचार कर अगला कदम तय करेंगे। दिल्ली सरकार ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट और सुपर स्पेशलिटी मेडिकल सीटों के चरणबद्ध विस्तार के माध्यम से चिकित्सा शिक्षा क्षमता बढ़ाने के लिए तैयार है। इस योजना के तहत सरकार 3 स्तरीय प्रयास करेगी, जिसमें ग्रीनफील्ड परियोजनाएं, मौजूदा संस्थानों का ब्राउनफील्ड विस्तार तथा स्नातकोत्तर और उन्नत चिकित्सा कार्यक्रमों का विस्तार शामिल है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने नई दिल्ली में चेक प्वाइंट सॉफ्टवेयर के मुख्य कार्यकारी अधिकारी नादव जाफरी से मुलाकात की। श्री गोयल ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि उन्होंने भारत में कंपनी की बढ़ती भागीदारी

0: चर्चा की, जिसमें अनुसंधान एवं विकास विस्तार और भारत के डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना की सुरक्षा के लिए एआई आधारित सुरक्षा का उपयोग शामिल है। केंद्रीय मंत्री ने निप्पॉन लाइफ इंडिया एसेट मैनेजमेंट लिमिटेड के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी संदीप सिक्का से भी मुलाकात की। उन्होंने खुदरा निवेश बढ़ाने और भारतीय बाजारों में वैश्विक पूंजी आकर्षित करने के अवसरों पर चर्चा की। भारत के सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ को नेपाल आर्मी के मानद जनरल का रैंक दिया गया है। कल काठमांडू के शीतल निवास में आयोजित समारोह में राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने उन्हें ये सम्मान प्रदान किया। जनरल धीरज सेठ नेपाल के सेना प्रमुख जनरल अशोक राज सिगदेल के निमंत्रण पर रविवार को नेपाल पहुंचे थे। मानद पद प्रदान करने की यह परंपरा वर्ष 1950 में शुरू हुई थी। इसके तहत भारत और नेपाल एक दूसरे के सेना प्रमुखों को जनरल का मानद रैंक प्रदान करते हैं। हिमाचल प्रदेश में अत्यधिक तेज वर्षा के कारण कल 87 सड़कें अवरुद्ध हो गईं और चंबा जिले में लोहे का एक पुल ध्वस्त हो गया। अचानक आई बाढ़ से भरमौर में बालोद ग्राम पंचायत में लोहे का पुल बह गया और लगभग 50 श्रद्धालु इसमें फंस गए। ये श्रद्धालु भरमौर में मां भगवती खुंदीवाली मंदिर जा रहे थे। स्थानीय लोगों ने उन्हें सुरक्षित निकालने के लिए लकड़ी का अस्थायी पुल बनाया है। सोरेन जिले में चक्की मौर के निकट भूस्खलन से कालका शिमला राष्ट्रीय राजमार्ग बाधित हो गया। मौसम विभाग ने बिलासपुर, कांगड़ा, मंडी और सिरमौर जिले में आज तेज वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। पूरे राज्य में 23 अगस्त तक वर्षा जारी रहने का अनुमान है। राज्य आपदा कार्रवाई केंद्र के अनुसार कुल्लू में सबसे अधिक 33 सड़कें बंद की गई हैं, मंडी में 27 और शिमला में 9 सड़कें अवरुद्ध हैं। दिल्ली में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के तहत गणना का चरण पूरा हो गया है। दिल्ली के मुख्य चुनाव अधिकारी कार्यालय के अनुसार इस प्रक्रिया के तहत दिल्ली में लगभग 1,45,00,000 फॉर्म बांटे गए। नई दिल्ली में आयोजित BWF बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप में पुरुष सिंगल्स के पहले दौर में भारत के आयुष शेट्टी ने मौजूदा चैंपियन चीन के शी युची को 21-14, 13-21, 21-19 से हराकर बड़ा उलटफेर किया। पीवी सिंधु और महिला डबल्स जोड़ी ट्रिसा जॉली और गायत्री गोपीचंद भी दूसरे दौर में पहुंच गई। वहीं महिला डबल्स में कविप्रिया सेल्वम और सिमरन सिंघी की जोड़ी ने स्पेन की निकोल कैरोला और कार्मेन जिमनेज की जोड़ी को 22-20, 21-14 से हराया। प्रतियोगिता के दूसरे दिन आज पुरुष सिंगल्स में लक्ष्य सेन पहले दौर में ऑस्ट्रिया के कोलिन्स फिलिमोन से खेलेंगे। उन्नति हुड्डा महिला सिंगल्स के पहले दौर में म्यांमार की थेत हतार हुजार से मुकाबला करेंगी। डबल्स जोड़ी में रोहन कपूर और रुत्विका शिवानी गड्डे तथा कनाडा के जोनाथन लाई और क्रिस्टल लाई आमने सामने होंगे। आशीष सूर्य और अमृता प्रमुरिये तुर्की के एमरे सोनमेज और यासिमेन बेक्टा से मुकाबला करेंगे। FIH महिला हॉकी विश्व कप में आज भारतीय टीम पूल डी के अपने दूसरे मैच में दक्षिण अफ्रीका से खेलेगी। ये मैच नीदरलैंड्स के एम्स्टेलफेन में खेला जाएगा। भारत ने ओलंपिक रजत पदक विजेता चीन के साथ 2-2 से ड्रॉ के साथ अपने अभियान की शुरुआत की। दक्षिण अफ्रीका अपने पहले मैच में इंग्लैंड से 4-0 की हार के बाद वापसी की कोशिश करेगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Shagun Chopra. In Jharkhand, following a 24-day protest by JPSC and JSSC aspirants, the state government has cancelled the 2024 JSSC CGL examination and all competitive examinations conducted by the TDPL agency. Chief Minister Hemant Sorin announced the decision last evening after chairing a special cabinet meeting. The state government has also ordered a comprehensive probe into recruitment examinations conducted by the Jharkhand Public Service Commission or JPSC and the Jharkhand Staff Selection Commission or JSSC since 2014. However, student leader Piyush Kumar stated that the protesters' demands regarding the 11th to 13th JPSC examinations and a CBI probe are still pending. The protesting students announced they would discuss their remaining demands and decide their next course of action. Education Minister Prahlad Joshi held a meeting with the Secretary, Department of Higher Education, DG of National Testing Agency and other senior officials in New Delhi yesterday. During the meeting, the minister directed that strict compliance be ensured of the established exam protocols. He He also directed that a complete overhaul of confidential operations architecture, secluded rooms,

0: अभी आप सुन रहे थे भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना।
1: ये आकाशवाणी का न्यूज ऑन एयर ऐप है। लाइव रेडियो, लेटेस्ट न्यूज हेडलाइंस, न्यूज पॉडकास्ट्स, साथ में दूरदर्शन के लाइव चैनल्स भी। द बेस्ट ऑफ एंटरटेनमेंट, इन्फॉर्मेशन, एजुकेशन अब आपके एक उंगली के इशारे पर। कहीं भी, कभी भी रहे हरदम अपडेट। आज ही डाउनलोड करें आकाशवाणी का न्यूज ऑन एयर ऐप।
0: आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्स, DRM 810 किलो हर्ट्स पर अब प्रस्तुत है कार्यक्रम चिंतन, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के विचारों पर।

यह घटना उस समय की है जब डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन मद्रास स्कूल के छात्र थे। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन बालपन से ही बेहद कुशाग्र एवं तीव्र बुद्धि के थे। उनकी कम उम्र में ही उच्च स्तर की गतिविधियां व कार्यकलाप प्रत्येक व्यक्ति को हैरानी में डाल देते थे। एक बार स्कूल में उनकी कक्षा में अध्यापक पढ़ा रहे थे। अध्यापक बोले, बच्चों, आज मैं तुम्हें धर्म के विषय में बताऊंगा। आखिर हर विद्यार्थी को यह ज्ञात होना चाहिए कि धर्म का क्या उद्देश्य होता है। धर्म और शिक्षा भारतीय संस्कृति को मजबूत करते हैं। विद्यार्थी ध्यानपूर्वक उनकी बातें सुन रहे थे। अध्यापक बोले, आप मुझे बताएं कि धर्म का क्या उद्देश्य है, धर्म का क्या अभिप्राय है। अध्यापक की बात सुनकर एक विद्यार्थी बोला, सर, धर्म का अभिप्राय है पूजा करना। इसके बाद दूसरा विद्यार्थी बोला, सर, धर्म हमें सुख और शांति प्रदान करता है। अब तीसरे विद्यार्थी ने कहा, सर, धर्म का अभिप्राय है ईश्वर में गहरी आस्था।

था और शुद्ध व सात्विक मन से नियमित रूप से ईश्वर की आराधना करना। इसके बाद अध्यापक डॉक्टर राधाकृष्णन से बोले, बेटा अब तुम बताओ। डॉक्टर राधाकृष्णन अपने स्थान पर खड़े हुए। वह बोले, सर धर्म हमें सिखाता है कि हमें जरूरतमंदों की सहायता करनी चाहिए, अशिक्षितों को पढ़ाना चाहिए और जो अनाथ हैं उन्हें भरपूर प्यार देना चाहिए। वास्तव में ऐसे काम करना ही धर्म का उद्देश्य है और यही असली पूजा है। नन्हे से बालक के मुंह से यह बात सुनकर अध्यापक दंग रह गए। उन्होंने उसे गले से लगा लिया। वे सभी विद्यार्थियों से बोले, देखना यह बच्चा एक दिन भारत का नाम अवश्य रोशन करेगा। जो बालक अभी से धर्म के बारे में गूढ़ ज्ञान रखता है वह आगे भी इस देश को नई रोशनी दिखाएगा। अध्यापक की बात आगे चलकर सच साबित हुई। यही बालक राधाकृष्णन अध्यापक की बात को ध्यान में रखते हुए अपनी योग्यता और प्रतिभा से आगे बढ़ते रहे और अपने अध्यापक की बात पर खरे उतरे। वे देश के दूसरे राष्ट्रपति बने। डॉक्टर राधाकृष्णन भारतीय संस्कृति के संवाहक, प्रख्यात शिक्षाविद, महान दार्शनिक और एक आस्थावान विचारक थे। उनके इन्हीं गुणों के कारण सन 1954 में उन्हें भारत रत्न से विभूषित किया गया। राजनीति में आने से पहले उन्होंने अपने जीवन के 40 वर्ष शिक्षक के रूप में व्यतीत किए थे। उनमें एक आदर्श शिक्षक के सारे गुण मौजूद थे। उन्होंने अपना जन्मदिन अपने व्यक्तिगत नाम से नहीं बल्कि संपूर्ण शिक्षक जगत को सम्मानित किए जाने के उद्देश्य से शिक्षक दिवस के रूप में मनाने की इच्छा की थी। उनके जन्मदिवस 5 सितंबर को भारत में शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम चिंतन डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के विचारों पर। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्स, DRM 810 किलो हर्ट्स पर। अब प्रस्तुत है श्री रामचरित मानस कांड से अयोध्या कांड भाग 21।

वन गमन के लिए श्रीराम माता कौशल्या की आज्ञा और आशीर्वाद ले चुके हैं। उसी समय आकुल सीता वहां पहुंचती हैं। सास के चरणों की वंदना करके सिर झुकाकर वहां बैठ जाती हैं। पैर की अंगुलियों के नाखून से धरती कुरेदती हुई सोच रही हैं कि किस सुकर्म का फल उन्हें प्राप्त होगा। शरीर तथा प्राण दोनों पति के साथ जाएंगे या केवल प्राणों को ही उनका साथ प्राप्त होगा। उनके सुंदर नेत्रों से अविरल अश्रु प्रवाहित हो रहे हैं। पुत्र वधु की ये दशा देख माता कौशल्या उनके लिए सास ससुर और सभी कुटुंबियों के स्नेह और सद्भाव की चर्चा करती हैं। जिस सुकुमारी के पिता राजाओं के शिरोमणि जनक हैं, श्वसुर सूर्य वंश के सूर्य और पति सूर्य कुल के कमल को खिलाने वाले चंद्रमा के समान रूप और गुण के भंडार हैं, ऐसी रूप राशि और शीलवंती बहु को माता कौशल्या ने आंखों की पुतली के समान प्यार से रखा है। माता कौशल्या का श्रीराम से प्रश्न है कि सीता के लिए उनकी क्या आज्ञा है। क्या विधाता ने सीता को वन के कष्ट भोगने के लिए रचा है? सीता यदि घर ही रहें तो माता कौशल्या को बड़ा सहारा मिल जाएगा।

0: उपवेशनस्य अध्यक्षतां कृत्वा एतत् निर्णयम् उद्घोषितवान्। राज्यप्रशासनेन 14-2000 वर्षादारभ्य झारखण्ड लोकसेवायोगेन अथ झारखण्ड कर्मचारी चयनायोगेन च आयोजितानां नियुक्ति परीक्षाणां व्यापक परीक्षणस्य अपि आदेशः प्रदत्तः। किन्तु छात्रनेता पीयूष कुमारः उक्तवान् यत् 11-13 पर्यन्तानां जेपीएससी परीक्षाणां तथा केन्द्रीयान्वीक्षणाभिकरणस्य अन्वेषणात् सम्बद्ध प्रदर्शनकारिणां याचनाः अद्यापि विचाराधीनाः सन्ति। प्रदर्शनकारिणः छात्राः उक्तवन्तः यत् ते स्वीया अवशिष्ट याचना विषये चर्चां करिष्यन्ति तथा अग्रिम कार्याचरण विषये अपि निर्णयं करिष्यन्ति। दिल्ली प्रशासनेन चरणबद्धरीत्या स्नातक स्नातकोत्तर अतिविशेषज्ञता स्तरीय चिकित्सकीय शिक्षा संस्थानानां संख्यां वर्धयित्वा राष्ट्रिय राजधान्यां चिकित्सा शिक्षायाः क्षमतां वर्धयितुं सज्जः अस्ति। अस्य योजनायाः अन्तर्गतं प्रशासनेन त्रिमुखी कार्यनीतिः स्वीकृता अस्ति। अस्यां नवसंस्थानां संस्थापना, विद्यमानसंस्थानां विस्तारः तथा स्नातकोत्तर उन्नत चिकित्सकीय कार्यक्रमाणां विस्तारश्च सम्मिलिताः सन्ति। केरले विजिंजम समुद्रपत्तनात् प्रत्यक्ष निर्यातः आयातश्च अद्य आरभ्यते। मुख्यमंत्री वीडी सतीशन प्रातः पादोन 11 वादने सेवायाः उद्घाटनं करिष्यति। भारतर्तु विज्ञान विभागेन अद्य झारखण्डे अतिवृष्टिमालक्ष्य रक्तवर्णपरा संचेतना प्रसारिता। ऋतु विभागेन अद्य बिहार छत्तीसगढ़ पूर्व मध्य प्रदेश हिमाचल प्रदेश ओडिशा पश्चिमोत्तर प्रदेशानां च विभिन्नेषु भागेषु अतिवृष्टेः संभावना पूर्वानुमानिता। बैडमिंटन क्रीडायां भारतस्य आयुष शेट्टी नवदिल्ल्यां आयोजितायां BWF बैडमिंटन विश्वस्पर्धायां पुरुषाणां एकल वर्गस्य प्रथमचरणे विश्वस्य प्रथम क्रमांकितं वर्तमान विजेतारं च चीन देशीयं शी यू क्यूई इत्येनं पराजित्य विजयम् अवाप्तवान्। तत्रैव पीवी सिंधुः तथा महिलानां युगल वर्गस्य भारतीय युगलं त्रिसा जौली गायत्री गोपी चंद अपि द्वितीय चरणे प्रविष्टे। इति वार्ताः।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। झारखंड में जेपीएससी और जेएसएससी उम्मीदवारों के 24 दिन से जारी विरोध प्रदर्शन के बाद राज्य सरकार ने जेएसएससी सीजीएल परीक्षा 2024 और टीडीपीएल एजेंसी द्वारा संचालित सभी प्रतियोगी परीक्षाएं रद्द कर दी हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कल शाम मंत्रिमंडल की विशेष बैठक के बाद ये घोषणा की। राज्य सरकार ने झारखंड लोक सेवा आयोग और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा 2014 से संचालित भर्ती परीक्षा की व्यापक जांच का भी आदेश दिया है। छात्र नेता पीयूष कुमार ने कहा कि यह निर्णय केवल पहला कदम है। उन्होंने कहा कि प्रदर्शनकारी विद्यार्थियों की 11वीं से 13वीं जेपीएससी परीक्षा और सीबीआई जांच की मांग अब भी लंबित है। विद्यार्थियों ने घोषणा की है कि वो शेष मांगों पर विचार कर अगला कदम तय करेंगे। दिल्ली सरकार ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट और सुपर स्पेशलिटी मेडिकल सीटों के चरणबद्ध विस्तार के माध्यम से चिकित्सा शिक्षा क्षमता बढ़ाने के लिए तैयार है। इस योजना के तहत सरकार 3 स्तरीय प्रयास करेगी, जिनमें ग्रीनफील्ड परियोजनाएं, मौजूदा संस्थानों का ब्राउनफील्ड विस्तार तथा स्नातकोत्तर और उन्नत चिकित्सा कार्यक्रमों का विस्तार शामिल है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने नई दिल्ली में चेक प्वाइंट सॉफ्टवेयर के मुख्य कार्यकारी अधिकारी नादव जाफरी से मुलाकात की। श्री गोयल ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि उन्होंने भारत में कंपनी की बढ़ती हुई भागीदारी पर चर्चा की, जिसमें अनुसंधान एवं विकास विस्तार और भारत के डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना की सुरक्षा के लिए एआई आधारित सुरक्षा का उपयोग शामिल है। भारत के सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ को नेपाल आर्मी के मानद

0: जनरल का रैंक दिया गया है। कल काठमांडू के शीतल निवास में आयोजित समारोह में राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने उन्हें यह सम्मान प्रदान किया। जनरल धीरज सेठ नेपाल के सेना प्रमुख जनरल अशोक राज सिग्देल के निमंत्रण पर रविवार को नेपाल पहुंचे थे। मानद पद प्रदान करने की परंपरा वर्ष 1950 में शुरू की गई थी। इसके तहत भारत और नेपाल एक दूसरे के सेना प्रमुखों को जनरल का मानद रैंक प्रदान करते हैं। हिमाचल प्रदेश में अत्यधिक तेज बारिश के कारण कल 87 सड़कें अवरुद्ध हो गईं और चंबा जिले में लोहे का एक पुल ध्वस्त हो गया। अचानक आई बाढ़ से भरमौर में बालोद ग्राम पंचायत में लोहे का पुल बह गया और लगभग 50 श्रद्धालु फंस गए। ये श्रद्धालु भरमौर में मां भगवती खुंदीवाली के मंदिर जा रहे थे। स्थानीय लोगों ने उन्हें सुरक्षित निकालने के लिए लकड़ी का एक अस्थायी पुल बनाया। मौसम विभाग ने बिलासपुर कांगड़ा मंडी और सिरमौर जिले में आज अत्यधिक तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। पूरे राज्य में 23 अगस्त तक वर्षा जारी रहने का अनुमान है। नई दिल्ली में आयोजित BWF बैडमिंटन वेस्ट चैंपियनशिप में पुरुष सिंगल्स के पहले दौर में भारत के आयुष सेट्टी ने मौजूदा चैंपियन चीन के शी युची को हराकर एक बड़ा उलटफेर कर दिया है। पीवी सिंधु और महिला डबल्स जोड़ी ट्रिसा जॉली और गायत्री गोपीचंद भी अब दूसरे दौर में पहुंच गईं। महिला डबल्स में कवि प्रिया सेल्वम और सिमरन सिंघी की जोड़ी ने स्पेन की निकोल कैरोला और कार्मेन जिमनेज की जोड़ी को हराया। प्रतियोगिता के दूसरे दिन आज पुरुष सिंगल्स में लक्ष्य सेन पहले दौर में ऑस्ट्रेलिया के कोलिंस फिलिमोन से खेलेंगे। उन्नति हुडा महिला सिंगल्स के पहले दौर में म्यांमार की थेथ हजार थुजार से मुकाबला करेंगी। डबल्स जोड़ी में रोहन कपूर और रुत्विका शिवानी गड्डे तथा कनाडा के जोनाथन लाई और क्रिस्टल लाई आमने सामने होंगे। आशीष सूर्या और अमृता प्रमथेश तुर्की के एमरेसोन मेज और यासिमेन बेक्टास से मुकाबला करेंगे। गोल में श्रीलंका के साथ पहले क्रिकेट टेस्ट मैच में भारत ने पहली पारी के आधार पर 178 रन की बढ़त बना ली है। भारतीय गेंदबाजों ने मेजबान टीम को 284 रन पर समेट दिया। भारत ने अपनी पहली पारी में 462 रन बनाए थे। आज चौथे दिन का मैच भारतीय समय के अनुसार सवेरे 10 बजे से शुरू होगा। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani. The news read by Anuja Kumar. Union Home Minister Amit Shah has informed that the government under the leadership of Prime Minister Narendra Modi destroyed the ISI-backed terror group Shehzad Bhatti network ahead of Independence Day. He informed that the government also thwarted its plans for subversive attacks by arresting more than 200 operatives. In a social media post, he said that security forces ripped apart the network by launching coordinated operations across different locations in 14 states, upholding a brilliant example of India's zero tolerance towards terrorism. The security agencies launched a coordinated multi-state operation on the 12th of this month using a real-time intelligence sharing system with state police forces to counter Shehzad Bhatti network-linked disruptions. The network was involved in several terrorist activities. Shehzad Bhatti Network, a Pakistan-based ISI-backed terrorist syndicate linked to grenade, IED and petrol bomb attacks and targeted killings across India. In Jharkhand, following a 24-day protest by JPSC and JSSC aspirants, the state government has cancelled the 2024 JSSC CGL examination and all competitive examinations conducted by the TDPL agency. Chief Minister Hemant Sorain announced the decision last evening after chairing a special cabinet meeting. The state government has also ordered a comprehensive probe into recruitment examinations conducted by the Jharkhand Public Service Commission and the Jharkhand Staff Selection Commission since 2014. However, student leader Piyush Kumar stated that the protesters' demands regarding the 11th to 13th JPSC examinations and a CBI probe are still pending. The protesting students announced they would discuss their remaining demands and decide their next course of action.

आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्स, डीआरएम 810 किलो हर्ट्स पर। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम संगीतिका। इस कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे सृजा दास के गाए हुए भजन। साथी कलाकार हैं सरोद पर दानिश असलम, सितार पर अकील अहमद, हारमोनियम पर जाकिर धौलपुरी और तबले पर पशुपति नाथ।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम संगीतिका। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, DRM 810 किलोहर्ट्स पर। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम गीतों भरी गुड मॉर्निंग। गीतों भरी गुड मॉर्निंग में आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त निधि वर्मा। तेरे बिना हर खुशी अधूरी सी लगती है, तेरे बिना हर खुशी अधूरी सी लगती है, तू साथ हो तो हर मुश्किल आसान हो जाती है।

जी हाँ दोस्तों, दिल है कि मानता नहीं है, दिल ही तो है जो कभी मानता नहीं है। कभी हमें खुशी दे देता है बहुत, तो कभी हमें बड़ा तकलीफ दे देता है। तो ये सब दिल का ही खेल है जो हमें कभी मानने को मजबूर कर देता है, कभी हमें कोई भी बात होती है वो दिल से ही जुड़ी होती है, आप सबको तो पता ही है। तो सच में दिल है कि मानता नहीं, ये खूबसूरत सा गीत आप सुन रहे थे अनुराधा पौडवाल और कुमार सानू की आवाज़ में, फिल्म दिल है कि मानता नहीं से।

या दोस्तों, सदमा फिल्म का ये खूबसूरत सा गीत आप सुन रहे थे सुरेश वाडेकर की आवाज़ में। और जैसा कि गीत इतना प्यारा सा था और आपने सुना कि ये जो ज़िंदगी होती है इसे हमें वैसे ही अपनाना पड़ता है जैसा वो हमें दिखाती है, जो हमारे सामने होता रहता है वैसे ही हम चलते जाते हैं। कभी कभी ज़िंदगी में हमें कुछ चीज़ें अच्छी नहीं लगती हैं, लेकिन हमें किसी और के लिए, फैमिली के लिए, दोस्तों के लिए या किसी के लिए भी हमें उस लाइफ को अपनाना पड़ता है।

जी हाँ दोस्तों, हर किसी को नहीं मिलता प्यार ज़िंदगी में। हर किसी के लिए हर कोई अच्छा नहीं होता, लेकिन सभी की ज़िंदगी में कोई ना कोई व्यक्ति कभी ना कभी तो ऐसा मिलता है कि जहाँ लगता है कि एक बार मिलने के बाद भी ऐसा लगने लगता है कि हम उसे बरसों से जानते हैं। जानवाज़ फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे मनहर की आवाज़ में। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत।

जी हाँ दोस्तों, दोस्ती ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत रिश्ता होता है। खून का रिश्ता ना होते हुए भी फिर भी ये रिश्ता दिल के बहुत करीब होता है।

जी हाँ दोस्तों, इस गीत को सुनने के बाद आपको एक बात तो समझ में आ रही होगी ना कि जहाँ पर दो लोग मिल जाते हैं वहाँ टॉपिक कोई भी हो बस बातें शुरू हो जाती हैं। कहीं उसकी कहानी सुनते हैं, कभी इसकी कहानी सुनते हैं, तो बैठे बैठे कब कहानियों का दौर चलता रहता है, कौन कौन से टॉपिक छिड़ जाते हैं ये हमें खुद को भी नहीं पता चलता है।

दोस्तों, आपको ये कार्यक्रम आज का कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा। जल्दी आपसे मिलेंगे कार्यक्रम गीतों भरी गुड मॉर्निंग में। तब तक के लिए गीत सुनते रहिए और

0: एक जमाने में हुकुम सिंह को घर वाले कुरकुरदास बुलाते थे, क्योंकि लाइट पंखे चालू देखते ही वो सब पर चिल्लाने लगते थे,
1: अरे रमुआ ये पंखा क्यों खुला छोड़ा, बिजली का बिल क्या तेरा बापू भरेगा।
0: पर आज उन्हें सब प्यारे लाल बुलाते हैं, क्योंकि जब से उन्होंने सोलर पैनल लगवाया है तब से मीटर की सुई भी चैन से सोती है और हुकुम सिंह भी। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, आज ही रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
2: हर घर सूर्य घर।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। झारखंड में जारी विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के बाद राज्य सरकार ने जेएसएससी, सीजीएल परीक्षा और निजी एजेंसी टीडीपीएल द्वारा संचालित सभी अन्य भर्ती परीक्षाएं रद्द की। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत की मतदाता पहचान प्रणाली की प्रशंसा की, इसे अमेरिका के चुनाव विनियमों को और सख्त बनाने के लिए आदर्श बताया। भारत आज नई दिल्ली में 12वीं ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा। भारत के सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ को काठमांडू में राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने नेपाल आर्मी के मानद जनरल का रैंक प्रदान किया। मौसम विभाग ने आज झारखंड में अत्यधिक तेज वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है और आयुष शेट्टी ने नई दिल्ली में बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप के पुरुष सिंगल्स के पहले दौर में विश्व के नंबर एक और मौजूदा चैंपियन शी यू क्यूई को हराया। और अब समाचार विस्तार से। झारखंड में जेपीएससी और जेएसएससी उम्मीदवारों के 24 दिन से जारी विरोध प्रदर्शन के बाद राज्य सरकार ने जेएसएससी सीजीएल परीक्षा 2024 और टीडीपीएल एजेंसी द्वारा संचालित सभी प्रतियोगी परीक्षाएं रद्द कर दी हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कल शाम मंत्रिमंडल की विशेष बैठक के बाद ये घोषणा की।
4: पूरे तरीके से इसका ऑपरेशन होनी चाहिए, जो हमें जानकारी सीजीएल को लेकर हम लोग के समक्ष बताया गया और उस तथ्यों को समझ बूझने के बाद कैबिनेट ने जेएसएससी सीजीएल को भी रद्द करने का निर्णय लिया।
3: और ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
5: सरकार ने वर्ष 2014 से अब तक की भर्ती प्रक्रियाओं की जांच कराने के साथ परीक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए आईएएस अधिकारी अमिताभ कौशल की अध्यक्षता में समिति गठित करने का भी निर्णय लिया।

0: है। इस बीच मंत्री दीपिका पांडे सिंह और स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी के साथ विधायक जयराम कुमार ने सदर अस्पताल पहुंचकर देवेंद्र नाथ महतो और अन्य आंदोलनरत छात्रों को जूस पिलाकर उनका अनशन समाप्त कराया। देवेंद्र नाथ महतो ने सरकार के फैसले का स्वागत किया और जेपीएससी जेएसएससी न्याय मंच ने फिलहाल आंदोलन स्थगित करने की घोषणा की। वहीं छात्र नेता रविन्द्र पासवान ने सरकार के फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि कथित अनियमितताओं की सीबीआई जांच का आदेश होने तक रिफॉर्म मंच का आंदोलन जारी रहेगा। सरकार के फैसले के बाद जेएससीसी सीजीएल के जरिए पहले से नियुक्त अभ्यर्थियों ने भी विरोध जताया और रांची के प्रोजेक्ट भवन के बाहर जुटकर अपनी नौकरी और भविष्य को लेकर चिंता जाहिर की। महवेश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
1: अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत की मतदाता पहचान प्रणाली की प्रशंसा की है और इसे अमरीका के चुनाव विनियमों के लिए मॉडल बताया है। उन्होंने भारत की निर्वाचन प्रणाली को चुनावी सुरक्षा का उदाहरण बताया। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री ट्रंप ने भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार के साथ हाल की बातचीत का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि ज्ञानेश कुमार ने ये सवाल उठाया था कि बिना अनिवार्य वैध फोटो पहचान पत्र के अमरीका में चुनाव कैसे कराए जा सकते हैं। श्री ट्रंप ने इस टिप्पणी का हवाला देते हुए अमरीकी कांग्रेस से सेव गार्ड अमेरिकन वोटर एलिजिबिलिटी यानी सेव अमेरिका अधिनियम पारित करने को कहा। ये प्रस्तावित विधेयक संघीय चुनाव में मतदान के लिए और अधिक सख्त नियम लागू करने की मांग करता है। भारत आज नई दिल्ली में ब्रिक्स देशों के पर्यावरण मंत्रियों की 12वीं बैठक की मेजबानी करेगा। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने बताया है कि यह बैठक महत्वपूर्ण विचार विमर्श, सर्वसम्मति तक पहुंचने और पर्यावरणीय सहयोग को और मजबूत करने का मंच उपलब्ध कराएगी। एक रिपोर्ट।
2: ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव करेंगे। यह कार्यक्रम भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता 2026 की मुख्य थीम सुदृढ़शीलता, नवाचार, सहयोग और सतत विकास के अंतर्गत आयोजित किया जाएगा। यह बैठक सदस्य देशों के मंत्रियों, वरिष्ठ अधिकारियों, नीति निर्माताओं और विशेषज्ञों के लिए सार्थक चर्चा करने, आम सहमति बनाने और पर्यावरण के क्षेत्र में सहयोग को मजबूत करने का मंच प्रदान करेगी। अध्यक्षता के हिस्से के रूप में भारत ने ब्रिक्स पर्यावरण कार्य समूह के तहत केंद्रित गतिविधियों के लिए 4 प्राथमिकता वाले क्षेत्रों की पहचान की है। इनमें सतत जीवन शैली को बढ़ावा देना, वनीकरण, जंगल की आग का प्रबंधन और आपदा के प्रति दृढ़ताशील, सर्कुलर इकोनॉमी और अनुकूलन शामिल है। नीतिका गुप्ता, आकाशवाणी समाचार, नई दिल्ली।
1: भारत के सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ को नेपाल आर्मी के मानद जनरल का रैंक दिया गया है। कल काठमांडू के शीतल निवास में आयोजित समारोह में राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने उन्हें यह सम्मान प्रदान किया। नेपाल के उपराष्ट्रपति राम सहाय प्रसाद यादव, विदेश मंत्री शिशिर खनाल, नेपाल में भारत के राजदूत नवीन श्रीवास्तव तथा नेपाल सेना और सरकार के वरिष्ठ अधिकारी इस अवसर पर मौजूद थे। जनरल धीरज सेठ नेपाल के सेना प्रमुख जनरल अशोक राज सिग्देल के निमंत्रण पर रविवार को नेपाल पहुंचे थे। मानद पद प्रदान करने की यह परंपरा वर्ष 1950 में शुरू हुई थी। इसके तहत भारत और नेपाल एक दूसरे के सेना प्रमुखों को जनरल का मानद रैंक प्रदान करते हैं। जनरल धीरज सेठ ने जनरल सिग्देल के साथ द्विपक्षीय सैन्य संबंध बढ़ाने पर विचार विमर्श किया। उन्होंने भारतीय दूतावास में राजदूत नवीन श्रीवास्तव से भी भेंट की और दोनों देशों के संबंध और मजबूत करने पर चर्चा की। उन्होंने नेपाल सेना को भारत की ओर से सैन्य और चिकित्सा उपकरण भी दिए। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और सोशल मीडिया हैंडल @AIR News Hindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। मौसम विभाग ने आज झारखंड में अत्यधिक तेज बारिश का रेड अलर्ट जारी कर दिया है। बिहार, छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, ओडिशा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी तेज बारिश का अनुमान है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, उत्तराखंड, पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा, दिल्ली, पूर्वी उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, पूर्वोत्तर राज्य, कराईकल, पुदुचेरी, तमिलनाडु, केरलम और माहे में भी गुरुवार तक तेज बारिश होगी। हिमाचल प्रदेश में मॉनसून की तेज वर्षा जारी है। राज्य में कल अधिकांश स्थानों पर बहुत तेज बारिश हुई। हमारे संवाददाता ने बताया है कि

0: बारिश के कारण कई स्थानों पर जनजीवन अस्त व्यस्त है।
1: बीते 24 घंटों के दौरान मंडी जिले के कटौला में सर्वाधिक 74 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई है। लगातार बारिश के चलते सामान्य जनजीवन भी प्रभावित हुआ है। रिपोर्ट के अनुसार इस मॉनसून सीजन के दौरान प्रदेश में अब तक बारिश से जुड़ी घटनाओं में 80 लोगों की मृत्यु हो चुकी है, जबकि लगभग 994 करोड़ रुपए की सार्वजनिक संपत्ति का नुकसान हो चुका है। इस बीच मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने आज राज्य के 4 जिलों बिलासपुर, कांगड़ा, मंडी और सिरमौर में भारी से बहुत भारी वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, जबकि 6 अन्य जिलों ऊना, हमीरपुर, चंबा, कुल्लू, शिमला और सोलन के लिए भारी वर्षा का येलो अलर्ट जारी किया है। रितेश कपूर, आकाशवाणी समाचार, शिमला।
0: आंध्र प्रदेश के डॉक्टर बीआर अंबेडकर कोनासीमा जिले से मछुआरों को ले जा रही मछली पकड़ने की एक नौका समुद्र में लापता हो गई है। ये मछुआरे इस महीने की 3 तारीख को मछली पकड़ने के लिए निकले थे और उन्हें 10 दिन के भीतर वापस लौटना था। उनके वापस न लौटने पर परिवार वालों ने अधिकारियों को सूचना दी। तटीय पुलिस और मत्स्य विभाग के अधिकारियों ने लापता मछुआरों की तलाश के लिए अभियान शुरू कर दिया है। केरलम में विझिंझम समुद्री बंदरगाह से आज से सीधा निर्यात और आयात शुरू हो रहा है। मुख्यमंत्री वीडी सतीशन आज इस सेवा का उद्घाटन करेंगे। केंद्रीय बंदरगाह जहाजरानी और जल मार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल मुख्य अतिथि होंगे। एक रिपोर्ट।
2: विझिंझम समुद्री बंदरगाह अब तक मुख्य रूप से एक अंतर्राष्ट्रीय ट्रांसशिपमेंट केंद्र के तौर पर काम कर रहा था, जहां मदरशिप कहे जाने वाले बड़े जहाजों से आने वाले कंटेनर को आगे ले जाने के लिए छोटे जहाजों में स्थानांतरित किया जाता था। इस बंदरगाह को 17 जुलाई को निर्यात और आयात के लिए मंजूरी मिली थी। शुरुआत में विझिंझम बंदरगाह से सिर्फ फुल कंटेनर लोड कार्गो का आयात निर्यात होगा। इस बंदरगाह का पिछले वर्ष 2 मई को उद्घाटन किया गया था। तिरुवनंतपुरम से स्मिति एम पलुरुथि की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से सरफिरोजी।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि व्यक्ति को हमेशा आत्मसम्मान, साहस और स्वाभिमान के साथ जीना चाहिए। एक सोशल मीडिया पोस्ट में संस्कृत सुभाषितम साझा करते हुए उन्होंने कहा कि सच्चा पुरुषार्थ इसी में है कि व्यक्ति किसी भी परिस्थिति में अपने सिद्धांतों और मूल्यों से समझौता न करे। गोल में श्रीलंका के साथ पहले क्रिकेट टेस्ट मैच में भारत ने पहली पारी के आधार पर 178 रन की बढ़त हासिल कर ली है। भारतीय गेंदबाजों ने मेजबान टीम को 284 रन पर समेट दिया। भारत ने अपनी पहली पारी में 462 रन बनाए थे और आज चौथे दिन का मैच भारतीय समय अनुसार सवेरे 10 बजे से शुरू होगा। और अब खबरें नई दिल्ली में आयोजित BWF बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप की।
3: नई दिल्ली में बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप के पहले राउंड में भारतीय खिलाड़ियों ने जीत के साथ शुरुआत की। खिलाड़ी आयुष शेट्टी ने पुरुषों के एकल श्रेणी में मौजूदा चैंपियन और दुनिया के नंबर वन खिलाड़ी चीन के शी यू की को 21-14, 13-21 और 21-19 से शिकस्त दी। वहीं महिलाओं की एकल श्रेणी में भारत की स्टार खिलाड़ी पीवी सिंधु ने आयरलैंड की सोफिया नोबल को 21-7 और 21-11 से आसानी से हरा दिया। साथ ही महिलाओं की युगल श्रेणी में भारत की जोड़ी ट्रेसा जोली और गायत्री गोपीचंदन ने स्पेन की पाउला लोपेज और लूसिया रोड्रिगेस को 21-9 और 21-13 से हरा दिया। इससे पहले पुरुषों की युगल श्रेणी में भारत की जोड़ी MR अर्जुन और हरिहरन अमसा करुणन ने दूसरे राउंड में जगह बनाई। दूसरे गेम में ये जोड़ी 6-4 से आगे चल रही थी, तभी आयरलैंड के उनके प्रतिद्वंदी स्कॉट गिल्टिया और पॉल रेनॉल्ड्स को चोट के कारण खेल से बाहर होना पड़ा। अर्जुन और अमसा करुण ने पहला गेम 21-16 से जीत लिया था। विष्णु और भानु की रिपोर्ट के साथ शिवांग मिश्रा, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: FIH महिला हॉकी विश्व कप में आज भारतीय टीम पूल डी के अपने दूसरे मैच में दक्षिण अफ्रीका से खेलेगी। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
4: धन्यवाद मुनीश। देश के राजधानी से प्रकाशित सभी हिंदी समाचार पत्रों की सुर्खियों में भारतीय जनता पार्टी की नई राष्ट्रीय टीम की घोषणा और झारखंड में छात्र आंदोलन के असर के समाचार छाए हुए हैं। पंजाब केसरी के मुख्य पृष्ठ पर पहला समाचार है, अब नितिन की नवीन टीम। पत्र ने उपाध्यक्ष वसुंधरा राजे सिंधिया, राम माधव, महासचिव स्मृति ईरानी और कोषाध्यक्ष पीयूष गोयल के चित्र भी सबसे ऊपर प्रकाशित किए हैं। दैनिक भास्कर ने इसी खबर को शीर्षक दिया है, भाजपा की नवीन टीम 12 महिलाएं, 7 अल्पसंख्यक और 6 नए महासचिव। जनसत्ता में इस समाचार की सुर्खी है, माधव और ईरानी की वापसी, अमित मालवीय की हुई छुट्टी। हिन्दुस्तान का शीर्ष समाचार है, टीम नवीन में जोश होश का मेल। नवभारत टाइम्स ने झारखंड के घटनाक्रम को पहला समाचार बनाया है, कई फजीहतों के बाद एनटीए

0: बदली अपनी टीम, 600 एक्सपर्ट्स हटाए। पत्र ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री के निर्देश और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के वक्तव्य को बॉक्स प्रकाशित करते हुए आंदोलनरत छात्रों की तस्वीर भी प्रमुखता से प्रकाशित की है। दैनिक ट्रिब्यून ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के चित्र सहित इस खबर को शीर्षक दिया है, झारखंड आउटसोर्स एजेंसी की 2014 से अब तक कराई गई सभी परीक्षाएं रद्द। राजस्थान पत्रिका ने रेल यात्रियों की सुविधाओं की उपेक्षा और अनदेखी को संपादकीय का विशेष बनाया है। पत्र कहता है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की ताजा रिपोर्ट चौंकाने वाली है, जिसमें कहा गया है कि देश के कई बड़े रेलवे स्टेशनों के वाटर कूलर के पानी में ई कोलाई बैक्टीरिया मिले हैं। सवाल सिर्फ पानी के पीने का साफ होने का नहीं है, यात्रियों की दूसरी सुविधाओं की भी समयबद्ध जांच और सतत निगरानी करनी चाहिए, चूंकि यात्री सुविधाओं कोई भी अनदेखी चिंताजनक है। लोकसत्ता ने नागपंचमी के अवसर पर महाकाल मंदिर उज्जैन में उमड़ी लाखों भक्तों की भीड़ का समाचार अपने पहले पृष्ठ पर रखते हुए बिहार के लखीसराय में मची भगदड़ में 7 दर्शनार्थियों की मौत का समाचार भी बॉक्स में प्रकाशित किया है।
1: और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। झारखंड में विद्यार्थियों के जारी विरोध प्रदर्शन के बाद राज्य सरकार ने जेएसएससी, सीजीएल परीक्षा और निजी एजेंसी टीडीपीएल द्वारा संचालित सभी अन्य भर्ती परीक्षाएं रद्द की। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत की मतदाता पहचान प्रणाली की प्रशंसा की, इसे अमेरिका के चुनाव विनियमों को और सख्त बनाने के लिए आदर्श बताया। भारत आज नई दिल्ली में 12वीं ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा। भारत के सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ को काठमांडू में राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने नेपाल आर्मी के मानद जनरल का रैंक प्रदान किया। मौसम विभाग ने आज झारखंड में अत्यधिक तेज बारिश का रेड अलर्ट जारी कर दिया है और आयुष शेट्टी ने नई दिल्ली में बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप के पुरुष सिंगल्स के पहले दौर में विश्व के नंबर एक और मौजूदा चैंपियन शी यू क्यू को हराया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम अनुजा कुमार। द हेडलाइंस। झारखंड गवर्नमेंट कैंसल्स जेएसएससी सीजीएल एग्जामिनेशन आफ्टर 24-डे स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट, ऑल्सो कैंसल्स ऑल अदर रिक्रूटमेंट एग्जाम्स कंडक्टेड बाय द प्राइवेट एजेंसी टीडीपीएल। U.S. President Donald Trump praises India's voter ID system, hails it as a model for stricter U.S. election rules. India to host 12th BRICS Environment Ministers meeting in New Delhi today. Indian Army Chief General Dhiraj Seth conferred rank of Honorary General of Nepal Army by President Ramchandra Podel in Kathmandu. IMD issues red alert for a very heavy rainfall in Jharkhand today, and Ayush Shetty stands world number one and defending champion Chi Yu Chi in first round of men's singles at BWF Badminton World Championships in New Delhi. And now the news in detail. Jharkhand government has cancelled JSSC CGL examination after 24-day students' protest in the state. It has also cancelled all other recruitment exams conducted by the private agency TDPL. The announcement triggered celebrations at the protest site in Ranchi, though the demand for a CBI probe remains unresolved. We have a report.
3: The Jharkhand government has decided to cancel the JSSC CGL examination and all competitive examinations conducted by the TDPL agency, besides announcing a probe into recruitment examinations conducted by JPSC and JSSC since 2014. The decision was taken at a special cabinet meeting chaired by Chief Minister Hemant Soren and was welcomed by protesting students at the Jaipal Singh Munda Stadium, who celebrated by distributing sweets and applying gulal. The government has also decided to investigate recruitment processes conducted by JPSC and JSSC from 2014 onwards and constitute a committee headed by IAS Officer Amitabh Kaushal to recommend reforms in the examination system. Meanwhile, Minister Deepika Pandey Singh and Health Minister Irfan Ansari, along with MLA Jairam Kumar, visited Sadar Hospital and ended the hunger strike of Devendranath Mehto and other protesting students by offering them juice. Devendranath Mehto thanked the government and said the decision addressed major demands with the JPSC-JSSC Nyay lunch, announcing that it was suspending its agitation for now. Student leader Ravindra Paswan thanked the government for the decision, but said the reform munch would continue.

0: आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं जमीर रजवी। सबसे पहले इस वक्त की सुर्खियां। झारखंड सरकार ने 24 दिन तक जारी रहने वाले तलबा एहतजाज के बाद जेएसएससी सीजीएल इम्तिहान को रद्द कर दिया है। झारखंड हुकूमत ने प्राइवेट एजेंसी TDPL के जरिए मुनाकिद कराए गए दीगर तमाम भर्ती इम्तिहान भी मनसूख कर दिए हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के वोटर शनाख्ती कार्ड निजाम की तारीफ की है और इसे अमरीका में मजीद सख्त इंतखाबी कवानीन के लिए एक मिसाली नमूना करार दिया है। भारत आज नई दिल्ली में ब्रिक्स वुजराए माहौलियात के 12वें इजलास की मेजबानी करेगा। भारतीय फौज के सरबराह जनरल धीरज सेठ को नेपाल के सदर रामचंद पौडेल ने काठमांडू में नेपाली फौज के एजाजी जनरल का ओहदा अता किया। भारतीय महकमे मौसमियात ने आज झारखंड में इंतहाई शदीद बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। और नई दिल्ली में BWF बैडमिंटन आलमी चैंपियनशिप में मर्दों के सिंगल्स के पहले राउंड में आयुष शेट्टी ने आलमी नंबर एक और दिफाई चैंपियन शी यू की को शिकस्त दी। अब खबरें तफसील से। झारखंड हुकूमत ने रियासत में तलबा के 24 दिन तक जारी रहने वाले एहतजाज के बाद JSSC CGL इम्तिहान को मनसूख कर दिया है। हुकूमत ने प्राइवेट एजेंसी TDPL के जरिए मुनाकिद कराए गए दीगर तमाम भर्ती इम्तिहान भी रद्द कर दिए हैं। इस ऐलान के बाद रांची में एहतजाज के मकाम पर तलबा ने जश्न मनाया। ताहम CBI जांच का मुतालिबा अभी पूरा नहीं किया गया है। पेश है एक रिपोर्ट।
1: झारखंड हुकूमत ने JSSC CGL इम्तिहान और TDPL एजेंसी के जरिए मुनाकिद किए गए तमाम मुसाबकती इम्तिहान मनसूख करने का फैसला किया है। इसके अलावा हुकूमत ने 2014 से अब तक मुनाकिद किए गए JPSC और JSSC के भर्ती इम्तिहान की तहकीकात का भी ऐलान किया है। यह फैसला वज़ीर आला हेमंत सोरेन की सदारत में मुनाकिदा काबीना की खसूसी मीटिंग में लिया गया। एहतजाज करने वाले तलबा ने जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में इस फैसले का खैर मकदम किया और मिठाइयां तकसीम करके और एक दूसरे को गुलाल लगाकर जश्न मनाया। हुकूमत ने 2014 के बाद से JPSC और JSSC के जरिए किए गए भर्ती के अमल की जांच करने और इम्तिहान के निजाम में इस्लाहात की सिफारिशात पेश करने के लिए IAS ऑफिसर अमिताभ कौशल की सरबराही में एक कमेटी तश्कील देने का भी फैसला किया है। इस दौरान रियासती वजीर दीपिका पांडे सिंह, वजीर सेहत इरफान अंसारी और रुकन असेंबली जयराम कुमार ने सदर अस्पताल का दौरा किया और देवेंद्र नाथ महतो समेत एहतजाज करने वाले दीगर तलबा की भूख हड़ताल

0: साल जूस पिलाकर खत्म कराई। देवेंद्रनाथ महतो ने हुकूमत का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि इस फैसले से उनके अहम मुतालबात पूरे हो गए हैं। जेपीएससी जेएसएससी न्याय मंच ने भी ऐलान किया है कि वो फिलहाल अपना एहतजाज मुअत्तल कर रहा है। तलबा रहनुमा रविन्द्र पासवान ने हुकूमत के इस फैसले का खैर मकदम करते हुए उसका शुक्रिया अदा किया। ताहम उन्होंने कहा कि रिफॉर्म मंच मुबैना बेजाब्तियों की सीबीआई जांच का हुक्म जारी होने तक अपना एहतजाज जारी रखेगा। हुकूमत के फैसले के बाद उन उम्मीदवारों में भी एहतजाज शुरू हो गया जिन्हें पहले ही जेएसएससी सीजीएल इम्तिहान के जरिए मुलाजमत के लिए मुंतखब किया जा चुका है। रांची से महविश रहमान की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं असदुल्ला।
1: अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के वोटर शनाख्ती कार्ड निजाम की तारीफ की है और इसे सख्त अमरीकी इंतखाबी जाब्तों के लिए मिसाल करार दिया है। जनाब ट्रंप ने भारत के इंतखाबी तरीक़ेकार को इंतखाबी जांच पड़ताल के लिए मिसाली नमूना करार दिया और अमरीका में वोटर शनाख्त से मुतालिक जरूरतों में सख्ती बरतने की वकालत की। पेश है एक रिपोर्ट।
2: सोशल मीडिया पोस्ट पर जनाब ट्रंप ने भारत के आला इंतखाबी कमिश्नर ज्ञानेश कुमार के साथ अपनी हालिया बातचीत का हवाला दिया। उन्होंने कहा कि जनाब कुमार ने सवाल पूछा था कि अमरीका में मजाज तस्वीरी शनाख्ती दस्तावेज के बगैर इंतखाबात किस तरह मुनाकिद होते हैं। जनाब ट्रंप ने इस तबसे के जरिए अपने उस मुतालबे को दोहराया कि अमरीकी कांग्रेस को सेफ गार्ड अमरीकन वोटर एलिजिबिलिटी सेव अमरीका एक्ट को मंजूर करना चाहिए। इस मुजवदा कानून के जरिए वफाकी इंतखाबात में वोटिंग के लिए सख्त जरूरतें मुतारफ कराने की तजवीज़ है। इसके तहत राय दहिंदगान को वफाकी इंतखाबात के लिए रजिस्टर करते वक्त अमरीकी शहरियत का दस्तावेजी सबूत और हुकूमत की जानिब से जारी करदा तस्वीरी शनाख्ती कार्ड फराहम करना होगा। व्हाइट हाउस ने इस कानून को अमरीकी इंतखाबात में सिर्फ अमरीकी शहरियों की जानिब से राय दहिंदगी को यकीनी बनाने वाला कदम करार दिया। अमरीकी इंतजामिया ने कहा कि भारत और ब्राजील ने वोटर शनाख्ती कार्ड को बायोमेट्रिक डेटाबेस से मुंसलिक कर दिया है जबकि अमरीका शहरियत के लिए बड़े पैमाने पर खुद से तस्दीक पर इन्हिसार करता है। जनाब ट्रंप ने भारत के आम इंतखाबात के वसी दायरे का जिक्र करते हुए कहा कि भारत के हालिया आम इंतखाबात में तकरीबन 462 मिलियन अफराद ने अपने हक के रायदही का इस्तेमाल किया। दिल्ली से कुमोदी पारी की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं मोहम्मद अम्मार।
1: भारत आज नई दिल्ली में ब्रिक्स मुल्कों के माहौलियात के वजीरों के 12वें इजलास की मेजबानी करेगा। माहौलियात जंगलात और आबोहवा की तब्दीली की वजारत ने कहा कि ये इजलास अहम उमूर पर तफसीली तबादले ख्याल इत्तफाक राय को फरोग देने और माहौलियात से मुतालिक बाहमी ताउन को मजीद मजबूत बनाने के लिए प्लेटफॉर्म फराहम करेगा। तफसील हमारे रामनिगार से।
2: ब्रिक्स वज़राए माहौलियात के इजलास की सदारत माहौलियात जंगलात और आबोहवा की तब्दीली के मरकजी वजीर भूपेंद्र यादव करेंगे। ये इजलास भारत की 2026 ब्रिक्स सदारत के वसीतर मौजू इस्तेहकाम इख्तिरा ताउन और पायदारी की तश्कील के तहत मुनाकिद किया जा रहा है। भारत ने ब्रिक्स माहौलियात वर्किंग ग्रुप के तहत खसूसी तवज्जो के लिए चार तरजीही शोबों की निशानदेही की है। इनमें पायदार तर्ज जिंदगी को फरोग देना, शजरकारी, जंगलात में आग पर काबू पाने का इंतजाम और कुदरती आफात से निपटने की सलाहियत, सर्कुलर इकोनॉमी और आबोहवा की तब्दीली के असरात से मुताबिकत पैदा करना शामिल है। ब्रिक्स माहौलियात वर्किंग ग्रुप का क्याम 2015 में मॉस्को में मुनाकिद होने वाले ब्रिक्स वज़राए माहौलियात के पहले इजलास के दौरान अमल में आया था। इसका मकसद ब्रिक्स मुल्कों के लिए माहौलियाती तरजीहात से मुतालिक अहम उमूर पर तवज्जो देने, तजर्बात का तबादला करने, बेहतरीन तरीक़ेकार शेयर करने और रुकन ममालिक के दरमियान इज्तिमाई इकदामात को मजबूत बनाने के लिए एक प्लेटफॉर्म फराहम करना था। नई दिल्ली से नितिका गुप्ता की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं मोहम्मद अम्मार।
1: भारतीय फौज के सरबराह जनरल धीरज सेठ को कल काठमांडू के शीतल निवास में मुनक्किद एक तकरीब के दौरान नेपाल के सदर रामचंद्र पौडेल ने नेपाली फौज के एजाजी जनरल का ओहदा अता किया। इस मौके पर नेपाल के नायब सदर राम सहाय प्रसाद यादव, वजीर खारजा शिशिर खनाल, नेपाल में भारत के सफीर नवीन श्रीवास्तव और नेपाली फौज और हुकूमत के आला ओहदेदार मौजूद थे। जनरल सेठ नेपाल के अपने हमनसब जनरल अशोक राज सिगडेल की दावत पर इतवार को सरकारी दौरे पर नेपाल पहुंचे। एजाजी जनरल का ओहदा देने की ये रिवायत साल 1950 से जारी है जिसके तहत नेपाल और भारत एक दूसरे की फौज के सरबराहान को एजाजी जनरल का ओहदा अता करते हैं। जनरल सेठ ने नेपाली फौज के सदर दफ्तर में जनरल सिगडेल से भी मुलाकात की। दोनों फौजी सरबराहों ने बाहमी दिलचस्पी के उमूर और दोनों ममालिक के दरमियान फौजी ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाने के तौर तरीकों पर तबादला ख्याल किया। جنرل سیٹھ نے بھارتی سفارت خانے میں سفیر نوین سریواستو سے بھی ملاقات کی، جس میں نئی دلی اور کاٹھمانڈو کے درمیان جامع تعلقات کو

0: शिकस्त दी। खवातीन के डबल्स में ट्रेसा जोली और गायत्री गोपीचंद की जोड़ी ने स्पेन की पौला लोपेज और लूसिया रोड्रिगेज को सीधे सेटों में 21-9 और 21-13 से हरा दिया। ये थी खबरें और अब अखबार के आईने के साथ हैं असदुल्ला।
1: शुक्रिया समीर। कौमी राजधानी दिल्ली से शायब होने वाले आज के बेशतर उर्दू अखबारों ने अलग अलग खबरों को अपनी शह सुर्खी बनाया है। रोजनामा इनकलाब और प्रताप समेत आज के सभी अखबारों ने कल नई दिल्ली के भारत मंडपम में भारत की सदारत में मुनक़िदा ब्रिक्स माहौलियाती वर्किंग ग्रुप की मीटिंग को सफ़े अव्वल पर शाये करते हुए लिखा है कि इस मीटिंग में आलूदगी, हयातियाती तनवु, शजरकारी और सर्कुलर मईशत के शोबे में तआवुन को मजीद मजबूत करने पर जोर दिया गया। रोजनामा इनकलाब की सुर्खी है, मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने कहा है कि यौम आज़ादी से कबल सिक्योरिटी फोर्सेज ने मुख्तलिफ रियासतों में ऑपरेशन के जरिए दहशतगर्द ग्रुप शहजाद भट्टी नेटवर्क का पर्दाफाश करते हुए इसे तबाह कर दिया है। रोजनामा प्रताप ने मरकजी वजीर ममलकत बराए साइंस और टेक्नोलॉजी डॉक्टर जितेंद्र सिंह के इस बयान को सफ़े अव्वल पर शाये किया है कि तकनीक पर मबनी पेंशन खिदमात की फराहमी से माली वसाइल में नुमाया बचत हुई है।
0: और आखिर में खास खास खबरें एक बार फिर। झारखंड सरकार ने 24 दिन तक जारी रहने वाले तलबा एहतजाज के बाद जेएसएससी सीजीएल इम्तिहान को रद्द कर दिया है। झारखंड हुकूमत ने प्राइवेट एजेंसी TDPL के जरिए मुनाकिद कराए गए तमाम दीगर भर्ती इम्तिहान भी मनसूख कर दिए हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के वोटर शनाख्ती कार्ड निज़ाम की तारीफ की है और इसे अमरीका में मजीद सख्त इंतखाबी कवानीन के लिए मिसाली नमूना करार दिया है। भारत आज नई दिल्ली में ब्रिक्स वुज़राए माहौलियात के 12वें इजलास की मेजबानी करेगा। भारतीय फौज के सरबराह जनरल धीरज सेठ को नेपाल के सदर रामचंद पौडेल ने काठमांडू में नेपाली फौज के एजाजी जनरल का ओहदा अता किया। भारतीय महकमा मौसमियात ने आज झारखंड में इंतहाई शदीद बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। और नई दिल्ली में BWF बैडमिंटन आलमी चैंपियनशिप में मर्दों के सिंगल्स के पहले राउंड में आयुष शेट्टी ने आलमी नंबर 1 और दिफाई चैंपियन शी युकी को शिकस्त दी। इसके साथ ही आकाशवाणी से यह खबरनामा खत्म हुआ।
2: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, DRM 810 किलोहर्ट्ज़ पर। अब प्रस्तुत है हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम स्वर गंगा। इस कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवा रहे हैं सुप्रिया मैत्रा का गाया हुआ ध्रुपद गायन राग अहीर भैरव।

0: अभी आप सुन रहे थे हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम स्वर गंगा। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है।
1: ये आकाशवाणी का न्यूज ऑन एयर ऐप है। लाइव रेडियो, लेटेस्ट न्यूज हेडलाइंस, न्यूज पॉडकास्ट्स, साथ में दूरदर्शन के लाइव चैनल्स भी। द बेस्ट ऑफ एंटरटेनमेंट, इन्फॉर्मेशन, एजुकेशन अब आपके एक उंगली के इशारे पर। कहीं भी, कभी भी रहे हरदम अपडेट। आज ही डाउनलोड करें आकाशवाणी का न्यूज ऑन एयर ऐप। ये आकाशवाणी का न्यूज ऑन एयर ऐप है। लाइव रेडियो, लेटेस्ट न्यूज हेडलाइंस, न्यूज पॉडकास्ट्स, साथ में दूरदर्शन के लाइव चैनल्स भी। द बेस्ट ऑफ एंटरटेनमेंट, इन्फॉर्मेशन, एजुकेशन अब आपके एक उंगली के इशारे पर। कहीं भी, कभी भी रहे हरदम अपडेट। आज ही डाउनलोड करें आकाशवाणी का न्यूज ऑन एयर ऐप।
0: आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, DRM 810 किलोहर्ट्स पर। अब प्रस्तुत है विज्ञान पत्रिका।
2: नमस्कार, विज्ञान पत्रिका के आज के इस अंक में आप सबका स्वागत है।
3: हम लोगों ने अपने जीवन में आशीर्वाद के क्रम में या शुभेच्छा के क्रम में दीर्घायु होने की बात जरूर सुनी है कि लोग हमारे जो मित्र होते हैं, संबंधी होते हैं, जो बड़े बुजुर्ग होते हैं, वो इस तरह के आशीर्वाद देते हैं। वेदों में तो दीर्घायु और आरोग्य के लिए वैदिक मंत्र है, जीवेद शरदः शतम्, यानी कि शतायु होने की प्रार्थना है। और सप्त चिरंजीवी श्लोक का जब पाठ किया जाता है तब व्यक्ति रोग मुक्त होकर 100 वर्षों तक जीवित रहता है, इसकी चर्चा की जाती है। लेकिन क्या वर्तमान समय में स्वस्थ रहते हुए, आरोग्य प्राप्त करते हुए दीर्घायु संभव है? आयु बीतने के बाद शरीर में परिवर्तन का विज्ञान क्या है और लोग अपने लाइफस्टाइल से, खान पान से किस तरह से शरीर विज्ञान पे प्रभाव पड़ता है, उसका लाभ उठा सकते हैं? इन सब बातों पर विस्तृत जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ आकाशवाणी के स्टूडियो में उपस्थित है प्रोफेसर प्रमोद चंद्र रथ। आप जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय नई दिल्ली में स्कूल ऑफ लाइफ साइंसेज के सेवानिवृत्त प्रोफेसर हैं। प्रोफेसर रत्न ने लगभग 34 वर्षों तक JNU में अध्यापन और शोध से जुड़े हुए कार्य किए हैं और उन्होंने मॉलिक्यूलर बायोलॉजी ऑफ एजिंग एंड डिजीज, बोन मैरो स्टेम सेल्स एंड रीजेनरेटिव मेडिसिन आदि के क्षेत्र में महत्वपूर्ण शोध किए हैं। प्रोफेसर प्रमोद चंद्र रथ जी, आपका आकाशवाणी के स्टूडियो में स्वागत है।
4: धन्यवाद।
3: प्रोफेसर रथ, जो उम्र का बढ़ना है, एजिंग की जो बात करते हैं, इसकी वास्तव में वैज्ञानिक प्रक्रिया क्या है?
4: ये बहुत एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है। उम्र बढ़ने के साथ जो है हमारे शरीर का ऑलमोस्ट हर क्रिया प्रक्रिया जो है शिथिल होते रहते हैं और हमारे जो रोग प्रतिरोधक शक्ति है वो कम होते हैं, तो इसलिए एक वृद्ध व्यक्ति मतलब उनको बीमारी होने का चांसेस ज्यादा रहता है। और आज के जो परिवेश है और परिस्थिति है उसमें शहर में और सब जगह ज्यादा प्रदूषण है और खाद्य पदार्थ में भी बहुत सारे ऐसे तत्व हैं जो हानिकारक है शरीर के लिए, तो वो भी हमारे शरीर के अंदर जा रहा है। और कार्य क्षेत्र में बहुत ज्यादा तनाव है। ज्यादातर आप देखेंगे जो युवा है उनके लिए कार्य क्षेत्र में या पढ़ाई में और सब में तनाव बहुत है, तो तनाव भी एक कारण है। ये सब मिल के हमको एजिंग, जिसको हम लोग कहते हैं एजिंग, में ज्यादा उसको बढ़ाते हैं। आप अगर एक गाँव का माहौल देखिए तो वहाँ पर पानी और जलवायु सब स्वच्छ है और हो सकता है खान पान भी उतना खराब ना हो क्योंकि वहाँ अपने से लोग उगाते हैं और खाते हैं, लेकिन शहर में ऐसा संभव नहीं है। और हमारे देश में आप देखिए तो जो आर्थिक सोपान है, आर्थिक अवस्था है, अलग अलग लोगों के बहुत विभिन्न है। बहुत से लोग गरीब है और बहुत से लोग जो अपना चीज पैसा दे के खरीद सकते हैं, तो जो गरीब जनता है उनके लिए सब चीज उपलब्ध कराना उनके लिए इतना आसान नहीं होता है, तो इसलिए ये भी एक कारण होता है कि क्यों स्वास्थ्य है या अपना दैनंदिन जीवन है उसमें बहुत सारे बाधा आते हैं।
3: निश्चित रूप से देखिए कि स्वास्थ्य का

0: प्रभाव हमारे खान पान पे है, और खान पान की शुद्धता, उपलब्धता, खरीदने की शक्ति पे है, और उसमें वो एक आर्थिक आधार बनता है। जब हम विज्ञान की दृष्टि से देखते हैं, आपने मॉलिक्यूलर बायोलॉजी ऑफ एजिंग इस पर काफी रिसर्च किया है, हमारे शरीर को जीन जो है वो मेन उसका बिल्टअप बनाता है, तो जो उम्र बढ़ने की प्रक्रिया में जीन्स और जीन एक्सप्रेशन की क्या भूमिका होती है?
1: जीन का जो एक्सप्रेशन होता है वो जो जरूरी बहुत सारे जीन है, ये देखा गया है कि उम्र बढ़ने के साथ उनका एक्सप्रेशन कम होता जाता है, और कुछ ऐसे जीन्स हैं जो एक्टिवेट हो जाते हैं, सक्रिय होते हैं, और हमारे जो गुण सूत्र है जिसको क्रोमोसोम्स कहते हैं, उसके दोनों एंड पे टिलोमियर एक सीक्वेंस होता है, वो टिलोमियर सीक्वेंस जो है कम होता जाता है जब हम बूढ़ा हो जाते हैं, तो उसके वजह से एक बताया जाता है कि वो जेनेटिक इनस्टेबिलिटी जो है क्रिएट करता है। तो उससे क्या होता है, अपने जीनोम में जीन्स को थोड़ा थोड़ा कई तरह का उसमें म्यूटेशन भी होते रहते हैं, तो उसकी वजह से जो सेल में अपना जो उसका फंक्शन है, जो विभिन्न प्रक्रिया है, वो भी उससे अफेक्ट होते हैं, तो ये एक कारण है। और एक है रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज, जिसको सेल्युलर स्ट्रेस बोलते हैं, तो उसका एक सोर्स माइटोकॉन्ड्रिया है, बाकी और भी सोर्स है, वो रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज वो अलग अलग जो कंपोनेंट्स है सेल में उसको डैमेज करते हैं, तो डैमेज्ड मॉलिक्यूल्स एक्यूमुलेट करते हैं, तो इसलिए जो ओल्ड सेल हो जाता है उसके अंदर बहुत सारे डिफेक्ट्स पाए जाते हैं, और ये देखा गया है कि उम्र बढ़ने के साथ ओल्ड एज में ये जो ओल्ड सेल्स एक्यूमुलेट करते हैं बढ़ जाते हैं, अगर उनको शरीर से हटा दिया जाए तो फिर शरीर का अपना जो नेचुरल प्रक्रिया है वो अपने को ठीक कर सकता है, लेकिन वो कैसे होगा उसका ऐसे कोई सीधा रास्ता अभी निकला नहीं है, इस पर रिसर्च हो रहा है।
0: तो क्या यह एक नेचुरल प्रोसेस है जो होता रहता है, या विज्ञान अपने प्रभाव के द्वारा, कुछ उपाय के द्वारा इस प्रोसेस को कम कर सकता है?
1: ये एक नेचुरल प्रोसेस है, लेकिन अगर ये एक लिमिट के अंदर रहे तब हमारा ओल्ड एज में भी जितना जरूरत है अच्छे स्वास्थ्य के लिए वो हम पा सकते हैं, लेकिन जब एक लिमिट के ऊपर हो जाए बीमारी होने का चांसेस ज्यादा होता है। ये देखा गया है कि जो मेटाबॉलिक डिजीज है, जैसे डायबिटीज है, आर्थराइटिस है, और बहुत सारे डिजीज है, वो ओल्ड एज में ज्यादा देखा जाता है, एक उम्र के बाद, मान लीजिए 60 के बाद, 70 के बाद। और आजकल ये देखा गया है कि जो न्यूरो डिजेनरेटिव डिजीज है, ब्रेन से रिलेटेड और नर्व से रिलेटेड, मसल से रिलेटेड और इम्यून सिस्टम से रिलेटेड डिजीज भी ओल्ड एज में ज्यादा हो रहा है, क्योंकि रोग प्रतिरोधक शक्ति कम हो जाते हैं, तो ये एक लिमिट की बात है। तो उसको रोकने के लिए कई सारे प्रयास कर रहे हैं, जैसे कोई चीज जो कम हो रहा है मान लीजिए उसको दे दिया जाए, जैसे एक चीज है जिसको कहते हैं NAD, निकोटिनामाइड एडेनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड, ये एक मेटाबोलाइट है, ये कम हो जाता है तो बहुत सारे प्रक्रिया, बायोकेमिकल प्रक्रिया जो है अफेक्ट होते हैं, तो कहीं कहीं ये रिसर्च हो रहा है कि अगर हम बाहर से NAD दे दें तो हो सकता है कुछ हद तक हम जो कमियां हो रहा है उसको रिस्टोर कर सकते हैं
0: और एजिंग प्रोसेस को
1: धीमा कर सकते हैं। तो मेन जो गोल है, लक्ष्य है, वो ये है कि वृद्ध अवस्था में हम फिर भी स्वास्थ्य को कैसे ठीक रख सकते हैं, बीमारी से बच सकते हैं।
0: आपका जो शोध है वो बोन मैरो स्टेम सेल्स और रीजेनरेटिव मेडिसिन से भी जुड़ा रहा है, तो जब हम स्टेम सेल्स की बात करते हैं, आजकल काफी उसकी चर्चा है, तो ये क्या है, शरीर में इसका महत्वपूर्ण तो रोल क्या होता है?
1: हमारे शरीर में हर जगह, हर टिश्यूज में, हर ऑर्गन में, जैसे ब्रेन है, लीवर है, बोन मैरो है, सब जगह स्टेम सेल होते हैं, और स्टेम सेल वो सेल है जो एक सुप्त अवस्था में रहता है, जरूरत पड़ने पे वो नया सेल बना सकता है, जो कि मान लीजिए खत्म हो गया, जैसे हमारे ब्लड सेल्स जो है 120 दिन में वो रिप्लेस हो जाते हैं, तो जो बोन मैरो के अंदर जो स्टेम सेल होते हैं वो हमारे ब्लड और इम्यून सिस्टम दोनों को नए सेल्स देते हैं, और उस स्टेम सेल को निकाल के लेबोरेटरी में हम दूसरे टाइप का सेल बना सकते हैं, तो अगर हम मसल सेल बना लेंगे या मान लीजिए बोन सेल बना लेंगे, अगर कहीं उस सेल की कमी है तो उसको रिप्लेस कर सकते हैं।
0: क्या ये जो स्टेम सेल पे जो रिसर्च है और एजिंग की जो बात होती है, उम्र संबंधी जो आपने बीमारियों की भी चर्चा की, इम्यूनिटी कम होने से प्रॉब्लम होते हैं, तो इसमें चैलेंजेज क्या है इसके पूरी तरह से लाभ उठाने में?
1: एक जो सबसे बड़ा चैलेंज है, जो हमारा एक्सपेरिमेंटल मॉडल सिस्टम है, जैसे चूहा पे रिसर्च होता है बहुत ज्यादा, वो आदमी में कैसे हम उसको ट्रांसलेट करें, क्योंकि रिसर्च आदमी में नहीं हो सकता है, और असली जरूरत जो है क्लिनिकल हॉस्पिटल सेटिंग सेटिंग में जरूरत है। लेकिन बोन मैरो स्टेम सेल एक ऐसा है, इसमें बहुत सारे

0: जो है पॉसिबिलिटीज है, आदमी के बोन मैरो स्टेम सेल लेके भी कल्चर करके उससे भी अलग अलग सेल बनाया जा सकता है। एक चैलेंज ये है। दूसरा चैलेंज ये है कि कोई एक चीज अगर हम देंगे तो उसका बॉडी के अंदर अगर इंजेक्ट करेंगे या किसी फॉर्म में खाने में देंगे, उसका कोई बुरा असर ना हो। क्योंकि कभी कभी ये होता है, शरीर का जो नेचुरल सिस्टम है, जैसे कोई मेडिसिन है, कोई कोई मेडिसिन का एक साइड इफेक्ट भी होता है।
1: बिल्कुल
0: तो ये भी बहुत बारीकी से इसको स्टडी किया जाता है कि कोई
1: हाँ
0: ऐसा चीज ना हो तो अच्छा भी करे, उसके साथ कोई खराब भी करे। ये दो चीज है कि रिसर्च को कैसे आदमी के
1: फायदे
0: हॉस्पिटल
1: के लिए
0: क्लिनिकल सेटिंग में कैसे ट्रांसलेट करना है, और जो हम अप्रोच कर रहे हैं उसका कोई बुरा असर ना हो।
1: बिल्कुल, क्योंकि एक्सपेरिमेंट के दौरान नुकसान होने की
0: हाँ हाँ
1: संभावनाएं भी है। आपकी शोध का एक और महत्वपूर्ण क्षेत्र रहा है लॉन्ग नॉन कोडिंग आरएनए।
0: हाँ
1: तो इसको अगर एक सरल भाषा में कैसे समझा जा सकता है या हमारे सुनने वालों को समझाया जा सकता है, और शरीर में इसका इम्पोर्टेंस क्या है, रोल क्या
0: हाँ
1: है?
0: जो लॉन्ग नॉन कोडिंग आरएनए है वो एक आरएनए, आरएनए को कहते हैं राइबो न्यूक्लिक एसिड, और जो जीन हमारा होता है वो डीएनए होता है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, उससे आरएनए बनता है, आरएनए से प्रोटीन बनता है। तो लॉन्ग नॉन कोडिंग आरएनए जो है वो नॉन कोडिंग इसलिए है कि वो प्रोटीन नहीं बनाता है, लेकिन वो खुद बनता है और वो बाकी सारे जो सेल के अंदर प्रोसेस होते हैं, फंक्शन होते हैं, उसको रेगुलेट करता है। तो जितना देखा गया अभी तक, लॉन्ग नॉन कोडिंग आरएनए डीएनए को, आरएनए को और प्रोटीन को, उसके रेगुलेशन में उसका रोल है।
1: रेगुलेशन में या फॉर्मेशन में भी?
0: हाँ, रेगुलेशन में क्या होता है, एक तो है सिंथेसिस, जो नया एक चीज से नया चीज बनेगा, दूसरा है एक दूसरे से वो मिल के एक कॉम्प्लेक्स बनाएंगे, उसको हम लोग कहते हैं असेंबली, सिंथेसिस, असेंबली और रेगुलेशन। रेगुलेशन में पॉजिटिव नेगेटिव रेगुलेशन बहुत होता है, जैसे कि उसको एक्टिव करेंगे एक इनएक्टिव स्टेट से, या एक्टिव स्टेट से इनएक्टिव करेंगे। तो रेगुलेशन बहुत जरूरी है बायोलॉजी में, शरीर में। खाली एक्टिव करने से नहीं होगा, अत्यधिक एक्टिव होने से भी खराब होता है।
1: तो ये जो नॉन कोडिंग आरएनए है और एजिंग का जो प्रोसेस है, क्या इसके बीच में कोई संबंध है? और
0: जितना
1: इसके द्वारा क्या लगता है कि भविष्य में किसी भी स्वास्थ्य समस्या का उपचार किया जा सकता है?
0: जी, एक बहुत इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है लॉन्ग नॉन कोडिंग आरएनए। जो हम लोगों ने स्टडी किया है वो हम लोग देखे हैं ब्रेन में और टेस्टिस में, जो ओल्ड चूहा होते हैं उसमें ये दोनों लॉन्ग नॉन कोडिंग आरएनए का एक्सप्रेशन कम हो जाता है, और ये नया स्पर्म बनाने में टेस्टिस में तीन तरह का सेल बहुत जरूरी है। एक टाइप का सेल है जो मेल हार्मोन सिक्रेट करते हैं, उसको कहते हैं लेडिग सेल, वो टेस्टोस्टेरोन सिक्रेट करते हैं। दूसरा सेल होता है जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स कहते हैं, वो स्पर्म बनाते हैं। और तीसरा सेल होता है जो नर्सिंग फंक्शन है, ये दोनों का मदर सेल टाइप का, उनको नरिशिंग फंक्शन करते हैं, वो है सर्टोली सेल। ये अलग अलग सेल को हम लोग आइसोलेट करके स्टडी किए हैं, ये सेल में ये नॉन कोडिंग आरएनए कम हो जाता है। तो ये हम लोग दोनों को सोचते हैं कि जैसे ओल्ड एज में टेस्टिस में स्पर्म प्रोडक्शन कम हो जाता है, रिप्रोडक्टिव एबिलिटी कम हो जाता है, उसमें इसका रोल हो सकता है। जैसे ब्रेन में दो मेजर फंक्शन होते हैं, बहुत सारे फंक्शन है, उसमें से दो मेजर हो सकते हैं। एक है लर्निंग एंड मेमोरी, हम नया चीज कैसे सीखते हैं और उसको कैसे याद करके रखते हैं, जरूरत पड़ने पे इस्तेमाल कर सकते हैं, मेमोरी। फिर दूसरा है एडल्ट न्यूरोजेनेसिस, नया न्यूरॉन सेल बनाना। ये दोनों फंक्शन एक पार्ट है ब्रेन में, उसको कहते हैं हिपोकैम्पस, उसमें ये जो लॉन्ग नॉन कोडिंग आरएनए कम हो जाता है। तो हम लोग सोचते ही है, अगर ये लॉन्ग नॉन कोडिंग आरएनए उसमें रिस्टोर कर दिया जाए तो हो सकता है ये दोनों फंक्शन का रीगेन हो जाए। तो ये हम लोगों ने देखा है, जो न्यूरॉन को रेगुलेट करने का जो जीन से, उसको ये लॉन्ग नॉन कोडिंग आरएनए रेगुलेट करते हैं। और एक है जो विटामिन ए, एक है जो बाहर से खाद्य पेय के माध्यम से हम लोग लेते हैं, शरीर हमारा बनाता नहीं, उसमें से एक मेटाबॉलिक प्रोसेस में एक चीज बनता है रेटिनोइक एसिड, वो ये सब चीज को रेगुलेट करता है, स्टिमुलेट करता है, न्यूरॉन के लिए और बहुत सारे सेल के लिए जरूरी है। अगर विटामिन ए कम हो जाए, बहुत सारे हमारा शरीर का हानि हो सकता है, बीमारी हो
1: आपने
0: सकता है। तो
1: एक और चीज बताई कि जो एज के साथ इम्यूनिटी कम हो जाती है और प्रॉब्लम होता है, तो ये इम्यूनिटी और इन्फ्लेमेशन का कोई संबंध है?
0: ये देखा गया कि जितने डिजीज है वो ओल्ड एज में ज्यादा होते हैं, इसलिए क्योंकि ओल्ड एज में रोग प्रतिरोधक शक्ति कम हो जाते हैं। तो कोई इन्फेक्शन हुआ तो जल्दी क्लियर नहीं होता है, मतलब रहता है बहुत दिन तक, उसके वजह से दिक्कत होता है। तो ओल्ड एज में ये डिजीज का जो ज्यादा होता है उसको कम करने के लिए कोशिश हो रहा है, और इन्फ्लेमेशन ओल्ड एज में रहता है, हर टिश्यू में वो बढ़ता है, उसके वजह से हमारा बीमारी जो है होता है ज्यादा। जैसे बहुत सारे बीमारी देखा गया है ओल्ड एज में बढ़ता है, उसका कारण देखा गया है कि बहुत दिन तक इन्फ्लाम

0: उस टिश्यू में रहता है, उसके बाद वो बीमारी में एक्सप्रेस करता है।
1: बढ़ती उम्र के साथ एक और प्रॉब्लम जो होती है वो है भूलने की, जो डिमेंशिया है,
0: डिमेंशिया।
1: अल्जाइमर्स है वो है। तो आजकल बाजार में बहुत सारी चीजें, बहुत दवाइयां या थेरेपी आती है जो इसको एंटी एजिंग प्रोडक्ट्स या थेरेपी उपचार कहते हैं, तो क्या वैज्ञानिक दृष्टि से ये प्रभावी है, उसमें आपका क्या विचार
0: हाँ,
1: है?
0: कुछ नेचुरल प्रोडक्ट होते हैं जो हम खान पान में लेते हैं, उसका एंटी एजिंग इफेक्ट होता है, क्योंकि वो जो हमारा मेटाबॉलिज्म के लिए चाहिए वो देते हैं। लेकिन बाजार में बहुत सारा प्रोडक्ट है जो हो सकता है उतना इफेक्टिव ना हो, शॉर्ट टर्म गेन है, डॉक्टर का एडवाइस से ही उसको इस्तेमाल करना।
1: प्रोफेसर प्रमोद चंद्र रथ जी, आप आकाशवाणी के स्टूडियो में आए और आपने जो स्वस्थ दीर्घायु जीवन का जो विज्ञान है, स्टेम सेल्स, मॉलिकुलर बायोलॉजी, नॉन कोडिंग आरएनए, वर्तमान में हो रहे जो अनुसंधान है उसका जो महत्व है, भविष्य में किस तरह से उस अनुसंधान को आगे बढ़ाया जा सकता है, अनुसंधान के क्षेत्र में क्या क्या चुनौतियां हैं, इन सब बातों पर विस्तृत जानकारियां दी। आकाशवाणी आने के लिए, समय निकालने के लिए और इन सब जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद।
2: और इसी के साथ विज्ञान पत्रिका का आज का ये अंक यहीं संपन्न होता है। कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे दिलीप झा।
3: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। अब प्रस्तुत है पंजाबी कार्यक्रम मिट्टी दी महक।

0: किसे दावी ना। बे मतलब कुछ कंडे पल्ले नू चिमट जांदे, राहां च रुकावट पांदे। बे मतलब राह चलदियां कुछ पत्थर रोड़े अटकांदे, पैर लड़खड़ांदे। बे मतलब कुछ ख्याल भूत विच फैलांदे, सोचा नू हिलांदे, वर्तमान नू झंझोड़दे, धरती हिला देंदे, भविख नू कंबा देंदे। बे मतलब गंदले पानी बे मतलब गंदले पानी हुमस पैदा कर दे, बदबू फैलांदे, प्रदूषित कर दे वातावरण। बे मतलब कामयाबी ईर्खा साड़े दी, बलि चढ़ दी, पहुंचण न दें दी मंजिल तीकर।
1: हुणे तुसी सुन रहे सी कविता पाठ लड़ी हेठ हरविंदर कौर तो उन्हां दियां काव्य रचनावां। ते आओ हुण सुनदे हां ए गीत। गीतकार ने चमन लाल शुगल ते आवाज़ है आसा सिंह मस्ताना दी।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे पंजाबी प्रोग्राम मिट्टी दी महक। आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है। 10 बजने को हैं, थोड़ी ही देर में आप समाचार सुनेंगे, पहले हिंदी में और उसके बाद अंग्रेजी में।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। भारत आज नई दिल्ली में ब्रिक्स देशों के पर्यावरण मंत्रियों की 12वीं बैठक की मेजबानी करेगा। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने बताया है कि ये बैठक महत्वपूर्ण विचार विमर्श, सर्वसम्मति तक पहुंचने और पर्यावरणीय सहयोग मजबूत करने का मंच उपलब्ध कराएगी। झारखंड में जेपीएससी और जेएसएससी उम्मीदवारों के 24 दिन से जारी विरोध प्रदर्शन के बाद राज्य सरकार ने जेएसएससी सीजीएल परीक्षा 2024 और टीडीपीएल एजेंसी द्वारा संचालित सभी प्रतियोगी परीक्षाएं रद्द कर दी हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कल शाम मंत्रिमंडल की विशेष बैठक के बाद ये घोषणा की। और ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: सरकार ने वर्ष 2014 से अब तक की भर्ती प्रक्रियाओं की जांच कराने के साथ परीक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए आईएएस अधिकारी अमिताभ कौशल की अध्यक्षता में समिति गठित करने का भी निर्णय लिया है। इस बीच मंत्री दीपिका पांडे सिंह और स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी के साथ विधायक जयराम कुमार ने सदर अस्पताल पहुंचकर देवेंद्र नाथ महतो और अन्य आंदोलनरत छात्रों को जूस पिलाकर उनका अनशन समाप्त कराया और जेपीएससी जेएसएससी न्याय मंच ने फिलहाल आंदोलन स्थगित करने की घोषणा की। छात्र नेता रविंद्र पासवान ने सरकार के फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि कथित अनियमितताओं की सीबीआई जांच का आदेश होने तक रिफॉर्म मंच का आंदोलन जारी रहेगा। महविश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
1: दिल्ली सरकार ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट और सुपर स्पेशलिटी मेडिकल सीटों के चरणबद्ध विस्तार के माध्यम से चिकित्सा शिक्षा क्षमता बढ़ाने के लिए तैयार है। इस योजना के तहत सरकार 3 स्तरीय प्रयास करेगी, जिसमें ग्रीनफील्ड परियोजनाएं, मौजूदा संस्थानों का ब्राउनफील्ड विस्तार तथा स्नातकोत्तर और उन्नत चिकित्सा कार्यक्रमों का विस्तार शामिल है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत की मतदाता पहचान पत्र प्रणाली की प्रशंसा की है और इसे अमेरिका के चुनाव विनियमों के लिए मॉडल बताया है। उन्होंने भारत की निर्वाचन प्रणाली को चुनावी सुरक्षा का उदाहरण बताया। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री ट्रंप ने भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार के साथ हाल की बातचीत का उल्लेख किया। अमेरिका के विशेष दूत जेयर्ड कुशनर ने कहा है कि प्रस्तावित गजा संघर्ष विराम योजना पर इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू के साथ लगभग 4 घंटे चली बैठक में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। श्री कुशनर ने कहा कि बातचीत मुख्य रूप से गजा के पुनर्निर्माण, असैन्यकरण और इसराइल की सुरक्षा चिंताओं पर केन्द्रित रही। उन्होंने ये भी बताया कि श्री नेतन्याहू और उनकी टीम द्वारा उठाए गए कई मुद्दों पर विचार विमर्श हुआ। केरला में विंझिंजम समुद्री बंदरगाह से आज से सीधा निर्यात और आयात शुरू हो रहा है। मुख्यमंत्री वीडी सतीशन आज सेवा का उद्घाटन करेंगे। केंद्रीय बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल मुख्य अतिथि होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि व्यक्ति को हमेशा आत्मसम्मान, साहस और स्वाभिमान के साथ जीना चाहिए। सोशल मीडिया पोस्ट में एक संस्कृत सुभाषितम साझा करते हुए उन्होंने कहा कि सच्चा पुरुषार्थ इसी में है कि व्यक्ति किसी भी परिस्थिति में अपने सिद्धांतों और मूल्यों से समझौता न करे और अपने आदर्शों पर दृढ़ रहे। मौसम विभाग ने आज झारखंड में अत्यधिक तेज वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। बिहार, छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी तेज बारिश का अनुमान है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, उत्तराखंड, पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा, दिल्ली में भी गुरुवार तक तेज बारिश होगी। मछुआरों को आज अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में न जाने की सलाह दी गई है। एफआईएच महिला हॉकी विश्व कप में आज भारतीय टीम पूल डी के अपने दूसरे मैच में दक्षिण अफ्रीका के साथ खेलेगी। ये मैच नीदरलैंड्स के एम्स्टेलफेन में खेला जाएगा। भारत ने ओलंपिक रजत पदक विजेता चीन के साथ 2-2 से ड्रॉ के साथ अपने अभियान की शुरुआत की। नई दिल्ली में आयोजित बीडब्ल्यूएफ बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप में पुरुष सिंगल्स के पहले दौर में भारत के 21 वर्षीय आयुष शेट्टी ने मौजूदा चैंपियन

0: Sikkim, northeastern states, Karaikal, Puducherry will experience heavy rainfall till Thursday. India's Ayush Shetty stunned world number one and defending champion Shi Yuqi in the first round of the men's singles at BWF Badminton World Championships in New Delhi yesterday. Ace shuttler PV Sindhu and the women's doubles pair of Teresa Jolly and Gayatri Gopichand also advanced to the second round at the World Championships. In men's cricket, India will look to press home their advantage against Sri Lanka on the fourth day of the first test in Goa after taking a commanding lead of 178 runs at the end of day three. And that is the end of this news bulletin.
1: मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़ पर आप हमारे प्रसारण सुन रहे हैं। यह है आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल। डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर भी आप हमसे जुड़े हुए हैं, साथ ही आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं एआईआर लाइव न्यूज़ 24x7 मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से भी और यूट्यूब लाइव पर भी। श्रोताओं, आप सभी का मैं देवेंद्र त्रिपाठी आज के आपकी पसंद की आपकी फरमाइश के गीतों के कार्यक्रम आपकी फरमाइश में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। आज तारीख की बात करें तो 18 अगस्त है और हाल ही में हमने अपना 80वां स्वतंत्रता दिवस मनाया, हमने अपना राष्ट्रीय पर्व मनाया और ये पर्व और साथ में इस महीने का अगर हम महत्व देखें तो खेती से बहुत जुड़ा हुआ है, क्योंकि मौसम मानसून का है, मौसम बारिश का है। 4 महीनों में तीसरा महीना अब बीतने वाला है अगस्त, और अगस्त सबसे ज़्यादा बारिश जुलाई और अगस्त में देश भर में होती है, जो कि धीरे धीरे अब ये समाप्त होने की तरफ है। लेकिन इस बार बारिश कई जगहों पर बहुत कम हो रही है और इससे किसान सीधे तौर पर प्रभावित हो रहे हैं। आम लोगों को भी गर्मी और उमस परेशान करे, हालांकि कुछ राज्यों में अच्छी बरसात भी हो रही है। तो चलिए शुरुआत करते हैं एक बहुत ही प्यारे से गीत के साथ जो नज़ारों से जुड़ा हुआ है, लेकिन युगल गीत है। किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज़ में ये गीत हम आपको सुनवा रहे हैं और इस गीत को लिया है फिल्म कभी कभी से। तो शुरुआत करते हैं इस फिल्मी नगमे के साथ, इस प्यारे से गीत के साथ आज का आपकी पसंद का ये कार्यक्रम, और उसके बाद उन श्रोताओं के नाम भी शामिल करेंगे जिन्होंने इस गीत को सुनवाने के लिए हमें ईमेल किया है। और आगे बढ़े उससे पहले आपको बता दूं कि आप भी ईमेल कर सकते हैं ipradiodelhi@gmail.com पर, लेकिन आपसे मेरा निवेदन है कि एक ही मेल भेजें, जिनके ज़्यादा मेल आएंगे मैं उनको समझ जाऊंगा कि वो कार्यक्रम नहीं सुन रहे हैं। तो ऐसे लोगों के नाम शामिल करना थोड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि आप भी जानते हैं 400 मेल आते हैं और 400-500 मेल का आधे घंटे एक घंटे के प्रोग्राम में शामिल करना पॉसिबल नहीं होता है। तो आप भी एक मेल करिए, इससे ये भी पता चलेगा मुझे कि आप सुन रहे हैं, दूसरा कि उन्हीं लोगों का नाम शामिल किया जाएगा इस कार्यक्रम में।

दोस्तों, मैंने शुरुआत की थी इस बात से कि बारिश का मौसम है और बारिश जब होती है तो नज़ारे बहुत अलग नज़र आते हैं। पूरी प्रकृति हरी भरी नज़र आती है, लेकिन इस बार विडंबना यह है कि कई जगहों पर मानसून थोड़ा सा निराश कर रहा है, तो वो नज़ारा नहीं दिखाई पड़ रहा है। फिलहाल खूबसूरत सा गीत आपने सुना किशोर कुमार और लता मंगेशकर के स्वर में, कभी कभी फिल्म से। और सुनने के लिए आप सभी श्रोताओं के ईमेल मिले हमें। उमरखेड़ महाराष्ट्र से अभिजीत गवाणकर राही, श्रीमती सरिता गवाणकर, प्रिंस एकांश गवाणकर, और बदलापुर मुंबई से प्रणीता, सिद्धांत, अर्जुन गवाणकर, और नागपुर से वैशाली शैलेश गवाणकर, एकांश, सुमित, कुमारी ध्वनि और परी, खरगोन मध्य प्रदेश से अशोक वर्मा, अर्चना वर्मा, अनुज आयुषी, रमेश चंद्र, शेख मूसा, राजकुमार बुढ़ाना, सुदामानगर खंडवा से लक्ष्मी, नंदिनी, रोहित, रितु और मुकेश जगताप, ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही, मेहराज जहां आजाद नगर लक्सर हरिद्वार से ईमेल करते हैं, और दिल्ली के कृष्णा पार्क से सुखविंदर सिंह जौड़ा और सीट दीवाना ने हमें ईमेल किया था। आप सभी की पसंद पर हमने ये गाना सुना। और कार्यक्रम का अगला गीत ये भी थोड़ा मौसम से जुड़ा हुआ है, और सुनवाने के लिए आप सभी श्रोताओं के ईमेल मिले। ये मौसम फिल्म का गाना भी है, भूपिंदर सिंह की आवाज़ में। बहुत ही प्यारा सा गीत है। ये वो गीत है जो हमें सोचने पर मजबूर करता है कि हम अपनी ज़िंदगी में इतने भाग क्यों रहे हैं, जो हमें ये कहता है कि ठहरो और अपने उन दिनों को याद करो, उन पलों को याद करो, उन घटनाओं को याद करो जो जीवन में सुकून लेकर आती थीं, जो जीवन में आनंद घोलती थीं। तो ऐसे दौर के तरफ हमें ये गीत लेकर चलता है। लिखा है ईमेल आप सभी श्रोताओं ने, भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र छिपा, कपिल, ईशान छिपा और पूजा परिहार, पांडर कवड़ा से अनिल बुरांडे, उषा अनुश्री और धनश्री बुरांडे, श्रीगंगानगर राजस्थान से मेहर अरोड़ा, ममता अरोड़ा, कीर्ति अरोड़ा, भूमिका, और मोहाली चंडीगढ़ से टीडी मल्होत्रा, ऋतिक, प्रतीक, अनिल शर्मा, जयवीर सिंह, अमनदीप, कालका से शुभचंद्र बजाज, साहिल बजाज और बिट्टा बजाज, चंडीगढ़ से सतीश अनेजा, बिमला अनेजा, इंदौर मध्य प्रदेश से नारायण नाराय खर्चे, ललिता खर्चे, गणेश, कार्तिक और परी खर्चे। तो आप सभी श्रोताओं की पसंद पर हम कार्यक्रम का अगला गीत सुनने जा रहे हैं, जो खुद मुझे भी बहुत ही पसंद है, तो आप सभी की वजह से आज मैं भी ये गाना सुन पाऊंगा।

तो ये गीत आपने सुना भूपेंद्र सिंह की आवाज में, जो निश्चित तौर पर आपको भी पुराने दिनों की तरफ ले गया होगा। अगर आप याद करेंगे तो जो बचपन के दौर में चीजें अच्छी लगा करती थी, आज उनसे टेंशन होती है। और जो आज उस समय ऐसा लगता था कि ये हमारा काम नहीं है, आज वो हमारी जिम्मेदारी है। तो इन जिम्मेदारियों को निभाते निभाते कई बार हम अपना जीवन और अपने जीवन में जो आनंद पाने के पल हैं उनको भूल जाते हैं, या उनकी तरफ हम ध्यान नहीं देते हैं। तो ये गीत आपने सुना, बहुत ही प्यारा सा नगमा, और गुलजार का ही लिखा अगला गाना भी आपको सुनाएंगे। दोस्तों, हिंदी सिनेमा में कुछ नाम ऐसे होते हैं जिन्हें किसी एक परिचय में बांध पाना आसान नहीं। गुलजार भी एक ऐसा ही नाम है। गीतकार, लेखक, शायर, पटकथा और संवाद लेखक और संवेदनशील फिल्म निर्देशक। गुलजार की लेखनी की सबसे बड़ी खूबी है साधारण सी बात को असाधारण शब्दों में कह देना, और उनके गीतों में प्रेम है, विरह है, रिश्तों की गर्माहट है, और जिंदगी को देखने का एक बेहद खूबसूरत नजरिया भी। चाहे मेरा कुछ सामान हो और तेरे बिना जिंदगी से कोई शिकवा नहीं, तुझसे नाराज नहीं जिंदगी, या फिर दिल ढूंढता है, जिसका जो अभी आपने सुना, तो गुलजार के शब्द सीधे मन को छूते हैं। शब्द भले ही असाधारण हो, लेकिन साधारण से साधारण व्यक्ति के मन दिल को छू जाते हैं। उनके गीत केवल सुने नहीं जाते बल्कि महसूस किए जाते हैं, क्योंकि वो खुद महसूस करके उन गीतों को लिखते हैं। गुलजार ने हिंदी फिल्म संगीत को कई ऐसे शब्द दिए जो रोजमर्रा की भाषा से निकलकर कविता बन गए। उनकी रचनाओं में प्रकृति है, स्मृतियां हैं, और मानवीय संवेदना इस तरह घुली मिली है कि हर गीत अपनी एक अलग दुनिया बसा देता है, एक अलग दुनिया रच देता है। और शायद यही वजह है कि कई दशक बीत जाने के बाद भी गुलजार के गीत आज भी उतने ही ताजा लगते हैं। तो आइए अगले गीत को सुनते हैं, और ये खरौंधा फिल्म का गीत है, बहुत ही प्यारा सा नगमा ये भी, जो हमें जोड़ेगा उन दिनों की यादों से फिर से एक बार।

0: दीवाना शहर में
1: एक दीवाना नहीं एक दीवानी भी
0: दो दीवाने शहर में।

कितनी बड़ी बात है, कितनी आसानी से, कितने सरल शब्दों के माध्यम से गुलजार साहब कह देते हैं। और गुलजार के दो गीत हमने सुने, और इन दोनों गानों के माध्यम से हमने उनको याद किया, क्योंकि आज उनकी उनका जन्मदिन है। तो गुलजार साहब को हमारी तरफ से, आकाशवाणी परिवार की तरफ से और सभी श्रोताओं की तरफ से जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं। और कार्यक्रम का अगला गाना दोस्तों बहुत ही प्यारा सा, ये है मुकेश की आवाज़ में और तीसरी कसम से फिल्म से इस गाने को हमने लिया है। और ये गाना कहीं ना कहीं हमें एक फिलॉसफी, एक दर्शन की ओर ले जाता है। लेकिन उससे पहले श्रोताओं, हम इन श्रोताओं के नाम तो बता दें जिनकी पसंद पर ये गीत अभी आपने सुना, दो दीवाने शहर में, घरौंदा फिल्म से, स्टेशन रोड जमशेदपुर से हरजिंदर सिंह भाटिया, एंजल भाटिया, सोनू और तमन्ना भाटिया, संदीप मक्कड़, ज्योति मक्कड़, मन्नत मक्कड़, भारत कमल साहनी, पिंगावाला चौक गोराया जालंधर से आपने ईमेल किया, मुल्लापुर दाखा लुधियाना से राजेश जैन, बिट्टू जैन, संजीव और गोटना जैन, मॉडल टाउन करनाल से सुधीर नूतन, संदीप गुगलानी, जगमोहन प्रजापति, किरण ठाकुर, शशि बाला और जग्गी दुआ, मलोट पंजाब से राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश शर्मा, निवन निवान शर्मा और मैंडी सौरव तथा साइना शर्मा। आप सभी की पसंद पर ये गीत हमने सुना था। और कार्यक्रम का अगला गाना जो हमने कहा तीसरी कसम फिल्म का, जो एक फिलॉसफी, एक जीवन दर्शन कहीं ना कहीं हमें कुछ सोचने को मजबूर करता है।

कई बार जब उदास होते हैं हम, तो कुछ इसी तरह के ख्याल आते हैं, लेकिन कुछ ऐसे प्रेरक शब्द और प्रेरक घटनाएं, प्रेरक स्मृतियां जो हमारे मानस पटल पर या हमारे मस्तिष्क में घूमती हैं, तो हम वापस लौट आते हैं ऐसे दौर से, और फिर से अपने जुनून के साथ अपने जीवन को आगे बढ़ाने के काम में लग जाते हैं। श्रोताओं

इंदिरा नगर भंवरपुर से राधेश्याम देवांगन, चंपा और राजू, नेहा, मुन्ना देवांगन ने ईमेल किया था इस गाने के लिए। साथ ही सहारनपुर से सैयद मसरूर, शाइना हसन, नाजिया इब्राहिम, पहलगाम कश्मीर से पीरजादा मिराजुद्दीन, नजम उद्दीन और कैसर उद्दीन ने ईमेल किया। जोधपुर राजस्थान से रमेश चंद्र चौहान, मोहिनी चौहान, कल्पित चौहान और गर्वी तथा हिमाक्ष। दिल्ली से तुलसी मस्कीन, वीना मस्कीन, आशीष राजा, चैतन्य मस्कीन, मेघा मस्कीन, राहुल खुराना, रचित खुराना और केशु तथा रिधान खुराना। टैगोर गार्डन नई दिल्ली से रविंद्र छाबड़ा, इंद्रजीत कौर छाबड़ा, स्वीटी छाबड़ा। आप सभी के पसंद पर ये गीत हमने सुना। कार्यक्रम का अगला गाना जो आपकी फरमाइश आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल पर, अगला गाना अनुराधा पौडवाल, अमित कुमार और साथियों की आवाज़ों में हम आपको सुनवा रहे हैं, जिसे लिया है तेजाब फिल्म से। और सुनने के लिए जिन श्रोताओं के ईमेल हमें मिले सुनवाने के लिए, उनके नाम इस गाने के बाद आपको बताएंगे।

अमित कुमार, अनुराधा पौडवाल और साथियों की आवाजों में तेजाब फिल्म का ये गाना आप सुन रहे हैं, जिसे लिखा था जावेद अख्तर ने और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने तर्ज बनाई थी, और अभिनय आपको याद होगा अनिल कपूर और माधुरी दीक्षित। और ये कुछ उन फिल्मों में से है अनिल कपूर की जो अपने समय की काफ़ी लोकप्रिय और चर्चित फिल्में थी। कार्यक्रम में ये जो गीत आप सुन रहे हैं, इसके लिए हमें जिन श्रोताओं के खत मिले थे उनके नाम आपको बता दें। सिरसा हरियाणा से सतवीर सिंह, बिजारनिया देवेंद्र, राजपाल, अभिषेक, योगेश, पूजा, आरजू, नव्या और इनके परिवार के सभी सदस्य। पहाड़गंज मुल्तानी ढांडा से अनिल मोहन, उषा मोहन, टिल्लू नायक, मधु नायक। एकता कॉलोनी रोहतक से सीताराम कांगड़ा, बबीता बूट, निखिल कांगड़ा, तन्वी बूट। गुन्नौर से आदिल कमर, तस्दीक अली, मुजफ्फर अली। श्रीगंगानगर राजस्थान से लालगिरी गोस्वामी, हेमलता, हिना, हर्षित, खुशी गोस्वामी। लगान पंढरिया छत्तीसगढ़ से उत्तम कुमार बघेल, रुक्मणी बघेल, साहिल, भारती बघेल। और रोहिणी दिल्ली से सतप्रकाश गोयल, रेणु गोयल और विदित गोयल। और कार्यक्रम का अगला गाना ये भी एक बहुत ही म्यूजिकल हिट फिल्मों में से एक मानी जाती है, साजन फिल्म का जिक्र मैं कर रहा हूँ, जिसमें आवाज़ अलका याग्निक की है। समीर के बोल थे, नदीम श्रवण की तर्ज और संजय दत्त, सलमान खान, माधुरी दीक्षित अभिनीत। ये फिल्म बहुत ही चर्चित रही थी अपने कहानी के चलते, अपनी पटकथा के चलते, साथ ही अपने गीतों के कारण भी। तो किन श्रोताओं की पसंद पर ये गीत आप सुन रहे हैं, थोड़ी देर में आपको बताएंगे।

मेरठ से दिग्दर्शन और कविता गौड़, रामेश्वर कठेरिया, उमाकांति कठेरिया, कमलेश और निशा कठेरिया, प्रज्ञा, प्रतिमा, वेद बाबू और समस्त कठेरिया परिवार ने हमें लिखा उत्तर प्रदेश से ईमेल। भिवानी से कृष्ण मेहरा, कोमल मेहरा, किरण मेहरा, कपिल मेहरा, कुणाल मेहरा का ईमेल मिला। कुरासिया कालरी से इंद्रभान सिंह, अनुभव, ऋषभ, राम सहोदर, नारायण प्रसाद लहरे, दिनेश प्रसाद लहरे और कालिंदरी लहरे तथा अनारकली बाजार जगराव से कमल पाठक, सुनील पाठक, गव्या मल्होत्रा, सुच्चा सिंह पाठक। आप सभी की पसंद पर हम सुन रहे हैं साजन फिल्म का यही गाना अलका याग्निक के स्वर में।

0: कार्यक्रम का अगला और आखिरी गाना आपकी पसंद का होगा और उसे सुनवाएंगे इस छोटे से संदेश के बाद।
1: बदलो बदलो आदत बदलो,
2: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
1: बदलो बदलो आदत बदलो, अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो आरबीआई के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
0: दोस्तों, गुलजार के दो गीत हमने आज सुने और ये तीसरा गीत गुलजार का बहुत ही प्यारा सा गीत उन्होंने लिखा है और अपील करेगा। और जो मौसम है, हम अपील कर रहे हैं उन बादलों से जो अभी तक हमारे क्षेत्र में बरस नहीं रहे हैं। ए आर रहमान का संगीत, गुरु फिल्म से ये गीत लिया, श्रेया घोषाल की खूबसूरत आवाज़। आइए सुनते हैं ये गीत और श्रोताओं के नाम भी शामिल करेंगे आपसे विदा लेने से पहले।

0: चित्रा और ये पानी की बूंदें, कितना खूबसूरत अंदाज है गुलजार का अपने गीतों को लिखने का, और गुलजार के लिखे इस गीत, ए आर रहमान के संगीत और श्रेया घोषाल की आवाज़ में इस गीत के साथ ही, गुरु फिल्म के इस गीत के साथ ही आज का आपकी फरमाइश कार्यक्रम यही संपन्न होता है। आप सभी से अनुमति चाहूँगा, लेकिन आप लगातार बने रहिए आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल पर। 11 बजने को है, थोड़ी ही देर में आप समाचार सुनेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। झारखंड में प्रतियोगी परीक्षाओं में अनियमितताओं को लेकर 24 दिन से जारी विरोध प्रदर्शन के बाद राज्य सरकार ने जेएसएससी सीजीएल परीक्षा 2024 और टीडीपीएल एजेंसी द्वारा संचालित सभी प्रतियोगी परीक्षाएं रद्द कर दी हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कल शाम मंत्रिमंडल की विशेष बैठक के बाद ये घोषणा की, और ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: सरकार ने वर्ष 2014 से अब तक की भर्ती प्रक्रियाओं की जांच कराने के साथ परीक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए आईएएस अधिकारी अमिताभ कौशल की अध्यक्षता में समिति गठित करने का भी निर्णय लिया है। इस बीच मंत्री दीपिका पांडे सिंह और स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी के साथ विधायक जयराम कुमार ने सदर अस्पताल पहुंचकर देवेंद्र नाथ महतो और अन्य आंदोलनरत छात्रों को जूस पिलाकर उनका अनशन समाप्त कराया, और जेपीएससी जेएसएससी न्याय मंच ने फिलहाल आंदोलन स्थगित करने की घोषणा की। छात्र नेता रविंद्र पासवान ने सरकार के फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि कथित अनियमितताओं की सीबीआई जांच का आदेश होने तक रिफॉर्म मंच का आंदोलन जारी रहेगा। महवेश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
1: भारत आज नई दिल्ली में ब्रिक्स देशों के पर्यावरण मंत्रियों की 12वीं बैठक की मेजबानी कर रहा है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने बताया कि ये बैठक महत्वपूर्ण विचार विमर्श, सर्वसम्मति तक पहुंचने और पर्यावरणीय सहयोग मजबूत करने का मंच उपलब्ध कराएगी। भारत के सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ को नेपाल आर्मी के मानद जनरल का रैंक दिया गया है। कल काठमांडू के शीतल निवास में आयोजित समारोह में राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने उन्हें ये सम्मान प्रदान किया। मानद पद प्रदान करने की ये परंपरा वर्ष 1950 में शुरू हुई थी। इसके अंतर्गत भारत और नेपाल एक दूसरे के सेना प्रमुखों को जनरल का मानद रैंक प्रदान करते हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत की मतदाता पहचान पत्र प्रणाली की प्रशंसा की है और इसे अमेरिका के चुनाव विनियमों के लिए मॉडल बताया है। उन्होंने भारत के निर्वाचन प्रणाली को चुनावी सुरक्षा का उदाहरण बताया। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री ट्रंप ने भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार के साथ हाल की बातचीत का उल्लेख किया। अमेरिका के विशेष दूत जेयर्ड कुशनर ने कहा है कि प्रस्तावित गाजा संघर्ष विराम योजना पर इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू के साथ लगभग 4 घंटे तक चली बैठक में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। श्री कुशनर ने कहा कि बातचीत मुख्य रूप से गाजा के पुनर्निर्माण, असैनीकरण और इसराइल की सुरक्षा चिंताओं पर केंद्रित रही। उन्होंने बताया कि श्री नेतन्याहू और उनकी टीम द्वारा उठाए गए कई मुद्दों पर विचार विमर्श हुआ। नई दिल्ली में बीडब्ल्यूएफ बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप में आज लक्ष्य सेन पहले दौर में ऑस्ट्रिया के कोलिंस फिलिमोन से खेलेंगे। उन्नति हुड्डा पहले दौर में म्यांमार की थेट हतार थुजार से मुकाबला करेंगी। पीवी सिंधु और महिला डबल्स जोड़ी ट्रिसा जॉली और गायत्री गोपीचंद भी दूसरे दौर में पहुंच गई हैं। एफआईएच महिला हॉकी विश्व कप में आज भारतीय टीम पूल डी के अपने दूसरे मैच में दक्षिण अफ्रीका से खेलेगी। ये मैच नीदरलैंड्स के एम्स्टेलफेन में खेला जाएगा। भारत ने ओलंपिक रजत पदक विजेता चीन के साथ 2-2 से ड्रॉ के साथ अपने अभियान की शुरुआत की। मौसम विभाग ने आज झारखंड में अत्यधिक तेज वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। बिहार, छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, ओडिशा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी तेज बारिश का अनुमान है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, उत्तराखंड, पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा, दिल्ली में भी गुरुवार तक तेज बारिश होगी। मछुआरों को आज अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में न जाने की सलाह दी गई है। उधर हिमाचल प्रदेश में अत्यधिक तेज वर्षा के कारण कल 87 सड़कें अवरुद्ध हो गईं और चंबा जिले में लोहे का एक पुल ध्वस्त हो गया।
3: बीते 24 घंटों के दौरान मंडी जिले के कटौला में सर्वाधिक 74 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई है। लगातार बारिश के चलते सामान्य जनजीवन भी प्रभावित हुआ है। रिपोर्ट के अनुसार इस मॉनसून सीजन के दौरान प्रदेश में अब तक बारिश से जुड़ी घटनाओं में 80 लोगों की मृत्यु हो चुकी है।

0: the men's singles at the BWF Badminton World Championships in New Delhi yesterday. Ace shuttler PV Sindhu and the women's doubles pair of Treza Jolly and Gayatri Gopichand also advanced to the second round at the World Championships. And that is the end of this news bulletin.
1: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है, मीडियम वेव 366.3 मीटर और 819 किलोहर्ट्ज़ पर। श्रोताओं, आप हमसे जुड़ सकते हैं 810 किलोहर्ट्ज़ डीआरएम पर भी, साथ ही हमसे कनेक्ट हो सकते हैं एआईआर लाइव न्यूज़ 24x7 मोबाइल एप्लीकेशन और हमारे आकाशवाणी के यूट्यूब लाइव चैनल पर भी। तो समय स्टूडियो की घड़ी के मुताबिक 11:10 हुए हैं और ये समय होता है सबरस कार्यक्रम का। सबरस मतलब सुगम संगीत। इसमें हम आपको सुनवाते हैं अलग अलग एल्बम्स से अलग अलग भावों के गीत हम आपको सुनवाते हैं, जिसमें कुछ लोक गीत भी होते हैं, कुछ प्रचलित गीत होते हैं। तो इस क्रम में आज हम आपको सुनवा रहे हैं जगजीत सिंह, शुभा मुद्गल, रोमा लैला और गुरदास मान के गाए गीत। आइए सुनते हैं।

श्रोताओं, जगजीत सिंह और लता मंगेशकर के स्वर में ये गजल अभी आपने सुनी, और अगला जो गीत है सबरस कार्यक्रम का, शुभा मुद्गल के स्वर में आइए सुनते हैं।

0: ये गीत आपने सुना गुरदास मान के स्वर में। और आज का सबरस कार्यक्रम अब संपन्न होता है दोस्तों। जैसा कि आप नाम से ही समझ रहे हैं कि इसमें सभी प्रकार के रस भारतीय गीत और संगीत के होते हैं। तो सबसे पहले गजल सुना, शोभा बंदकल के स्वर में गीत सुना, रोमा लैला के स्वर में, और उसके बाद गुरदास मान। और अगला जो कार्यक्रम होगा शास्त्रीय संगीत का, लेकिन उससे पहले एक संदेश हम आपको सुनवाते हैं।
1: ये आकाशवाणी का न्यूज ऑन एयर ऐप है। लाइव रेडियो, लेटेस्ट न्यूज हेडलाइंस, न्यूज पॉडकास्ट्स, साथ में दूरदर्शन के लाइव चैनल्स भी। द बेस्ट ऑफ

0: एंटरटेनमेंट, इंफॉर्मेशन, एजुकेशन अब आपके एक उंगली के इशारे पर। कहीं भी कभी भी रहे हरदम अपडेट। आज ही डाउनलोड करें आकाशवाणी का न्यूज ऑन एयर ऐप।
1: तो आकाशवाणी का न्यूज ऑन एआईआर ऐप डाउनलोड करें, जिस पर तमाम खबरें और कार्यक्रम आप सुन पाएंगे। यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर पर आप हमारे प्रसारण सुन रहे हैं। सुबह के 11:30 हुए हैं। आइए सुनते हैं सुरमंजरी, हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का ये कार्यक्रम। आज के इस कार्यक्रम में विदुषी शाश्वती मंडल का गायन हम आपको सुनवा रहे हैं। आप अपना गायन प्रस्तुत कर रही हैं राग जोगिया में।

0: अभी आप शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम सुरमंजरी में विदुषी शाश्वती मंडल का गायन सुन रहे थे। ये गायन आपने सुना राग जोगिया में। शास्त्रीय संगीत का ये कार्यक्रम अब संपन्न होता है। श्रोताओं, आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स पर आप हमारे प्रसारण सुन रहे हैं। साथ ही 810 किलोहर्ट्स DRM पर भी आप हमारे प्रसारण सुन सकते हैं। हमसे जुड़ सकते हैं आप न्यूज़ ऑन AIR लाइव 24x7 मोबाइल एप्लीकेशन पर भी और हमारे यूट्यूब चैनल पर भी। दिन के 12 बजने को हैं, कुछ ही क्षणों में आप समाचार सुनेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा।

0: 12वां ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों का सम्मेलन नई दिल्ली के भारत मंडपम में चल रहा है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव सम्मेलन की अध्यक्षता कर रहे हैं। सम्मेलन में सदस्य देशों के मंत्री, वरिष्ठ अधिकारी, नीति निर्माता और विशेषज्ञ पर्यावरण से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा कर रहे हैं। इसका उद्देश्य आम सहमति बनाना और पर्यावरण के क्षेत्र को मजबूत करना है। भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता 2026 का विषय है, लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने विपक्षी दलों पर विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक को लेकर वोट बैंक की राजनीति के लिए गलत सूचना फैलाने का आरोप लगाया। एक निजी समाचार एजेंसी को दिए साक्षात्कार में उन्होंने कहा कि ये विधेयक विदेशी धन प्रवाह में पारदर्शिता लाएगा और अब सच्चाई सामने आएगी। उन्होंने कहा कि विधेयक को संयुक्त संसदीय समिति के पास भेजना उत्कृष्ट निर्णय है। उन्होंने कहा कि विपक्ष ने बहुत झूठ फैलाया है और इस तरह की झूठी बातें फैलाकर राजनीति करना सरासर गलत है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने उत्तर प्रदेश, पंजाब और गुजरात के लिए नए प्रदेश प्रभारी नियुक्त किए हैं। विनोद तावड़े को उत्तर प्रदेश का प्रभारी और जगदीश ईश्वर भाई पटेल को सह प्रभारी बनाया गया है। डॉ सतीश पुनिया को पंजाब का प्रभारी और तरुण चुग को गुजरात का प्रभारी नियुक्त किया गया है। प्रवर्तन निदेशालय कर्नाटक लोक सेवा आयोग में कथित प्रश्नपत्र लीक घोटाले से जुड़े मामले में राज्य में कई ठिकानों पर तलाशी अभियान चला रहा है। आयोग के पूर्व अध्यक्ष शिवशंकरप्पा एस साहूकार पर प्रश्नपत्र लीक, ओएमआर शीट में छेड़छाड़ और पशु चिकित्सा अधिकारियों की भर्ती के लिए प्रति उम्मीदवार 70 से 80 लाख रूपये की रिश्वत मांगने के आरोप हैं। आरोप है कि एक निजी कंपनी ने बिचौलिए के रूप में काम किया। निदेशालय ने शिवशंकरप्पा के आवास, आयोग के कुछ पूर्व सदस्यों के ठिकानों और निजी कंपनी से जुड़े कार्यालयों में तलाशी ली। झारखंड में प्रतियोगी परीक्षाओं में अनियमितताओं को लेकर 24 दिन से जारी विरोध प्रदर्शन के बाद राज्य सरकार ने जेएसएससी सीजीएल परीक्षा 2024 और टीडीपीएल एजेंसी द्वारा संचालित सभी प्रतियोगी परीक्षाएं रद्द कर दी हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कल शाम मंत्रिमंडल की विशेष बैठक के बाद ये घोषणा की। और ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: सरकार ने वर्ष 2014 से अब तक की भर्ती प्रक्रियाओं की जांच कराने के साथ परीक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए आईएएस अधिकारी अमिताभ कौशल की अध्यक्षता में समिति गठित करने का भी निर्णय लिया है। इस बीच मंत्री दीपिका पांडे सिंह और स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी के साथ विधायक जयराम कुमार ने सदर अस्पताल पहुंचकर देवेंद्र नाथ महतो और अन्य आंदोलनरत छात्रों को जूस पिलाकर उनका अनशन समाप्त कराया और जेपीएससी जेएसएससी न्याय मंच ने फिलहाल आंदोलन स्थगित करने की घोषणा की। वहीं छात्र नेता रविंद्र पासवान ने सरकार के फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि कथित अनियमितताओं की सीबीआई जांच का आदेश होने तक रिफॉर्म मंच का आंदोलन जारी रहेगा। महवेश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
0: जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों ने आज उधमपुर, रियासी और कठुआ जिलों में संदिग्ध लोगों की आवाजाही की सूचना मिलने के बाद कई जगहों पर तलाशी अभियान शुरू किया। रियासी के सदिनी जंगलों और कठुआ के हीरानगर सेक्टर में अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास कई गांवों में भी तलाशी अभियान चलाया गया। सभी इलाकों में तलाशी अभियान जारी है। नई दिल्ली में बीडब्ल्यूएफ बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप में आज शाम लक्ष्य सेन पहले दौर में ऑस्ट्रिया के कोलिंस फिलिमोन से खेलेंगे। उन्नति हुड्डा पहले दौर में म्यांमार की थेत हतार थुजार के साथ मुकाबला करेंगी। मिक्स डबल्स के पहले दौर में भारत के रोहन कपूर और ऋत्विका शिवानी गड्डे को कनाडा की जोड़ी जोनाथन लाई और क्रिस्टन लाई से हार का सामना करना पड़ा। इस बीच एक अन्य मिक्स डबल्स मुकाबले में आशीष सूर्या और अमृता प्रथमेश तुर्की के एमरे सोनमेज और यासेमेन बेक्तास से खेलेंगे। घरेलू शेयर बाजार सूचकांक आज करीब आधा प्रतिशत की गिरावट के साथ कारोबार कर रहे थे। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 366 अंक गिरकर 77,362 पर और निफ्टी 87 अंक की गिरावट के साथ 24,201 पर था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय वल्सा विलियम्स। The 12th BRICS Environment Ministers meeting is underway at Bharat Mandapam in New Delhi. The meeting serves as a platform for ministers, senior officers, policymakers and experts from the member countries to engage in substantive discussions, foster consensus and strengthen environmental cooperation. Union Minister for Environment, Forest and Climate Change, Bhupinder Yadav, is presiding over the meeting. The theme of India's BRICS Chairship 2026 is Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability. The Jharkhand government has cancelled the JSSC-CGL examination after 24-day students' protest in the state. It has also cancelled all other recruitment exams conducted by private agency TDPL. However, the demand of protesters for a CBI probe remains unresolved. The Jharkhand government announced a probe into recruitment examinations conducted by JPSC and JSSC since 2014. Meanwhile, Minister Deepika Pandey Singh and Health Minister Irfan Ansari, along with MLA Jairam Kumar, visited Sadar Hospital and ended the hunger strike of Devendranath Mahato and other protesting students. The Enforcement Directorate ED has conducted searches at several locations in Karnataka linked to alleged Karnataka Public Service Commission KPSC paper leak scam. Former chairman of KPSC Shiv Shankarappa Esahukar is accused of examination paper leaks, tampering with OMR sheets and demanding bribes ranging from 70 to 80 lakhs per candidate to recruit government veterinary officers. It is also alleged that a private company acted as a middleman. In this background, ED conducted searches at the residence of Shiv Shankarappa and a few former members of KPSC and officers linked to a private company. The investigation is related to irregularities and possible involvement of people connected with the corrupt recruitment process. In Jammu and Kashmir, security forces today launched search operations at several locations in Udhampur, Riyasi and Kathua districts following reports of the movement of suspected individuals. Additionally, security forces conducted search operations in the Sadini forests in Riyasi and in several villages near the international border in the Hiranagar sector of Kathua. These operations are ongoing in all areas and more details are awaited. Meanwhile, General Officer Commanding-in-Chief of Northern Command, Lieutenant General Pratik Sharma, visited forward areas along the line of control in Poonch district yesterday. During the visit, he stressed the need for continued vigilance and innovative approaches to effectively address emerging security challenges. Iran's Islamic Revolutionary Guard Corps, IRGC, has rejected US President Donald Trump's claim that Washington has a back channel for talks with the Iranian force. IRGC spokesperson Hossein Mohabi described the claim as a delusion and said there is no dialogue between IRGC officials and the United States. Mr. Mohabi also said Iran's diplomatic apparatus is not currently engaged in negotiations with Washington, citing what he called the US breach of its promises. U.S. President Donald Trump has praised India's voter ID card system and hailed it as a model for stricter U.S. election rules. He cited India's electoral system as an example of election security while renewing his call for stricter voter identification requirements in the United States. In a social media post, Trump referred to a recent conversation with India's Chief Election Commissioner Ganesh Kumar. He said Mr. Kumar had questioned how elections could be held in the United States without a mandatory valid photo identity document. India's Ayush Shetty stunned world number one and defending champion Shi Yuqi in the first round of the men's singles at the BWF Badminton World Championships in New Delhi yesterday. Ace shuttler PV Sindhu and the women's doubles pair of Teresa Jolly and Gayatri Gopichand also advanced to the second round at the World Championships. Benchmark domestic equity indices were trading around 0.5% down in the forenoon session today. The Sensex dropped 366 points to 77,362, while the Nifty lost 87 points to 24,201 when reports last came in. And with that, we end this news bulletin.

her aangan. स्वागत अभिनंदन आप सभी का हमारे घर आंगन कार्यक्रम में। आज का दिन जागरूकता संकल्प और हमारे स्वर्णिम इतिहास की विभूति को याद करने का दिन है, तो मिलकर जीते हैं आज के इस पल को। इसलिए स्वीकारें मेरा यानी मनीषा बोस का प्यार भरा नमस्कार। 100.1 मेगाहर्ट्ज़ एफएम गोल्ड के साथ जुड़ चुके हैं आप हमारे इस कार्यक्रम को इंद्रप्रस्थ चैनल 366.3 मीटर यानी 819 किलोहर्ट्ज़ पर, और साथ ही हमारे यूट्यूब हैंडलर AIR लाइव न्यूज 24/7 पर भी सुन रहे हैं आप। तो अब वक्त है कि हम पूछ लें आपसे आज की प्रश्नोत्तरी का सवाल। साथियों, आपको बताना है आज ऐसा पल जब आपने सिर्फ अपने दिल की सुनी हो, क्योंकि जीवन में हम सभी के कभी ना कभी तो ऐसा वक्त आता ही है ना, जब सबकी सुनकर भी हम अपने मन की आवाज का फैसला अपनाते हैं। तो कौन सा है वो पल आपका, लिख भेजिए fmgoldga@gmail.com पर। और अब बात करें आगे जागरूकता की दोस्तों, क्योंकि आज का दिन हमें जागरूकता की उस कड़ी से जोड़ रहा है जो पूरी दुनिया की रौनक है और प्रकृति की सबसे नायाब कृति भी। और जानते हैं वो कौन है? वो है हमारी स्त्री शक्ति। आज का दिन इसीलिए तो खास है दोस्तों क्योंकि आज है 18 अगस्त और आज हम मना रहे हैं विश्व स्तन कैंसर अनुसंधान दिवस। जी, एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में हर 4 मिनट में एक महिला को ब्रेस्ट कैंसर का पता चलता है और 70% से ज्यादा मामलों में पहचान देरी से हो पाती है। और कारण वही जागरूकता की कमी, स्क्रीनिंग में देरी और सबसे बड़ा कारण महिलाओं का हमेशा से खुद को आखिर में रखना। घर के कामकाज की जिम्मेदारियों के बीच स्वयं का ध्यान रखने में अक्सर हमारी घर की महिलाएं अपने आप को बाद में रखती हैं, वो लापरवाह हो जाती हैं। इसलिए आज का दिन ये याद दिलाता है कि उन्हें अपनी भी देखभाल करना है। घर को तो संभालना है लेकिन घर की उस धुरी को संभालना पहली जिम्मेदारी है, यानी कि खुद का ध्यान रखना बेहद जरूरी है साथियों। और इतिहास से जुड़े आज महान मराठा साम्राज्य के चौथे छत्रपति शाहूजी महाराज के पेशवा बाजीराव बल्लाल भट्ट उर्फ बाजीराव पेशवा प्रथम की याद भी दिला रहा है क्योंकि आज उनकी जयंती है। 18 अगस्त संवत 1700 में आज ही के दिन वे जन्मे थे। अपने कुशल नेतृत्व और रण कौशल के बल पर मराठा साम्राज्य का विस्तार करने वाले इतिहास के महान योद्धाओं में गिने जाते रहे हैं वो, और पूरे जीवन में वो किसी भी युद्ध में कभी हार नहीं खाई थी उन्होंने। उनकी जयंती पर हम उन्हें भी दिल से नमन करते हैं दोस्तों। और इसी संदेश के साथ आपको याद दिला देती हूँ आज की प्रश्नोत्तरी, जिसमें आपको बताना है कि ऐसा कौन सा पल आपके जीवन में आया जिसमें आपने अपने दिल की सुनी। कहिए, बताइए और लिख भेजिए fmgoldga@gmail.com पर।

गाइड इस फिल्म से आपने सुना किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज़ में इस खूबसूरत से गीत को। और दोस्तों, हरियाली और खुशहाली का मौसम है सावन, और जिस तरह प्रकृति अपनी हरियाली के साथ परंपरा निभा रही है सदियों से हमारे साथ, तो सावन की इन्हीं परंपराओं को जीते हैं आज कुछ पल के लिए अपनी बातचीत में। क्योंकि भारत की संस्कृति में सावन सिर्फ मौसम नहीं है, है ना? बेटी और मायके के बीच का एक

पावन बंधन है जिसे सावन की डोर बांधे रखती है। और आप सभी के अनुभव में ये बात जरूर होगी, जो संस्कृति और परंपराओं को हम निभाते हैं साथ में। और दोस्तों, मान्यता के अनुसार घर की जो बेटियां होती हैं उन्हें लक्ष्मी की तरह हम मानते हैं, और जब विवाह के बाद वो दूसरे के घर जाती हैं तो अपने साथ सौभाग्य को भी ले जाती हैं। और भाई, सौभाग्य की जरूरत सबको होती है, मायके वालों को, ससुराल वालों को। इसलिए सावन में उनके मायके आने से घर में फिर से खुशहाली आ जाती है। और इसी मान्यता के साथ सावन को मायके से जोड़ने वाला ये जो रिवाज है, ये हमारे साथ जुड़ा हुआ है। सावन में विवाहित स्त्रियों का मायके जाना शुभता का प्रतीक है। मान्यता है कि नवविवाहित स्त्रियों का सावन में मायके से नाता उनके सौभाग्य को बढ़ाने के साथ साथ पति पत्नी के बीच के प्रेम को और उस बंधन को और बढ़ाता है और मजबूत करता जाता है, और पारिवारिक जीवन में खुशहाली भी लाता है। झूला, हरी चूड़ियां, मेहंदी के डिजाइन, पारंपरिक गीत, माँ के हाथ का खाना और सखियों और बहनों के साथ कजरी की तान सुनना ससुराल में होकर भी मायके से जोड़े रखने वाली वो डोर है साथियों, जिसकी वजह से बेटियां इस परंपरा में जुड़कर तीज की परंपरा से पीहर में लौटती हैं और पीहर की खुशियों में घुल मिल जाती हैं।

सावन के झूले पड़े, जुर्माना फिल्म से इस गीत को आप सुन रहे थे लता मंगेशकर की आवाज़ में। और साथियों, सारे त्यौहार सावन के हम मना रहे हैं और कुछ तो बीत भी चुके हैं, लेकिन सावन इतनी खुशियां देने वाला है कि बस लगता है सावन का महीना चलता रहे और हमें शक्ति और स्फूर्ति से भरता रहे। और चूंकि हमारा कार्यक्रम स्त्री शक्ति को समर्पित है और इसके माध्यम से हम हमेशा इस प्रयास में रहते हैं कि समाज में, राजनीति में और आर्थिक क्षेत्रों में महिलाओं की जो भागीदारी बढ़ रही है, उनका जो अदम्य साहस बढ़ रहा है, उनके कौशल की कहानी को हम आपको बताते रहें। तो ऐसी ही कहानी मैं आपके लिए लेकर आई हूँ, लेकिन आपको याद दिला देती हूँ अपनी आज की प्रश्नोत्तरी, जिसमें आपको बताना है कि ऐसा आपके जीवन में कौन सा पल कब आया जब आपने सिर्फ और सिर्फ अपने दिल की सुनी। लिख भेजिए हमें अपनी वो कहानी, अपनी वो पल और अपनी वो खुशी fmgoal@gmail.com पर। हम प्रतीक्षा में हैं आपके संदेशों की। और जानते हैं, आज की कहानी जो मैं आपको बता रही थी ना, नारी शक्ति से जुड़ी हुई, वो पग पग पर हमें हौसले से भरने के लिए काफी है, खासकर हमारी उन महिला साथियों के लिए जो कठिन परिस्थितियों में हार नहीं मानती बल्कि डट कर सामना करती हैं परिस्थितियों का। दरअसल उत्तर प्रदेश का एक जिला है दोस्तों, बांदा, जहां 2006 में संपत पाल देवी नामक एक महिला के द्वारा गुलाबी गैंग की शुरुआत हुई। पर यह सांकेतिक गैंग एक संगठन है जो महिलाओं की सुरक्षा और अधिकारों के लिए आवाज उठाता है। कहानी तब शुरू हुई जब संपत पाल ने एक महिला पर हो रहे अत्याचार को देखा और खुद ही आवाज उठाने का फैसला किया। पर जब समझाने पर कोई असर नहीं हुआ तो उसने अपनी अन्य महिला साथियों को एक साथ इकट्ठा किया और उन्होंने अन्याय के खिलाफ बांस की लाठी का उपयोग शुरू किया, यानी कि न्याय के लिए अपनी आवाज उठाई। धीरे धीरे इन महिलाओं की एकजुटता, शक्ति और पहचान ने संगठन का रूप लिया और गुलाबी रंग की साड़ी को इन्होंने ड्रेस कोड के रूप में चुना। इस घटना की चर्चा से दूर दराज की जो पीड़ित महिलाएं थी वो भी संगठन से जुड़ने लगी और अत्याचार, घरेलू हिंसा और कई कुप्रथाओं के खिलाफ आवाज उठाने का साहस कर पाई, जानते हैं। और खुद को बांदा गुलाबी कहलाने वाली ये महिलाएं गुलाबी साड़ियों और बांस के डंडों के लिए जानी जाती हैं, जिन्हें वे रक्षा के प्रतीक के रूप में साथ लेकर चलती हैं। और ये समूह किसी के मामले में तब हस्तक्षेप करता है जब महिलाएं घरेलू हिंसा, जबरन विवाह, शोषण या भ्रष्टाचार के मामलों का सामना कर रही होती हैं। बांदा गुलाबी क्षेत्रीय प्रयास वाला वो संगठन है दोस्तों, जो शिक्षा, कानूनी सहायता और ग्रामीण महिलाओं की आर्थिक स्वतंत्रता को भी बढ़ावा देने का काम कर रही है, ताकि महिलाएं अपने अधिकारों को जानें और अपनी रक्षा और न्याय के लिए बहादुरी के साथ आगे आए।

0: पत्थर के सनम, इस फिल्म से आप लता मंगेशकर की आवाज में सुन रहे थे ये गीत।
1: आकाशवाणी,
0: साथियों, आपको याद दिला दूं अपनी आज की प्रश्नोत्तरी, क्योंकि आप जुड़े हुए हैं हमारे कार्यक्रम घर आंगन से और आप सुन रहे हैं 100.1 MHz पर हमें आपका अपना कार्यक्रम घर आंगन, जो आपके लिए हर दिन लाता है एक प्रश्नोत्तरी। और आज की प्रश्नोत्तरी में आपको बताना है ऐसा पल जब आपने जिया हो दिल से, यानी कि दिल से फैसला लिया हो और उसे करने के बाद, दिल के फैसले को अपनाने के बाद आपको लगा हो कि हाँ आपने ये सही किया है। और अगर ऐसी अनुभूतियाँ, ऐसी कहानियाँ आपसे जुड़ी हुई हैं तो लिख भेजिए fmgoldga@gmail.com पर। और एक संदेश मेरे पास आया है, हमारे एक श्रोता साथी हैं और वो हैं राजू अग्रवाल चौधरी वासे, और उन्होंने प्रश्न के उत्तर को तो घुमाकर लिखा है लेकिन शायद उन्होंने प्रश्न को बहुत गौर से नहीं सुना। उन्होंने लिखा है, भौतिकवाद के चलते आज तनाव का जमाना है, इसलिए खुशी को खोजना पड़ता है। संगीत, रचनात्मक काम तथा पर्यावरण में मन को लगाकर जब हम रखते हैं तो मन में खुशी आती है। जी बहुत शुक्रिया, आपने बहुत अच्छी बात बताई है। सचमुच में अपने आप को पॉजिटिविटी से जोड़ के रखने के लिए हम प्रकृति के जितने ही करीब जाते हैं उतना ही हमें सुकून और संतोष मिलता है। लेकिन साथ ही आपको आज की प्रश्नोत्तरी का जवाब देना है कि आपके जीवन का ऐसा कौन सा पल है जिसे आपने अपने मन से जिया हो, अपने मन के फैसले के साथ। और लिख भेजना है हमें fmgoldga@gmail.com पर। और अब बात करते हैं दोस्तों अपनी शक्ति से सशक्त होने वाली भारतीय महिलाओं के बारे में, जो आज हर क्षेत्र में आगे हैं। शिक्षा, विज्ञान, अनुसंधान, खेल, राजनीति या शौर्य का परिचय देते हुए देश सेवा के जज्बे से भरी हमारी नारी शक्ति आज हर कहीं अपने दृढ़ निश्चय के साथ खड़ी हैं, डटी हुई हैं। ऐसा ही एक नाम है राजस्थान के उदयपुर की कैप्टन शिवा चौहान का, जो दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र और दूसरे सबसे लंबे शियाचिन ग्लेशियर के कुमार पोस्ट पे तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी हैं। और उन्होंने ना अपने साहस और संकल्प के बल पर कई बाधाओं को पार करते हुए उदयपुर से दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र का सफर कैप्टन शिवा चौहान के नाम से तय किया और ऐतिहासिक उपलब्धि प्राप्त की। जानते हैं वो ऐतिहासिक उपलब्धि यही है कि समुद्र तल से 20,000 फीट से अधिक की ऊंचाई पर, जहां जमा देने वाली ठंड, चुभने वाली हवा और दुर्गम पहाड़ियों के से जो शियाचिन का ग्लेशियर घिरा हुआ है, वहां के कुमार पोस्ट पर कैप्टन शिवा ने लंबे समय से चली आ रही परंपरा को तोड़कर ये साबित कर दिया कि साहस और सेवा का कोई लिंग नहीं होता, यानी देश सेवा में वो भी कंधे से कंधा मिलाकर चल सकती हैं और चल रही हैं। तो देखा आपने, सच्ची निष्ठा और समर्पण से ऐसा कोई काम नहीं है जो किया ना जा सके। इसलिए आज की प्रश्नोत्तरी भी इसी भाव से जुड़ी है, जिसमें आपको बताना है कि जीवन का ऐसा पल जब आपने अपने मन की सुनकर फैसला लिया हो और आपको जीत मिली हो। लिख भेजिए fmgoldga@gmail.com पर। और इस बार हम सुनाते हैं आपको ऐसा ही कुछ खूबसूरत सा गीत।

इस गीत को आप सुन रहे थे आदमी और इंसान फिल्म से आशा भोसले और महेंद्र कपूर की आवाज में। दोस्तों आप सुन रहे हैं आपका अपना कार्यक्रम घर आंगन, और आज की प्रश्नोत्तरी में हमने आपके लिए वो प्रश्न लिया है जो प्रश्न आपके जीवन में कभी ना कभी आपके साथ जुड़ा ही हुआ होगा कि जीवन में ऐसा पल आपके कभी तो आया होगा जब आपने अपने दिल से फैसला लिया होगा, दिल की बात सुनी होगी। तो ऐसा कौन सा लम्हा है, हमारे साथ साझा करिए, लिख भेजिए हमें fmgoldga@gmail.com पर। और जानकारियों की बात हम आपके लिए हमेशा लेकर आते हैं, तो अगर आपको पढ़ने का शौक है या ज्ञान के संग्रहण से जुड़ना अच्छा लगता है तो आपके काम की है हमारी ये बात, क्योंकि लाइब्रेरी हमारे देश में बहुत सी हैं दोस्तों, और आजकल तो डिजिटल लाइब्रेरी का भी जमाना है। लेकिन आज आपके लिए आपको हम एक ऐसी जानकारी देने वाले हैं जिसके लिए हम लेकर चल रहे हैं राजस्थान के जैसलमेर की एक भूमिगत यानी कि अंडरग्राउंड लाइब्रेरी की ओर। जी हाँ, जैसलमेर के भादरिया गांव के भादरिया माता मंदिर में ये लाइब्रेरी स्थित है जो जमीन से 16 फीट नीचे है। भूमिगत होने के कारण रेगिस्तान की जो भीषण गर्मी है उसके समय में भी यहाँ का जो तापमान है वो प्राकृतिक रूप से ठंडा रहता है, जिससे किताबें भी सुरक्षित रहती हैं यहाँ। जानते हैं इतना विशाल पुस्तकालय है ये कि इसमें एक साथ 4,000 लोग बैठकर पढ़ सकते हैं, और बहुत सारी पुस्तकों का यहाँ पर विशाल संग्रह है जो इसे एशिया के सबसे बड़े पुस्तकालयों में से एक बनाता है। और हाँ, राजस्थान की समृद्ध सांस्कृतिक परंपरा और विरासत की अनमोल धरोहर इसे कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर 9 लाख से भी अधिक लगभग दुर्गम पुस्तकें, ग्रंथ, वेद पुराण और ऐतिहासिक दस्तावेज सुरक्षित हैं। इसके अलावा विभिन्न भाषाओं का एटलस और शब्दकोश का संग्रह भी यहाँ पर है। साहित्य की विधाओं में विज्ञान से लेकर ज्योतिष, खगोल विज्ञान, महाकाव्य और इतिहास के संग्रह भी यहाँ पर सुरक्षित हैं। जब आप यहाँ पर आएंगे तो आप पाएंगे कि ये सारी चीजें, सारा ज्ञान एक ही जगह पर भंडार की तरह सुरक्षित है। यहाँ पुस्तकालय के हर गलियारे में इसे जब आप देखेंगे तो एक अद्भुत सा नज़ारा आपको दिखेगा, क्योंकि पूरे गलियारे में यहाँ लकड़ी के फ्रेम से सजे हुए गलियारे हैं जिनमें ढेर सारी किताबें हैं। और जानते हैं हर गलियारे के आखिर में एक दर्पण लगा है जो किताबों की दुनिया में आने वाले रोमांच का प्रतिबिंब बनाता है, और दीवारों के हल्के रंग मन को किताबों के साथ बांधे रखने में सहयोगी बनते हैं। तो जब कभी राजस्थान आने का आपको मौका मिले ना, तो मैं तो यही कहूंगी कि भाई इस लाइब्रेरी को देखना बिल्कुल ना भूलें।

इस गीत को आप सुन रहे थे रेशमा और शेरा फिल्म से लता मंगेशकर की आवाज़ में। और साथियों, आपको आपका घर आंगन कार्यक्रम कैसा लगता है ये भी हमें बताना ना भूलें। साथ ही हमारी आज की प्रश्नोत्तरी का जवाब आपको देना है, आपको बताना है ऐसा पल जब आपके दिल ने सिर्फ आपके दिल की सुनी हो और फैसला लिया हो, क्योंकि जीवन में हम सभी के ऐसा दौर कभी ना कभी तो आता ही है। तो आपको लिख भेजना है वो पल आपका क्या था, कैसी कहानी थी आपकी, fmgold@gmail.com पर आप बताइए। आपके संदेशों की प्रतीक्षा है हमें, और इस प्रतीक्षा को समाप्त करने वाले कुछ संदेश मेरे पास हैं, जिसमें ये है राजू अग्रवाल, केशव प्रियांशी चौधरी वस हिसार से, और ये लिखते हैं कि सन 2012 का समय था जिसे ये कभी नहीं भूल सकते। उस समय आकाशवाणी से इन्हें बहुत प्यार था, ये रेडियो सुनते थे, और रेडियो सुनने की वजह से ये एक बार बहुत ही निराशा में घिर चुके थे, और उस निराशा ने उन्हें, मतलब रेडियो सुनने वाले कार्यक्रम की वजह से, उस निराशा से ये उबरे और उस मानसिक रोग से ये बाहर आए। इसलिए इस जन्म में रेडियो मेरे लिए भगवान है। और एफएम

गोल से बढ़िया प्रोग्राम दूसरी जगह नहीं है भाई। कितनी भावुक बात आपने कह दी चरणदास जी, बहुत शुक्रिया आपका। हमें बहुत अच्छा लगता है। देखिए, हमारा उद्देश्य ही है कि हमारे जो श्रोता साथी हैं वो अपने जीवन में स्वावलंबी बने, आत्मनिर्भर बने और बहुत खुश मिजाज होकर इस पूरी जिंदगी को पूरे मनोयोग से जिएं। और हमारे कार्यक्रम के साथ जब आप जुड़ते हैं और इस तरह से अपनी बातें हमारे साथ साझा करते हैं, तो सच कहिए, हमें लगता है कि हम अपनी तरफ से कुछ ऐसा प्रयास जो कर रहे हैं उसे सफलीभूत तो कर पा रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपकी इस खूबसूरत बातों के लिए। और ऐसा ही एक संदेश हमारे पास है राजेश्वर राव जी का। इन्होंने लिखा है कि मेरी जिंदगी का सबसे बेहतरीन पल था, एक वकील के रूप में मैंने कोर्ट में चल रहे माता पिता और उनके बेटे के बीच झगड़े की मध्यस्थता में उन्हें मेडिटेशन के जरिए सुलझाया था और उन्हें आपस में मिलाया था। तो कितनी खूबसूरत बात आपने कही कि देखिए, जीवन में हम सभी के कोई ना कोई उद्देश्य जरूर होना चाहिए, क्योंकि इन्हीं उद्देश्यों को जब हम पूरा कर पाते हैं, एक सार्थकता की तरफ हम जब आगे बढ़ते हैं, तो एक इंसान के रूप में जब ऐसी खुशियां हम दूसरों को बांटें तो दिल को सचमुच में बहुत सुकून मिलता है। तो आपकी ऐसी चिट्ठियां, ऐसी खूबसूरत पातियां हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, हमें हौसला देती हैं और ये भी बताती हैं कि और भी हमारे श्रोता साथी हैं जिन्हें हमें हौसला देना है आगे बढ़ने के लिए, उन्हें बताना है, जीवन की खुशियों से जोड़ना है। तो चलिए, आपके सुपुर्द एक और खूबसूरत सा गीत करती हूँ।

के लिए वो खास जानकारी जुटाने का प्रयास भी करते हैं जिससे कि आप लाभान्वित हों। और जानते हैं, आज की प्रेरक जानकारी रसोई से निकलकर पैन इंडिया बन गई है। तो क्या कभी सोचा है आपने कि रसोई में बनने वाली सब्जी कटहल, जिसे जैक फ्रूट भी कहते हैं, उसके बीज किसी के लिए करोड़ों का व्यवसाय बन सकते हैं। दरअसल साल 2019 में एक कृषि प्रशिक्षण सत्र के दौरान जैमी साजी नामक महिला को पता चला कि केरल में भारी मात्रा में कटहल और उसके बीज बेकार हो जाते हैं। तो उन्होंने घर की रसोई में कटहल के बीजों को धोना, उन्हें धूप में सुखाना और फिर सही तापमान में भूनना और पीसना शुरू किया, और बिना किसी कृत्रिम रंग या केमिकल के कॉफी तैयार की, जो कैफीन फ्री, फाइबर और प्रोटीन से भरपूर रही। कटहल और कॉफी के मेल से बनने के कारण इसे जैफी या जैक सीड कॉफी कहा जाता है। इस कॉफी को बनाने के लिए कटहल के बीजों के ऊपर मौजूद जो सफेद और पतले भूरे रंग के छिलके होते हैं, उन्हें हटाना होता है। फिर उन्हें धूप में अच्छी तरह सुखाना ताकि उनमें मौजूद नमी पूरी तरह खत्म हो जाए। उसके बाद बीजों को हल्की आंच पे भुनते हुए कॉफी जैसी सौंधी महक आने तक, भूरा होने तक भुना जाता है। फिर भुने हुए बीजों को मिक्सर या ग्राइंडर में पीसकर पाउडर तैयार करना और कॉफी के अलावा इन बीजों से पायसम मिक्स, डोसा मिक्स, हेल्थ पाउडर जैसे बहुत सारे उत्पाद भी बनाए जा रहे हैं। वायनाड और केरल के ग्रामीण इलाकों में महिलाओं के छोटे स्तर के बिजनेस और स्वयं सहायता समूह के जरिए इस नवाचार को बढ़ावा मिला है, जिससे किसानों और स्थानीय लोगों की आय भी बढ़ने लगी है। असली कॉफी बीन्स और कैफीन वाली कॉफी से परहेज रखने वालों के लिए ये एक अच्छा विकल्प है, और स्वास्थ्य के प्रति जागरूक लोगों और बुजुर्गों के बीच तो ये काफी तेजी से लोकप्रिय हो रहा है। तो इस प्रकार जैमी साजी हैं, उनके इस उद्यम ने स्थानीय किसान और महिला स्व सहायता समूह को स्थानीय कचरे के रूप में गिने जाने वाले कटहल के बीजों का नवाचार करने का मौका दिया, जो प्रोसेसिंग और पैकेजिंग के लिए उनके साथ जुड़कर इतना खूबसूरत विकल्प आया कि वो स्वावलंबन की ओर आगे बढ़ रही हैं। फिलहाल आपके लिए ये खूबसूरत सा गीत चलते चलते मैं दे रही हूँ।

इस अंतिम गीत को लता मंगेशकर की आवाज में आप सुन रहे हैं और इसी के साथ घर आंगन कार्यक्रम से अपनी दोस्त अपनी होस्ट मनीषा को दीजिए अनुमति। नमस्कार। yeah!

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। बारहवां ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों का सम्मेलन नई दिल्ली के भारत मंडप में चल रहा है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव सम्मेलन की अध्यक्षता कर रहे हैं। सम्मेलन में सदस्य देशों के मंत्री, वरिष्ठ अधिकारी, नीति निर्माता और विशेषज्ञ पर्यावरण से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा कर रहे हैं। इसका उद्देश्य आम सहमति बनाना और पर्यावरण के क्षेत्र को मजबूत करना है। श्री यादव ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि वे सहयोग को और मजबूत करने तथा पर्यावरण

0: पर्यावरण कार्य समूह के लिए सकारात्मक परिणामों हेतु सार्थक तरीके से जुड़ने को उत्सुक हैं। सेमिकॉन इंडिया 2026 का पांचवा संस्करण अगले महीने की 17 तारीख से नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। 3 दिन के सम्मेलन में 40 से अधिक देशों की 500 से अधिक प्रदर्शक और करीब 240 कंपनियां हिस्सा लेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिव एस कृष्णन ने आज नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में बताया कि प्रदर्शनी में जापान, दक्षिण कोरिया, सिंगापुर, मलेशिया, जर्मनी और नीदरलैंड्स के 6 अंतर्राष्ट्रीय पवेलियन होंगे। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने विपक्षी दलों पर विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक को लेकर वोट बैंक की राजनीति के लिए गलत सूचना फैलाने का आरोप लगाया। एक निजी समाचार एजेंसी को दिए साक्षात्कार में उन्होंने कहा कि विपक्ष ने बहुत झूठ फैलाया है और इस तरह की झूठी बातें फैलाकर राजनीति करना सरासर गलत है।
1: पूरा झूठ फैलाया देश भर में है कि FCRA जो है क्रिश्चियन मिशनरी को टारगेट किया जा रहा है, जबकि क्रिश्चियन मिशनरी का टोटल इंडिया का जो फॉरेन कंट्रीब्यूशन आते हैं वो 16% है, बाकी तो सब हिंदू का है। तो प्रोटेस्ट ज्यादा करना है तो हिंदू लोग करना चाहिए, क्योंकि सबसे ज्यादा तो हिंदू का है। देखिए, इस तरह का झूठे बातें फैला करके राजनीति करना बिल्कुल ठीक नहीं है।
0: श्री रिजिजू ने कहा कि ये विधेयक विदेशी धन प्रवाह में पारदर्शिता लाएगा और अब सच्चाई सामने आएगी। उन्होंने कहा कि विधेयक को संयुक्त संसदीय समिति को भेजना एक उत्कृष्ट निर्णय है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने उत्तर प्रदेश, पंजाब और गुजरात के लिए नए प्रदेश प्रभारी नियुक्त किए हैं। विनोद तावड़े को उत्तर प्रदेश का प्रभारी और जगदीश ईश्वर भाई पटेल को सह प्रभारी बनाया गया है। डॉ सतीश पुनिया को पंजाब का प्रभारी और तरुण चुघ को गुजरात का प्रभारी नियुक्त किया गया है। प्रवर्तन निदेशालय कर्नाटक लोक सेवा आयोग में कथित प्रश्नपत्र लीक घोटाले से जुड़े मामले में राज्य में कई ठिकानों पर तलाश अभियान चला रहा है। आयोग के पूर्व अध्यक्ष शिव शंकरप्पा एस साहूकार पर प्रश्नपत्र लीक, ओएमआर शीट में छेड़छाड़ और पशु चिकित्सा अधिकारियों की भर्ती के लिए प्रति उम्मीदवार 70 से 80 लाख रुपए की रिश्वत मांगने के आरोप हैं। आरोप है कि एक निजी कंपनी ने बिचौलिए के रूप में काम किया। निदेशालय ने शिव शंकरप्पा के आवास, आयोग के कुछ पूर्व सदस्यों के ठिकानों और निजी कंपनी से जुड़े कार्यालयों में तलाशी ली। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों ने आज उधमपुर, रियासी और कठुआ जिलों में संदिग्ध लोगों की आवाजाही की सूचना मिलने के बाद कई जगहों पर तलाश अभियान शुरू किया। रियासी के सदनी जंगलों और कठुआ के हीरानगर सेक्टर में अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास कई गांवों में भी तलाशी अभियान चलाया गया। मध्य प्रदेश के भिंड में ग्वालियर भिंड इटावा राजमार्ग पर कल देर रात वैन और ट्रक की टक्कर में 8 लोगों की मौत हो गई और 23 घायल हैं। पुलिस ने मामला दर्ज कर कारणों की जांच शुरू कर दी है। भारत और श्रीलंका के बीच गॉल्फ में खेले जा रहे पहले क्रिकेट टेस्ट मैच के चौथे दिन दूसरी पारी में ताजा समाचार मिलने तक भारत ने 5 विकेट पर 123 रन बना लिए हैं। इससे पहले भारतीय गेंदबाजों ने मेजबान टीम को पहली पारी में 284 रन पर ऑल आउट कर दिया। BWF बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप में नई दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में महिला सिंगल्स के पहले दौर में भारत की उन्नति हुड्डा और म्यांमा की थेत हतारथुजार के बीच मुकाबला जारी है। भारतीय खिलाड़ी ने कुछ देर पहले ही पहला गेम 22-20 से जीत लिया है। लक्ष्य सेन आज शाम पहले दौर में ऑस्ट्रिया के कोलिंस फिलिमोन से खेलेंगे। मिक्स डबल्स के पहले दौर में भारत के रोहन कपूर और ऋत्विका शिवानी गड्डे को कनाडा की जोड़ी जोनाथन लाई और क्रिस्टल लाई से हार का सामना करना पड़ा है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय वल्सा विलियम्स। The 12th BRICS Environment Ministers meeting is underway at Bharat Mandapam in New Delhi. The meeting serves as a platform for ministers, senior officers, policymakers and experts from the member countries to engage in substantive discussions, foster consensus and strengthen environmental cooperation. Union Minister for Environment, Forest and Climate Change, Bhupendra Yadav, is presiding over the meeting. In a social media post, Mr. Yadav said he is looking forward to further strengthening cooperation

सलाम, नमस्ते, आदाब, गुड आफ्टरनून एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू योर वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट प्रोग्राम एक ही फिल्म से। मैं हूं आपकी मितवा, आपकी साथी, आपकी अपनी दीप्ति, और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं एक टाइमलेस स्टोरी। दोस्तों, जरा सा आंखें बंद कीजिए और सोचिए, रेत उड़ाता हुआ एक विशाल साम्राज्य, हाथी, ऊंट, घोड़े और पैदल सिपाहियों से सजी सेना, महलों की ऊंची ऊंची दीवारें, और उसी के साथ, उसी के बीच जन्म लेती एक ऐसी कहानी जो इतिहास भी है और कल्पना का स्वरूप भी। कुछ कहानियों में तलवारों की खनक होती है, कुछ में ताज और तख्त की चमक, और श्रोताओं, कुछ कहानियां ऐसी भी होती हैं जिनमें दो बिल्कुल अलग संस्कृतियां, दो अलग दुनिया एक रिश्ते में आकर मिल जाती हैं, एक रास्ते पर चल पड़ती हैं। आज की कहानी है जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर और जोधा की। एक तरफ मुगल सल्तनत का बादशाह और दूसरी तरफ आमेर की राजपूत राजकुमारी। और जब इस कहानी को बड़े पर्दे पर उतारा निर्देशक आशुतोष गोवारिकर ने, तो अकबर बने ऋतिक रोशन और जोधा बाई बने ऐश्वर्या राय बच्चन। साल था 2008 और पर्दे पर आई एक ऐसी फिल्म जिसने इतिहास, रोमांस, राजनीति, प्रेम, युद्ध और संगीत सबको न सिर्फ एक साथ पर्दे पर उकेरा बल्कि अपने मोहपाश में बांध सा लिया। जी हाँ, आज एक ही फिल्म से कार्यक्रम में हम बात करेंगे आशुतोष गोवारिकर की फिल्म जोधा अकबर की। तो चलिए खोलते हैं उस शाही दास्तान के पन्ने।

दोस्तों, ये जो गीत अभी अभी आपने सुना, ये सिर्फ एक गीत नहीं था, बल्कि ये उस दौर की शाही भव्यता को इस्टैब्लिश करते एक ड्रीम सीक्वेंस था। इस गीत को आवाज दी थी मोहम्मद असलम और बॉनी चक्रवर्ती ने। तो फिल्म में बादशाह अकबर सिर्फ एक रूलर नहीं है, बल्कि एक ऐसे बादशाह हैं जो अपनी सल्तनत को तलवार के अलावा समझ और एक्सेप्टेंस से बड़ा बनाना चाहते हैं। और यहीं से शुरू होती है पर्दे पर ऐतिहासिक कहानी। 16वीं सदी, जब हिंदुस्तान में मुगल सत्ता मजबूत हो रही है और इस एक्सपेंशन के केंद्र में है जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। फिल्म के मुताबिक अकबर की मुलाकात होती है आमेर की राजपूत राजकुमारी जोधा से। दोनों का विवाह होता है, लेकिन ये कोई बॉलीवुड लव मैरिज नहीं, बल्कि ये था एक पॉलिटिकल अलायंस। दो अलग धर्म, अलग संस्कृतियां, अलग परंपराएं, और शुरुआत में प्रेम से ज्यादा दूरी। जोधा अपनी पहचान और विश्वास से समझौता नहीं करना चाहती और अकबर उन्हें बदलने की कोशिश नहीं करते। और यही बात इस रिश्ते को और खास बनाती चली जाती है।

का यही वो फेज होता है जहां दोनों के बीच औपचारिकताओं के पीछे छिपा हुआ सॉफ्ट कॉर्नर वो मोहब्बत दिखने लगती है, क्योंकि प्यार हमेशा एक जैसे होने से नहीं बल्कि एक दूसरे की अलग अलग दुनिया को समझने से होता है।

यहाँ पर कहानी में मैं पहले आपको बताऊंगी एक इंटरेस्टिंग हिस्टोरिकल फैक्ट। श्रोताओं, फिल्म को देखकर ऐसा लग सकता है कि जोधा बाई उस समय ये नाम ऑफिशियली इस्तेमाल होता होगा, लेकिन आपको हम बता दें कि इतिहासकारों के बीच में इस बात को लेकर राय एक सी नहीं है, उनके मत अलग अलग हैं। और इसी लिए मेरे हिसाब से जोधा अकबर को हिस्टोरिकल फिक्शन की तरह देखना ज्यादा सही है, यानी इतिहास की पृष्ठभूमि पर बनी एक सिनेमाई प्रेम कथा। और शायद यही वजह है कि फिल्म इतिहास से ज्यादा एक खूबसूरत कल्पना की तरह दिल में उतरती है। जहां एक तरफ अकबर जोधा की धार्मिक आस्था का सम्मान करते हैं, वहीं जोधा भी अकबर को सिर्फ एक बादशाह नहीं बल्कि एक इंसान के रूप में समझने लगती है।

लिरिसिस्ट काशिफ के बोल और एआर रहमान की आवाज़, दोस्तों इस गाने की खासियत ही यही रही कि फिल्म की पूरी भव्यता के बीच में ये एकदम अलग तरह की आध्यात्मिक शांति लेकर आया।

लेकिन हर प्रेम कहानी की तरह अब यहाँ भी सब कुछ आसान तो नहीं रहता। दरबार की राजनीति है, सल्तनत के भीतर सत्ता की महत्वाकांक्षाएं हैं। अकबर के फैसलों से हर कोई खुश नहीं है, और सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या एक बादशाह अपने व्यक्तिगत रिश्तों और सल्तनत के बीच संतुलन बना पाएगा। जोधा भी सिर्फ महल की खूबसूरत सी रानी बनकर रहती नहीं, उनका भी अपना आत्मसम्मान है, अपनी सोच है। और अकबर के साथ उनका रिश्ता तभी मजबूत होता है जब दोनों एक दूसरे को बदलने की बजाय समझना शुरू कर देते हैं। श्रोताओं, ऋतिक और ऐश्वर्या की केमिस्ट्री को लेकर उस दौर में खूब चर्चा हुई थी, क्योंकि इस फिल्म में सिर्फ रोमांस नहीं, सिर्फ ग्लैमर नहीं, बल्कि एक ऐतिहासिक लव स्टोरी को कल्पनाओं के परे उतारने की कोशिश की गई है। इस कहानी का सबसे खूबसूरत हिस्सा ही यही है कि पहले सम्मान, फिर समझ और फिर प्रेम।

दोस्तों, फिल्म की सफलता सिर्फ बॉक्स ऑफिस तक सीमित नहीं रही। जोधा अकबर को 56 नेशनल अवार्ड्स में 2 अवार्ड्स मिले, बेस्ट कोरियोग्राफी अजीमो शान शहनशाह के लिए और बेस्ट कॉस्ट्यूम डिज़ाइन नीता लुल्ला के लिए। फिल्म फेयर में भी इसे कई नॉमिनेशंस मिले और फिल्म ने बेस्ट फिल्म, बेस्ट डायरेक्टर और बेस्ट एक्टर सहित 5 अवार्ड्स जीते। यानी कहानी, अभिनय, संगीत, कॉस्ट्यूम और स्केल, हर तरफ से फिल्म ने अपनी छाप छोड़ी। तो दोस्तों, ये थी जोधा अकबर की कहानी, एक ऐसी फिल्म जिसने हमें 16वीं सदी के हिंदुस्तान की एक खूबसूरत सिनेमैटिक दुनिया दिखाई। एक बादशाह, एक राजपूत राजकुमारी, एक राजनीतिक विवाह और फिर धीरे धीरे जन्म लेता एक रिश्ता। लेकिन इस फिल्म की सबसे खूबसूरत बात शायद ये है कि ये हमें सिर्फ प्यार नहीं सिखाती, ये बताती है कि किसी रिश्ते में प्रेम से पहले सम्मान का होना कितना ज़रूरी है। और शायद इसी वजह से इतने साल बाद भी, जब जश्ने बहारा बजता है या जब मन मोहना सुनाई देता है, तो जोधा अकबर सिर्फ एक फिल्म नहीं लगती, लगता है जैसे किसी पुराने महल की खिड़की खुली और इतिहास की एक दास्तान हवा के साथ हमारे पास चली।

दोस्तों, ये थी इश्क और इतिहास की शाही दास्तान। कार्यक्रम एक ही फिल्म से में हमारी आज की फिल्म जोधा अकबर। मैं हूं दीप्ति और इतना तो मुझे इस फिल्म से जरूर समझ में आ गया कि मोहब्बत में, इश्क में ताज मिले या ना मिले, इज्जत सम्मान जरूर मिलना चाहिए। बढ़ रहे हैं हम अपने कार्यक्रम की समाप्ति की ओर। फिर मिलूंगी आपसे 2:30 पर। तब तक के लिए बने रहिए आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल के संग।

0: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। अब आप समाचार सुनेंगे।
1: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। खबरों के इस बुलेटिन मैं अमन देव। पहला खास खबरां। ब्रिक्स वातावरण मंत्रियों की 12वीं कॉन्फ्रेंस नवी दिल्ली के भारत मंडपम विखे शुरू हो गई है। संसदीय मामलों बारे मंत्री किरेन रिजिजू ने विरोधी पार्टियां ते विदेशी चंदा नियम सोध बिल बारे गलत जानकारी फैलाने का इल्जाम लाया है। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों ने अज शक्की व्यक्तियों की गतिविधि बारे सूचना मिलने तो बाद उधमपुर रियासी और कठुआ जिले में कई थावां ते तलाशी मुहिम शुरू की है। इनफोर्समेंट डायरैक्टोरेट कर्नाटका पब्लिक सर्विस कमीशन में हुए

आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं माजिद अली। भारत की सदारत में ब्रिक्स मुल्कों के माहौलियात के वजीरों की 12वीं मीटिंग नई दिल्ली के भारत मंडपम में जारी है। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने कर्नाटक पब्लिक सर्विस कमीशन पेपर लीक घपले के मामले में तलाशी की कार्रवाई की है। पार्लियामानी उमूर के वजीर किरण रिजिजू ने अपोजिशन पार्टियों पर वोट बैंक सियासत की खातिर FCRA बिल पर गलत बातें फैलाने का इल्जाम लगाया है। झारखंड के कई हिस्सों में कल रात से मूसलाधार बारिश हो रही है। मौसमियात महकमे ने आज बिहार, छत्तीसगढ़, उड़ीसा

0: ओडिशा और उत्तर प्रदेश में भी बहुत तेज बारिश होने की पेशगोई की है। और हुकूमत ने कौमी खेल अवार्ड का ऐलान कर दिया है। बैडमिंटन की खातून खिलाड़ी त्रिशा जौली और पुलेला गायत्री गोपीचंद समेत 15 खिलाड़ियों को अर्जुन अवार्ड दिए जाएंगे। अब खबरें तफसील से। नई दिल्ली के भारत मंडपम में ब्रिक्स मुल्कों के माहौलियात के वजीरों का 12वां इजलास जारी है। माहौलियात, जंगलात और आबोहवा की तब्दीली की वजारत ने कहा कि ये इजलास अहम उमूर पर तफसीली तबादला ख्याल, इत्तफाक राय को फरोग देने और माहौलियात से मुतालिक बाहमी तआवुन को मजीद मजबूत बनाने के लिए एक प्लेटफॉर्म फराहम करेगा। ब्रिक्स उजराए माहौलियात के इजलास के सदारत माहौलियात, जंगलात और आबोहवा की तब्दीली के मरकजी वजीर भूपेंद्र यादव कर रहे हैं। यह इजलास भारत की 2026 की ब्रिक्स सदारत के वसी तर मौजू इस्तेहकाम, इख्तरा, तआवुन और पायदारी की तश्कील के तहत मुनाकिद किया जा रहा है। सोशल मीडिया के एक पोस्ट पर जनाब यादव ने कहा कि वो माहौलियात के वर्किंग ग्रुप के लिए मुस्बत नतीजों की खातिर एक मानखेज बातचीत और तआवुन को मजीद मुस्तहकम करने के लिए पुरुम्मीद हैं। 5वीं सेमिकॉन इंडिया 2026 कॉन्फ्रेंस नई दिल्ली में अगले महीने की 17 तारीख से होगी। इस 3 रोजा कॉन्फ्रेंस में 40 से ज्यादा मुल्कों के 500 से ज्यादा नुमाइशकार और तकरीबन 240 कंपनियां हिस्सा लेंगी। इस साल की सेमिकॉन इंडिया कॉन्फ्रेंस का मौजू होगा सिलिकॉन से निजाम तक इकोसिस्टम की तामीर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी इस कॉन्फ्रेंस का इफ्तिताह करेंगे। जनाब मोदी सरकर्दा मुल्कों के आलमी सीईओज के साथ गोलमेज कॉन्फ्रेंस की सदारत भी करेंगे। इन मुल्कों में अमरीका, जापान, जनूबी कोरिया, सिंगापुर, जर्मनी, नेदरलैंड्स और मलेशिया शामिल हैं। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने कर्नाटक पब्लिक सर्विस कमीशन केपीएससी के मुबैना पेपर लीक घपले के मामले में कई मकामात पर तलाशी की कार्रवाई की है। केपीएससी के साबिक चेयरमैन शिवशंकर अप्पा एस साहूकार को इम्तहान का पर्चा लीक होने के मामले में मुलजिम बताया गया है। उन पर ओएमआर शीट्स में हेराफेरी करने और सरकारी वेटनरी अफसरों की भर्ती के लिए एक एक उम्मीदवार से 70 से 80 लाख रुपए की रिश्वत मांगने का इल्जाम है। यह इल्जाम भी लगाया गया है कि एक प्राइवेट कंपनी ने बिचौलिए का काम किया था। इस तनाजुर में ईडी ने शिवशंकर अप्पा और केपीएससी के कुछ साबिक अरकान की रिहाइश गांवों और प्राइवेट कंपनी से वाबस्ता दफातर में तलाशी की कार्रवाई अंजाम दी। पार्लियामानी उमूर के वजीर किरण रिजिजू ने अपोजिशन पार्टियों पर इल्जाम लगाया है कि वो वोट बैंक से या सियासत की खातिर गैर मुल्की एहतियात को मुंजबित करने से मुतालिक तरमीमी बिल के ताल्लुक से गलत जानकारी फैलाने में लगी हुई हैं। एक प्राइवेट न्यूज एजेंसी के साथ इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि मजकूरा बिल से गैर मुल्की एहतियात की आमद में शफाफियत लाई जा सकेगी और सच्चाई सामने आ जाएगी। जनाब रिजिजू ने इल्जाम लगाया कि अपोजिशन झूठ फैला रही है। उन्होंने कहा कि इस तरह की झूठी बातें फैलाकर सियासत करना बिल्कुल नामुनासिब बात है।
1: पूरा झूठ फैलाया देश भर में कि एफसीआरए जो है क्रिश्चियन मिशनरी को टारगेट किया जा रहा है, जबकि क्रिश्चियन मिशनरी का टोटल इंडिया का जो फॉरेन कंट्रीब्यूशन आते हैं वो 16% है, बाकी तो सब हिंदू का है। तो प्रोटेस्ट ज्यादा करना है तो हिंदू लोग करना चाहिए, क्योंकि सबसे ज्यादा तो हिंदू का है। देखिये, इस तरह का झूठे बातें फैला करके राजनीति करना बिल्कुल ठीक नहीं है।
0: बीजेपी ने नई दिल्ली में कांग्रेस पार्टी के हेडक्वार्टर्स में यौम आजादी की तकरीबात के दौरान कौमी गीत वंदे मातरम की तोहिन किए जाने पर कांग्रेस को तनकीद का निशाना बनाया है। बीजेपी के तर्जमान रविशंकर प्रसाद ने आज नई दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि जब कांग्रेस पार्टी कौमी गीत का एहतराम भी नहीं कर सकती तो उसे तहरीक आजादी पर अपनी इजारादारी का दावा करने का सिलसिला तर्क कर देना चाहिए। सेहत और खानदानी बहबूद के मरकजी वजीर जेपी नड्डा की कल नई दिल्ली के एम्स अस्पताल में एंजियोप्लास्टी की गई और उनकी हालत मुस्तहकम बताई गई है। एक बयान में एम्स ने कहा है कि अमराज कल्ब के महकमे में जनाब नड्डा की निगहदाश्त की जा रही है। उन्हें बेचैनी की शिकायत के बाद दिल्ली के एम्स अस्पताल में दाखिल कराया गया था। वजारत दिफा ने स्ट्रेटजिक तौर पर अहम 405 अशिया पर मुश्तमिल पॉजिटिव इंडिजिनाइजेशन लिस्ट PIL को नोटिफाई कर दिया है। इन अशिया की तखमीना तजारती कद्र 3,070 करोड़ रुपए है। इनमें 16 अशिया भारतीय कोस्ट गार्ड और 389 अशिया सरकारी दिफाई शोबे की कंपनियों की हैं। इस फहरिस्त में लाइन रिप्लेसेबल यूनिट, सब सिस्टम, सब असम्बलीज, कलपुर्जे और कच्चा माल शामिल हैं। वजारत ने बताया है कि ये छठी PIL आत्मनिर्भर भारत इकदाम के तहत दिफाई साजो सामान तैयार करने में खुद मुख्त

नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। पर्यावरण सहयोग पर आम सहमति बनाने के उद्देश्य से 12वें ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की बैठक नई दिल्ली में संपन्न। भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश, पंजाब और गुजरात के लिए नए प्रदेश प्रभारी और सह प्रभारियों की नियुक्ति की। प्रवर्तन निदेशालय ने कर्नाटक लोक सेवा आयोग में पेपर लीक घोटाले में कई ठिकानों पर छापेमारी की। झारखंड, बिहार, छत्तीसगढ़, ओडिशा और उत्तर प्रदेश में आज मूसलाधार बारिश का अनुमान। राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2025 की घोषणा। त्रिशा जॉली और पुलेला गायत्री गोपीचंद सहित 15 अन्य खिलाड़ी अर्जुन पुरस्कार के लिए नामित। और नई दिल्ली में BWF विश्व चैंपियनशिप में उन्नति हुड्डा म्यांमा की थेत हतार थुजार को हराकर महिला सिंगल्स के दूसरे दौर में। अब समाचार विस्तार से। नई दिल्ली के भारत मंडपम में 12वां ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों का सम्मेलन आयोजित किया गया। सम्मेलन में सदस्य देशों के मंत्रियों, वरिष्ठ अधिकारी

0: अधिकारियों, नीति निर्माताओं और विशेषज्ञों ने सार्थक चर्चा, आम सहमति बनाने और पर्यावरण सहयोग को मजबूत करने पर विचार विमर्श किया। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने सम्मेलन की अध्यक्षता की। भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता 2026 का विषय है लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण। बैठक को संबोधित करते हुए श्री यादव ने मानवता को प्राथमिकता देते हुए सतत पर्यावरण के निर्माण की दिशा में नीति, प्रौद्योगिकी और जनभागीदारी को समन्वित करने के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि भारत ने 2005 और 2022 के बीच प्रदूषण उत्सर्जन की तीव्रता में 37% से अधिक की कमी की है। उन्होंने कहा कि अध्यक्ष के रूप में भारत एक स्वतंत्र, रचनात्मक और सर्वसम्मति आधारित संवाद को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है और सभी सदस्य देशों के दृष्टिकोण तथा योगदान को बेहद महत्व देता है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने उत्तर प्रदेश, पंजाब और गुजरात के लिए नए प्रदेश प्रभारी नियुक्त किए हैं। विनोद तावड़े को उत्तर प्रदेश का प्रभारी और जगदीश ईश्वर भाई पटेल को सह प्रभारी बनाया गया है। डॉक्टर सतीश पुनिया को पंजाब का प्रभारी और तरुण चुघ को गुजरात का प्रभारी नियुक्त किया गया है। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने विपक्षी दलों पर विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक को लेकर वोट बैंक की राजनीति के लिए गलत सूचना फैलाने का आरोप लगाया। एक निजी समाचार एजेंसी को दिए साक्षात्कार में उन्होंने कहा कि विपक्ष ने बहुत झूठ फैलाया है और इस तरह की झूठी बातें फैलाकर राजनीति करना सरासर गलत है।
1: पूरा झूठ फैलाया देश भर में है कि FCRA जो है क्रिश्चियन मिशनरी को टारगेट किया जा रहा है, जबकि क्रिश्चियन मिशनरी का टोटल इंडिया का जो फॉरेन कंट्रीब्यूशन आते हैं वो 16% है, बाकी तो सब हिंदू का है। तो प्रोटेस्ट ज्यादा करना है तो हिंदू लोग करना चाहिए, क्योंकि सबसे ज्यादा तो हिंदू का है। देखिए, इस तरह का झूठे बातें फैला करके राजनीति करना बिल्कुल ठीक नहीं है।
0: श्री रिजिजू ने कहा कि ये विधेयक विदेशी धन प्रवाह में पारदर्शिता लाएगा और अब सच्चाई सामने आएगी। उन्होंने कहा कि विधेयक को संयुक्त संसदीय समिति के पास भेजना एक उत्कृष्ट निर्णय है। भारतीय जनता पार्टी ने आज नई दिल्ली में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी मुख्यालय में स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान राष्ट्रगीत वंदे मातरम का अपमान करने के लिए कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधा। नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए भाजपा प्रवक्ता रविशंकर प्रसाद ने कहा कि जब कांग्रेस पार्टी राष्ट्रगीत का सम्मान नहीं कर सकती तो उसे स्वतंत्रता आंदोलन के संरक्षक होने का दावा करना बंद कर देना चाहिए।
2: 24 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने घोषणा की, जन गण मन राष्ट्रीय गान, वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत। ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद तो कांग्रेस के ही थे ना, तो ये जो नया बदलाव किया गया, कभी ये उम्मीद नहीं थी कि प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट टू द नेशनल ऑनर्स एक्ट जो बना 1971 में, किसने बनाया? कांग्रेस की सरकार, इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर। उसमें क्या कहा गया, तिरंगा हो, जनगणमन हो, इसका कोई इंसल्ट करेगा तो 3 साल तक की सजा हो जाए।
0: श्री प्रसाद ने कहा कि कल जब कांग्रेस पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे गोवा गए थे तब भी पार्टी के कार्यक्रम में वंदे मातरम के केवल 2 ही छंद गाए गए। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने आज कहा कि डेरगांव दीमापुर पाइपलाइन के चालू होने से नागालैंड अब पूर्वोत्तर गैस ग्रिड और राष्ट्रीय गैस ग्रिड से जुड़ गया है। श्री पुरी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ये पूर्वोत्तर को भारत का विकास इंजन बनाने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है और इस क्षेत्र को एकीकृत गैस आधारित अर्थव्यवस्था के करीब लाएगा। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। प्रवर्तन निदेशालय कर्नाटक लोक सेवा आयोग में कथित प्रश्नपत्र लीक घोटाले से जुड़े मामले में राज्य में कई ठिकानों पर छापेमारी कर रहा है। आयोग के पूर्व अध्यक्ष शिवशंकरप्पा एस साहूकार पर प्रश्नपत्र लीक, ओएमआर शीट में छेड़छाड़ और पशु चिकित्सा अधिकारियों की भर्ती के लिए प्रति उम्मीदवार 70 से 80 लाख रुपए की रिश्वत मांगने के आरोप हैं। आरोप है कि एक निजी कंपनी ने बिचौलिए के रूप में काम किया। निदेशालय ने शिवशंकरप्पा के आवास, आयोग के कुछ पूर्व सदस्यों के ठिकानों और निजी कंपनी से जुड़े कार्यालयों में तलाशी ली। झारखंड में प्रतियोगी परीक्षाओं में अनियमितताओं को लेकर 24 दिन से जारी विरोध प्रदर्शन के बाद राज्य सरकार ने जेएसएससी सीजीएल परीक्षा 2024 और टीडीपीएल एजेंसी द्वारा संचालित सभी प्रतियोगी

0: परीक्षाएं रद्द कर दी हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कल शाम मंत्रिमंडल की विशेष बैठक के बाद ये घोषणा की।
1: पूरे तरीके से इसका ऑपरेशन होनी चाहिए, जो हमें जानकारी मटेरियल को लेकर हम लोग के समक्ष बताया गया और उस तथ्यों को समझ बुझने के बाद कैबिनेट ने सीजीएल को भी रद्द करने का निर्णय लिया।
0: जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों ने आज उधमपुर, रियासी और कठुआ जिलों में संदिग्ध लोगों की आवाजाही की सूचना मिलने के बाद कई जगहों पर तलाश अभियान शुरू किया। रियासी के सदनी जंगलों और कठुआ के हीरानगर सेक्टर में अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास कई गांवों में भी तलाश अभियान चलाया गया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय कैडेट कोर एनसीसी के प्रमुख साहसिक अभियान अपराजिता परांगला 2026 को रवाना किया। 30 दिन का यह अभियान 250 किलोमीटर लंबे परांगला दर्रे से होकर गुजरेगा, जो हिमाचल प्रदेश की स्पीति घाटी को लद्दाख के चांगथांग क्षेत्र से जोड़ता है। तीनों सेनाओं के महिला अधिकारियों के नेतृत्व में 28 बालिका कैडेटों की टीम इसमें हिस्सा ले रही है। श्री सिंह ने कहा कि ऊंचाई वाले इस अभियान में युवा बालिकाओं की भागीदारी देश की महिलाओं के साहस, दृढ़ संकल्प और बढ़ती क्षमता का प्रमाण है। सेमिकॉन इंडिया 2026 का पांचवां संस्करण अगले महीने की 17 तारीख से नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। 3 दिन के इस सम्मेलन में 40 से अधिक देशों की 500 से अधिक प्रदर्शक और करीब 240 कंपनियां हिस्सा लेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिव एस कृष्णन ने आज नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में बताया कि प्रदर्शनी में जापान, दक्षिण कोरिया, सिंगापुर, मलेशिया, जर्मनी और नीदरलैंड्स के 6 अंतर्राष्ट्रीय पवेलियन होंगे। केरलम में विझिंजम अंतर्राष्ट्रीय समुद्री बंदरगाह पर आज से सीधे निर्यात और आयात परिचालन शुरू हो गया है। ये इस क्षेत्र के समुद्री व्यापार के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि मुख्यमंत्री वीडी सतीशन ने विझिंजम से यूरोप के लिए रवाना होने वाले पहले जहाज के 2 कंटेनर को रवाना किया।
2: पिछले साल 2 मई को बंदरगाह को देश को समर्पित किए जाने के बाद अब सीधे आयात निर्यात का काम शुरू हो गया है। इन सेवाओं के शुरू होने से यूरोप जाने वाले शिपमेंट के समय में काफी कमी आएगी। पहले विझिंजम से यूरोप पहुंचने में शिपमेंट को लगभग 2 महीने लगते थे, लेकिन अब इसके सिर्फ 28 दिनों में पहुंचने की उम्मीद है। बंदरगाह अधिकारियों के अनुसार फिलहाल ये सुविधा सिर्फ फुल कंटेनर लोड को ही संभालेगी। तिरुवनंतपुरम से स्मृति एम पल्लुरुति की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अर्जुन शर्मा।
0: सेना उप प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल राहुल आर सिंह ने कहा है कि युद्ध की बदलती प्रकृति ने सशस्त्र बलों के लिए उभरती प्रौद्योगिकियों को तेजी से अपनाने और एकीकृत करने को अनिवार्य बना दिया है। नई दिल्ली में आज उन्होंने निगरानी और इलेक्ट्रो ऑप्टिक्स पर भारतीय सैन्य समीक्षा को संबोधित किया। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि विशेषकर 2020 के बाद से युद्ध में तीव्र और व्यापक परिवर्तन आया है। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में बढ़ते तनाव के बीच यूनाइटेड कश्मीर पीपल्स नेशनल पार्टी ने क्षेत्र में पाकिस्तानी बलों द्वारा मानवाधिकारों के उल्लंघन की ओर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का ध्यान आकर्षित किया है। पार्टी ने नागरिकों की मौत और घायल होने, मनमानी गिरफ्तारियों, जबरन गुमशुदगी और संचार व्यवस्था बंद किए जाने की खबरों पर गंभीर चिंता जताई। संगठन ने शांतिपूर्ण राजनीतिक कार्यकर्ताओं और मानवाधिकार रक्षकों की आवाजाही पर प्रतिबंध और उनके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई पर भी चिंता व्यक्त की है। सरकार ने सोशल मीडिया पर वायरल उस वीडियो का खंडन किया है जिसमें दावा किया गया था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी नागरिकों के लिए 3 महीने का मुफ्त रिचार्ज घोषित किया है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने बताया कि यह दावा फर्जी है और वायरल वीडियो एआई द्वारा बनाया गया है। प्रधानमंत्री ने ऐसी किसी योजना का समर्थन नहीं किया है। मध्य प्रदेश के भिंड में ग्वालियर भिंड इटावा राजमार्ग पर कल देर रात वैन और ट्रक की टक्कर में 8 लोगों की मौत हो गई और 23 घायल हो गए। पुलिस ने मामला दर्ज कर कारणों की जांच शुरू कर दी है। बंगाल की खाड़ी में बने गहरे दबाव के कारण झारखंड और आसपास के राज्यों में मौसम पूरी तरह बदल गया है। राजधानी रांची, जमशेदपुर और पलामू समेत राज्य के बड़े हिस्से में रात से ही मूसलाधार बारिश हो रही है। एक रिपोर्ट।
3: बंगाल की खाड़ी से उठा गहरा दबाव आज सुबह रांची से महज 100 किलोमीटर उत्तर पूर्व में केंद्रित हो गया है। इसके प्रभाव से झारखंड के उत्तर मध्य और उत्तर पश्चिमी हिस्सों में मूसलाधार बारिश का सिलसिला शुरू हो चुका है। मौसम विभाग ने चतरा, हजारीबाग, रामगढ़, पलामू और गढ़वा जिलों के लिए

0: भारी से अत्यंत भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। अगले 24 घंटों में ये डिप्रेशन पश्चिम उत्तर पश्चिम दिशा में बिहार की ओर आगे बढ़ेगा, जिसका असर आगामी 2 दिनों तक झारखंड में रहने की उम्मीद है। महवेश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
1: इस बीच मौसम विभाग ने बिहार, छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, ओडिशा और उत्तर प्रदेश में आज मूसलाधार वर्षा की संभावना व्यक्त की है। अगले 2 दिन में उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल और पूर्वोत्तर भारत में भी इसी तरह का मौसम रहेगा। दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, केरल और माही में आज तेज वर्षा हो सकती है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। सरकार ने राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2025 की घोषणा कर दी है। प्रमुख महिला बैडमिंटन डबल्स जोड़ी ट्रिसा जॉली और पुलेला गायत्री गोपीचंद समेत विभिन्न खेलों के 15 अन्य खिलाड़ियों को उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए अर्जुन पुरस्कार दिया जाएगा। भारतीय फुटबॉल के दिग्गज खिलाड़ी इसाइया अरुमनैया गम को अर्जुन पुरस्कार लाइफटाइम से सम्मानित किया जाएगा। एथलेटिक्स कोच परवीर सिंह, बॉक्सिंग कोच छोटेलाल यादव और शूटिंग कोच नेहा नंदकुमार चव्हाण को द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाएगा। वहीं पुणे स्थित आर्मी पैरालंपिक नोड को राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार दिया जाएगा। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय ने कहा कि राष्ट्रीय खेल पुरस्कार हर वर्ष खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन को सम्मानित करने के लिए दिए जाते हैं। BWF बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप में नई दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में म्यांमा की थेत हतार थुजार को सीधे सेटों में हराकर भारत की उन्नति हुड्डा महिला सिंगल्स के दूसरे दौर में पहुंच गई हैं। अगले दौर में उनका मुकाबला कनाडा की 13वीं वरीयता प्राप्त मिशेल ली से होगा। इस बीच मिक्स्ड डबल्स स्पर्धा में भारतीय जोड़ी आशीष सूर्या और अमृता प्रथमेश तथा तुर्की की जोड़ी एमरे सोनमेज और यासिमेन बेक्तास के बीच मैच जारी है। भारतीय जोड़ी ने पहला गेम 21-16 से जीत लिया है। घरेलू शेयर बाजार के सूचकांक में आज दोपहर के कारोबार में लगभग 0.5% की गिरावट दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 354 अंक गिरकर 77,374 पर, जबकि निफ्टी 81 अंक की गिरावट के साथ 24,206 पर था। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। पर्यावरण सहयोग पर आम सहमति बनाने के उद्देश्य से 12वें ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की बैठक नई दिल्ली में सम्पन्न। भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश, पंजाब और गुजरात के लिए नए प्रदेश प्रभारी और सह प्रभारियों की नियुक्ति की। प्रवर्तन निदेशालय ने कर्नाटक लोक सेवा आयोग में पेपर लीक घोटाले में कई ठिकानों पर छापेमारी की। झारखंड, बिहार, छत्तीसगढ़, ओडिशा और उत्तर प्रदेश में आज मूसलाधार बारिश का अनुमान। राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2025 की घोषणा। ट्रिशा जॉली और पुलेला गायत्री गोपीचंद सहित 15 अन्य खिलाड़ी अर्जुन पुरस्कार के लिए नामित। और नई दिल्ली में BWF विश्व चैंपियनशिप में उन्नति हुड्डा महिला सिंगल्स के दूसरे दौर में। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
0: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, DRM 810 किलोहर्ट्ज़ पर। सलाम, नमस्ते, आदाब एंड अ वेरी वार्म वेलकम। स्वागत है आपका आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल के कार्यक्रम एक ही कलाकार में। मैं हूं आपकी मित्वा, आपकी साथी, आपकी अपनी दीप्ति। और आज करूंगी कुछ आपसे बातें दिल की। दोस्तों, कुछ लोग ना तस्वीरें बनाते हैं रंगों से, कुछ लोग तस्वीरें बनाते हैं कैमरे से, और कुछ तो सिर्फ शब्दों से तस्वीर बना देते हैं। ऐसी तस्वीर जिसे हम देख नहीं सकते लेकिन महसूस कर सकते हैं। बारिश की एक बूंद, खिड़की के पास बैठा कोई इंसान, पुरानी किताब में दबा हुआ कोई खत और किसी की याद, इन सब को अगर कोई आवाज दे सकता है तो वो है हमारे आपके गुलजार साहब। अब आप इन्हें गीतकार कहें या डायलॉग राइटर, आप इन्हें कहानी

संगीतकार कह सकते हैं या फिर कह सकते हैं फिल्म डायरेक्टर, संपूर्ण सिंह कालरा, यानी कि आपके हमारे गुलजार साहब आज मना रहे हैं अपना हैप्पी बर्थडे, यानी 18 अगस्त 1934 को जन्म हुआ था उनका। और ये एक ऐसी शख्सियत है जिन्होंने अपना मकाम सिर्फ बनाया नहीं बल्कि दिलों पर छा गए हैं। तो आज का ये आधा घंटा उनके नाम, उनके शब्दों के नाम, उनके गीतों के नाम, जिन्हें सुनकर लगता है कि अरे ये तो बिल्कुल वही बात है जो कहनी तो मुझे थी लेकिन कह नहीं पाए। तो चलिए शुरू करते हैं गुलजार साहब के साथ ये सफ़र।

दोस्तों किस्सा कुछ यूं मशहूर है कि गुलजार साहब को पढ़ने लिखने का बहुत शौक था। इन्होंने कई लेखकों को पढ़ा और इसी बीच इनकी दोस्ती और भी लेखक और कलाकारों से हुई। मुंबई में रहने के दौरान आजीविका के लिए इन्होंने एक गैराज में काम

करना शुरू कर दिया। और ऐसे में एक दोस्त इन्हें लेकर गए बिमल रॉय साहब के पास, जहाँ काम चल रहा था फिल्म बंदिनी के लिए। अब काम तो चल रहा था बंदिनी के लिए, लेकिन फिल्म के म्यूजिक डायरेक्टर एसडी बर्मन साहब और गीतकार शैलेंद्र साहब एक सोच में एक पेस में आ ही नहीं पा रहे थे, और इसीलिए फिल्म मेकर बिमल रॉय साहब हुए बड़े परेशान। अब करें तो करें क्या, और ऐसे में गुलजार साहब को मिली अपनी पहले गाने को लिखने की अपॉर्चुनिटी। सुनाओ कौन सा गाना था वो।

अच्छा हुआ क्या कि शैलेंद्र साहब और एसडी बर्मन साहब में फिर से दोस्ती हो गई, और ये दोस्ती होते ही गुलजार साहब को इस फिल्म से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। हालांकि ये गाना फिल्म में वैसे ही रखा गया। अब गुलजार साहब तो वापस चले गए गैराज काम करने के लिए, लेकिन बिमल रॉय साहब ने गुलजार साहब को अपने असिस्टेंट के तौर पर अपने साथ रहने की पेशकश की। अब देखिए, हुनर तो उनमें था ही, और वो ये अपने पहले ही गीत से प्रूव भी कर चुके थे। बिमल रॉय के संग काम करते हुए गुलजार साहब की दोस्ती पंचम दा से हुई, और इसी बीच उन्हें ऋषिकेश मुखर्जी दा का सानिध्य भी मिला। ऋषि दा उस दौर में बतौर एडिटर काम किया करते थे, और फिर बाद में वे डायरेक्टर बन गए।

आरडी बर्मन साहब के साथ अच्छी दोस्ती के चलते जब वे फिल्म डायरेक्टर बने तो लगभग सभी फिल्मों के संगीत आरडी बर्मन साहब से ही उन्होंने दिलवाए। अब चाहे इसमें परिचय हो, आंधी हो, किनारा हो, लेकिन बतौर डायरेक्टर उनकी पहली फिल्म में म्यूजिक डायरेक्टर थे सलिल चौधरी साहब और फिल्म मौसम में मदन मोहन साहब। संजीव कुमार साहब के संग गुलजार साहब की दोस्ती खूब रही। इस जोड़ी ने हर फिल्म में कमाल किया, चाहे वो मियां बीबी के रिश्ते पर बनी फिल्म आंधी हो या फिर हस्ती गुदगुदाती फिल्म अंगूर हो या फिर मूक पति पत्नी की कहानी कोशिश।

दोस्तों, गुलजार साहब एक ऐसे फनकार रहे जिन्होंने हर पीढ़ी से नाता जोड़ा। अब चाहे वो मोगली वाला वो गाना हो, याद है ना, जंगल जंगल बात पत चली है, पता चला है चड्डी पहन के फूल खिला है, या फिर अजीम शायर मिर्जा गालिब के ऊपर बनाया हुआ टीवी सीरियल, जॉनरा चाहे जो भी हो, गुलजार साहब आम इंसान से नाता जोड़ने में हमेशा ही आगे रहे। बतौर गीतकार गुलजार साहब ने बड़े से बड़े म्यूजिक डायरेक्टर के साथ काम किया, चाहे वो एस डी बर्मन साहब हों, सलील चौधरी, आर डी बर्मन, या फिर लक्ष्मीकांत प्यारेलाल साहब। और फिर उन्होंने काम किया बदलते दौर के म्यूजिक डायरेक्टर्स ए आर रहमान, विशाल भारद्वाज और शंकर एहसान लॉय के संग। वो खुद अपने इंटरव्यूज में विशाल भारद्वाज के संग अपने काम को बहुत सराहते रहते हैं। उनका कहना है कि विशाल ने मेरे गानों को जवान रहने में बड़ी मदद की है।

यकीन करेंगे आप, जिसने ये गीत लिखे हैं, तुम आ गए हो नूर आ गया है, मुसाफिर हूँ यारो आजकल पांव जमीन पर नहीं पड़ते मेरे, उसी गीतकार ने ये गीत भी लिखा है, जवा पर लागा लागा रे नमक इश्क का।

दोस्तों, भारतीय सिनेमा में ऐसी बहुत कम हस्तियां हैं जिन्होंने ब्लैक एंड व्हाइट से लेकर कलर सिनेमा तक अपना दबदबा बनाए रखा है। गुलजार साहब हर पर्दे पर अपने हुनर से छाए रहे, चाहे वो छोटा पर्दा हो, बड़ा पर्दा हो या फिर मन का हसीन पर्दा। हर पर्दे पर इनकी दास्तां अपने रंग बिखेर ही देती है, और शायद इसीलिए गुलजार इतने अपने से लगते हैं, क्योंकि उन्होंने हमारी जिंदगी के उन लम्हों को भी शब्द दिए जिन्हें हम खुद कभी नहीं कह पाए। मोहब्बत हो, जुदाई हो, बारिश हो या जिंदगी की कोई छोटी सी शरारत, गुलजार की कलम ने हर एहसास का अपना रंग चुना है। उनकी दुनिया में मोहब्बत सिर्फ इश्क नहीं है, वो एक इंतजार भी है, एक मुलाकात भी है, एक दूरी भी है, और कभी कभी कुछ अधूरी भी है।

और उस ऊपर वाले से आज के खास दिन यही कामना है, यही आशा है, यही अपेक्षा है और यही दुआ है कि गुलजार साहब का ये इरा यूं ही चलता रहे, ये गुलजारत, ये गुलजारियत यूं ही आबाद रहे हमेशा।

दोस्तों, इस गुलजारियत को इस आधे घंटे के कार्यक्रम में समेट पाना बहुत मुश्किल काम है, लेकिन क्या करें, हमारे पास समय की सीमा भी तो है ना। तो इसी गीत के साथ मुझे यानी आपकी अपनी दीप्ति पाठक निधीश को इस कार्यक्रम से इजाजत दीजिए। फिर मिलूंगी आपसे यूं ही किसी संगीतमय मोड़ पर। तब तक के लिए बने रहिए आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल के संग।

आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। दोपहर के 3 बजे हैं और इस समय हम आपके लिए लेकर आते हैं गोल्डन इरा के गीतों पर आधारित कार्यक्रम मैटनी मेलोडीज। नमस्कार दोस्तों, मैटनी मेलोडीज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कहते हैं कि कुछ आवाजें सिर्फ कानों तक नहीं पहुंचती, वो सीधे दिल में उतर जाती हैं, और कुछ गीत सिर्फ गीत नहीं होते, वे अपने साथ एक पूरा दौर लेकर आते हैं। आज हम लौटेंगे उसी दौर में जब फिल्मों की कहानियों में सादगी थी, संवादों में मिठास थी और कलाकारों की अदाकारी में ठहराव था, और गीतों में ऐसा जादू था कि रेडियो पर बजते ही घर का माहौल बदल जाया करता था। जी हाँ, आज की हमारी मुलाकात है हिंदी सिनेमा के गोल्डन एरा से, वो दौर जब एक फिल्म देखने के बाद लोग सिर्फ कहानी याद नहीं रखते थे बल्कि उसके गीतों को गुनगुनाते हुए घर लौटते थे। तो आइए यादों की इस खूबसूरत पगडंडी पर चलते हैं और सुनते हैं उस दौर का एक सदाबहार गीत।

दोस्तों, हिंदी सिनेमा का स्वर्णिम दौर खास तौर पर 1950 और 1960 के दशक में अपनी अलग पहचान बनाता दिखाई देता है। यह वो समय था जब फिल्म सिर्फ मनोरंजन का माध्यम नहीं थी, फिल्म संगीत अपने आप में एक सांस्कृतिक पहचान बन चुका था। राज कपूर, दिलीप कुमार, देवानंद जैसे सितारे पर्दे पर अपनी अलग दुनिया रच रहे थे। वहीं मधुबाला, मीना कुमारी, वैजंती माला, नरगिस, वहीदा रहमान और नूतन जैसी अभिनेत्रियां अपने अभिनय से दर्शकों के दिलों में जगह बना रही थीं, और इन सितारों की चमक को और बढ़ाते थे शंकर जयकिशन, एसडी बर्मन, मदन मोहन, रोशन, ओपी नैयर, सलिल चौधरी, जयदेव जैसे महान संगीतकार। गीतकारों की बात करें तो शैलेंद्र, साहिर लुधियानवी, मजरू सुल्तानपुरी और राजेंद्र कृष्ण जैसे रचनाकारों ने फिल्मों के गीतों को कविता की ऊंचाई दी। यही वजह है कि उस दौर के गीत आज भी पुराने नहीं लगते।

कभी आपने गौर किया है कि पुराने हिंदी फिल्मों के गीतों में शब्द कितने सीधे होते थे? चांद, सितारे, बारिश, सफ़र, दिल, याद, बस इन्हीं छोटे छोटे शब्दों से पूरी प्रेम कहानी कह दी जाती थी। उस दौर में गीत कहानी को आगे बढ़ाने का माध्यम हुआ करते थे। नायक नायिका के बीच जो बात संवादों में नहीं कही जा सकती थी, वो बात गीत कह देता था। कभी आंखों से इशारा होता था तो कभी चिट्ठी के बहाने प्यार का इजहार, और कभी एक धुन सुनकर ही दर्शक समझ जाया करते थे कि दिल में क्या चल रहा है। यही तो खूबसूरती थी उस दौर की फिल्मों की।

आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मैटनी मेलोडीज और मैं हूं आज आपके साथ आपकी दोस्त अर्चना गोयल। अब जरा बात करते हैं उस जादू की जिसके बिना गोल्डन एरा अधूरा है, वो है फिल्म संगीत। उस समय संगीतकार सिर्फ धुन नहीं बनाते थे, वे गीत की परिस्थिति समझते थे, किरदारों की भावनाएं समझते थे और फिर उसी भावना के अनुसार संगीत तैयार किया करते थे। एस जी वर्मन की धुनों में लोक संगीत की खुशबू महसूस होती थी, मदन मोहन के संगीत में दर्द और मोहब्बत का अद्भुत मेल दिखाई देता था और शंकर जयकिशन ने बड़े ऑर्केस्ट्रा और मधुर धुनों के जरिए फिल्म संगीत को अलग भव्यता दी। ओपी नैयर की धुनों में ऐसी चंचलता थी कि गीत शुरू होते ही कदम अपने आप थिरकने लगते थे, इसलिए गोल्डन ईरा का संगीत आज भी खजाना है।

दोस्तों, आज हमारे पास मनोरंजन के इतने साधन हैं, मोबाइल, इंटरनेट, लेकिन एक समय था जब घर में फिल्मी गीतों की दुनिया का सबसे बड़ा दरवाज़ा था रेडियो। लोग रेडियो के सामने बैठकर अपने पसंदीदा कार्यक्रम का इंतज़ार किया करते थे। किसी को गीत पसंद आ गया तो उसकी पंक्तियाँ डायरी में लिखते थे, किसी को गायक की आवाज़ पसंद आई तो अगली बार उसी आवाज़ के गीत सुनने का इंतज़ार होता था। रेडियो और फिल्मों का ये रिश्ता आज भी हमारी यादों में जिंदा है।

तो दोस्तों, आधे घंटे की मुलाकात में हमने महसूस किया कि गोल्डन एरा का वो दौर जिसमें सिनेमा सिर्फ पर्दे पर नहीं लोगों की जिंदगी का हिस्सा था, फिल्मों के किरदार अपने लगते थे, गीत अपनी कहानी कहते थे और रेडियो इन सब को हमारे घर तक पहुंचाने का सबसे प्यारा साथी हुआ करते था। इन्हीं सुनहरी यादों के साथ मैं अर्चना गोयल आपसे मैटनी मेलोडीज कार्यक्रम संपन्न करने की अनुमति चाहूंगी। नमस्कार।

हम आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, DRM 810 किलोहर्ट्ज़ पर। आइए सुनते हैं कार्यक्रम उर्दू मजलिस।

0: आप सभी का दिल की गहराइयों से खैर मकदम है। ये वो प्रोग्राम है जहां हर गुफ्तगू में उम्मीद, जज्बे और हौसले की खुशबू महसूस होती है। इस प्रोग्राम के जरिए हम नौजवानों के नज़रियात को समझने की कोशिश करते हैं और उन मौजूआत पर गुफ्तगू करते हैं जो उनके मुस्तकबिल से सीधा ताल्लुक रखते हैं। हमारा आज का मौजू है आज़ादी और जमहूरियत की हिफाजत में नौजवानों का किरदार। इसी मौजू पर गुफ्तगू के लिए हमारे साथ तीन नौजवान मेहमान मौजूद हैं जो अपने अपने शोबों और तजुर्बात की रोशनी में इस मौजू को मुख्तलिफ पहलू से समझने में हमारी मदद करेंगे। आए आपसे उनका तारुफ कराते हैं। सबसे पहले हमारे साथ मौजूद हैं महमूदुर रहमान साहब जो PhD स्कॉलर हैं। हमारे साथ हैं शुमाइला फातिमा जो मास कम्युनिकेशन और जर्नलिज्म से ताल्लुक़ रखती हैं। और हमारी तीसरी मेहमान हैं सबा फिरदौस जो उर्दू की तालिबा हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी से। आप तीनों मेहमानों का दिल की गहराइयों से खैर मकदम है। महमूदुर रहमान साहब, थोड़ा सा अपना तारुफ कराइए और थोड़ा इस बारे में बताइए कि आपके नज़दीक आज़ादी और जमहूरियत का रिश्ता क्या है। क्या ये एक के बगैर दूसरी मुकम्मल है कि नहीं है, थोड़ा सा इस बारे में बताइए।
1: मुदस्सिर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका मौका देने के लिए। तो मुदस्सिर साहब, आज़ादी और जमहूरियत का रिश्ता जिस्म और रूह का रिश्ता है
0: जी।
1: और आज़ादी रूह है और जमहूरियत वो जिस्म है जो उसे ज़िंदा और महफूज रखता है। जमहूरियत के बग़ैर आज़ादी एक बेकाबू हजूम की शक्ल इख्तियार कर लेता है, क्योंकि जिसमें फिर ऐसी ऐसी शक्ल इख्तियार कर लेता है जिसमें ताकतवर कमज़ोर को खा जाता है, और आज़ादी के बग़ैर जमहूरियत महज एक खोखला ढांचा ही रह जाता है। तो हमें ये समझने की ज़रूरत है कि आज़ादी और जमहूरियत का रिश्ता बहुत गहरा रिश्ता है। ये दोनों मिलकर ही एक महज़ब माशरे को जन्म देते हैं और ये दोनों एक दूसरे के बग़ैर अधूरे और नामुकम्मल हैं
0: जी। बहुत अच्छी तरीके से आप बता रहे थे कि रूह और जिस्म का रिश्ता। तो सबा जी, महमूद साहब ने बहुत अच्छी तरीके से बताया कि आज़ादी और जमहूरियत का जो रिश्ता है वो बहुत ज़्यादा रूह और जिस्म जैसा रिश्ता है। तो थोड़ा सा अपने बारे में एक तो थोड़ा सा बताइए हमारे सामईन को, और साथ में ये भी बताइए कि नौजवान का क्या किरदार है इसमें।
2: आदाब, मेरा नाम सबा फिरदौस है और मैं आपके तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे मौका दिया कि मैं अपनी राय को यहाँ पे जाहिर कर सकूँ। आज़ादी मेरे लिए अपनी बात कहना, अपनी बात सोचने या अपने फैसले का हक देती है, जबकि जमहूरियत इन आज़ादियों को एक निज़ाम, एक संस्थागत सुरक्षा देती है। अगर आज़ादी ना हो तो इन सियासी फैसलों को तब्दील करना बहुत मुश्किल हो जाता है। अगर जमहूरियत हो और ये आज़ादी जो है ये एक फॉर्मल सिस्टम बन के रह जाती।
0: बहुत अच्छी तरीके से आपने बताया कि जमहूरियत जो है वो हिफाजत की जो आपने बात करी उस पर मैं थोड़ा सा आऊँगा। शुमाइला फातिमा, आप जैसे बताया आपने कि आप जो हैं जर्नलिज्म से ताल्लुक़ रखती हैं, थोड़ा अपने बारे में बताइए।
3: सबसे पहले आदाब, आपका शुक्रिया मुझे इस गुफ्तगु में शामिल करने के लिए।
0: थोड़ा सा मीडिया के ताल्लुक से बताइए, जैसे मीडिया को कहा जाता है फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी कहा जाता है, तो मीडिया का कहाँ रोल है जमहूरियत के अंदर?
3: मीडिया लोगों तक अपनी आवाज़ पहुँचाती है, और अगर हमारे अंदर मीडिया की तालीम होगी तो हम लोगों तक आज़ादी का एक सही मायना रख पाएंगे। जैसे कि लोग आज़ादी का मतलब ये समझते हैं कि हम अनडिसिप्लिन्ड वे में कुछ भी कर सकते हैं, पर ये मतलब नहीं होता है। अगर उनके साथ जमहूरियत को उसमें ऐड कर दिया जाए तो वो चीज़ हम ज़्यादा बेहतर तरीके से लोगों तक पहुँचा पाएंगे। और मीडिया तेज़ी से लोगों तक पहुँच जाती है, लाखों करोड़ों लोगों तक, पर मीडिया में तेज़ी से ज़्यादा हमारे लिए जिम्मेदारी है कि हम लोगों के प्राइवेसी का ध्यान रखें, लोगों की सोच का ध्यान रखें, और जब इख्तलाफ हो तो उसका भी एहतराम करें।
0: जी, विश्वमाइला आपने जैसे बताया, और साथ में ये भी हम लोग अक्सर बात करते हैं अपने हकूक की बात करते हैं कि हमारे हकूक ये है, हमारा हकूक ये है, पर जिम्मेदारी की कोई बात नहीं करता है। तो महमूद साहब, थोड़ा सा आप बताइए इस बारे में कि जब हम बात करते हैं अपने हकूक की तो हम ये क्यों नहीं कहते कि हमारी जिम्मेदारियाँ भी तो जुड़ी हैं, तो नौजवान की जिम्मेदारी क्या है?
1: जी मुदस्सिर साहब, जैसा कि शुमाइला साहिबा ने इस पर रोशनी डाली है तो मैं इस पर कुछ मज़ीद रोशनी डालना चाहता हूँ। हमें ये शऊर दिया जाता है कि हमारी जो तालीम का मकसद है वो क्या है, लेकिन बदकिस्मती से आज का नौजवान अपने हकूक़ के लिए तो बहुत बेदार है
0: जी।
1: अपने हकूक़ के लिए बहुत ज़्यादा बेदार है आप देखते हैं, लेकिन फ़राइज़ से क़द्र गाफिल है। इसकी वजह से हमारा वो निज़ाम जो उन्हें सिर्फ एक दूसरे से आगे निकलना कम्पटिशन सिखा रहा है, हमारे नौजवान जो है वो आज के माशरे में सिर्फ अपने हकूक के तई इस पर तो बहुत बेदार है और वो कंपटीशन सीख रहे हैं, लेकिन माशरे में अपना हिस्सा डालना जिसे हम कंट्रीब्यूशन कह सकते
0: जी, जी,
1: हैं
0: जी।
1: वो मफकूद है। तो जो है हमें सिर्फ कंपटीशन में एक दूसरे से नौजवानों से आगे निकलना सिर्फ ये सिखाया जा रहा है, लेकिन ये नहीं सिखाया जा रहा है कि जमहूरियत क्या है, आज़ादी क्या है, माशरे में अपना कंट्रीब्यूशन और जो है अपना हिस्सा कैसे डालना है। आज़ादी महज मादर पितर आज़ाद होने का नाम नहीं है कि हम जो है मादर पितर आज़ाद हो जाए और हम समझे कि हम आज़ाद हो गए, सिर्फ यही मकसद नहीं है मुदस्सिर साहब, बल्कि ये वो बाशूर एहसास है जो हमें बताता है कि मेरे हकूक़ वहीं ख़त्म हो जाते हैं।

0: रंगों और उसके फूलों में है। और जो इख्तलाफी राय है, नौजवानों को ये समझने की ज़रूरत है कि इख्तलाफी राय जो है वो दुश्मनी नहीं है। एक बाशऊर नौजवान वो है जो मुखालिफ की बात से इख्तलाफ तो करे लेकिन उसके बोलने के हक़ की हिफाजत के लिए अपनी जान भी लड़ा दे।
1: जी
0: मतलब ये है कि वो इख्तलाफ करे लेकिन इख्तलाफ करने का भी एक तरीक़ा होना चाहिए, एक अदबी अंदाज़ होना चाहिए, एक इल्मी अंदाज़ होना चाहिए। ऐसा लगना चाहिए कि हाँ, जो इख्तलाफ कर रहे हैं ये एक बाशऊर नौजवान है, ये एक बाशऊर नौजवान का इख्तलाफ है जिसमें जो अल्फाज हो वो इल्मी हो, अदबी हो और सामने वाले को जो है वो बुरा ना लगे, तो इसका भी ख्याल रखना चाहिए। और जिससे इख्तलाफ किया जा रहा है उसको भी ये समझना चाहिए कि जो ये इख्तलाफात किए जा रहे हैं ये एक जो है एक बाग की खूबसूरती की तरह है, जमहूरियत की खूबसूरती है। क्योंकि अगर हम दूसरों की आवाज़ दबाएंगे तो जो आज हम करेंगे तो हो सकता है कल को हमारी भी कोई आवाज़ कोई दबाने की कोशिश करे या दबा दी जाए। तो
1: जी
0: एक बाग की तरह है, जिस तरह से मुख्तलिफ फूल होते हैं, रंग होते हैं, उस तरह से जो है ये इख्तलाफ राय जो है और टॉलरेंस और बर्दाश्त करना, ये क्या है, जमहूरियत की खूबसूरती है और ये कोई ज़ाती दुश्मनी नहीं है।
1: बहुत अच्छी तरीके से बात की आपने, टॉलरेंस की बात करी।
0: जी
1: तो सभा, मैं आपसे थोड़ा सा पूछना चाहूंगा कि आप जब यूनिवर्सिटी में अपने आसपास के अपने दोस्तों से मिलती हैं, बात करती हैं, तो क्या लगता है उनके अंदर टॉलरेंस है? क्या लगता है आपको कि वो इख्तलाफ राय जो है वो लाइक दूसरों की जो राय है उनको सुनते हैं, या फिर वो सिर्फ अपनी राय, एक होता है ना कि सिर्फ जो मैं बोल रहा हूँ वो सही है, या वो दूसरों की भी जो राय है वो आज का नौजवान सुनना चाहता है?
2: देखिए, आज का नौजवान जो है वो दूसरों की राय सुनता भी है लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि किसी किसी टॉपिक पे झगड़ा या फसाद का मवाद आ जाता है, जहाँ पे जो नौजवान होता है वो सोचता है कि नहीं, मेरी राय ही ठीक है। तो ये चीज़ गलत है और ये आज के नौजवान में बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है कि नौजवान सोचता है कि नहीं, मैं ही सही हूँ। उनको ये नहीं सोचना चाहिए, उन्हें ये सोचना चाहिए अगर जमहूरियत हमें दी गई है तो इसका मतलब ये है कि हमें दूसरों की राय को भी एहतराम करना चाहिए। लेकिन आज के नौजवान को ये सिखाया जाता है कि मेरा राइट क्या है, मेरा हुकूक क्या है, लेकिन उनको ये नहीं सिखाया जाता है कि मेरे राइट्स के साथ मेरी जिम्मेदारी क्या है। उनको अगर ये मालूम हो कि हमें दूसरों का एहतराम करना चाहिए, हमारे ये एहतराम करना उनका हक है, तो वो अपनी राय को प्रिफर नहीं करेंगे, वो दूसरों की राय को भी सुनेंगे।
1: जी बिल्कुल, आप बहुत सही तरीके से आप लोग कहना, लेकिन होता है कभी कभार ऐसा होता है कि वो
2: जी
1: कहीं कहीं कुछ टॉपिक्स पे ऐसा होता है कि
2: जी
1: नौजवान सोचता है कि जो मैं कह रहा हूँ वही
2: वही
1: सही है।
2: सही है।
1: तो शुमैला, थोड़ा सा मैं आपसे इस पे आना चाहूँगा कि जो आजकल नौजवान के अंदर एक पॉइंट ऑफ सोच बन गया, एक सोचता है वो कि ये मैं क्या करूँ, मुझे क्या मिलेगा इस चीज़ से, नहीं एक एक आगे ये ना कि लाइक अगर कुछ आगे कुछ हो रहा है ये सोचता है कि मेरा मसला नहीं है, मैं क्यों उस पे आगे बढ़ूँ। तो जमहूरियत पर इसका क्या असर पड़ता है, थोड़ा सा इस बारे में बताइए।
3: क्योंकि नौजवानों को ये लगता है कि मैं सिर्फ अपने काम से मतलब रखूं, जैसा कि आजकल एक वर्ड जेनजी बहुत ज़्यादा फेमस है, जेनजी को किसी से कोई मतलब नहीं है, अपनी लाइफ से मतलब है बहुत ज़्यादा। लेकिन जब भी हम किसी न्यूज़ या किसी भी कंटेंट पे पहुंचते हैं तो हम ये नहीं सोचते कि हो सकता है इन फ्यूचर या हमारे आने वाली नस्ल को उसकी ज़रूरत पड़ सके, तो हम उसमें अपना कॉन्ट्रीब्यूशन दें या कुछ भी करें, लेकिन पूरी मालूमात हासिल किए बिना ही लोग उसे छोड़ देते हैं।
1: जी मूसा, आप कुछ कहना चाहेंगे इस बात पे थोड़ा सा?
0: जी, जैसा कि शुमाइला फातिमा साहब ने इस पर रोशनी डाली है, मैं इससे बहुत हद तक मुत्तफिक हूँ कि आज का नौजवान जो है समाजी मसाइल से कट गया है। और अगर नौजवान समाजी मसाइल से कट गया तो जमहूरियत क्या होगी कि वो जो चंद अशराफिया है, चंद बड़े लोग हैं जिनके हाथ में सरमायादाराना निज़ाम है, तो अगर नौजवान उससे कट जाएगा
1: जी
0: तो ये जो पूरा निज़ाम है, जमहूरियत का निज़ाम, वो चंद लोगों के हाथ में आ जाए, सिमट कर रह जाएगा। जिस तरह से जिस्म में नया खून गर्दिश करना बंद कर दे तो जिस्म फालिज का शिकार हो जाता है, इसी तरह से अगर नौजवान समाजी मसाइल से कट जाए
1: जी
0: तो ये जो मुआशरा है, ये जो जमहूरियत है, इसका कोई मतलब नहीं रह जाता है।
1: बिल्कुल
0: और जेंजी का कोई मतलब नहीं रह जाता है। जेंजी का मतलब यही है कि वो जो है एक बाशऊर इंसान बने, बाशऊर जिम्मेदार शहरी बने, और वो अपने लिए बात करे और अपने लिए बात करते वक्त जो है दूसरों का भी ख्याल रखे। जैसा कि मैंने पहले भी रोशनी डाली थी कि हमें जो है सिर्फ राइट्स, अपने हकूक पर बात नहीं करना है बल्कि मुआशरे में कंट्रीब्यूशन, अपना हिस्सा देना है जेंजी को, कि किस तरह से जो है हमारे हकूक वहीं ख़त्म हो जाते हैं जहाँ से दूसरे के हकूक जो है शुरू हो जाते हैं। बिल्कुल इसी तरह नौजवान की बेहिसी और खामोशी किसी भी जमहूरी निज़ाम की मौत का परवाना है।
1: जी
0: इसी तरह से अगर नौजवान खामोश हो जाए तो ये जमहूरी निज़ाम जो है, हम देख सकते हैं, हिस्ट्री हम पढ़ते हैं, तारीख़ पढ़ते हैं, तो वहाँ पर हमारे लिए जब मैं सफ़रनामों का मुताला करता हूँ तो वहाँ पर भी देखता हूँ कि जहाँ पर नौजवानों की आवाज़ या शहरियों की आवाज़ दबा दी जाती है
1: जी
0: तो वो जो है मुआशरा फिर ख़त्म हो जाता है। और एक घुटन ज़दा मुआशरा एक क्लर्क तो पैदा कर सकता है जो क्लर्क का काम करे, लेकिन एक अजीम साइंसदान, एक अजीम मुफक्किर, एक अजीम सियासत

0: पैदा नहीं कर सकता। तो ये हमें समझने की ज़रूरत है कि जमहूरियत कितनी ज़्यादा ज़रूरी है और कंट्रीब्यूशन जो है डालना नौजवानों का इसमें कितना ज़रूरी है।
1: जी
0: जी
1: बिल्कुल, बहुत अच्छी तरीके से आपने बताया कि बहुत कंट्रीब्यूशन बहुत ज़रूरी है। वही हमारी
0: जी
1: शुरू से जो बात आती है, आज का नौजवानों को सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है कि वो अपने मुल्क के लिए कुछ करे,
0: जी
1: कुछ
0: जी
1: कदम उठाए, आगे
0: जी
1: बढ़े। तो सभा थोड़ा सा ये बताइए कि क्या क्या ऐसे चीज़ें हैं जो नौजवान कर सकता है अपने मुल्क के लिए, ऐसा स्टूडेंट लाइक वो अभी स्टूडेंट है, वो क्या क्या अपने जो आसपास के लिए, अपने यूनिवर्सिटी के लिए, यूनिवर्सिटी से शुरू होता है लेकिन अपने देश के लिए, वो क्या क्या कर सकता है अपने मुल्क के लिए।
2: देखिए, मैं NCC कैडेट भी हूँ,
1: जी
2: तो मेरे हिसाब से एक जो स्टूडेंट के लिहाज से एक नौजवान को ब्लड डोनेशन कैंप में पार्ट लेना चाहिए, प्लांटेशन ड्राइव में पार्ट लेना चाहिए,
1: जी
2: एनवायरनमेंट से रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटी होती है, प्लांटेशन ड्राइव हो उसमें पार्ट लेना चाहिए। अभी हमारे मुल्क में तिरंगा रैली हो रहा है, नौजवान चाहे तो उसमें पार्ट ले सकता है, उससे
1: जी
2: हमारे कौमी इत्तेहाद बढ़ेगा।
1: जी बिल्कुल। देखिए, जैसे हम स्टूडेंट्स हैं,
2: जी
1: हमारा काम क्या है कि हम जो अपनी पढ़ाई करें, पढ़ाई करने के बाद जो आजकल जो एक स्टूडेंट्स के अंदर एक चीज़ आ गई है कि हम जो है सिर्फ सिर्फ पैसा कमाने के लिए नहीं पढ़ाई करें, कि हमें जो है सिर्फ और सिर्फ जो है बड़े बड़े ओहदों पर बैठ कर हम लोग जो है अच्छे से अच्छा कमाई कर सकें। हमें जो है जो नौजवान को पढ़ना चाहिए अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए, अपने मुल्क को आगे बढ़ाने के लिए। तो मैं थोड़ा सा इस बारे में आपसे जानना चाह रहा था, जैसे कि आजकल जो सोसाइटीज़ होती हैं, छोटी छोटी सोसाइटीज़ होती हैं जो काम करती हैं, अच्छा क्या नौजवान को काउंसलिंग की ज़रूरत है इसके अंदर?
2: जी बिल्कुल, काउंसलिंग की ज़रूरत है।
1: अगर हम मैं आपसे एक सिंपल चीज़ पूछना चाहूँगा कि आज़ादी को क्या समझता है नौजवान, क्या है आज़ादी? थोड़ा सा शुमाइला आप थोड़ा सा इस बारे में बताइए कि मीडिया के ताल्लुक से कि क्या कर सकता है मीडिया स्टूडेंट एक अपने देश के लिए, अपने मुल्क के लिए।
3: मैं यही कहूंगी जो हमने कुछ देर पहले ही डिस्कस किया है, हम लोगों के आजकल राय बहुत डिफरेंट डिफरेंट होती है, इख्तिलाफ राय जिसको कहते हैं, तो वो जमहूरियत में बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अगर सब अलग अलग राय रखते हैं तो लोग वहाँ पे बदतमीज़ हो जाते हैं, एक दूसरे की ना रिस्पेक्ट करते हैं ना तरीके से बात कर उस चीज़ का सॉल्यूशन निकाले बिना उस चीज़ को ख़त्म करने पे आते हैं कि नहीं, या तो मेरी बात होगी या आपकी बात होगी। लेकिन अगर हम वहाँ पे उसका एहतराम करते हुए उस चीज़ के बारे में भी सोचें तो शायद दूसरों का नज़रिया भी सही हो सकता है।
1: जी समझ सकता हूँ कि बात मुझ साहब, थोड़ा मैं आपसे ये बात करना चाहता था इस बारे में कि जो अदब है, तालीम है, उसका क्या किरदार है इस पे, जमहूरियत पे और आज़ादी पे?
0: जी मुदस्सिर साहब, जब मैं उर्दू सफ़रनामों का मुताला करता हूँ तो उसमें देखता हूँ कि किस तरह से जहाँ पर माशरे को दबा दिया जाता है तो वहाँ पर माशरा टूट जाता है, ख़त्म हो जाता है। तो असल में जो तालीम है वो दिमाग को रोशन करती है। तालीम का जो मकसद है कि दिमाग को रोशन करे। तालीम का मकसद ये नहीं है कि हम पैसे कमाने की मशीन बन जाएं, ये मकसद नहीं है, बल्कि ये दिमाग को रोशन करने के लिए है, माशरे में कंट्रीब्यूशन डालने के लिए है। और इसी तरह से जब हम अदब का मुताला करते हैं तो ये दिल में एहसास पैदा करता है। मसलन हम गोदान का मुताला करते हैं जो मुंशी प्रेमचंद का नावल है, तो उसमें हम देखते हैं कि किस तरह से होरी उसका एक किरदार है जो एक किसान है, और उसको किस तरह से इस्तेहसाली निज़ाम का सामना करना पड़ता है, और जो सरमाया दाराना निज़ाम है उस किसान को आगे बढ़ने नहीं देता और वो गाय की ख्वाहिश में इस दुनिया से चल बसता है, और उसके मरने के बाद भी उसका इस्तेहसाल किया जाता है, और जो सरमायादारा निज़ाम होता है उनसे जो है पैसे का, उनकी बीवी से पैसे का मुतालबा करता है। तो ये बताने का मकसद ये है कि जो मुख्तलिफ अफसाने हैं, अदब हमारे अंदर जो है एक एहसास पैदा करता है।
1: तो जैसे कि हम बात कर रहे थे अदब की, अदब का भी बहुत रोल रहा है हमारी जमहूरियत में, और तालीम का सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल रहता है आज़ादी और जमहूरियत में। तो थोड़ा सा इस रिलेटेड से बताइए कि आज का जो नौजवान है जो पढ़ रहा है, जो अपने काम कर रहा है अपने मुल्क के लिए, जो वो काम कर रहा है, तो उसके रिलेटेड आपको क्या लगता है कि वो और क्या कर सकता है अपने मुल्क के लिए?
0: जी मेरा ये मानना है कि तीन चीज़ें हैं जो बहुत अहम हैं।
1: जी
0: तालीम, अदब और मीडिया, ये तीनों मिलकर जो है एक ज़िम्मेदार माशरा को जन्म देते हैं। जैसा कि मैंने नावलों का जिक्र किया, इसी तरह से हकीकी अदब जो है हमारे अंदर एहसास पैदा करता है, और मीडिया से हम उस शऊर को आगे बढ़ाते हैं मीडिया के ज़रिए। तो मेरा ये मानना है कि आज़ादी महज कागज़ों पर नहीं बल्कि माशी बराबरी और निज़ाम की तब्दीली में है।
1: जी
0: तो जैसा कि मैंने जिक्र किया, ये तीनों तालीम, अदब, मीडिया मिलकर एक ऐसा नौजवान तैयार करते हैं जो सिर्फ मशीन नहीं बल्कि एक बाशऊर इंसान बनाता है, एक ज़िम्मेदार शहरी बनाता है।
1: जी सभा साहबा, थोड़ा सा आप इस पर रोशनी डालना चाहेंगी कि आज का जो नौजवान है, जो हम लोग हैं, हम आप लोग हैं, अपने मुल्क के लिए क्या क्या कर सकते हैं अपनी जमहूरियत को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए और मज़बूत बनाने के लिए, आज का नौजवान क्या कर सकता है?
2: मेरे नज़दीक आज का जो नौजवान है वो सिर्फ वोट ना दे बल्कि एक जिम्मेदार नागरिक बने, वो कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ का एहतराम करे, अपनी आवाज़ भी उठाए, अपने राय भी रखे, अपने

0: उपले बोले भी। अगर नौजवान का कारनामा की बात करें तो तारीख में भी देखा गया है कि जो हम आंदोलन हुए हैं, तो भगत सिंह से लेकर अगर जयप्रकाश नारायण के स्टूडेंट यूनियन की हम बात करें तो आंदोलन तो उस वक्त भी हुआ है, तो उस वक्त भी नौजवानों ने आंदोलन किए और अपने हक के लिए आवाज़ उठाई, तो ये उनका एक कारनामा था। आज के स्टूडेंट आंदोलन की बात करें तो आज के भी स्टूडेंट जो हैं वो अपने हक के लिए आवाज़ उठाते हैं और वो दूसरों का एहतराम भी करते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि स्टूडेंट जो है वो एहतराम करना भूल जाते हैं, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है हुकूमत उन पर जुल्म कर रहा है। लेकिन ऐसा नहीं होता है, लेकिन उनको ऐसा फील होता है कि नहीं ऐसा हो रहा है। तो हमें अपने नौजवानों को यही सिखाना चाहिए कि हम एहतराम करें अपने आइन का, अपने हुकूमत का, ना कि उसके खिलाफ खड़े हो जाएं। अगर हम उस चीज़ को पीसफुली हैंडल कर सकते हैं, हम उस चीज़ को अमन सुकून के साथ कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से, हम उस चीज़ को जब हम उस चीज़ को जिम्मेदारी से हैंडल कर सकते हैं, तो
1: जी,
0: हम क्यों उसके खिलाफ आवाज़ उठाएं?
1: हमारा वक्त भी होने को है, तो सबसे पहले मैं चाहूँगा शुमाइला, थोड़ा सा आप छोटा सा पैगाम दीजिए जो आज के नौजवान को, आप क्या पैगाम देना चाहती हैं जो आज़ादी और जमहूरियत की हिफाजत से जुड़ा हो, थोड़ा सा क्या
0: मैं
1: होगा?
0: मुल्क के हर नौजवान से सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि अपनी आज़ादी की कद्र कीजिए, अपने हुकूक को समझिए और अपने फ़राइज़ को मत भूलिए। सच को पहचानिए, इख्तलाफ का एहतराम कीजिए, जमहूरियत को सिर्फ एक निज़ाम ही नहीं बल्कि अपनी जिम्मेदारी को समझिए।
1: जी, बहुत अच्छी तरीके से आपने बताया कि हमें अपनी जिम्मेदारी को समझना चाहिए। तो महमूद साहब, थोड़ा सा आप क्या पैगाम देना चाहेंगे?
2: जी, मेरा पैगाम नौजवानों के नाम ये है कि जमहूरियत आपसे आपकी आवाज़ मांगती है। खामोशी जमहूरियत का जहर है। फैज़ अहमद फैज़ ने नौजवानों के लिए ही कहा था, बोल के लब आज़ाद हैं तेरे, बोल जुबा अब तक तेरी है। अपने हक़ के लिए बोलें, माशरे की नाइंसाफ़ी के ख़िलाफ़ बोलें, लेकिन शाइस्तगी और इल्म के साथ। आपकी बेदार सोच और आपका कलम ही इस मुल्क का सबसे बड़ा दिफा और जमहूरियत का सबसे बड़ा दिफा है।
1: जी, और बहुत अच्छी तरीके से आपने बताया कि अपने आवाज़ अपने लिए बोलें और अपने लिए उठें, तो सबसे बड़ी ताकत जो हमारे पास है वो
2: जी
1: तो है वोट करने की, जो
2: जी
1: कि इलेक्शन जो है एक सबसे बड़ी जो ताकत है जो हमारे पास मौजूद है। और जो भी 18 साल से जो बड़े नौजवान हैं, उनको ज़रूरी है कि उनको जाकर वोट देना चाहिए। यही हमारी जमहूरियत के लिए बहुत बड़ा एक रोल है जो उनको निभाना चाहिए। सबा, थोड़ा सा आप बताइए, आप क्या कहना चाहेंगी, अपने आखिरी पैगाम नौजवानों को क्या देना चाहेंगे छोटा सा?
0: मैं नौजवानों को पैगाम देना चाहूँगी कि वह आज़ादी को सिर्फ एक तारीख के तौर पर याद ना करें, वो उसे एक जिम्मेदारी के तौर पर समझें। हमें जो आज़ादी मिली है उसकी हिफाजत करना सिर्फ हुकूमत या जमहूरी इदारों की जिम्मेदारी नहीं है। सवाल करें लेकिन दलील के साथ, इख्तलाफ करें लेकिन एहतराम के साथ, सोशल मीडिया का इस्तेमाल करें लेकिन जिम्मेदारी के साथ, हक़े राय और वोट दें लेकिन शऊर और समझ के साथ। क्योंकि जमहूरियत सिर्फ हुकूमत का निज़ाम नहीं है बल्कि एक ऐसा तर्ज जिंदगी है जिससे हर शहरी की आवाज़, आज़ादी और जिम्मेदारी अहम होती है।
1: जी, बहुत अच्छी तरीके से आपने बताया और बहुत खूब। और जैसे कि हाँ, हमारे तीनों मेहमान ने बात करी कि हमें जमहूरियत को बचाना है तो उसके लिए हमें वोट देना होगा, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर जो डेमोक्रेसी है, जो वो खड़ी हुई है, जो पिलर है हमारी डेमोक्रेसी का, वो वोट पे है। तो हमारे नौजवानों का इस सब का ये बहुत बड़ा किरदार है, हम सब का, कि हम वोट दें, अपने लिए आवाज़ उठाएं, क्योंकि वोट देना भी एक आवाज़ उठाने का एक तरीका है। बहुत खूब, और शायद इसी बात के साथ आज की गुफ्तगू का खुलासा भी मिल जाता है कि आज़ादी हमें विरासत में तो नहीं मिली है, लेकिन उसकी हिफाजत हमारी जिम्मेदारी है। मैं आप तमाम मेहमानों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने अपना वक्त निकाला और अपने ख्यालात से इस गुफ्तगू को बामकसद बनाया। सामईन, आज का नौजवान सिर्फ मुस्तकबिल का शहरी नहीं बल्कि आज के हिंदुस्तान का भी अहम हिस्सा है। उसकी सोच, उसकी आवाज़ और उसकी शिरकत ही कल के हिंदुस्तान का रास्ता तय करेगी। इसी उम्मीद के साथ कि हमारे नौजवान आज़ादी की कदर को समझेंगे, जमहूरी कदरों का एहतराम करेंगे और अपनी जिम्मेदारियों को समझते हुए एक बेहतर माशरे की तामीर में अपना किरदार अदा करेंगे। वतन के जान निसार हैं, वतन के काम आएंगे। वतन के जान निसार हैं, वतन के काम आएंगे, हमें ज़मीन को एक रोज़ आसमां बनाएंगे। सामीन, इसी शेर के साथ मैं मुदस्सिर आशीष शमसी आपसे लेता हूँ इजाज़त।
2: बहुत शुक्रिया।
3: जमहूरियत की हिफाजत में नौजवानों का किरदार, इस उनवान के तहत अभी आप ये मुज़ाकरा सुन रहे थे। निज़ामत के फ़राइज़ अंजाम दे रहे थे जनाब मुदस्सिर राशिद। और आइए अब प्रोग्राम के आखिर में चित्रा सिंह की आवाज़ में समाअत करते हैं एक खूबसूरत गज़ल।

सामीन, अभी आप सुन रहे थे प्रोग्राम बज़्मे नौबहार। तरतीब वो पेशकश थी इंतज़ार सैफी की। उर्दू मजलिस का आज का ये प्रोग्राम अब यहीं ख़त्म होता है। अपने मेज़बान सरफराज आलम को इजाज़त दें। खुदा हाफिज़।

0: अभी आप उर्दू मजलिस कार्यक्रम सुन रहे थे। हम आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, डीआरएम 810 किलोहर्ट्स पर। 4 बजने को हैं, कुछ ही पलों में आप समाचार सुनेंगे। नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। नई दिल्ली के भारत मंडपम में 12वां ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों का सम्मेलन आयोजित किया गया। सम्मेलन में सदस्य देशों के मंत्रियों, वरिष्ठ अधिकारियों, नीति निर्माताओं और विशेषज्ञों ने पर्यावरण से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की और सहयोग मजबूत करने के उपायों पर विचार विमर्श किया। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने सम्मेलन की अध्यक्षता की। भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता 2026 का विषय है लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण। बैठक को संबोधित करते हुए श्री यादव ने मानवता को प्राथमिकता देते हुए एक सतत पृथ्वी के निर्माण की दिशा में नीति, प्रौद्योगिकी और जनभागीदारी को समन्वित करने के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि अध्यक्ष के रूप में भारत एक खुले, रचनात्मक और सर्वसम्मति आधारित संवाद को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है और सभी सदस्य देशों के दृष्टिकोण और योगदान को बहुत महत्व देता है। श्री यादव ने ब्रिक्स सदस्य देशों के प्रतिनिधिमंडल प्रमुखों के साथ ब्रिक्स पर्यावरण कार्य समूह द्वारा तैयार किए गए 4 ज्ञान संकलनों का अनावरण किया। इन दस्तावेजों में सदस्य देशों की बेहतरीन कार्यप्रणालियों, ज्ञान और नवाचारों को शामिल किया गया है। ये संकलन ब्रिक्स पर्यावरण कार्य समूह में हुए विचार विमर्श का परिणाम है। भारतीय जनता पार्टी ने आज नई दिल्ली में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी मुख्यालय में स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान राष्ट्रगीत वंदे मातरम का अपमान करने के लिए कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधा। नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए भाजपा प्रवक्ता रविशंकर प्रसाद ने कहा कि जब कांग्रेस पार्टी राष्ट्रगीत का सम्मान नहीं कर सकती तो उसे स्वतंत्रता आंदोलन के संरक्षक होने का दावा नहीं करना चाहिए।
1: 24 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने घोषणा की, जन गण मन राष्ट्रीय गान, वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत। ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद तो कांग्रेस के ही थे ना, तो ये जो नया बदलाव किया गया, कभी ये उम्मीद नहीं थी कि प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट टू द नेशनल ऑनर्स एक्ट जो बना 1971 में, किसने बनाया? कांग्रेस की सरकार, इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर। उसमें क्या कहा गया, तिरंगा हो, जनगणमन हो, इसका कोई इंसल्ट करेगा तो 3 साल तक की सजा हो जाए।
0: भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने उत्तर प्रदेश, पंजाब और गुजरात के लिए नए प्रदेश प्रभारी नियुक्त किए हैं। विनोद तावड़े को उत्तर प्रदेश का प्रभारी और जगदीश

0: ईश्वर भाई पटेल को सह प्रभारी बनाया गया है। डॉक्टर सतीश पूनिया को पंजाब का प्रभारी और तरुण चुग को गुजरात का प्रभारी नियुक्त किया गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय कैडेट कोर एनसीसी के प्रमुख साहसिक अभियान अपराजिता परांगला 2026 को रवाना किया। 30 दिन का ये अभियान 250 किलोमीटर लंबे परांगला दर्रे से होकर गुजरेगा, जो हिमाचल प्रदेश की स्पीति घाटी को लद्दाख के चांगथांग क्षेत्र से जोड़ता है। इसे देश के सबसे चुनौतीपूर्ण ऊंचाई वाले ट्रैकिंग मार्गों में से एक माना जाता है। तीनों सेनाओं की महिला अधिकारियों के नेतृत्व में 28 बालिका कैडेटों की टीम इसमें हिस्सा ले रही है। केरलम में विजयंगम अंतर्राष्ट्रीय समुद्री बंदरगाह पर आज से सीधे निर्यात और आयात परिचालन शुरू हो गया है, जो इस क्षेत्र के समुद्री व्यापार के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। मुख्यमंत्री वीडी सतीशन ने विजयंगम से यूरोप के लिए रवाना होने वाले पहले जहाज को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस जहाज में 2 कंटेनर भेजे गए हैं। एक रिपोर्ट।
1: पिछले साल 2 मई को बंदरगाह को देश को समर्पित किए जाने के बाद अब सीधे आयात निर्यात का काम शुरू हो गया है। इन सेवाओं के शुरू होने से यूरोप जाने वाले शिपमेंट के समय में काफी कमी आएगी। पहले विजयनगरम से यूरोप पहुंचने में शिपमेंट को लगभग 2 महीने लगते थे, लेकिन अब इसके सिर्फ 28 दिनों में पहुंचने की उम्मीद है। बंदरगाह अधिकारियों के अनुसार फिलहाल ये सुविधा सिर्फ फुल कंटेनर लोड को ही संभालेगी। तिरुवनंतपुरम से स्मृति एम पल्लुरुति की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अर्जुन शर्मा।
0: प्रवर्तन निदेशालय कर्नाटक लोक सेवा आयोग में कथित प्रश्न पत्र लीक घोटाले से जुड़े मामले में राज्य के कई ठिकानों पर तलाशी अभियान चला रहा है। आयोग के पूर्व अध्यक्ष शिव शंकरप्पा एस साहूकार पर प्रश्न पत्र लीक, ओएमआर शीट से छेड़छाड़ और सरकारी पशु चिकित्सा अधिकारियों की भर्ती के लिए प्रति उम्मीदवार 70 से 80 लाख रूपये की रिश्वत मांगने के आरोप हैं। भारत ने श्रीलंका को गॉल में पहले क्रिकेट टेस्ट मैच के चौथे दिन जीत के लिए 372 रन का लक्ष्य दिया है। जवाब में श्रीलंका ने ताजा समाचार मिलने तक 2 विकेट पर 14 रन बना लिए हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय अभिषेक मुखोपाध्याय। The 12th BRICS Environment Ministers meeting concluded successfully today at Bharat Mandapam in New Delhi under India's BRICS chairship in 2026. The two-day meeting aimed to foster consensus and strengthen environmental cooperation among the BRICS nations. India is chairing BRICS this year with the theme Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability. Union Minister for Environment, Forest and Climate Change Bhupender Yadav presided over the meeting. Addressing the gathering, Mr. Yadav said that as chair, India remains committed to fostering open, constructive and consensus-based dialogue and greatly values the perspectives and contributions of all member countries.
3: As nations pursue their development aspirations, they are navigating an increasingly complex environmental reality. The impact of climate change, biodiversity loss and pollution, the triple planetary crisis together with growing disaster risk are affecting communities and ecosystems worldwide. These challenges are particularly significant for developing countries where environmental vulnerability is often closely intertwined with broader development priorities including poverty eradication, food security and inclusive growth.
2: The Unique Identification Authority of India, UIDAI, has achieved a major milestone in its nationwide mission mode drive for mandatory biometric updates, completing more than 2 crore biometric updates for school children across the country. The special drive initiated in September last year has now covered over 1,56,000 schools, enabling school children to complete the Aadhaar biometric. Parliamentary Affairs Minister Kiran Rijiju accused opposition parties of spreading misinformation on the Foreign Contribution Regulation Amendment Bill for vote bank politics. In an interview to a private news agency, he said the bill will bring transparency to foreign funding flows. He said sending the bill to a joint parliamentary committee is an excellent decision. The BJP today hit out at the Congress Party for disrespecting the national song Bande Mataram during Independence Day celebrations at the All India Congress Committee headquarters in New Delhi. Addressing a press conference in New Delhi, BJP spokesperson Ravi Shankar Prasad said the Congress Party should stop claiming monopoly to the custodian of the freedom movement

0: and they cannot respect the national song. BJP National President Nitin Naveen has appointed new state in charges for Uttar Pradesh, Punjab and Gujarat. Vinod Tavde has been appointed as in charge of Uttar Pradesh and Jagdish Ishwar Bhai Patel as co-in charge. Dr. Satish Punia has been appointed as in charge of Punjab and Tarun Chugh as in charge of Gujarat. The Enforcement Directorate, ED, conducted searches at several locations in Karnataka linked to alleged Karnataka Public Service Commission, KPSC, paper leak scam. Former Chairman KPSC Shiv Shankarappa S. Shahukar is accused of being involved in examination paper leaks, tampering with OMR sheets and demanding bribes ranging from 70 to 80 lakhs per candidate to recruit government veterinary officers. A deep depression over the Bay of Bengal has brought a major change in weather conditions across Jharkhand. Under its influence, very heavy rainfall has begun in the north central and northwestern parts of the state. Continuous rainfall has led to waterlogging in low-lying areas, affecting normal life. The Indian Meteorological Department, IMD, has predicted very heavy rainfall conditions over Jharkhand, Bihar, Chhattisgarh, East Madhya Pradesh, Himachal Pradesh, Odisha and Uttar Pradesh today. The government has announced the National Sports Awards 2025. India's premier women's badminton doubles pair of Trisha Jolly and Pulela Gayatri Gopichand, along with 15 other sportspersons from various disciplines, will be presented the Arjun Award for the outstanding performances in sports and games. In men's cricket, host Sri Lanka were 18 for 2 in the second innings against India on the fourth day of the first test in Galle when reports last came in. Earlier, India were bowled out for 193 in the second innings, setting Sri Lanka a target of 372 runs. Rishabh Pant top scored with 66 runs off 69 deliveries. He also became the first Indian player and only the fourth in the world to hit 100 sixes in Test cricket. Benchmark domestic equity indices ended in the negative territory today. The Sensex declined 493 points to close at 77,235. And that is the end of this news bulletin.
1: हम आकाशवाणी दिल्ली केंद्र प्रस्तुत चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज पर प्रस्तुत है गुमशुदा व्यक्तियों से संबंधित सूचनाएं। ये सूचना हमें मिली है एएसटीयू नॉर्थ ईस्ट सीलमपुर थाने से। खोए हुए व्यक्ति का नाम नितिन, पुत्र लवकुश, गली नंबर 4, सादतपुर एक्सटेंशन, दिल्ली से नितिन लापता है। नितिन की आयु 15 वर्ष, शरीर पतला तथा कद 5 फुट 3 इंच है। उनके विषय में यदि कोई जानकारी या सूचना हो तो कृपया थाना सीलमपुर संपर्क करें। खोए हुए व्यक्ति का नाम रविंद्र पाल, पुत्र राधेश्याम, उम्र 29 वर्ष, शरीर सामान्य तथा कद 168 सेंटीमीटर है। इनको अंतिम बार मकान नंबर 303/15 डी ब्लॉक महालक्ष्मी इनक्लेव दयालपुर दिल्ली में देखा गया है। रविंद्र पाल से संबंधित सूचना ASTUNE सीलमपुर को दी जा सकती है। मोबाइल नंबर है 9868787181। मकान नंबर 17/206 झुग्गी ताज कॉलोनी न्यू सीलमपुर दिल्ली से आदिल, पुत्र यूसुफ लापता है। आदिल की आयु 1 वर्ष, शरीर दरमियाना और कद 1 से 1.5 फीट है। सूचना देने वाले को ₹20,000 इनाम की राशि प्रदान की जाएगी। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें ASTU नॉर्थ ईस्ट सीलमपुर दिल्ली। सुरेंद्र अग्रवाल ASTU नॉर्थ ईस्ट सीलमपुर से सूचित करते हैं कि उनका पुत्र ध्रुव अग्रवाल, जिसकी आयु 11 वर्ष, शरीर पतला और कद 4 फीट है, वो लापता है। सूचना देने वाले को ₹20,000 नगद इनाम दिया जाएगा। अधिक जानकारी के लिए 9868787181 पर संपर्क करें। मोबिना पत्नी श्री राजा, इनको अंतिम बार 30 जुलाई 2026 को घर पर देखा गया। मोबिना की आयु 75 वर्ष, मध्यम शरीर और कद 5 फीट है। उनका पता है मकान नंबर 2622,

ब्लॉक एन, गली नंबर 7, निकट झारखंडी मस्जिद, बिहारी कॉलोनी, शाहदरा। उनके विषय में कोई भी सूचना थाना फर्श बाजार शाहदरा दिल्ली को दी जा सकती है। ये सूचना है सरिता पत्नी जीवन, जो कि 22 जुलाई 2026 से लापता हैं। सरिता की उम्र 37 वर्ष, शरीर मध्यम और कद 5 फीट है। उनका पता है C29 गली 17 अर्जुन नगर लाहौरी कॉलोनी शाहदरा। वो काम तलाश करने को कहकर घर से निकली थीं। अधिक जानकारी के लिए फर्श बाजार थाना शाहदरा से संपर्क करें। जितेंद्र कुमार सूचित करते हैं कि उनकी पुत्री दीपांजलि, जिसकी आयु 22 वर्ष तथा वो महिला हैं तथा शरीर पतला है, कद 5 फुट 2 इंच, वो 3 अगस्त 2026 से सुबह 9 बजे से लापता हैं। उनका पता है C9 ईस्ट अर्जुन नगर शाहदरा दिल्ली। इनसे संबंधित सूचना फर्श बाजार थाना शाहदरा को दी जा सकती है। खोए हुए व्यक्ति का नाम दीपक है, उम्र 22 वर्ष, शरीर सामान्य, कद 5 फुट 5 इंच तथा दीपक दीपांकी रूप से कमजोर है। उनको अंतिम बार घर से काम करने जाते समय देखा गया। प्रार्थी का नाम गुड्डी देवी, पत्नी त्रिलोकचंद, गली नंबर 4, नया गांव, फेरा 2, नोएडा। मोबाइल नंबर है 8851594018। अधिक जानकारी के लिए थाना फेज 2 नोएडा से संपर्क करें। तो ये थी खोए हुए व्यक्तियों से संबंधित सूचनाएं। हम आकाशवाणी दिल्ली केंद्र प्रस्तुत चैनल से बोल रहे हैं, मीडियम वेव 366.3 मीटर पर। प्रस्तुत है कार्यक्रम युववाणी।

0: हर नई सुबह एक नई कहानी लेकर आती है, कुछ सपने, कुछ उम्मीदें और कुछ मुस्कुराहट बांट जाती है। और जब शब्द दिल से निकल कर आवाज बन जाएं, तब शुरू होता है एक ऐसा सफर जो सिर्फ सुना नहीं, महसूस किया जाता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शशांक और आप सुन रहे हैं युववाणी, आज के युवाओं की आवाज आकाशवाणी पर।
1: और मैं हूँ शशांक के साथ नीतू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आपका दिन एनर्जेटिक बीत रहा होगा। चाहे आप कॉलेज से घर लौट रहे हो, ऑफिस की चाय ब्रेक चल रही हो, या हॉस्टल की बालकनी में दोस्तों के साथ मौसम का मजा ले रहे हो, हम अगले 45 मिनट तक आपके साथ रहेंगे।
0: बिल्कुल, और आज का सफर होने वाला है आइडियाज से भरा, थोड़ी हंसी, थोड़ी इंस्पिरेशन और बहुत सारी पॉजिटिव एनर्जी के साथ।
1: तो चलिए एक नजर डालते हैं आज के प्रोग्राम पर। सबसे पहले होगी आज की बात, जहां बात करेंगे एक ऐसी चीज की जो हर यूथ की लाइफ में है, लेकिन शायद हम उसे समझने की कोशिश कम करते हैं।
0: उसके बाद होगा मन से माइक्रोफोन तक, और आज की कहानी होगी एक ऐसे इंसान की जिसने रिजेक्शन को कभी अपनी पहचान नहीं बनने दिया, बल्कि अपनी ताकत बना दिया।
1: फिर बारी होगी हमारे वीकली सेगमेंट की, और क्योंकि आज ट्यूसडे है तो थीम है आर्ट एंड लिटरेचर। देखेंगे कैसे कहानियाँ, किताबें और कला इंसान की सोच बदल देती हैं।
0: उसके बाद आएगा हम सबका फेवरेट क्विक बज, जहां होंगी हंसी मजाक की बातें, थोड़े मीम्स, थोड़ी मस्ती और थोड़ा फ्रेंडली नोक झोंक।
1: और प्रोग्राम के आखिर में टुडे इन हिस्ट्री, जहां जानेंगे 18 अगस्त की कुछ खास

0: वेलकम बैक दोस्तों, आप सुन रहे हैं युवाणी और वक्त है आज की बात का। शशांक, मैं तुमसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ।
1: पूछिए मैडम, लेकिन आज इतनी सीरियस टोन क्यों है?
0: सीरियस नहीं, बस क्यूरियोसिटी है। कभी नोटिस किया है, हम सबके फोन्स की बैटरी 100% चार्ज होती है, लेकिन हम खुद दिन के एंड तक 5% पर चल रहे होते हैं।
1: अरे वाह, ये ऑब्जर्वेशन तो बिल्कुल रिलेटेबल है। सुबह उठते ही फोन, ब्रेकफास्ट के साथ फोन, कॉलेज में फोन, लंच के साथ फोन, और रात को सोने से पहले बस 5 मिनट इंस्टाग्राम, और पता चलता है 1 घंटा बीत गया।
0: बिल्कुल, और सबसे फनी बात पता है क्या है, हम फोन अनलॉक करते हैं और 10 सेकंड के बाद खुद भूल जाते हैं कि अनलॉक किस लिए किया था।
1: सच कह रही हो, कभी कभी तो मैं फ्रिज भी इसी कॉन्फिडेंस से खोलता हूँ और फिर खुद से पूछता हूँ कि भाई मैं यहाँ आया क्यों था।
0: लेकिन मजाक अपनी जगह, इसके पीछे एक सीरियस बात भी है। हम इंफॉर्मेशन से इतने घिरे हुए हैं कि साइलेंस से

0: दोस्ती करना ही भूल गए हैं?
1: बिल्कुल, हर फ्री सेकंड में हम कुछ ना कुछ कंज्यूम कर रहे होते हैं, रील्स, शॉर्ट्स, पोस्ट, नोटिफिकेशंस, और धीरे धीरे हम खुद की आवाज़ सुनना ही छोड़ देते हैं।
0: मुझे लगता है कभी कभी फोन साइड में रखकर सिर्फ 10 मिनट खुद के साथ बैठना भी जरूरी होता है। ना कोई नोटिफिकेशन, ना कंपैरिजन, ना लाइक्स, सिर्फ आप और आपके थॉट्स।
1: और बिलीव कीजिए, बेस्ट आइडियाज, सबसे ज्यादा क्रिएटिविटी और लाइफ के आंसर्स बहुत सारी बार, कई बार इसी साइलेंस में मिलती हैं। न्यूटन को ग्रेविटी व्हाट्सएप फॉरवर्ड से नहीं मिली थी।
0: और ना ही रविंद्रनाथ टैगोर ने गीतांजलि इंस्टाग्राम कैप्शन देकर लिखी थी।
1: तो दोस्तों, टेक्नोलॉजी बुरी नहीं है, बस जरूरत है कि उसका सही इस्तेमाल हम करें, ना कि वो हमारा इस्तेमाल करें।
0: तो दोस्तों, आज घर जाकर एक एक्सपेरिमेंट जरूर करिएगा। सोने से आधा घंटा पहले फोन साइड में रखिए, एक किताब पढ़िए, डायरी लिखिए या मम्मी पापा के साथ बात करिए। देखिए, स्लीप भी बेटर होगी और मूड भी।
1: और अगर आप हॉस्टल में हैं तो रूम पार्टनर से ही बात कर लीजिए, हो सकता है वो भी आपसे बात करना चाहता हो, बस दोनों फोन में ना बिजी हों।
0: इसी पॉजिटिव थॉट के साथ चलिए सुनते हैं एक खूबसूरत गीत, डियर जिंदगी फिल्म का लव यू जिंदगी।

0: वेलकम बैक दोस्तों, आप सुन रहे हैं युव वाणी और अब वक्त हो गया है हमारे दिल के सबसे करीबी सेगमेंट मन से माइक्रोफोन तक का। नीतू, आज किस फेमस पर्सनालिटी की कहानी लेकर आई हो?
1: शशांक, आज हम बात करेंगे एक ऐसे इंसान की जिनके बारे में जितना कहा जाए उतना कम है। एक साइंटिस्ट, एक टीचर, एक विजनरी और हर युवा के इंस्पिरेशन डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम।
0: सच कहूं नीतू, तो डॉक्टर कलाम का नाम सुनते ही सबसे पहले उनकी मुस्कान याद आती है। इतनी सिंप्लिसिटी, इतनी पॉजिटिविटी और इतना बड़ा विजन। लेकिन दोस्तों, हर सक्सेस के पीछे एक लंबी स्ट्रगल जरूर होती है।
1: बिल्कुल। तमिलनाडु के छोटे से शहर रामेश्वरम में एक साधारण परिवार में जन्मे अब्दुल कलाम जी के घर की आर्थिक स्थिति बहुत मजबूत नहीं थी। स्कूल जाने के साथ साथ वो सुबह सुबह न्यूज़पेपर भी बांटते थे। सोचिए, जिस उम्र में बच्चे सिर्फ पढ़ाई और खेल में लगे होते हैं, वह उस उम्र में जिम्मेदारी निभा रहे थे।
0: लेकिन एक बात उनके अंदर बचपन से ही थी, सीखने की भूख। उन्होंने कभी रिसोर्सेज की कमी को अपनी प्रोग्रेस के बीच नहीं आने दिया। किताबें उनकी सबसे बड़ी दोस्त बनी और सपने उनके सबसे बड़ी ताकत।
1: इंजीनियरिंग कंप्लीट करने के बाद उन्होंने एरोस्पेस के फील्ड में काम शुरू किया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि उनका सपना था इंडियन एयरफोर्स में पायलट बनना, और वो फाइनल सिलेक्शन तक पहुंच भी गए थे।
0: लेकिन वो सेलेक्ट नहीं हो पाए, बस एक रैंक से पीछे रह गए। सोचिए कितना बड़ा झटका होगा, कई लोग तो शायद वहीं हार मान लेते।
1: पर डॉक्टर कलाम ने वही किया जो विनर्स करते हैं। उन्होंने सपना नहीं बदला, सिर्फ उस तक पहुंचने का रास्ता बदल दिया। उन्होंने कहा, फेलियर कभी मुझे रोक नहीं सकता, अगर मेरा डिटर्मिनेशन सक्सेस पाने के लिए काफी मजबूत है।
0: और फिर शुरू हुआ एक ऐसा सफर जिसने भारत का इतिहास बदल दिया। इसरो, SLV-3, इंटीग्रेटेड मिसाइल प्रोग्राम, अग्नि, पृथ्वी, पोखरण न्यूक्लियर टेस्ट, हर जगह उनका योगदान रहा। इसीलिए उनको आज भी कहा जाता है द मिसाइल मैन ऑफ इंडिया।
1: इसी कड़ी में पत्रकारिता के फील्ड में रुचि रखने वाले साथियों के लिए भी हम आज कुछ विशेष लेकर आए हैं।
0: अच्छा, वो क्या है बताना जरा।
1: बस बस, थोड़ा सा सब्र रखो और हमारे सभी यंग लिसनर्स के साथ आप भी सुनिए वरिष्ठ पत्रकार देवेश शुक्ला जी के साथ ये विशेष बातचीत।
2: आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार देवेश शुक्ल जी। देवेश जी, आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है।
3: बहुत बहुत धन्यवाद संतोष जी।
2: देवेश जी, इस समय हमें लाखों करोड़ों युवा श्रोता सुन रहे हैं, उनके लिए हम आपसे जानना चाहेंगे कि पहले के दौर में और आज के दौर में जो जनसंचार का स्वरूप बदला है, उसको आप कैसे देखते हैं?
3: पहले तो आपने जो विषय रखा है, युवा पीढ़ी और जनसंचार का बदलता स्वरूप, ठीक है, बहुत सारे बदलाव आए हैं। जनसंचार का जो बदलता स्वरूप आज आप वर्तमान में देख रहे हैं, जिसमें सोशल मीडिया है, वो अभी युवा पीढ़ी के जन्म से ही शुरू हुआ है, क्योंकि किसी भी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म को आए हुए 25 साल से ज्यादा नहीं हुए हैं। तो 25 वर्ष का जो युवा है, उसके जन्म के समय से ही ये बदलाव शुरू हुए हैं, तो आप इसको ऐसे देख सकते हैं।
2: जी बिल्कुल, जैसे आपने सोशल मीडिया की बात की, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स की बात की, तो मैं आपसे यही जानना चाहूंगा कि जो सोशल मीडिया है और जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है, इसने युवा पीढ़ी के सोचने और समझने के जो तरीका है, उसको कैसे प्रभावित किया है?
3: अब आप देखिए, जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है, मैंने अभी आपसे जैसे बात में कहा कि जो सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म का आए हुए 20 से 25 वर्ष हुए हैं, और अगर इनको देखा जाए तो सोचने का तरीका जो है, पहले वन वे ट्रैफिक हुआ करता था, अखबार या मीडिया या न्यूज चैनल जो भी हैं, अब टीवी में कोई बात सुनाते थे तो एक तरफा ट्रैफिक रहता था। मतलब अपनी बात आपने कही, युवा तक पहुंची, वो बड़ों तक पहुंची, हर एक समाज के हर वर्ग तक वो बात पहुंची, लेकिन उसकी वापसी नहीं होती थी। आज की डेट में जो है, वो आप देखिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की तरफ से, चाहे आप एक्स जो पहले ट्विटर था, आज फेसबुक है, उसमें जो युवा है वो अपनी सोच को प्रदर्शित करता है।
2: जी बिल्कुल, जैसे आपने कहा कि पहले जो था सिस्टम वन वे ट्रैफिक होता था, अभी फीडबैक का भी सिस्टम है, तो जैसे आप कोई पोस्ट करते हैं तो फिर उस पर आपको प्रतिक्रियाएं भी मिलती हैं। मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि जैसे जो पारंपरिक माध्यम रहे हैं, जैसे कि हमारा रेडियो है, अखबार है, टेलीविजन है, उसी में एक शब्द आता है ट्रोलिंग का भी।
3: हाँ, ट्रोलिंग शब्द आपने बहुत अच्छा यूज किया, तो इसका देखिए कुछ लोगों को इसमें बुरा लग सकता है।

0: है कि आप इसमें जो वर्तमान परिप्रेक्ष्य में आप देख रहे हैं, युवा पीढ़ी को लेकर देख रहे हैं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को लेकर के बात कर रहे हैं, उसमें आपकी मर्जी नहीं चल सकती है। हो सकता है कि वो आपको अच्छा भी लगे, हो सकता है बुरा भी लगे। किसी को मिठाई पसंद है, किसी को नहीं पसंद है, किसी को खट्टा पसंद है, किसी को गोलगप्पे पसंद है। तो ऐसे नहीं कह सकते जो आप कह रहे हैं फेसबुक पे, ट्विटर पे या किसी और प्लेटफॉर्म पे, वो आपकी मर्जी के अनुसार ही वह उसका उत्तर दे, ऐसा नहीं हो सकता।
1: जी बिल्कुल, और वैसे भी ये लोकतंत्र है तो हमें इसके लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए कि लोग आपसे, जरूरी नहीं कि हर बार सहमति हो, आपको असहमति का भी स्वागत करना चाहिए। शुक्ल जी, हम इससे आगे बढ़ते हैं और हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आज के दौर में जब फेक न्यूज, जो भ्रामक सूचनाएं हैं, इनका अंबार है, इसके बीच में युवा सही खबर कैसे तलाशे?
0: हाँ, ये बात आपने जो है बहुत अच्छी उठाई है। इन सब के लिए युवा को जागरूक होना पड़ेगा, उसको अध्ययन करना पड़ेगा, उसको जनसंचार के माध्यम से अपने आप को पब्लिक में जाना पड़ेगा, जो आज की डेट में हम देख रहे हैं लुप्त प्राय हो रही है। लोगों का आपस में बातचीत करना लगभग सा बंद हो गया है। जब आप संपर्क में रहेंगे, एक दूसरे से बात करेंगे, उसकी बात को आप समझेंगे, अपनी बात को आप रखेंगे, तो आपको असलियत समझ में आएगी, क्या गलत है क्या सही है। बहुत सारा अध्ययन करना पड़ेगा, साथ साथ में एजुकेशन के मामले में आपके पास डिग्री है वो अलग विषय है, लेकिन सोशल प्लेटफॉर्म पे आप क्या बात रख रहे हैं, पत्रकारिता के माध्यम से आप क्या बात रख रहे हैं, तो इस सब के लिए सब्जेक्ट के बारे में नॉलेज भी होना चाहिए जब आप बात को रख रहे हैं। और किसी ने कह दिया, कुछ भी कह दिया, तो ऐसे नहीं चलता है। आपने कान से सुना, आपने अध्ययन किया नहीं, क्या विषय था, किसको क्या कहा गया, हो सकता है आपको ना कहा गया हो सकता है किसी और परिप्रेक्ष्य में वो शब्द का प्रयोग किया गया हो, क्योंकि आपका तो ध्यान केवल मोबाइल, लैपटॉप और कंप्यूटर पे था, तो आपने इसका अध्ययन किया ही नहीं कि वो विषय आपके लिए रखा गया था, किसी और के लिए रखा गया। तो ये बड़ा अध्ययन की बात है, और इसके लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा। युवाओं को भी समझना पड़ेगा कि जब तक वो उस विषय का अध्ययन प्रॉपर नहीं करेंगे, तब तक उनकी बात को लोग मजाक में टालेंगे। युवा को सीरियस होना पड़ेगा, अपनी बात को पूर्ण तरीके से सही साबित करने के लिए उस विषय का प्योर ज्ञान होना चाहिए।
1: जी बिल्कुल, जैसे आप कह रहे हैं, तो अगर आपको विषय का ज्ञान होगा तभी आप सही और गलत खबर में अंतर कर पाएंगे, और उस खबरों के अंबार में से सही और मुफीद खबर या जो आपके लिए उपयोगी खबर है उसे आप निकाल पाएंगे।
0: जैसे एग्जांपल देता हूँ, आज की डेट में बहुत सारे यूट्यूब पे, सोशल मीडिया पे डॉक्टर बनकर नहीं, लेकिन वो डॉक्टर है नहीं, उनका मेडिकल फील्ड से कोई नाता नहीं है, लेकिन अगर आप ये समझेंगे, आप उसके बारे में जानेंगे नहीं, तो जिसने जैसा बोल दिया वैसा अपना लिया, हो सकता है वो आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक रहे।
1: जी बिल्कुल, जैसे कि इतने सारे जो सूचनाओं के जो माध्यम हैं, उन सूचनाओं के माध्यम में से हमें ये चुनना पड़ेगा, हमें अपनी मानसिकता जो हमारी है वो इस तरीके से रखनी पड़ेगी, दिमाग का इस्तेमाल करना पड़ेगा, तभी हम सही खबर को उसमें से चुन
0: नहीं,
1: सकते हैं।
0: मैं आपने कहा ना, युवा पीढ़ी मानसिक रूप से सजग है, फिजिकल रूप से भी पूरी तरीके स्वस्थ है, ऐसा नहीं है कि वो शारीरिक रूप से सक्षम नहीं है। गलत और सही क्या है, इसका भेद करने के लिए अध्ययन की आवश्यकता पड़ेगी, और वो उस विषय का अध्ययन जब तक उसके पास नहीं होगा, तब तक वो हंसी का पात्र
1: जी
0: बनेगा,
1: बिल्कुल,
0: और इससे ज्यादा कुछ नहीं हो सकता।
1: जी बिल्कुल। शुक्ल जी, जैसे आपने कहा कि जिस भी विषय के बारे में आपको जानकारी प्राप्त करनी है या आप उसमें से कुछ सही गलत जान सकते हैं, वो तभी संभव है जब आपने उस विषय का अध्ययन किया हुआ हो। शुक्ल जी, जैसे सोशल मीडिया ने युवाओं की अभिव्यक्ति को एक नया आयाम तो दिया है, उनकी स्वतंत्रता इस मामले में काफी पहले है, पीछे के दशक को अगर देखें वो अपने आप को और अधिक माध्यमों से अभिव्यक्त कर पा रहे हैं, लेकिन इसमें से कुछ चुनौतियां भी आई हैं, आप इसे कैसे देखते हैं?
0: देखिए, कोई भी वस्तु जब नई होती है तो उसके दोनों पहलू होते हैं, उसके नेगेटिव पहलू भी होते हैं, उसके पॉजिटिव पहलू भी होते हैं। अब डिपेंड करता है कि आप पर, युवा पर, कि उस चीज को उसकी पॉजिटिविटी पे ध्यान दे या उसकी नेगेटिविटी पे ध्यान दे। अगर किसी ने कोई अपशब्द का इस्तेमाल किया है, आप सड़क पे जा रहे हैं, तो आप उसको कितना ध्यान देते हैं, कितना तवज्जो देते हैं, ये निर्भर आप पे करता है। यदि कोई व्यक्ति सड़क पर जा रहा है, हो सकता है उसकी मानसिक स्थिति सही ना हो सकता है वो किसी तनाव में हो और आपको कुछ बोल रहा है या अपने आप मन में ही बोल रहा है, अगर आप उसको अपने ऊपर ले रहे हैं कि हाँ उसने मुझको बोला, तो ये स्थिति ऐसी ठीक नहीं है। अपने आप की सोच भी जो है वो बदलनी पड़ेगी समय के साथ साथ, चूंकि इतने बदलाव आए हैं। पहले अखबार था, अखबार भी किस प्रकार से निकलता था, हाथ से लिखा हुआ अखबार आता था, आज से 200 वर्ष पहले अखबार की शुरुआत हुई थी। आप चाहते हैं बदलाव एकदम से हो जाए, नहीं हो सकते, क्योंकि युवा पीढ़ी जो आज उसका इस्तेमाल कर रही है सोशल मीडिया का, वो अभी बाल्यावस्था में ही है। धीरे धीरे अध्ययन और समय के साथ साथ में बदलाव होते जाएंगे और वो अपने आप अपने रास्ते पे ठीक तरीके से
1: आ जाएंगे। देवेश जी, जैसे आपने कहा हर चीज में समय लगता है, तो समय के साथ जो समस्याएं हमें दिख रही हैं, शायद इनमें भी कुछ ना कुछ सुधार आएगा और नई समस्याएं भी आएंगी, तो उस सब का जो आधार है वो अध्ययन है। अध्ययन अगर हम करते रहेंगे विषयों का, तो हम उसमें से निकल जाएंगे। मैं एक आपसे अंतिम प्रश्न ये जानना चाहूंगा, जो युवा पत्रकार आपको अभी सुन रहे हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे?
0: युवा पत्रकार जितने भी हैं,

0: उनको मेरा यही संदेश है, विषय को तभी रखें जब आपके पास उसका पूरा अध्ययन हो, और जितना अधिक अध्ययन करेंगे आपकी समाज में विषय के क्षेत्र में उतनी अच्छी आपकी इमेज बनेगी और भविष्य भी आपका उतना अच्छा उज्ज्वल होगा।
1: देवेश जी, आपका आकाशवाणी आने के लिए और हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद।
2: तो शशांक, जैसे अभी हमने देवेश शुक्ला जी की बातचीत सुनी, तो इससे हमें ये बात तो समझ में आ गई है कि आज के समय में पत्रकारिता का बहुत बड़ा महत्व है। जीवन में पढ़ाई का महत्व और पढ़ाई में मेहनत का कोई विकल्प नहीं होता।
1: बिल्कुल सही कहा। और चलिए अब इसी पॉजिटिव एनर्जी के साथ सुनते हैं हमारा अगला गीत।

0: शशांक, मुझे लगता है कि आज के डिजिटल ज़माने में लोगों को लगता है कि लिटरेचर सिर्फ स्कूल की हिंदी और इंग्लिश की बुक्स तक ही सीमित है।
1: बिल्कुल, और जैसे ही लिटरेचर शब्द सुनते हैं, कई लोगों के दिमाग में तुरंत एग्जाम्स और नोट्स आ जाते हैं। लेकिन सच ये है कि लिटरेचर सिर्फ किताबें नहीं होती, लिटरेचर हर उस कहानी में होता है जो किसी के दिल को छू जाए।
0: बिल्कुल, एक गाना, एक नज्म, एक डायरी, एक थिएटर परफॉर्मेंस या एक फिल्म की कहानी, ये सब लिटरेचर और आर्ट के ही रूप है। और शायद इसी वजह से हर इंसान किसी ना किसी तरह आर्ट फॉर्म से जुड़ा होता है।
1: और देखो ना, जब हम खुश होते हैं तो गाने सुनते हैं, जब उदास होते हैं तो गाने सुनते हैं। कभी-कभी एक कविता या एक डायलॉग हमारी पूरी सोच बदल देता है।
0: सच कहा, रविंद्रनाथ टैगोर, मुंशी प्रेमचंद, हरिवंश राय बच्चन, इन्होंने सिर्फ कहानियां नहीं लिखी, इन्होंने समाज को सोचने का एक नया नजरिया दिया है।
1: और अगर मॉडर्न जमाने की बात करें तो गुलजार साहब के लिरिक्स हों, जावेद अख्तर जी के शायरियां हो या प्रसून जोशी के गीत, हर जनरेशन को कुछ ना कुछ नया सोचने पर मजबूर जरूर कर देती हैं।
0: वैसे शशांक, एक इंटरेस्टिंग सवाल, अगर तुम्हें अपनी लाइफ पर एक बुक लिखनी हो तो उसका टाइटल क्या होगा?
1: शायद डेडलाइन से पहले सब हो जाएगा। देखने में मोटिवेशनल लगेगी पर अंदर पूरी कॉमेडी होगी।
0: और मेरी बुक का नाम होगा कल से पक्का, क्योंकि जिम भी कल से, डाइट भी कल से और जल्दी सोना भी कल से।
1: दोस्तों, जिंदगी भी एक किताब की तरह ही होती है। हर दिन एक नया पेज, हर महीना एक नया चैप्टर और हर गलती एक नई लर्निंग। इसीलिए किसी एक पेज को देखकर आप पूरी कहानी का फैसला मत कीजिए।
0: और अगर आप रीडिंग की हैबिट शुरू करना चाहते हैं तो रोज सिर्फ 10 मिनट से शुरू कीजिए। बिलीव कीजिए, बुक्स सिर्फ वोकैबुलरी नहीं बढ़ाती हैं, कॉन्फिडेंस भी बढ़ाती हैं, इमेजिनेशन भी और सबसे जरूरी एम्पथी भी।
1: चलिए, इसी खूबसूरत सोच के साथ अब वक्त हो गया है हमारे एक और म्यूजिकल ब्रेक का।

0: दोस्तों, हम जुड़ गए हैं वापस आपके साथ और अब बारी आ चुकी है हमारे सबसे इंटरेस्टिंग सेगमेंट क्विक इंटरैक्शन की। नीतू, रेडी हो?
1: बिल्कुल, लेकिन एक कंडीशन है। आज चीटिंग अलाउड नहीं है।
0: अरे, ये क्या कोई क्विज है क्या?
1: नहीं, बस एक रैपिड फायर है। मैं सिचुएशन बोलूंगी, तुम पहला आंसर दोगे जो दिमाग में आए।
0: चैलेंज एक्सेप्टेड।
1: फोन की बैटरी 1%।
0: बस इंसान को पूरी जिंदगी याद आ जाती है।
1: असाइनमेंट सबमिट करना है और डेडलाइन है 11:59 PM।
0: हम इंडियंस तो 11:58 PM पर ही जीनियस बनते हैं।
1: और हॉस्टल की मैगी,
0: नेशनल इमोशन।
1: मम्मी का मैसेज, घर पहुंचकर फोन करना।
0: और अगर फोन ना करो तो 14 मिस कॉल्स।
1: बिल्कुल। और फ्रेंड बोलता है बस 5 मिनट में आ रहा हूं।
0: इसका ट्रांसलेशन 30 मिनट्स तो मिनिमम लगेगा।
1: वैसे शशांक, एक और सवाल। अगर सोशल मीडिया एक इंसान होता तो तुम उससे क्या कहते?
0: मैं कहता, भाई थोड़ा ब्रेक ले ले, तू भी थोड़ा थक गया होगा।
1: और मैं कहती नोटिफिकेशंस कम भेज, दिल की नोटिफिकेशंस ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं।
0: वाह, ये लाइन तो नोट करने वाली थी।
1: और दोस्तों, इसी हंसी मजाक के साथ याद रखिए, लाइफ में मीम्स जरूर देखिए पर मेमोरीज बनाना मत भूलिए।
0: और इसी बात पर अब एक एनर्जेटिक गाना तो जरूर बनता है।

0: अभी आपने सुना जिंदगी ना मिलेगी दोबारा फिल्म का गाना सेनोरिटा। और दोस्तों, अब आ गया है हमारे प्रोग्राम का आखिरी सेगमेंट, टुडे इन हिस्ट्री। शशांक, आज 18 अगस्त की कुछ खास बातें बताइए।
1: जरूर दोस्तों, 18 अगस्त इतिहास के पन्नों में कई महत्वपूर्ण घटनाओं के लिए जाना जाता है। आज ही के दिन 1945 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस के ताइवान के पास विमान दुर्घटना में निधन होने की खबर सामने आई थी। हालांकि इस घटना को लेकर कई वर्षों तक अलग-अलग चर्चाएं और जांच होती रहीं।
0: और आज ही के दिन 1951 में भारत की पहली इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यानी IIT खड़गपुर का आधिकारिक उद्घाटन हुआ था। आज IIT खड़गपुर सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि दुनिया के प्रमुख इंजीनियरिंग संस्थानों में से एक माना जाता है।
1: हिस्ट्री हमें सिर्फ तारीखें याद नहीं करवाती, हिस्ट्री हमें सिखाती है कि हर जनरेशन अपनी मेहनत से नए माइलस्टोन्स क्रिएट करती है, और कल की हिस्ट्री आज के यूथ लिखेंगे।

0: बिल्कुल हो सकता है आज हमें सुनने वाले किसी श्रोता का नाम भी कल इतिहास की किताबों में हो, बस जरूरत है सपने देखने की और उन्हें पूरा करने की।
1: तो दोस्तों, इसी के साथ हमारा आज का सफर यहीं समाप्त होता है। उम्मीद है कि आज की बातों ने आपको मुस्कुराने का मौका दिया होगा, सोचने का एक नया नजरिया दिया होगा और कुछ नया सीखने का प्रेरणा भी दी होगी।
0: अगर आज के प्रोग्राम से एक भी बात आपके दिल तक पहुंची हो तो हमारी मेहनत सफल हो गई। अपना ख्याल रखिए, अपने दोस्तों के साथ वक्त बिताइए और हर दिन कुछ नया सीखते रहिए।
1: मैं हूं शशांक।
0: और मैं हूं नीतू।
1: आपसे इजाजत चाहते हैं, नमस्कार, फिर मिलेंगे एक नए विषय, नई मुस्कान और एक नए जज्बे के साथ। तब तक के लिए सुनते रहिए आकाशवाणी और जुड़े रहिए युववाणी के साथ।
0: साथियों, कार्यक्रम के आखिर में हम आपसे निवेदन करते हैं कि अगर आपको इस कार्यक्रम से जुड़ी कोई प्रतिक्रिया या सुझाव भेजना चाहते हैं तो हमारा ईमेल आईडी है yuvvanifeedback@gmail.com yuvvanifeedback@gmail.com।

0: यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज पर। 5 बजने को है, अब आप समाचार सुनेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं शक्ति सिंह। नई दिल्ली के भारत मंडपम में ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों का 12वां सम्मेलन आयोजित किया गया। सम्मेलन में सदस्य देशों के मंत्रियों, वरिष्ठ अधिकारियों, नीति निर्माताओं और विशेषज्ञों ने पर्यावरण सहयोग को मजबूत करने के उपायों पर विचार विमर्श किया। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने सम्मेलन की अध्यक्षता की। भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता 2026 का विषय है लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण। बैठक में श्री यादव ने मानवता को प्राथमिकता देते हुए एक सतत पृथ्वी के निर्माण की दिशा में नीति, प्रौद्योगिकी और जन भागीदारी को समन्वित करने के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि 2005 और 2022 के बीच भारत में प्रदूषण उत्सर्जन में 37% से अधिक की कमी आई है। श्री यादव ने कहा कि अध्यक्ष के रूप में भारत एक खुले, रचनात्मक और सर्वसम्मति आधारित संवाद को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है और सभी सदस्य देशों के दृष्टिकोण और योगदान को बहुत महत्व देता है। श्री यादव ने ब्रिक्स सदस्य देशों के प्रतिनिधिमंडल के प्रमुखों के साथ ब्रिक्स पर्यावरण कार्य समूह द्वारा तैयार किए गए 4 ज्ञान संकल्पों का अनावरण किया। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने उत्तर प्रदेश, पंजाब और गुजरात के लिए 4 नए प्रदेश प्रभारी नियुक्त किए हैं। विनोद तावड़े को उत्तर प्रदेश का प्रभारी और जगदीश ईश्वर भाई पटेल को सह प्रभारी बनाया गया है। डॉक्टर सतीश पूनिया को पंजाब का प्रभारी और तरुण चुग को गुजरात का प्रभारी नियुक्त किया गया है। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने विपक्षी दलों पर विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक को लेकर वोट बैंक की राजनीति के लिए गलत सूचना फैलाने का आरोप लगाया है। एक निजी समाचार एजेंसी को दिए साक्षात्कार में उन्होंने कहा कि विपक्ष ने बहुत झूठ फैलाया है और इस तरह की झूठी बातें फैलाकर राजनीति करना गलत है।
2: पूरा झूठ फैलाया देश भर में कि FCRA जो है क्रिश्चियन मिशनरी को टारगेट किया जा रहा है, जबकि क्रिश्चियन मिशनरी का टोटल इंडिया का जो फॉरेन कंट्रीब्यूशन आते हैं वो 16% है, बाकी तो सब हिंदू का है। तो प्रोटेस्ट ज्यादा करना है तो हिंदू लोग करना चाहिए, क्योंकि सबसे ज्यादा तो हिंदू का है। देखिए, इस तरह का झूठे बातें फैला करके राजनीति करना बिल्कुल ठीक नहीं है।
1: श्री रिजिजू ने कहा कि ये विधेयक विदेशी धन प्रवाह में पारदर्शिता लाएगा। उन्होंने कहा कि विधेयक को संयुक्त संसदीय समिति के पास भेजना सही फैसला है। भारतीय जनता पार्टी ने आज नई दिल्ली में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी मुख्यालय में स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान राष्ट्रगीत वंदे मातरम का अपमान करने के लिए कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधा। नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए भाजपा प्रवक्ता रविशंकर प्रसाद ने कहा कि जब कांग्रेस पार्टी राष्ट्रगीत का सम्मान नहीं कर सकती तो उसे स्वतंत्रता आंदोलन के संरक्षक होने का दावा नहीं करना चाहिए। केरलम में विजयंजम अंतर्राष्ट्रीय समुद्री बंदरगाह पर आज से सीधा निर्यात और आयात परिचालन शुरू हो गया, जो क्षेत्र में समुद्री व्यापार के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। मुख्यमंत्री वीडी सतीशन ने यूरोप के लिए पहले जहाज और 2 कंटेनर के साथ रवाना किया। महाराष्ट्र में विशेष गहन पुनरीक्षण के अंतर्गत मतदाता गणना प्रपत्र जमा करने की अंतिम तिथि कल समाप्त हो गई।

0: लोकरंजनी कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को नमस्कार।
1: नमस्कार।
0: मैं हूँ आपके साथ शीतल।
1: और मैं हूँ आपके साथ आरती। तो
0: जी
1: शीतल बहन, लोकरंजनी कार्यक्रम जहाँ लोकगीतों की मिठास, हमारी मिट्टी की खुशबू और लोक परंपराओं के रंग एक साथ मिल जाते हैं।
0: बिल्कुल। और जब हम बात हो लोक रंगों की, तो सावन का जिक्र अपने आप हो जाता है। चारों ओर हरियाली, रिमझिम फुहारें, झूले, लोकगीत और सावन के गीतों की मधुर गूंज, मानो प्रकृति भी अपने पूरे श्रृंगार में हो।
1: बिल्कुल। तो आइए सावन की फुहारों और झूलों की उस खूबसूरत दुनिया में चलते हैं जहाँ लोकगीतों में छिपी हमारी संस्कृति, हमारी परंपरा की खुशबू महसूस होती है। तो चलिए आज कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं राजपाल मिठारिया की आवाज़ में इस सावन गीत से।
2: मेरा तो झूले निर्गुण बाग में संग में झूले।

0: तो ये तो था सावन के झूलों और लोक रंगों से सजा खूबसूरत गीत, मीरा तो झूले बाग में राजपाल मिठारिया की आवाज़ में। तो ये गीत ऐसे हैं जैसे कि सावन की हरियाली, झूले और गांव की गलियों की वो पुरानी सी रौनक हमारे सामने जीवंत होती है।
1: बिल्कुल आरती।

बहन आप सही कह रही हैं कि सावन का मौसम ही कुछ ऐसा है। बारिश की फुहारें मन को भिगोती हैं और लोकगीत उस एहसास को और भी खूबसूरत बना देते हैं। सावन में गाए जाने वाले जो भी हमारे लोकगीत होते हैं, जो हमारे गांव में जो ग्रामीण लोग होते हैं या ढोलक पे घर में गाए जाते हैं, ऐसे दिनों में चार औरतें इकट्ठी हो गई गाना गा लिए, तो उस तरह से ये हमारी लोक संस्कृति और परंपराओं को पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ाने का भी काम करते हैं। तो चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और सुनते हैं अगला लोकगीत सुरेश चंद्र गोला की आवाज़ में।

0: तो आपने सुना सुरेश चंद्र गोला की आवाज़ में खूबसूरत गीत या सावन की छाई है बहार। सावन की फुहार और गीतों की मिठास ने माहौल को और भी खुशनुमा बना दिया है।
1: बिल्कुल शीतल बहन, और सावन सिर्फ मौसम में बदलाव नहीं लाता बल्कि हमारे गांव, खेत खलियानों और लोक जीवन में भी नई उमंग भर देता है। खेतों में लहराती जो फसल है और मिट्टी की जो सौंधी सी खुशबू और चारों ओर फैली हरियाली, यही तो सावन की असली बहार है। तो चलिए अब इसी हरियाली और खेतों की खूबसूरती को अपने गीतों में समेटते हैं और बढ़ते हैं अगले लोकगीत की ओर, और सुनते हैं रोली बरुआ से ये लोकगीत।

श्रोता सुन रहे थे रोली बरुआ की आवाज़ में ये लोकगीत खेतन में छाई बहार। और इसी के साथ हमारा आज का लोक रंजनी कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को नमस्कार। कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे तुषार पारासर और संयोजक थे शिवनंदन लाल।

0: अभी आप लोग रंजनी कार्यक्रम सुन रहे थे। यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है, मीडियम वेव 366.3 मीटर पर। आइए सुनते हैं कार्यक्रम खेल खिलाड़ी।
1: खेल खिलाड़ी, खेलों का आईना।
2: हेलो, नमस्कार, गुड इवनिंग। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम खेल खिलाड़ी। मैं हूं कविता और आज मेरे साथ इस कार्यक्रम में रहेंगी मेरी सहयोगी
3: विदुषी वत्स। नमस्कार।
2: मैं और विदुषी आपको लेकर चलेंगे खेल जगत के उन तमाम खेल गतिविधियों की तरफ रूबरू करवाने के लिए जो खेल गतिविधियां इस वक्त चल रही है इंडिया में और इंडिया से बाहर। तो इस वक्त जो सबसे ज्यादा जिसके ऊपर नजरें हैं वो है एक तो बैडमिंटन चैंपियनशिप और साथ ही साथ हॉकी वर्ल्ड कप। और ये दो मेजर ऐसे इवेंट है जिसमें भारत की जो खेल प्रशंसक है और साथ साथ खिलाड़ी हैं बहुत मेहनत कर रहे हैं प्रशंसक अपने खिलाड़ियों को चीयर करने के लिए और खिलाड़ी मैदान पर देश का नाम रोशन करने के लिए। चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं सबसे पहले हॉकी विश्व कप से, जिसके लिए हम चलेंगे विदुषी के पास।

0: FIH हॉकी विश्व कप 2026, जहां भारत बनाम इंग्लैंड पुरुष पूल डी का मैच था। इस मैच में भारतीय पुरुष टीम को कल इंग्लैंड के हाथों 2-4 की हार का सामना करना पड़ा। एम्स्टल वीन के वेगनर हॉकी स्टेडियम में खेले गए इस मुकाबले में भारत ने शानदार शुरुआत की और पहले हाफ में 2-1 की बढ़त भी बना ली थी, लेकिन दूसरे हाफ में इंग्लैंड ने शानदार वापसी करते हुए मुकाबला अपने नाम कर लिया। इस हार के साथ विश्व कप में इंग्लैंड के खिलाफ भारत की जीत का इंतजार अब 32 साल तक पहुंच गया है। मुकाबले इंग्लैंड ने 14वें मिनट में निकोलस के फील्ड गोल से बढ़त बनाई। भारत ने इसके बाद जोरदार वापसी की। कप्तान हरमनप्रीत सिंह ने 16वें मिनट में पेनल्टी कॉर्नर को गोल में बदलकर स्कोर बराबर करा। इसके बाद 24वें मिनट में दिलप्रीत सिंह ने फील्ड गोल दागकर भारत को 2-1 की बढ़त दिला दी। हाफ टाइम तक भारत 2-1 से आगे था, लेकिन तीसरे क्वार्टर में तस्वीर बदल गई। इंग्लैंड ने अपने खेल में बदलाव करते हुए भारतीय डिफेंस पर दबाव बढ़ाया। स्टुअर्ट रशमायर ने 39वें मिनट में गोल कर स्कोर बराबर किया और इसके कुछ ही मिनट बाद हेनरी क्रॉफ्ट ने 43वें मिनट में गोल दागकर इंग्लैंड को फिर बढ़त दिला दी। आखिरी क्वार्टर में निकोलस ने 54वें मिनट में पेनल्टी कॉर्नर को गोल में बदलकर अपना दूसरा गोल किया और इंग्लैंड की जीत पक्की कर दी। भारत ने गेंद पर 51% कब्जा रखा, जबकि इंग्लैंड के पास 49% पोजीशन रहा। गोल पर शॉट्स के मामले में भी भारत 11 के साथ इंग्लैंड के 10 से आगे रहा, लेकिन मौकों को गोल में बदलने में इंग्लैंड ज्यादा प्रभावी साबित हुआ और अंतिम स्कोर भारत 2-4। ये मुकाबला पुरुषों के पूल डी का था, जिसमें भारत के साथ इंग्लैंड, पाकिस्तान और वेल्स भी शामिल हैं। भारत ने अपने पहले मैच में वेल्स को 3-1 से हराया था और अब इंग्लैंड से मिली इस हार के बाद उसकी अगली चुनौती पाकिस्तान के खिलाफ होगी। इस मैच के बाद खिलाड़ी मनप्रीत सिंह का क्या कहना है, आइए सुनते हैं।
1: गेम का रिदम काफी अच्छा था, 3 क्वार्टर हम लोग काफी अच्छा हॉकी खेला, हम लोगों ने काफी अपर हैंड रहा। लास्ट क्वार्टर में था जहां मिस्टेक किया डिफेंस में, जहां पे उन्होंने हमें गोल स्कोर किया और एक प्लेंटी कॉर्नर था। ओवरऑल अगर देखा जाए तो परफॉर्मेंस काफी अच्छा रहा है, बट मैचेस में आपको यही रहता है कि जब भी आप किसी अच्छी टीम के साथ खेलते हैं तो अपना डिफेंस स्ट्रांग रखें और आपको जब भी अपॉर्चुनिटी मिले आप उसको गोल में कन्वर्ट करें। हम लोग भी वेरिएशन ट्राई कर रहे थे बट हर टाइम वो सक्सेसफुल नहीं होता है। हम लोगों ने ट्राई किया बट वो अच्छा डिफेंस किया उन्होंने लाइन पे, जो हम सुखी ने डिफ्लेक्ट किया था। तो ओवरऑल अच्छा रहा, जितने बनाए उसको हम लोग और ज्यादा बनाने चाहिए थे हमें, और यही रहेगा कि आने वाले मैचेस में ये हम लोग और इम्प्रूव करें ज्यादा से।

0: ज्यादा प्लेंटिकॉर्न बनाएं, और जैसे हरमन है, संजय है, इनको ज्यादा यूज करें।
1: अब नजरें आज भारतीय महिला हॉकी टीम पर हैं। भारत आज महिला विश्व कप पूल डी में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ उतरेगा। मुकाबला भारतीय समय अनुसार शाम 6:30 बजे एम्स्टलवीन के वेगनर स्टेडियम में खेला जाएगा। महिला पूल डी में भारत दक्षिण अफ्रीका के अलावा चीन और इंग्लैंड भी हैं। भारत ने अपने अभियान की शुरुआत ओलंपिक रजत पदक विजेता चीन के खिलाफ 2-2 के रोमांचक ड्रॉ से की थी। भारत ने मुकाबले में 2 बार बढ़त बनाई, लेकिन चीन ने दोनों बार वापसी की। इसके बावजूद भारतीय टीम ने मजबूत चीनी आक्रमण के सामने आखिरी तक मुकाबला संभाले रखा और एक महत्वपूर्ण अंक हासिल किया। अब दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ मुकाबला भारत के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। टीम को अगले दौर की दौड़ में बने रहने के लिए सिर्फ जीत ही नहीं बल्कि अच्छे अंतर से जीत की भी जरूरत हो सकती है। दक्षिण अफ्रीका को अपने शुरुआती मुकाबले में इंग्लैंड के खिलाफ 4-0 की हार मिली थी, इसलिए वो भी आज आक्रामक रवैये के साथ ही मैदान पर उतर सकती है। भारतीय टीम की कप्तान सलीमा टेटे और उनके साथियों के सामने चुनौती होगी कि चीन के खिलाफ दिखाए गए जुझारूपन को आज गोल में बदला जाए। भारत के लिए आज शुरुआत से ही तेज आक्रमण, बेहतर फिनिशिंग और डिफेंस में अनुशासन बहुत महत्वपूर्ण होगा। यानी आज का मुकाबला सिर्फ 3 अंकों की लड़ाई नहीं है बल्कि महिला पूल डी में भारत के अगले दौर की उम्मीदों के लिए भी ये एक बेहद अहम मुकाबला है। आइए अब जानते हैं कल यानी 17 अगस्त को अन्य मुकाबलों का नतीजा क्या रहा। शुरू करते हैं पुरुष वर्ग से, जहां जर्मनी बनाम बेल्जियम मुकाबला रहा पुरुष पूल बी में। विश्व चैंपियन जर्मनी ने मेजबान और प्रो लीग चैंपियन बेल्जियम को 1-0 के शानदार मैच में हराया। जर्मनी की ओर से जेकब ब्रिला ने 39वें मिनट में निर्णायक गोल किया और इसके बाद जर्मनी की मजबूत रक्षा पंक्ति ने बेल्जियम को बराबरी का मौका नहीं दिया। पुरुष पूल बी में ही एक और रोमांचक मुकाबला देखने को मिला, जहां फ्रांस बनाम मलेशिया मैच में 3-3 से बराबरी हुई। मलेशिया ने शुरुआत में बढ़त बनाई, लेकिन फ्रांस ने वापसी की। आखिरी दौर में टिमथी ने गोल के साथ फ्रांस को महत्वपूर्ण अंक दिलाया। अब अगर चले पुरुष पूल डी की तरफ, तो पुरुष पूल डी में पाकिस्तान और वेल्स का मुकाबला 3-3 से ड्रॉ रहा। पाकिस्तान ने शुरुआत में बढ़त बनाई, लेकिन वेल्स ने वापसी की। दोनों टीमों को 1-1 अंक मिला। इस नतीजे का असर भारत के लिए भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसी पूल डी में भारत, इंग्लैंड, पाकिस्तान और वेल्स आगे की जगह के लिए मुकाबला कर रहे हैं। अब बात करते हैं महिला वर्ग में कल के खेले गए चारों मुकाबलों के ऊपर। तो पूल ए में ऑस्ट्रेलिया और नीदरलैंड्स के बीच मुकाबला हुआ, जहां मेजबान नीदरलैंड्स ने शानदार प्रदर्शन करते हुए ऑस्ट्रेलिया को 4-2 से हराया। डच टीम ने बेहतरीन एंट्री और लगातार दबाव के दम पर ऑस्ट्रेलियाई डिफेंस को काफी परेशान किया। पूल बी में जर्मनी का सामना अर्जेंटीना से हुआ और बेहद कड़े मुकाबले में अर्जेंटीना ने जर्मनी को 3-2 से मात दी। पूल बी के ही एक अन्य मुकाबले में अमेरिका ने स्कॉटलैंड को 3-2 से हराया। स्कॉटलैंड की अच्छी चुनौती के बावजूद अमेरिका ने तीसरे क्वार्टर में शानदार वापसी करते हुए 3 अंक अपने नाम किए। वहीं पूल ए में चिली और जापान भी आमने सामने थे, जहां जापान ने शानदार नियंत्रण बनाए रखते हुए चिली को 3-0 से हराया। FIH हॉकी विश्व कप जो अब बेल्जियम और नीदरलैंड्स में आयोजित हो रहा है, इसके पहले चरण में पुरुष और महिला दोनों वर्गों में 4-4 पूल हैं और हर पूल से शीर्ष 2 टीमें दूसरे ग्रुप चरण में पहुंचेंगी। दूसरे ग्रुप चरण के बाद शीर्ष टीमें सेमीफाइनल के लिए आगे बढ़ने वाली हैं। और भारत के लिए आज की सबसे बड़ी खबर यही है कि महिला पूल डी में भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका शाम 6:30 बजे। वहीं पुरुष टीम के लिए अगला बड़ा मुकाबला 19 अगस्त को पाकिस्तान के खिलाफ है। इंग्लैंड से मिली हार के बाद भारत के लिए यह मुकाबला बेहद महत्वपूर्ण होगा।
2: तो जहां भारत के लिए हॉकी के मुकाबले महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस वक्त हम वर्ल्ड कप खेल रहे हैं और साथ ही साथ हम एक ऐसी चैंपियनशिप भी खेल रहे हैं जो कि जुड़ी है हमारे सभी शटलर्स के साथ, BWF वर्ल्ड चैंपियनशिप, जो कि नई दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में आयोजित की जा रही है। उसमें भारतीय शटलर्स के अब तक के जो रिजल्ट हैं उन पर आइए सुनते हैं विशेष रिपोर्ट।

एक लंबे समय के बाद नई दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में खेली जा रही BWF वर्ल्ड चैंपियनशिप 2026 में भारत ने अपने घरेलू मैदान पर शानदार शुरुआत की। पहले दिन यानी सोमवार को सभी पांच भारतीय खिलाड़ियों जोड़ियों ने अपने अपने शुरुआती दौर के मुकाबले जीते और एक शानदार आगाज किया। मेजबान देश के लिए पहला दिन बेहतरीन रहा।

0: इसमें 21 साल की आयुष शेट्टी ने चीन के टॉप सीड और मौजूदा चैंपियन शी यू क्यूई को हराकर बड़ा उलटफेर किया। पीवी सिंधु ने भी सीधे गेम में आसान जीत के साथ अपने अभियान की शुरुआत की, जबकि तीन भारतीय डबल्स जोड़ियां राउंड ऑफ 32 में पहुंची। शेट्टी ने दिन का सबसे बड़ा नतीजा दिया। उन्होंने पुरुषों के सिंगल्स के राउंड ऑफ 64 के मुकाबलों में दुनिया के नंबर एक खिलाड़ी शी को 21-14, 13-21, 21-19 से हराया। घरेलू दर्शकों से खचाखच भरे स्टेडियम में खेलते हुए दुनिया के नंबर 22 भारतीय खिलाड़ी ने आक्रामक शुरुआत की। उन्होंने अपने दमदार स्मैश और नेट पर शानदार खेल से शी पर दबाव बनाया। हालांकि आखिरी गेम काफी कड़ा रहा, लेकिन शेट्टी ने आखिरी पलों में संयम बनाए रखा और 21-19 से जीत हासिल कर ली। इस जीत ने शेट्टी को इस साल की शुरुआत में बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप के फाइनल में शी से मिली हार का बदला लेने का मौका भी दे दिया। अब वो राउंड ऑफ 32 में भी अपना शानदार प्रदर्शन जारी रखने की कोशिश करेंगे। जीत के बाद आयुष ने कहा,
1: प्लेइंग शी इज डेफिनेटली द टफेस्ट ड्रॉ, प्लेइंग वर्ल्ड नंबर 1 इज नेवर इजी, इट्स द फर्स्ट राउंड फॉर मी एज़ वेल, आई वुड से इवन आई हैव नॉट सेटल्ड इन ऑल, बट आई थिंक इट वाज अ टफ वन फॉर बोथ ऑफ अस एंड देयर वर नो बी मोमेंट्स एज़ आई सेड, बट या हैप्पी टू पुल इट ऑफ। वी एनालाइज्ड द मैच रियली वेल, टैक्टिकली आई वाज मच बेटर टुडे। आई थिंक द लास्ट टाइम वी प्लेड आई थिंक ही आउटप्लेड मी ऑन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ द गेम, बट आई थिंक टुडे आई वाज सुपर प्रिपेयर्ड।
0: बात करते हैं महिला सिंगल्स की। महिला सिंगल्स में वर्ल्ड चैंपियनशिप में 5 बार मेडल जीत चुकी पीवी सिंधु ने महिला सिंगल्स के राउंड ऑफ 64 में आयरलैंड की सोफिया नोबल के खिलाफ दबदबा बनाते हुए 21-7, 21-11 से जीत हासिल की। सिंधु ने शुरुआत से ही मैच पर अपनी पकड़ बनाए रखी। उन्होंने सटीक ड्रॉप शॉट्स और जबरदस्त स्मैश का इस्तेमाल करके नोबल को दबाव में रखा। आयरिश शटलर भारतीय खिलाड़ी की रफ्तार का मुकाबला नहीं कर पाई और सिंधु ने आसानी से मैच जीत लिया। सिंधु का सामना अगले राउंड में कनाडा की वेन्यू झांग से होगा।
2: ऑफ कोर्स आई एम प्लेइंग विद हर फॉर द फर्स्ट टाइम एंड आई थिंक मोर देन एनीथिंग इट वाज इंपॉर्टेंट फॉर मी टू जस्ट फोकस ऑन व्हाट आई डू एंड व्हाट आई प्ले एंड हाउ आई प्ले। आई मीन आई वाज एक्साइटेड टू गेट ऑन टू द कोर्ट हैपनिंग हियर इन इंडिया, सो इट वाज रियली गुड टू यू नो गेट ऑन टू द कोर्ट एंड आई कुड सी अ लॉट ऑफ पीपल चीयरिंग एंड सपोर्टिंग मी। आई थिंक दैट गेव मी अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस। आई मीन इररिस्पेक्टिव ऑफ हूएवर द ओपोनेंट इज, इट वाज जस्ट दैट आई हैड टू जस्ट प्ले माय गेम एंड गिव माय बेस्ट।
0: भारत के महिला डबल्स अभियान की शुरुआत भी रही। ट्रिशा जॉली और गायत्री गोपीचंद की जोड़ी ने स्पेन की पाउला लोपेज और लूसिया रोड्रिग्रेस को 21-9, 21-13 से हराया। दुनिया की 39वें नंबर की भारतीय जोड़ी को जीत हासिल करने में 30 मिनट से थोड़ा ज्यादा समय लगा। ट्रिशा के जबरदस्त अटैकिंग खेल और नेट पर गायत्री के तेज मूवमेंट पर अच्छा तालमेल देखने को मिला, जिससे भारतीय जोड़ी ने शुरुआत में ही मैच पर पकड़ बना ली। विरोधी जोड़ी ने दूसरे गेम में वापसी की कोशिश की, लेकिन ट्रेसा और गायत्री ने संयम बनाए रखा और एक सीधी जीत हासिल कर ली।
3: बहुत अच्छा लगा पहला मैच खेल के इंडिया में, वो भी तो बहुत स्पेशल फील हो रहा है और हाँ बहुत अच्छा था फर्स्ट गेम, नेक्स्ट राउंड के लिए वेट कर रहे हैं। आई थिंक द कोर्ट कंडीशंस आर प्रीटी गुड, इट्स अ ह्यूज स्टेडियम एंड या आई थिंक दिस इट्स अ लिटिल स्लो समटाइम्स फास्ट, बट आई थिंक वी हैव अडैप्टेड वेल, इट्स डिफरेंट फॉर एवरीवन, इट्स अमेजिंग टू प्ले इन इंडिया, यू नो द होल स्टेडियम सपोर्टिंग फॉर यू, चीयरिंग फॉर यू, इट फील्स ग्रेट।
0: कवि प्रिया सिल्वम और सिमरन की जोड़ी ने स्पेन की निकोल कारुला और कार्मेन मारिया जिमेनेस को 22-20, 21-14 से हराकर अगले दौर में जगह बनाई। स्पेनिश जोड़ी ने पहले गेम में भारतीय खिलाड़ियों को कड़ी टक्कर दी, लेकिन कवि प्रिया और सिमरन ने अहम मौकों पर संयम बनाए रखा और 22-20 से बढ़त हासिल की। इसके बाद भारतीय जोड़ी ने दूसरे गेम पर अपना दबदबा बनाया और 21-14 से मैच अपने नाम कर लिया। सुनते हैं सिमरन को।
4: फर्स्ट टाइम है और सब क्राउड हमारा एंड स्टार्ट में थोड़ा डिफेंसिव स्टार्ट किया, कोर्ट कंडीशंस थोड़ा एडजस्ट नहीं हो रहा था बिकॉज एक साइड से इट्स वेरी स्लो और बाकी फास्ट है, तो एडजस्ट होने में टाइम लग गया एंड वी वर प्लेइंग वेरी डिफेंसिव। देन आफ्टर 10-12 पॉइंट्स वी चेंज द गेम, हमने डिसाइड किया हम ऑल आउट अटैक करेंगे एंड यू नो वी आर गोना कीप इट डाउन, एक जन आगे जाके कीप करेगा और अटैक करेगा, तो हमने एंड में गेम चेंज किया। वी वर डाउन बट बहुत लेट चेंज हुआ सो बट देन लेटर वी कैच इट ऑन एंड वी विन द मैच।
0: पुरुष डबल्स में MR अर्जुन और हरिहरन अमसा करुणन की जोड़ी भी अगले दौर में पहुंच गई, हालांकि उनका पहला मैच समय से पहले ही खत्म हो गया। भारतीय जोड़ी ने आयरलैंड के स्कॉट गिल्डिया और पॉल रेनॉल्ड्स के खिलाफ पहला गेम 21-16 से जीता और दूसरे गेम में 6-4 से आगे हो गई। इसके बाद चोट लगने की वजह से आयरिश जोड़ी को मैच से हटना पड़ा, जिससे अर्जुन और हरिहरन को अगले दौर में जगह मिल गई। इस तरह चैंपियनशिप के पहले दिन मेजबान देश ने घरेलू वर्ल्ड चैंपियनशिप के पहले दिन जबरदस्त शुरुआत की। अब बात करते हैं दूसरे यानी आज के दिन की, जहां पहले दिन भारतीय शटलर्स ने वर्ल्ड चैंपियनशिप में अपने सभी मैच जीते। वहीं दिन के शुरुआत में उन्नति हुड्डा ने महिला सिंगल्स के पहले राउंड में म्यांमार की थेत हतार तुजार को 22-20, 21-16 से हराकर अपने अभियान की शुरुआत की। पहला गेम काफी कड़ा रहा जिसमें कोई भी खिलाड़ी साफ बढ़त नहीं बना पाया। आखिरकार उन्नति ने 21वें मिनट के खेल के बाद इसे 22-20 से अपने

0: काम कर लिया। अगले राउंड में उन्नति का सामना कनाडा की 13वीं सीड मिशेल ली से होगा। जीत के बाद उन्नति ने क्या कहा, आइए सुनते हैं।
1: इन द फर्स्ट सेट आई वॉज जस्ट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड द ड्रिफ्ट एंड एवरी थिंग, बट शी वॉज ऑल्सो प्लेइंग, शी इज वेरी गुड एंड ऑल, इट वॉज गोइंग नेक टू नेक, बट या आई थिंक इन द लास्ट 5 पॉइंट्स ऑफ द फर्स्ट गेम आई कंट्रोल्ड एंड stayed patient and then she did some mistakes and then the second game I was able to know key from that end of the court the attack is going faster so I just played my game attacking and it helped me and stick to the plan.
0: वही मिक्स डबल्स जोड़ी रोहन कपूर और रुत्विका शिवानी को कनाडा के खिलाड़ियों से 3 गेम के मुकाबले में हार का सामना करना पड़ा। कैनेडियाई जोड़ी ने 22-20, 21-19
2: फर्स्ट गेम ठीक था सर, कंफर्टेबली जीत रहे थे। सेकेंड गेम भी ठीक चल रहा था, थोड़ा बहुत स्ट्रेटजी इधर उधर मिस हो गया एंड देन वी लॉस्ट अ बिट ऑफ टच।
0: दिन के बाकी मुकाबलों में भारत की मिक्स डबल्स जोड़ी अशितत सूर्या और अमृता प्रमुतेश को राउंड ऑफ 64 के कड़े मुकाबले में तुर्की के एमरे सोनमेज और यासेमिन बेकताश से 21-16, 29-30, 22-24 के स्कोर से हार का सामना करना पड़ा। इस हार के साथ ही जोड़ी का आगे बढ़ने का सपना भी टूट गया। इसके बाद अब सबकी नजरें हैं अगले मुकाबलों पर, जिसमें भारत के स्टार शटलर लक्ष्य सेन और दो दिग्गज महिला युगल जोड़ियां शामिल हैं। तो अभी वर्ल्ड चैंपियनशिप में जो मुकाबले हैं वो जारी हैं। अभी ताजा स्थिति के लिए हम आपको सीधे लिए चलते हैं स्टेडियम, जहां मौजूद है हमारे सहयोगी मोहम्मद शाहिद आजमी।
3: बताऊंगा आज का दूसरा दिन जो है बहुत ही बेहद खास था। आज जो दिन की शुरुआत होती है, दो बड़े मुकाबलों से शुरुआत होती है। कोर्ट नंबर एक पर जहां जोनाथन क्रिस्टी उतरे थे, वहीं कोर्ट नंबर दो पर महिलाओं में नोजोमी ओकुहारा उतरी थी। ये दोनों बड़े नाम है और दोनों ने अपने अपने मुकाबले जीत लिए थे। उसके बाद से एक और बड़ा नाम उतरा था कोर्ट नंबर एक पर, रत्ना चोक इंतानोन, उन्होंने भी 21-14, 21-10 से मुकाबला जीता था। यानी आज के दिन की शुरुआत इन तीन बड़े मुकाबलों से होती है। उसके बाद से हालांकि भारत की जोड़ी जब रोहन कपूर और इकला शिवानी की उतरती थी, यहाँ उन्हें शिकस्त का सामना करना पड़ता है। हालांकि भारत ने अब तक 3 मुकाबले खेले जिनमें 2 जीते हैं और एक मुकाबले में, माफ कीजिएगा, 1 जीते हैं, 2 मुकाबले में हार मिली है, लेकिन 3 अभी मुकाबले होने बाकी। जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ कविता, उस वक्त की हालत बता दूं तो अभी भारत की एक जोड़ी उतर चुकी है, कवि प्रिया सेल्वम उतर चुकी है। इसके अलावा बात करें तो सिमरन सिंह जी अभी बिल्कुल कोर्ट पर उतरी हैं और हालात के बारे में बताऊं तो यहाँ पर पूरी तरह से बैडमिंटन के रंग में रंगा हुआ इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम। हर तरफ से जब भारतीय खिलाड़ी उतरते हैं तो उनके लिए शोर होते हैं, उनका नाम लेते हैं और उनका पूरी तरह से हौसला अफजाई करते हैं। यही नहीं, जो बड़े नाम है, बड़े खिलाड़ी, विदेशी खिलाड़ी हैं, उनके लिए भी पूरी तरह से दर्शक उनका भी सपोर्ट करते हैं, उनके हर अच्छे खेल पर पूरी तरह से दाद देते हैं और शोर करते हैं। तो कह सकते हैं कि सिर्फ भारत के जो दर्शक है, भारत के लिए नहीं बल्कि बढ़िया जो बड़ा अच्छा खेल होता है उसके लिए पूरी तरह से उत्साह उनका बढ़ाते हैं। अभी सबको इंतजार है लक्ष्य सेन का, जो एकल का मुकाबला, बेहद खास मुकाबला है। 2 भारत के एकल के मैच थे जिसमें से उन्नति हुडा जीत चुकी है, जबकि यहाँ पर अब लक्ष्य सेन उतरने वाले, उस मैच को लेकर दर्शक पूरी तरह से स्टेडियम में दीर्घा में बैठे हुए टकटकी लगाए हुए हैं कि लक्ष्य सेन का कब मुकाबला हो। लेकिन इसके अलावा बता दें कि अभी भारत के 2 और मुकाबले होने बाकी, यानी बहुत कुछ आज घटित होने वाला। जुड़े रहे आकाशवाणी के साथ। फिलहाल मुझे यहाँ दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम से प्रोड्यूसर शाहनवाज खान के साथ अनुमति दीजिए।
0: तो अभी आपको ताजा स्थिति जो है BWF की बता देते हैं। फिलहाल हमारी जो 2 जोड़ियां हैं वो यहाँ पर खेल रही हैं विमेंस डबल्स में। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं सिमरन सिंधी की और उसके साथ कावि प्रिया सेल्वम, जो कि पहले गेम में पिछड़ चुकी हैं, बहनों की जोड़ी हैं जो कि। और उसके साथ साथ यहाँ पर बात करते हैं अगले मुकाबले की, जो कि हमारा एक और ऐसा मुकाबला है जिस पर नजरे हैं हमारी, वो है हमारी गायत्री गोपीचंद और ट्रिसा जॉली, जो कि पहले अभी गेम में 10-4 से आगे चल रही हैं। इस वक्त उनका जो मुकाबला है वो खेला जा रहा है। और इसके बाद एक और जो अंतिम मुकाबला है आज के दिन का, वो है लक्ष्य सेन का, जिसके ऊपर सबकी ही नजरें हैं कि लक्ष्य सेन आखिर अपने मुकाबले में करेंगे क्या, आगे बढ़ेंगे या फिर उनका सफर यहीं रुक जाएगा। इसके साथ ही आपको बता दें कल खेले जाने वाले मुकाबले, जो कि 19 अगस्त को खेले जाएंगे राउंड ऑफ 32 के, जिसमें आयुष शेट्टी का मुकाबला श्रीलंका के खिलाड़ी डुमिंडू अब्रे विक्रम से होगा। और इसके बाद विमेन्स सिंगल में पीवी सिंधु का मुकाबला कनाडा की वेन्यू झांग से होने वाला है। मेंस डबल के राउंड ऑफ 32 के मुकाबले होंगे, जिसमें अर्जुन एमआर और एच अमसाकर्णा की जो जोड़ी है वो सामना करेंगी कोरियाई जोड़ी की। इसके साथ चिराग शेट्टी और सात्विक साई की जो जोड़ी है वो स्कॉटलैंड की जोड़ी के साथ कल मुकाबले

0: अब आपको इंडिया के ही दूसरे लाइव मैच की तरफ ले चलते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं भारत बनाम श्रीलंका मैच की, जो अभी चल रहा है टेस्ट मैच, जहां भारत ने श्रीलंका के सामने 372 रन का लक्ष्य रखा है और श्रीलंका इस समय 74 रन पे 4 विकेट गंवा चुका है। इस टेस्ट मुकाबले के चौथे दिन यानी कि आज भारत ने श्रीलंका के सामने 372 रन का चुनौतीपूर्ण लक्ष्य रखा है। लक्ष्य का पीछा करते हुए श्रीलंका की दूसरी पारी में शुरुआत बेहद खराब रही, इतनी खराब कि टीम ड्रिंक्स ब्रेक से पहले ही 16.1 ओवर में 35 रन पर 3 विकेट गंवा चुकी थी। भारत ने पहली पारी में 462 रन बनाए थे, इसके जवाब में श्रीलंका की पहली पारी 284 रन पर सिमट गई, जिससे भारत को 178 रन की बढ़त मिली। इसके बाद भारत ने दूसरी पारी में आक्रामक अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए 193 रन बनाए और श्रीलंका के सामने 372 रन का लक्ष्य रख दिया। भारत के दोनों पारियों में देवदत्त पडिगल ने सबसे प्रमुख बल्लेबाजी करी। पहली पारी में उन्होंने शानदार 167 रन की पारी खेली, जबकि दूसरी पारी में तेजी से 44 रन जोड़े। केएल राहुल ने पहली पारी में 82 और दूसरी पारी में 35 रन बनाए। दूसरी पारी में ऋषभ पंत ने महज 69 गेंदों पर 66 रन पर आक्रामक पारी खेली। आपको इसके साथ बता दें कि टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में उन्होंने रच दिया है एक इतिहास, जहां 100 टेस्ट छक्के लगाने वाले वे पहले भारतीय बल्लेबाज बने हैं। वहीं इसी पारी में ध्रुव जुरेल ने निचले क्रम में अहम 51 रन का योगदान भी दिया है। आपको बता दें, इस समय श्रीलंका 74 रन बना चुका है 4 विकेट के नुकसान पे। डिसिल्वा ने बनाए हैं 27 नाबाद, वहीं उनके साथ जुड़े हैं दिनुषा 19 रन पर।
1: जी हाँ, और क्रिकेट की बातों को ही आगे ले जाते हुए बात करते हैं डीपीएल की, दिल्ली प्रीमियर क्रिकेट लीग की, जिसमें फिलहाल आज के दिन की यदि बात करें तो आज जो मुकाबला था वो 32 नंबर का मैच खेला गया, जो कि पुरानी दिल्ली 6 और नॉर्थ दिल्ली स्ट्राइकर्स के बीच हुआ, जिसमें नॉर्थ दिल्ली स्ट्राइकर्स ने अभी फिलहाल जो मुकाबला है वो खेल रहे हैं यहां पर, और अभी 12 बॉल का मुकाबला बचा है जिसमें 34 रन की उनको दरकार है। इसी के साथ आज का जो मुकाबला है वो भी एक और मैच जो शाम को 7 बजे होना है, वो है ईस्ट दिल्ली राइडर्स के साथ सेंट्रल दिल्ली किंग्स का। ये मैच आज ही 7 बजे शाम को शुरू होने वाला है। तो फिलहाल क्रिकेट की खबरों के साथ साथ अब बात करेंगे हम यहां पर फुटबॉल के खबरों की भी, जिसके लिए मैं आपको सीधे ले चलती हूं अपने सहयोगी विदुषी के पास।
0: एशिया के सबसे पुराने फुटबॉल चैंपियनशिप दुरंत कप के 135वें संस्करण में अब मुकाबला अपने निर्णायक दौर में पहुंच चुका है। चारों क्वार्टर फाइनल मुकाबलों के बाद सेमीफाइनल की लाइनअप तय हो गई है और अब नजरें खिताबी मुकाबले पर हैं। क्वार्टर फाइनल में सबसे पहले रविवार को एससी दिल्ली और एफसी रंगदाई के बीच मुकाबला हुआ। एससी दिल्ली ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 5-1 की बड़ी जीत दर्ज करी और सेमीफाइनल में जगह बनाई। इसके बाद रविवार को ही हुए दूसरे क्वार्टर फाइनल में इंडियन आर्मी एफटी और ईस्ट बंगाल एफसी आमने सामने थे। बेहद करीबी मुकाबले में ईस्ट बंगाल ने 1-0 से जीत हासिल कर अंतिम चार में प्रवेश किया। सोमवार को खेले गए तीसरे क्वार्टर फाइनल में मोहन बगान सुपर जायंट और जमशेदपुर एफसी के बीच मुकाबला 1-1 की बराबरी पर खत्म हुआ और इसके बाद मुकाबले का फैसला पेनल्टी शूटआउट के जरिए किया गया। वहीं चौथे क्वार्टर फाइनल में शिलोंग लड्रोंग एफसी और नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी के बीच गोल काफी ज्यादा रहे और नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड ने 5-2 से मुकाबला अपने नाम करते हुए सेमीफाइनल में अपनी जगह बनाई। अब सेमीफाइनल में पहली भिड़ंत होगी एससी दिल्ली और ईस्ट बंगाल एफसी के बीच। ये मुकाबला 19 अगस्त को कोलकाता के विवेकानंद युवा भारती क्रीड़ांगन में खेला जाएगा। दोनों टीमों की नजरें जीत के साथ फाइनल में जगह बनाने पर होंगी। इसके बाद 20 अगस्त को दूसरे सेमीफाइनल में मोहन बगान सुपर जायंट का सामना नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी से होगा। इस मुकाबले के विजेता की भिड़ंत पहले सेमीफाइनल के विजेता से खिताब के लिए होगी। सबसे महत्वपूर्ण डेट 23 अगस्त दिन रविवार, जिस दिन 135वें दुरंत कप फाइनल मैच खेला जाएगा और तय किया जाएगा कि इस बार एशिया की इस ऐतिहासिक फुटबॉल चैंपियनशिप की ट्रॉफी किसके नाम होती है। यानी अब 4 टीमें 2 सेमीफाइनल और 1 ट्रॉफी दुरंत कप अपने आखिरी और सबसे रोमांचक पड़ाव पर पहुंच चुका है।
1: तो रोमांचक पड़ाव जहां चल रहा है अभी फुटबॉल का, वहीं पर आज से शुरू हुआ है एक प्रतिष्ठित फुटबॉल टूर्नामेंट, सुब्रतो कप इंटरनेशनल फुटबॉल टूर्नामेंट, जिसका 65वां संस्करण आज से शुरू होकर 24 सितंबर तक नई दिल्ली, एनसीआर और बेंगलुरु में आयोजित किया जा रहा है। इस बार भारत में अलग अलग राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों और शैक्षणिक संस्थानों की कुल मिलाकर 100 से ऊपर की टीमें जो हैं वो हिस्सा ले रही हैं। आज के दिन क्योंकि ओपनिंग सेरेमनी है तो हमारे सहयोगी मनजीत कौर जो है इस वक्त वो मौजूद है।

0: स्टेडियम में अपनी पैनी नजर बना के चलिए, सीधे चलते हैं मंजीत के पास और जानते हैं कि आखिर किस तरह का माहौल है आज स्टेडियम में। मंजीत, आपका स्वागत है कार्यक्रम में।
1: थैंक यू कविता। और इस समय अम्बेडकर स्टेडियम में 5,000 से भी ज्यादा बच्चे इसमें मौजूद है और 63 सुबूतों का अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल टूर्नामेंट का उद्घाटन का जो मैच है वो बस टॉस के साथ शुरू हो चुका है। और मैच की बात करें तो अंडर 17 जूनियर गर्ल्स का मुकाबले की शुरुआत होने जा रही है। और साथ ही साथ हमारे साथ यहाँ पर लवप्रीत सिंह जो कि वेटलिफ्टर है, कॉमनवेल्थ गेम के सिल्वर मेडलिस्ट, वो भी अतिथि के रूप पर यहाँ पर मौजूद है और भव्य रंगारंग कार्यक्रम के साथ इस 65वें सुब्रतो कप का उद्घाटन समारोह हो चुका है। और ये टूर्नामेंट के अंदर युवा एथलीटों के कौशल के साथ साथ खेल भावना को भी बढ़ावा देता है। और जैसे कि हमने आपको बताया कि मुख्य अतिथि के रूप में यहाँ पर मौजूद है लवप्रीत सिंह, वेटलिफ्टर कॉमनवेल्थ गेम्स के सिल्वर मेडलिस्ट 2026। और उनके अलावा एयर मार्शल एस शिवा कुमार, VSM एयर ऑफिसर इंचार्ज ADM यानी कि एडमिनिस्ट्रेशन एंड वाइस चेयरमैन SMES की मौजूदगी में ये जो टूर्नामेंट है वो शुरू हो चुका है। तो खिलाड़ी है यहाँ पर मौजूद है और स्कूली बच्चे भी यहाँ पर मौजूद है। और टूर्नामेंट का आगाज टॉस के साथ तो हो चुका है जहाँ पर 5,000 से भी ज्यादा बच्चे हैं। और टीमों की बात करें तो जूनियर्स गर्ल्स अंडर 17, जूनियर बॉयज अंडर 17 और जूनियर बॉयज अंडर 15 के मुकाबले होंगे। वेन्यू की बात करें तो दिल्ली के अलावा बैंगलोर के अंदर भी मुकाबले खेले जाएंगे क्योंकि अंडर 15 के मुकाबले होंगे। और आज जो 5,000 से ज्यादा बच्चे यहाँ पर इस स्टेडियम में मौजूद है ये अपने आप में एक रिकॉर्ड है। और इससे पहले रंगारंग कार्यक्रम और स्कूली बच्चों द्वारा नृत्य किया गया और जो शक्ति जो टीम है उसकी द्वारा यहाँ पर ड्रिल भी की गई और एयरफोर्स के बैंड के द्वारा धुनों के द्वारा सभी को उन्होंने मंत्र मुग्ध कर दिया। और बेहद ही शानदार जो है आगाज इस टूर्नामेंट का हुआ है कविता।
0: जी बिल्कुल, आप लगातार वहां पर नजर बना के रखा है आपने। इस वक्त फुटबॉल का जो ये प्रतिष्ठित टूर्नामेंट है काफी ज्यादा है, बच्चों में उत्साह तो आपने बता ही दिया, लेकिन जो लोग ये मैचेस देखने आएंगे वो कहाँ कहाँ इन मैचेस को देख पाएंगे?
1: बिल्कुल, अंबेडकर स्टेडियम के अलावा पालम जो दिल्ली के कई स्टेडियम है जो जहाँ पर होगा, जो तेजस ग्राउंड है वहां पर भी ये मुकाबले खेले जाएंगे। पालम ग्राउंड के अंदर ये मुकाबला होगा, राजोखरी में ग्राउंड है वहां पर भी ये मुकाबला खेला जाएगा। और इसके अलावा जो अंडर 15 के जो मुकाबले हैं वो जो खेला जाएगा बेंगलुरु के अंदर मुकाबले होंगे। और आज से शुरुआत हो चुकी है मगर सब जूनियर बॉयज अंडर 15 की बात करें तो 9 सितंबर से इसकी शुरुआत होगी और जो ग्रैंड फिनाले है वो यही दिल्ली के अम्बेडकर स्टेडियम में होगा। और आज 27 अगस्त जो मुकाबले हैं 27 अगस्त तक खेले जाएंगे और आज जो 18 अगस्त है और जूनियर गर्ल्स के मुकाबले के साथ इस टूर्नामेंट का आगाज हो चुका है दिल्ली के बी आर अम्बेडकर स्टेडियम में।
0: जी, तो आप लगातार अपनी नजर बनाए रखिए यहाँ पर और हमसे जुड़ती रहिए और अपडेट देते रहिए। फिलहाल आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: धन्यवाद।

तो अब क्योंकि कार्यक्रम का समय धीरे धीरे समाप्ति की ओर है, लेकिन जाने से पहले एक बहुत इम्पोर्टेंट जो अपडेट है वो आपको देनी है। यहाँ पर जो नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड्स हैं 2025 के जो खिलाड़ी थे उनका जो घोषणा है नामों की वो कर दी गई है, जिसमें जो खिलाड़ी हैं उनको अवार्ड दिए जाएंगे। इसमें अर्जुन अवार्ड, द्रोणाचार्य अवार्ड और लाइफ टाइम अवार्ड्स जो हैं वो शामिल हैं। जल्दी से आपको बता देते हैं, श्री तेजस्विन शंकर एथलेटिक्स यहां पर, और इसके साथ श्री मोहम्मद अजमल वी, मिस प्रियंका गोस्वामी, त्रिशा जॉली जिन्हें बैडमिंटन में मिलेगा अवार्ड, अर्जुन अवार्ड की लिस्ट है ये। इसके अलावा पुलेला गायत्री गोपीचंद बैडमिंटन, श्री नरेंद्र बॉक्सिंग, इसके साथ साथ विदित संतोष गुजराती चेस, दिव्या देशमुख चेस, श्री देशमुख श्रीकांत डीप शूटिंग, इसके साथ साथ जो और अर्जुन अवार्ड की लिस्ट में है एम एस लाल रेस सियामी हॉकी, श्री राजकुमार पॉल हॉकी और श्री सुरजीत कबड्डी, मिस पूजा कबड्डी, रुद्रांश खंडेलवाल पैरा शूटिंग, एकता भयान जो है उनको पैरा एथलेटिक्स में, अरविंद सिंह को रोइंग में और अखिल शिरवान को शूटिंग में जो है ये जो अर्जुन अवार्ड है इनसे नवाजा जाएगा। इसके साथ साथ यहां पर अर्जुन अवार्ड लाइफ टाइम आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस स्पोर्ट्स एंड गेम्स 25 जो है उसमें यहां पर

0: वो काफी अच्छा लगा कि मेरी इतने सालों की जो मेहनत थी वो फाइनली आज रंग लाई, और मैं थैंक्स ही करूंगी सभी का जिसने मुझे इस लायक समझा।
1: तो यहाँ पर अब हम बात करते हैं वीरेंद्र जी की, जिनको भी अवार्ड मिल रहा है।
2: फील तो अच्छा हुआ सर, हमारी मेहनत का फल मिला है हमारे को, तो हमारा और भी ज्यादा दिल करेगा अच्छी और अच्छे पहलवान तैयार करेगी इसके लिए। और यही है कि और कोचों का भी हौसला बढ़ता है इससे।
1: तो अब जाते जाते आपको बता दें कि फिलहाल यहाँ पर जो कवि प्रिया सेल्वम और सिमरन सिंधी की जो जोड़ी BWF वर्ल्ड चैंपियनशिप में खेल रही थी विमेन्स डबल में, वो हार कर बाहर हो गई हैं। इसी के साथ मुझे कविता शर्मा को अपनी सहयोगी विदुषी वत्स के साथ, प्रोड्यूसर सहनवाज खान के साथ दीजिए अनुमति। नमस्कार।
3: नमस्कार। खेल खिलाड़ी, खेलों का आईना।
4: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। नई दिल्ली के भारत मंडपम में ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों का 12वां सम्मेलन आयोजित किया गया। सम्मेलन में सदस्य देशों के मंत्रियों, वरिष्ठ अधिकारियों, नीति निर्माताओं और विशेषज्ञों ने पर्यावरण सहयोग को मजबूत करने के उपायों पर विचार विमर्श किया। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने सम्मेलन की अध्यक्षता की। भारत के ब्रिक्स अध्यक्षता 2026 का विषय है समायोजन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण। बैठक में श्री यादव ने मानवता को प्राथमिकता देते हुए एक सतत पृथ्वी के निर्माण की दिशा में नीति, प्रौद्योगिकी और जनभागीदारी को समन्वित करने के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि वर्ष 2005 और 2022 के बीच भारत में प्रदूषण उत्सर्जन में 37% से अधिक की कमी आई है। श्री यादव ने कहा कि अध्यक्ष के रूप में भारत एक खुले, रचनात्मक और सर्वसम्मति आधारित संवाद को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है और सभी सदस्य देशों के दृष्टिकोण और योगदान को महत्व देता है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने उत्तर प्रदेश, पंजाब और गुजरात के लिए नए प्रदेश प्रभारी नियुक्त किए हैं। विनोद तावड़े को उत्तर प्रदेश का प्रभारी और जगदीश ईश्वर भाई पटेल को सह प्रभारी बनाया गया है। डॉक्टर सतीश पूनिया को पंजाब का प्रभारी और तरुण चुग को गुजरात का प्रभारी नियुक्त किया गया है। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने विपक्षी दलों पर विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक को लेकर वोट बैंक की राजनीति के लिए गलत सूचना फैलाने का आरोप लगाया है। एक निजी समाचार एजेंसी को दिए साक्षात्कार में उन्होंने कहा कि विपक्ष ने बहुत झूठ फैलाया है और इस तरह की झूठी बातें फैलाकर राजनीति करना गलत है।
5: पूरा झूठ फैलाया देश भर में कि FCRA जो है क्रिश्चियन मिशनरी को टारगेट किया जा रहा है, जबकि क्रिश्चियन मिशनरी का टोटल इंडिया का जो फॉरेन कंट्रीब्यूशन आते हैं वो 16% है, बाकी तो सब हिंदू का है। तो प्रोटेस्ट ज्यादा करना है तो हिंदू लोग करना चाहिए, क्योंकि सबसे ज्यादा तो हिंदू का है। देखिये, इस तरह का झूठे बातें फैला करके राजनीति करना बिल्कुल ठीक नहीं है।
4: श्री रिजिजू ने कहा कि विधेयक विदेशी धन प्रवाह में पारदर्शिता लाएगा। उन्होंने कहा कि विधेयक को संयुक्त संसदीय समिति के पास भेजना सही निर्णय है। हरियाणा पुलिस ने अंतर्राज्यीय बाल तस्कर गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने इस गिरोह के सरगना पंजाब के मुक्तसर निवासी परगट सिंह को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार अब तक मिली जानकारी के आधार पर गिरोह ने देशभर में करीब 50 शिशुओं को बेचा है। इसका नेटवर्क पंजाब से महाराष्ट्र, गुजरात और सिलीगुड़ी समेत 10 से अधिक राज्यों तक फैला हुआ है। पुलिस मामले की जांच कर रही है और शिशुओं के जैविक माता पिता का पता लगाने का भी प्रयास किया जा रहा है। झारखंड में गुमला जिले के डुमरी थाना क्षेत्र में पुलिस ने प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन जनमुक्ति परिषद JJMP के 4 उग्रवादियों को गिरफ्तार किया है। इनमें 5 लाख रुपए का इनामी सब जोनल कमांडर रामदेव लोहरा भी शामिल है। पुलिस महानिरीक्षक अभियान नरेंद्र सिंह ने बताया कि गिरफ्तार आरोपियों से एक AK-56, एक SLR, एक सेमी ऑटोमेटिक राइफल, 146 जिंदा कारतूस, एक वॉकी टॉकी, 8 मोबाइल फोन, एक वाईफाई डोंगल और नक्सली पर्चे बरामद किए गए हैं। केरलम में विजयंजम अंतर्राष्ट्रीय समुद्री बंदरगाह पर आज से सीधा निर्यात और आयात परिचालन शुरू हो गया है, जो इस क्षेत्र के समुद्री व्यापार के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। मुख्यमंत्री VD सतीशन ने विजयंजम से यूरोप के लिए पहले जहाज को 2 कंटेनरों के साथ रवाना किया। महाराष्ट्र में विशेष गहन पुनरीक्षण के तहत मतदाता गणना प्रपत्र जमा करने की अंतिम तिथि कल समाप्त हो गई। इसके साथ ही राज्य में करीब 21.5

द्रोणाचार्य पुरस्कारेण सम्मानिताः भविष्यन्ति। तथैव आर्मी पैरालम्पिक नोर्ड पुणे संस्था राष्ट्रिय क्रीडा प्रोत्साहन पुरस्कारेण अलंकृता भविष्यति। एफआईएच महिला हॉकी विश्व चषक प्रतिस्पर्धायां भारतीय महिला दलम् अद्य सायं नीदरलैंड्स देशस्य एम्स्टेलवीन नगरस्थे वेगनर हॉकी क्रीडांगणे स्वकीय द्वितीय समूह स्तरीय द्वन्द्वे दक्षिण अफ्रीका दलेन सह स्पर्धिष्यते। अवधेयास्पदं वर्तते यत् एषा स्पर्धा भारतीय मानक समयानुसारं सायं सार्धषड्वादने प्रारप्स्यते। इति वार्ताः।

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, DRM 810 किलोहर्ट्स पर। और अब समय है कार्यक्रम ग्राम संसार।

0: राम संसार कार्यक्रम सुनने वाले बहन भाइयों को
1: राम
0: राम
1: राम।
0: राम।
1: तो जो भी हमारे श्रोता इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं उनके साथ ही सभी को हमारा नमस्कार और कार्यक्रम में उनका बहुत बहुत स्वागत है। कार्यक्रम में अपने श्रोताओं को लेके आए हैं हम जानकारी, बातचीत, चर्चा भी करेंगे, मनोरंजन भी करवाएंगे।
0: बिल्कुल। और देखिए कार्यक्रम की शुरुआत शीतल बहन आज हम करेंगे एक ऐसे विषय से जिसका सीधा संबंध हमारे खेतों, हमारे घर और आने वाली पीढ़ियों से है, वो है वर्षा जल संरक्षण।
1: बिल्कुल। बारिश हमारे लिए सिर्फ मौसम की खूबसूरती नहीं बल्कि पानी का एक अनमोल स्रोत भी है। अगर बारिश के पानी को सही तरीके से सहेजा जाए तो ये पानी गर्मियों में हमारी ज़रूरतों को काफ़ी हद तक पूरा करता है।
0: और देखा जाए तो गांव में वर्षा जल संरक्षण की परंपरा कोई नई बात नहीं है। पहले जो तालाब, कुएं और छोटी छोटी जो जल संरचनाएं थी वो बारिश के पानी को रोकने और ज़मीन के भीतर पहुंचने का काम करती थी, लेकिन समय के साथ साथ इसमें कई तरह के बदलाव भी देखने को मिले हैं।
1: तो अब सवाल है कि ग्राम स्तर पर हम ऐसा क्या कर सकते हैं जिससे कि हम जल संरक्षण कर सकें। तो सबसे पहले क्या करना है, जो भी हमारे भाई बहन हैं, जो भी हमारे श्रोता है सुन रहे हैं या जो हम लोग भी हैं, हम लोगों को क्या करना है, सबसे पहले तालाबों, जोहड़ों, पुराने जो भी जल स्रोत हैं उनकी सफाई करनी है और अच्छे से उसका संरक्षण करना है। और बारिश के पानी को सीधा नालियों में बहने देने की बजाय हमें उसको किसी में भर लेना है। आप देखिए, अगर आप कोई बारिश हो रही है, अगर हो सके तो आप उस पानी को भर लें, बाल्टी रख लें या कोई घर में डब्बा हो, कोई भी कंटेनर वगैरह, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसमें हम अपना पानी इकट्ठा करके रखते हैं, उसमें आप इकट्ठा करके उसको रख सकते हैं।
0: जी। और इसके साथ ही खेतों में जो मेड़बंदी है और छोटे जल संग्रह जो गड्ढे हैं उन्हें भी बना सकते हैं। इससे क्या है, जो बारिश का पानी खेतों से बहकर जो है बाहर जाने की वजह कुछ समय तक वहीं रुकेगा और धीरे धीरे वो ज़मीन में भी समा जाएगा।
1: हाँ, और कई बार क्या होता है कि आपके छत से भी पानी, आप देखते हैं ना, एक धार बन के नीचे ज़मीन पे गिर रहा होता है, तो उसको भी बेकार न जाने दें। रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग के ज़रिए भी आप पानी को टैंक में जमा किया जा सकता है, या उचित फिल्ट्रेशन के बाद जैसे कि आप उसको अच्छे से फिल्टर कर सकते हैं। और कुछ भी नहीं है, मैं तो यही कहूँगी, अगर आपके उसको कुछ भी नहीं हो रहा है तो पानी अगर आपके पास जमा है तो आप उसको बहुत अच्छे से उबाल लें, क्योंकि उबालने के बाद क्या भी होता है कि जो भी उसमें विषाणु हैं, जीवाणु हैं, जो भी बैक्टीरिया हैं, वो पानी उबलने के बाद नष्ट होते हैं। अगर आप उसे पीने के लिए भी इस्तेमाल ना करें तो आप उससे बर्तन धो सकते हैं और भी जो घर के ज़रूरी काम हैं आप उसमें इस्तेमाल कर सकते हैं उस पानी को।
0: बिल्कुल शीतल बहन। और भाई अभी ये सावन का महीना है और इस समय बारिश भी बहुत होती है, तो ये मौसम है जिसमें कि हम जल संरक्षण कर सकते हैं। हम जो तालाब है, गड्ढे हैं, उनके अंदर पानी जमा कर सकते हैं और उससे जो हमारे खेत हैं उनकी सिंचाई की जा सकती है। और यही मौसम ऐसा होता है कि जो हमारे पेड़ पौधे होते हैं

0: के लिए फायदेमंद होता है।
1: जी बिल्कुल, क्योंकि ये मौसम होता है बहुत उपजाऊ होता है, क्योंकि इसमें क्या होता है आप कोई भी पेड़ पौधा लगाते हैं तो वो बहुत जल्दी जड़ पकड़ लेता है, मिट्टी में समा जाता है और वो बहुत जल्दी बढ़ने लगता है। तो आप पर्यावरण को भी सुरक्षित रखें। और बातचीत के बाद अब अपने श्रोताओं का करवाएंगे मनोरंजन और सुनेंगे भुल्लन त्यागी की आवाज़ में एक देशभक्ति गीत।

0: दोस्तों देशभक्ति गीत के बाद अब हम आपको सुनाते हैं एक बातचीत। बातचीत का विषय है ग्रामीण विद्यालयों में नवाचार आधारित शिक्षा गतिविधियां, और इसमें हिस्सा ले रहे हैं हर्षित मिश्रा, सहायक आयुक्त हैं केंद्रीय विद्यालय संगठन से, और इनसे बातचीत कर रहे हैं शिव नंदन लाल। आइए सुनते हैं।
1: दोस्तों नमस्कार, आज हम बात करेंगे शिक्षा के, और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 आई थी, उसमें शिक्षा को लेकर के कई सुझाव थे, कई उसमें ऐसे विकल्प भी दिए गए थे जिसमें शिक्षकों के विकास की बात तो की ही गई थी, उसके साथ साथ बच्चों का विकास कैसे हो, जो तकनीकी शिक्षा लेना चाहते हैं तो वो किस तरीके से करें, या कोई बीच में शिक्षा छोड़ देते हैं उनको कैसे लाया जाए और उसको कैसे जोड़ा जाए। लेकिन सबसे बड़ी बात आती है कि शिक्षा तभी आगे बढ़ती है जब उसमें शिक्षक पूर्णतः शिक्षित हों, और शिक्षकों को शिक्षा देने का प्राविधान जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 थी उसमें भी रखा गया था कि किस तरीके से शिक्षकों को भी शिक्षा दी जाए। तो आज हमारा विषय है कि शिक्षक शिक्षा का महत्व, और इस पर विस्तार से जानकारी देने के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर हर्षित मिश्रा जी, जो कि सलाहकार हैं शिक्षा नीति आयोग।

0: नई दिल्ली में। मिश्रा जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। तो सबसे पहले तो जानना चाहूंगा कि ये शिक्षक शिक्षा क्या है?
1: आपने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की बात की है। अगर मैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और जो आज हमारी बातचीत का जो विषय है शिक्षक शिक्षा, इन दोनों को अगर मैं साथ में देखूं तो ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में शिक्षक और शिक्षक शिक्षा यानी टीचर और टीचर एजुकेशन, जब मैं शिक्षक शिक्षा कहता हूं इसका मतलब है टीचर एजुकेशन, तो टीचर और टीचर एजुकेशन पर दो चैप्टर राष्ट्रीय शिक्षा नीति में रखे गए हैं। इसका मतलब है कि जो हमारे नीति नियंता हैं, जो भारत सरकार है, उसका यह मानना है कि टीचर और टीचर एजुकेशन देश की शिक्षा व्यवस्था को आगे ले जाने, माननीय प्रधानमंत्री जी के 2047 के विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एक महत्वपूर्ण साधन है और महत्वपूर्ण संकल्प है, संकल्प से सिद्धि तक पहुंचने का। 2047 का अगर हमें लक्ष्य प्राप्त करना है तो शिक्षक और शिक्षक शिक्षा, टीचर और टीचर एजुकेशन इसके महत्वपूर्ण केंद्र बिंदु हैं। इसलिए एनईपी में, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में टीचर और टीचर एजुकेशन पर विशेष ध्यान दिया गया है, इसलिए इसका बहुत ही ज्यादा महत्व।
0: जी बिल्कुल, कहते हैं कि जो शिक्षक शिक्षा है इतनी महत्वपूर्ण है कि वो छात्रों को शिक्षा ही नहीं देता है, उनकी बुद्धि का भी विकास करता है, और जो समाज में कुरीतियां फैले हैं उनको भी ठीक करने का काम करता है। उसके साथ साथ जो विद्यार्थी हैं उनके अंदर नैतिक ज्ञान का भी विकास करता है। तो किस तरीके की शिक्षा शिक्षकों को दी जाए जिससे कि जो बच्चे या विद्यार्थी होते हैं उनकी नींव मजबूत रहे?
1: देखिए, अगर हम स्कूली शिक्षा की बात करें तो स्कूली शिक्षा को कुछ लेवल्स में आप बांट सकते हैं, जैसे कि एलिमेंट्री एजुकेशन, जैसे कि सेकेंडरी एजुकेशन, जैसे कि हायर सेकेंडरी एजुकेशन। हर लेवल के टीचर के लिए एक विशेष प्रकार की शिक्षा की व्यवस्था की गई है। वो शिक्षा, वो कैपेसिटी बिल्डिंग, उसको हम कहते हैं प्री सर्विस ट्रेनिंग, जिनको कि आम बोलचाल में आपके दर्शक बीएड के नाम से जानते हैं, बैचलर ऑफ एजुकेशन, डिप्लोमा इन एजुकेशन, बैचलर एलिमेंट्री एजुकेशन, और ये कई सारे कोर्सेज आगे तक जाते हैं। जैसे बीएड के बाद काफी सारे बच्चे एमएड करते हैं, मास्टर ऑफ एजुकेशन, एमएड के बाद बच्चे डॉक्टरेट भी एजुकेशन में करते हैं। ये जो पूरा चैनल है, जो कि बीएड से शुरू होता है, जो डॉक्टरेट तक जाता है, ये पूरा का पूरा जो चैनल है, ये सारा का सारा शिक्षक शिक्षा का एक चैनल। इस शिक्षक शिक्षा के चैनल में बीएड के कोर्सेज को हम और आप भली भांति जानते हैं, डिप्लोमा इन एजुकेशन के कोर्सेज को हम और आप भली भांति जानते हैं। इसी के साथ साथ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 ने ये रिकमेंड किया है कि बीएड के प्रोग्राम्स के साथ साथ, जो कि बैचलर ऑफ एजुकेशन के प्रोग्राम हैं, उनके साथ साथ हमें आईटेप नामक कोर्स भी चलाना चाहिए, इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम। और भारत सरकार ने एनईपी 2020 के रिकमेंडेशन को तुरंत ही अमली जामा पहनाते हुए इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम शुरू कर दिए हैं। अब ये इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम क्या है?
0: जी
1: इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम हमने उन स्टूडेंट्स को सोच ध्यान में रख करके बनाया है जो शुरू से ही टीचर बनना चाहता है। इन प्रोग्राम्स के माध्यम से हम उन छात्रों का, उन विद्यार्थियों का, उन कैंडिडेट्स का चयन करते हैं जिनके अंदर उत्कंठा है एक अच्छा टीचर बनने की। ये 4 वर्ष के प्रोग्राम होते हैं, इनको इंटीग्रेटेड इसलिए कहा गया है, फॉर एग्जाम्पल बीए बीएड, बच्चा 4 साल का कोर्स करेगा और प्रोग्राम का नाम है बीए बीएड। वो 4 साल के बाद जब अपना कोर्स पूरा करके बाहर निकलेगा तो वो बीए बीएड प्रोग्राम करके एक शिक्षक बन चुका होगा, एक स्टूडेंट टीचर बन चुका होगा, बीएससी बीएड, बीकॉम बीएड। तो चूंकि इसमें परंपरागत एकेडमिक डिग्री के साथ बीएड की पढ़ाई भी है और इनको इंटीग्रेटेड रूप से एक इनको पेडागोजिकली शिक्षक शिक्षा के लिए प्रोग्राम बनाया गया है, तो बीए बीएड, बीएससी बीएड, बीकॉम बीएड, इनको आईटेप बोला गया, इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम। एनईपी 2020 ने इनकी अनुशंसा की थी और भारत सरकार ने इसको लागू कर दिया है। इसका आईटेप के प्रोग्राम के चयन के लिए पूरे भारतवर्ष में एक नेशनल लेवल परीक्षा का आयोजन होता है और अगर उन्हें एक शिक्षक बनना है, एक मोटिवेटेड शिक्षक बनना है, एक आदर्श शिक्षक बनना है, तो मेरा उनसे निवेदन है कि आईटेप प्रोग्राम आपके लिए ही बना हुआ है।
0: जी बिल्कुल, हम बात कर रहे हैं शिक्षक शिक्षा के। तो पहले भी शिक्षक बनते थे, पहले भी सारी ट्रेनिंग लेते थे, बीएड भी होते थे, जितने डिप्लोमा भी करते थे, लेकिन जो NEP 2020 आई है इसमें क्या अंतर है पहले से लेकर के?
1: देखिए, एनईपी ने ये माना है कि जो हमारे लर्निंग आउटकम्स हैं, जैसा माननीय प्रधानमंत्री

0: जी बार बार हमें आदेशित करते रहते हैं संकल्प से सिद्धि का, जो उनका मूल मंत्र है। अगर हमें अपने संकल्प को सिद्धि तक पहुंचाना है, एनईपी ने जो संकल्प लिया है उसको हमें सिद्धि तक पहुंचाना है, तो हमें क्वालिटी एजुकेशन पर ध्यान देना होगा, हमें लर्निंग आउटकम्स पर ध्यान देना होगा, यही एनईपी कह रही है। भारत सरकार ने एनईपी की जितने भी रिकमेंडेशंस हैं उनको मानते हुए क्वालिटी एजुकेशन पर, लर्निंग आउटकम पर और ज्यादा ध्यान देने पर बल दिया है, और इसी के तहत आईटेप प्रोग्राम, इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम शुरू किए गए हैं। ये जो प्रोग्राम है ये पहले से चलते हुए प्रोग्रामों को उनको एक रिवाइज रूप में आगे बढ़ाते हैं। नॉन आईटेप और आईटेप प्रोग्राम में क्या फर्क है? आईटेप प्रोग्राम में शिक्षा की गुणवत्ता पर जोर दिया गया है। आईटेप प्रोग्राम की मूल अवधारणा ही ये है कि 4 साल के आईटेप प्रोग्राम के बाद एक अच्छा उत्कृष्ट आदर्श शिक्षक बन के निकलेगा, जो अपने क्लासरूम में, अपने लर्निंग आउटकम में मोटिवेशन से काम करेगा, एनर्जाइज तरीके से काम करेगा, और जो हमारे लर्निंग आउटकम के टारगेट्स हैं, जो हमारे क्लास वाइज टारगेट हैं, क्लास 1 के बच्चे का लर्निंग आउटकम क्या होना चाहिए, क्लास 2 के बच्चे का ग्रेड लेवल कंपिटेंसी क्या होनी चाहिए, क्लास 11 के बच्चे का ग्रेड लेवल कंपिटेंसी क्या होना चाहिए, तो जो आईटेप शिक्षक हैं वो उसको और ज्यादा बल दे करके पूरा करेंगे, क्योंकि उनका कोर्स उसी तरह से डिजाइन किया गया है।
1: जी बिल्कुल, निश्चित तौर पे अगर हमारे शिक्षक शिक्षित होंगे तभी बच्चों को अच्छी शिक्षा दे पाएंगे। लेकिन इसमें किस तरीके के कोर्स जो बच्चों को अगर पढ़ाया जाएगा, मान लीजिए टीचर आपके आईटेक प्रोग्राम करके आ गए, फिर उनको किस तरीके से ये लर्निंग एजुकेशन या प्रैक्टिकल एजुकेशन?
0: आईटेप प्रोग्राम ही नहीं, पूरी की पूरी एनईपी का जोर इस बात पर है कि जो शिक्षा हो वो एक्सपीरियंशियल लर्निंग हो, वो हैंड्स ऑन लर्निंग हो, वो सिर्फ थ्योरी बेस्ड एजुकेशन ना हो,
1: जी
0: वो थ्योरी और प्रैक्टिकल बेस्ड एजुकेशन हो, जिसको कि एक्सपीरियंशियल लर्निंग का नाम दिया गया है। और इसी एक्सपीरियंशियल लर्निंग को, इसी हैंड्स ऑन लर्निंग को न केवल क्लासरूम में एनईपी की संकल्पना में उतारा गया है, बल्कि जो प्री सर्विस टीचर एजुकेशन है, जो हमारी बीएड की कक्षाएं हैं, जो हमारी आईटेप की कक्षाएं हैं, जो हमारा डिप्लोमा इन एजुकेशन की कक्षाएं हैं, जितना भी हमारा प्री सर्विस टीचर एजुकेशन का कोर्स है, उन सारे कोर्सेस को भी एक्सपीरियंशियल मोड में, हैंड्स ऑन लर्निंग मोड में चलाए जाने का प्रावधान कर दिया गया है। अब हमारे टीचर का जो ट्रेनिंग ही होगा वो ट्रेनिंग सिर्फ थ्योरी बेस्ड नहीं होगा, उसमें एक्सपीरियंशियल लर्निंग होगा, उसमें क्लासरूम लर्निंग होगा, उसमें स्कूल अटैच करके उनका लर्निंग संवर्धन किया जाएगा। तो ये सारा का सारा उपक्रम ही इसलिए किया जा रहा है कि हमें बच्चों को रोट लर्निंग, जो रट्टा मारने वाली प्रथा है, उस रोट लर्निंग से छुटकारा दिला करके कंपिटेंसी बेस्ड लर्निंग, एक्सपीरियंशियल बेस्ड लर्निंग की तरफ ले जाना है।
1: जी बिल्कुल, हमारे प्रधानमंत्री जी भी कुछ न कुछ नया करते हैं, क्योंकि जो हमारे कुछ स्कूलों में उन्होंने शुरू किया था अटल टिंकरिंग लैब, जिसमें भी बच्चे अपने द्वारा कुछ विकसित करते हैं, उसमें जो टीचर हैं उनका बहुत बड़ा उसमें सहयोग रहता है। इसके द्वारा किस तरीके से बच्चों का विकास किया जाए?
0: जी, अटल टिंकरिंग लैब का आपने बहुत अच्छा उदाहरण दिया है, ये एक ज्वलंत उदाहरण है। भारत सरकार और नीति आयोग इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। 10,000 से ज्यादा अटल टिंकरिंग लैब की स्थापना हो चुकी है, और अटल टिंकरिंग लैब के माध्यम से साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स, स्टेम एजुकेशन में बच्चों को एक्सपीरियंशियल लर्निंग, हैंड्स ऑन लर्निंग, खुद करके सीखने की विधा, उनमें इनोवेटिव आइडियाज को जगाने की बात अटल टिंकरिंग लैब के द्वारा पूरी की जा रही है। अटल टिंकरिंग लैब से जो बच्चे आगे निकल रहे हैं, ये देखा जा रहा है कि वो बच्चे स्टार्टअप वाली दिशा में
1: जी
0: अग्रसर हैं, एंटरप्रेन्योरियल स्किल्स उनमें डेवलप हो रही हैं। तो ये सारी की सारी चीजें एक्सपीरियंशियल लर्निंग, इनोवेटिव लर्निंग, हैंड्स ऑन लर्निंग की दिशा में सरकार जो काम कर रही है, अटल टिंकरिंग लैब उसका एक बेस्ट प्रैक्टिस है, एक बहुत अच्छा यूज केस स्टडी है। ना केवल भारतीय रिसर्च बल्कि कई सारे इंटरनेशनल रिसर्च ने अटल टिंकरिंग लैब के कामों को सराहा है। और मैं एक बार आपको बता दूं कि अटल टिंकरिंग लैब केवल सरकारी विद्यालयों में ही नहीं है, अटल टिंकरिंग लैब प्राइवेट स्कूलों में भी लगाई गई हैं, और कई सारी मानद अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं ने अटल टिंकरिंग लैब के जो प्रयास हैं उनके द्वारा जो लर्निंग आउटकम में वृद्धि हुई है, उनके द्वारा जो छात्र छात्राओं की, विद्यार्थियों की साइंस एजुकेशन में जो रुझान उनका बढ़ा है, उनके द्वारा जो उनका इनोवेटिव स्किल डेवलपमेंट हुआ है, इन सबके आउटकम तमाम सारे इंडिपेंडेंट थर्ड पार्टी इवेल्यूएशन में सामने आए हैं। सरकार ने इन सुझावों को मान करके अटल टिंकरिंग लैब की संख्या को दुगना करने का संकल्प लिया है, और अटल टिंकरिंग लैब एक बहुत अच्छा ज्वलंत उदाहरण है कि भारत स्टेम एजुकेशन की दिशा में, इंटरप्रेन्योरियल स्किल की दिशा में, इनोवेशन की दिशा में आगे बढ़ रहा है।
1: जी बिल्कुल आगे बढ़।

0: रहा है, लेकिन जो शहरी शिक्षा है या जो बड़े बड़े शहर हैं, मेट्रो शहर हैं, वहाँ पे तो सारी सुविधाएं मिल जाती हैं। जो हमारा ग्रामीण क्षेत्र है वहाँ पर थोड़ा एजुकेशन का सिस्टम उस तरीके से अभी तक प्रभावी नहीं है, उसको सुधारने के लिए क्या आप कहना चाहेंगे?
1: देखिए, भारत सरकार की जो शिक्षा की सबसे बड़ी योजना चल रही है, समग्र शिक्षा, जिसके अंतर्गत देश के लगभग जितने भी सरकारी स्कूल हैं उनमें 60:40 के हिसाब से फंडिंग हो रही है, वो सारा का सारा पैसा समग्र शिक्षा के माध्यम से जाता है। और समग्र शिक्षा के अंतर्गत क्लास 1 से क्लास 12 ज्यादातर विद्यालय हमारे जो ग्रामीण अंचलों में स्थित हैं उस पर ही समग्र शिक्षा का पूरा जोर है। अभी हमारा जो एक प्रोग्राम है जिसको कि पीएम श्री नाम दिया गया है, करीब 15,000 पीएम श्री स्कूल्स भारत सरकार ने बनाए हैं, और भारत सरकार ने पीएम श्री स्कूल्स को इस तरह से डेवलप किया है कि वो एनईपी, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के क्रियान्वयन का एक जो आदर्श विद्यालय का मॉडल होना चाहिए, ऐसा मॉडल हमारे पीएम श्री स्कूल अपने अपने जिलों को, अपने अपने राज्यों को दिखा रहे हैं, और सारे के सारे पीएम श्री बहुत ही अच्छे इम्प्लीमेंटेशन मॉडल में काम कर रहे हैं। तो समग्र शिक्षा का पूरा जोर ग्रामीण अंचलों में है। आज को हमारे ग्रामीण अंचल के विद्यालय हमारे शहरी विद्यालयों को बराबर की टक्कर दे रहे हैं। ग्रामीण अंचल के विद्यालयों में फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और अन्य प्रकार की सुविधाओं से उनको परिपूर्ण किया जा रहा है। तमाम सारे राज्य अपने समग्र शिक्षा के अंतर्गत अपने अपने कार्यक्रम चला रहे हैं। मैं उदाहरण देना चाहूंगा, उत्तर प्रदेश जैसे राज्य ने ऑपरेशन कायाकल्प, जो कि समग्र शिक्षा के माध्यम से चलाया गया, उसने अपने रिमोट स्कूलों की ग्रामीण अंचलों में स्थित उसके फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को बहुत ही अच्छे लेवल तक पहुंचा दिया है। भारत सरकार का सारे राज्य सरकारों के माध्यम से ग्रामीण अंचलों में स्थित स्कूलों पर पूरा ध्यान है। समग्र शिक्षा अभियान उन्हीं के लिए विशेषता चल रहा है। पीएम श्री योजना में हर ब्लॉक के 2 स्कूल लिए गए हैं। एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम, एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम, ये सारे के सारे प्रोग्राम इन्हीं ग्रामीण अंचलों में स्थित स्कूल की आवश्यकताओं को एड्रेस करने के लिए चलाए जा रहे हैं। और अभी आईटेप एलिमेंट्री एजुकेशन, आईटेप सेकेंडरी एजुकेशन के प्रोग्राम चल रहे हैं। बहुत ही जल्दी भारत सरकार के द्वारा आईटेप योगा एजुकेशन, आईटेप फिजिकल एजुकेशन, आईटेप संस्कृत एजुकेशन जैसे प्रोग्राम भी लॉन्च किए जाने की योजना है।
0: जी बिल्कुल, आज आपने विस्तार से बताया कि किस तरीके से शिक्षक शिक्षा द्वारा शिक्षा का विकास किया जा सकता है और देश के शिक्षा तंत्र में शिक्षक का क्या महत्व है, उस पर आपने विस्तार से जानकारी दी। डॉक्टर हर्षित मिश्रा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: श्रोताओं, आपने सुनी ग्रामीण विद्यालयों में नवाचार आधारित शिक्षा गतिविधियां, इसमें हिस्सा लिया हर्षित मिश्रा ने, और इनसे बातचीत कर रहे थे शिवनंदन लाल। और इस बातचीत से एक बात तो साफ है कि बच्चों को बेहतर शिक्षा देने के लिए सिर्फ किताबों तक सीमित रहना जरूरी नहीं है, क्योंकि सिर्फ किताबों का ज्ञान ही बच्चों के लिए काफ़ी नहीं है, क्योंकि उसके लिए प्रयोग करना बहुत ज़रूरी है, और हमें प्रैक्टिकली भी उन्हें ज़िंदगी में हर चीज़ सिखाने के लिए वो प्रयोग करके दिखाने पड़ेंगे और समझाना पड़ेगा। बिल्कुल शीतल बहन, तकनीकी जो ज्ञान है उसको भी जानकारी लेना बहुत ज़रूरी है, और ख़ास करके ग्रामीण क्षेत्र में उपलब्ध संसाधनों का सही इस्तेमाल करके बच्चों में नई सोच और सीखने की जिज्ञासा पैदा की जा सकती है। और इसी के साथ श्रोताओं को बता दें कि हमारा फ़ोन इन कार्यक्रम जो मंगलवार को जाता था वो बुधवार को जाने लगा है। तो इंडियन पोटाश लिमिटेड द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम ग्राम संसार एवं कृषि जगत जो हमारा जाता है इंद्रप्रस्थ चैनल पे, फ़ोन इन कार्यक्रम गन्ने की पाठशाला, वो कल बुधवार यानी कि कल 19 अगस्त शाम 6:30 बजे ग्राम संसार में प्रसारित किया जाएगा, और उसका विषय रहेगा गन्ना फसल में रोग नियंत्रण। बिल्कुल ये विषय रहेगा, इस विषय से संबंधित जो भी आपकी कोई समस्या हो तो आप हमारे जो विशेषज्ञ हैं उनसे जुड़ सकते हैं और इस समस्या का समाधान पा सकते हैं। बिल्कुल, फ़ोन नंबर हमारे वही रहेंगे दोस्तों, 23-42-10-82, और दूसरा हमारा फ़ोन नंबर रहेगा 23-42-10-83। दिल्ली के बाहर के श्रोता इन फ़ोन नंबर के आगे जो लैंडलाइन नंबर है इनके आगे 011 जो दिल्ली का एसटीडी कोड है उसे लगाना ना भूलें। बिल्कुल 6:30 से 7 बजे ग्राम संसार, फिर उसके बाद हमारे कृषि जगत कार्यक्रम के अंतर्गत ये कार्यक्रम जो है जारी रहेगा, और विषय रहेगा गन्ने फसल में रोग नियंत्रण। बिल्कुल, आज का हमारा ग्राम संसार कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। कार्यक्रम सुनने वाले सभी बहन भाइयों को राम राम। कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे तुषार पारासर और संयोजक थे शिवनंदन लाल।

0: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 के लोहर्ट्स, DRM 810 के लोहर्ट्स पर। और अब से कुछ ही देर में हम सुनेंगे हिंदी में समाचार। नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। भारत ने नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों के 12वें सम्मेलन में जन केंद्रित और कार्यान्वयन आधारित पर्यावरण उपाय करने का आह्वान किया है। इसका आयोजन 2026 में भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता के तहत किया गया दो दिवसीय सम्मेलन आज संपन्न हुआ। बैठक में केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने सतत पृथ्वी के निर्माण की दिशा में प्रौद्योगिकी और जन भागीदारी को समन्वित करने के महत्व पर जोर दिया। बैठक में सदस्य देशों के मंत्रियों, वरिष्ठ अधिकारियों, नीति निर्माताओं और विशेषज्ञों ने पर्यावरण सहयोग को मजबूत करने के उपायों पर विचार विमर्श किया। श्री यादव ने कहा कि अध्यक्ष के रूप में भारत एक खुले, रचनात्मक और सर्वसम्मति आधारित संवाद को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है और सभी सदस्य देशों के दृष्टिकोण और योगदान को महत्व देता है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने आंध्र प्रदेश में गांव से लेकर बूथ स्तर तक पार्टी संगठन को मजबूत करने और जनता से निरंतर संपर्क बनाए रखने का आह्वान किया है। विशाखापट्टनम में आज भाजपा की राज्य कार्यकारी समिति की बैठक में उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं से 2047 तक एक विकसित भारत के निर्माण की दिशा में काम करने का आग्रह किया। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने उत्तर प्रदेश, पंजाब और गुजरात के लिए नए प्रदेश प्रभारी नियुक्त किए हैं। विनोद तावड़े को उत्तर प्रदेश का प्रभारी और जगदीश ईश्वर भाई पटेल को सह प्रभारी बनाया गया है। डॉ. सतीश पूनिया को पंजाब का प्रभारी और तरुण चुघ को गुजरात का प्रभारी नियुक्त किया गया है। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने विपक्षी दलों पर विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक को लेकर वोट बैंक की राजनीति के लिए गलत सूचना फैलाने का आरोप लगाया है। एक निजी समाचार एजेंसी को दिए साक्षात्कार में उन्होंने कहा कि विपक्ष ने बहुत झूठ फैलाया है और इस तरह की झूठी बातें फैलाकर राजनीति करना गलत है।
1: पूरा झूठ फैलाया देश भर में है कि FCRA जो है क्रिश्चियन मिशनरी को टारगेट किया जा रहा है, जबकि क्रिश्चियन मिशनरी का टोटल इंडिया का जो फॉरेन कंट्रीब्यूशन आते हैं वो 16% है, बाकी तो सब हिंदू का है। तो प्रोटेस्ट ज्यादा करना है तो हिंदू लोग करना चाहिए, क्योंकि सबसे ज्यादा तो हिंदू का है। देखिए, इस तरह का झूठे बातें फैला करके राजनीति करना बिल्कुल ठीक नहीं है।
0: श्री रिजिजू ने कहा कि ये विधेयक विदेशी धन प्रवाह में पारदर्शिता लाएगा। उन्होंने कहा विधेयक को संयुक्त संसदीय समिति के पास भेजना सही निर्णय है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि दिल्ली में हाल ही में हुए विद्यार्थियों के प्रदर्शनकारी के खिलाफ पुलिस की कथित कार्रवाई और पुलिसकर्मियों के खिलाफ हिंसा के आरोपों की जांच के लिए एक उच्च स्तरीय समिति गठित की जाएगी। समिति में सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीशों के अलावा पूर्व पुलिस महानिदेशक और पूर्व CBI निदेशक शामिल होंगे। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि समिति के अन्य सदस्यों के नाम पर विभिन्न पक्षों से सुझाव मिलने के बाद कल आदेश जारी किया जाएगा। झारखंड में गुमला जिले के डुमरी थाना क्षेत्र में पुलिस ने प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन जन मुक्ति परिषद JJMP के 4 उग्रवादियों को गिरफ्तार किया है। इनमें 5 लाख रुपए का इनामी सब जोनल कमांडर रामदेव लोहरा भी शामिल है। हरियाणा पुलिस ने अंतर्राज्यीय बाल तस्कर गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने गिरोह के सरगना पंजाब के मुक्तसर निवासी परगट सिंह को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार गिरोह ने देशभर में करीब 50 शिशुओं को बेचा है। भारत ने इंडोनेशिया में आए भीषण भूकंप से हुए जानमाल की हानि पर गहरा शोक व्यक्त किया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने नई दिल्ली में संवाददाताओं को बताया कि भारत इस त्रासदी से बेहद दुखी है और मृतकों के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करता है। गोल में पहले क्रिकेट टेस्ट मैच में भारत के 372 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए श्रीलंका ने चौथे दिन का खेल

होने तक 4 विकेट पर 84 रन बना लिए थे। इससे पहले आज भारत की दूसरी पारी 193 रन पर सिमट गई। भारत को पहली पारी के आधार पर 178 रन की बढ़त मिली थी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्ज़, DRM 810 किलो हर्ट्ज़ पर। और अब आइए सुनते हैं किसान वाणी।

0: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना से लघु सीमांत किसानों का भविष्य होगा सुरक्षित
1: और 60 वर्ष की आयु से 3000 रुपए मासिक पेंशन होगी सुनिश्चित।
0: 55 रुपए से 200 रुपए की मासिक किस्त देकर प्रवेश कर सकते हैं 18 से 40 वर्ष तक के किसान।
1: इस अंशदायक योजना में सरकार देगी बराबर का योगदान।
0: सभी किसान भाई बहन इस योजना के लाभ के लिए जनसेवा केंद्र में जाएं
1: और अपना निःशुल्क नामांकन कराएं।
0: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, अन्नदाता के परिश्रम को संबल, पेंशन से सुरक्षित उनका कर।
2: कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
3: किसान वाणी कार्यक्रम सुनने वाले सभी किसान भाई बहनों को नमस्कार। रजनीश, देखिए मौसम कितना खूबसूरत है और ये सावन का महीना है और ये महीना हमें भगवान शिव की आराधना के साथ साथ प्रकृति के प्रति आभार व्यक्त करने का संदेश भी देता है।
4: बिल्कुल सही कहा प्रतिमा, हमारे सभी तीज त्योहार प्रकृति के साथ जुड़ने का संदेश देते हैं क्योंकि सही मायनों में हमें जो ऊर्जा मिलती है वो प्रकृति से ही मिलती है।
3: और देखिए इसीलिए हम आज के कार्यक्रम में हरी प्याज उत्पादन की उन्नत तकनीकें पर और राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन पर हमारी चर्चा होगी और साथ ही आजादपुर मंडी के सब्जियों और फलों के ताज़ा भाव और कृषि सलाह भी देंगे।
4: बिल्कुल सही कहा प्रतिमा।
3: रजनीश, हमारी सरकारें हमारे किसान भाई बहनों के लिए बहुत सी योजनाएं चलाती हैं। उन्हीं योजनाओं में से राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन योजना किसान भाइयों और बहनों को एक ऐसा उद्देश्य लेकर आती है जिसमें खेती को अधिक टिकाऊ, जलवायु अनुकूल और लाभकारी बनाना है। इसके तहत जल संरक्षण, मिट्टी की उर्वरता बनाए रखने, सूक्ष्म सिंचाई और प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग पर जोर दिया जाता है।
4: बिल्कुल सही कहा प्रतिमा, और इसका एक उद्देश्य ये भी है कि फसल के साथ पशुपालन और बागवानी को जोड़ना, साथ ही साथ वर्षा आधारित क्षेत्र का विकास करना और मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन पर भी बात करना और उसके बारे में लोगों को जागरूक करना और पर ड्रॉप मोर क्रॉप के जरिए सूक्ष्म सिंचाई का विस्तार करना भी इस सतत कृषि मिशन का उद्देश्य है।
3: और इसीलिए जो हमारे कृषि वैज्ञानिक होते हैं ना, समय समय पर हमें जानकारी देते हैं कि आप सूक्ष्म सिंचाई पद्धति अपनाएं और साथ ही कम संसाधनों में बेहतर उत्पादन और आने वाली पीढ़ियों के लिए सुरक्षित कृषि, यही इस मिशन का मुख्य उद्देश्य है।
4: और प्रतिमा देखिए, हम सबको राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन का उद्देश्य है उसका पालन करना चाहिए क्योंकि अगर हम इसका पालन करेंगे तभी हम इन उद्देश्यों की पूर्ति कर पाएंगे और अपनी आने वाली पीढ़ियों को एक अच्छी, कहते ना कि एक अच्छा वातावरण दे पाएंगे।
3: और हम तो सभी किसान भाई बहनों से ये भी कहते हैं कि देखिए वर्षा हो रही है इस समय और जहां जहां वर्षा हो रही है वहां जल संरक्षण जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा जो आज का विषय है, हरी प्याज उत्पादन की उन्नत तकनीकें। आज हमारे साथ हैं हमारे विशेषज्ञ पूर्व अध्यक्ष शाखीय विज्ञान संभाग भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा नई दिल्ली से।
2: डॉक्टर साहब, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन।
5: धन्यवाद।
2: तो डॉक्टर साहब, जैसा विषय है हरी प्याज का, तो हमारे बहुत सारे ऐसे किसान भाई बहन हैं जो हरी प्याज की खेती करते आ रहे हैं, लेकिन बहुत सारे हमारे ऐसे नए श्रोता होते हैं जिनकी उत्सुक होते हैं कि आखिर कैसे किया जाए, हरी प्याज क्या, इसकी विशेषताएं हैं और ये हरी प्याज को कहीं भी उगा सकते हैं या इसके लिए

0: जो खेत है वो विशेष होना चाहिए।
1: देखिए, हरी प्याज सब्जियों में महत्वपूर्ण सब्जी मानी जाती है और सलकंद के लिए प्याज उत्पादन करते हैं, उससे ये इसकी खेती थोड़ी भिन्न है, क्योंकि जो सलकंद के लिए उत्पादन करते हैं उसमें हमारा मुख्य लक्ष्य होता है सलकंद को अधिक उपज प्राप्त करना। लेकिन जब हमारी प्याज की खेती करते हैं तो हमारा उद्देश्य रहता है कि हम ऐसे खेतों में उसकी रोपाई करें जिससे कि उस पर वानस्पतिक बढ़वार तेजी से हो और अधिक हो, और ये उन किस्मों का चयन करते हैं जो सफ़ेद रंग की हों और साथ साथ उनका तना मोटा हो और तेजी से वृद्धि करने वाली हों। तो ये कुछ विशेषताएं हैं हरी प्याज की खेती की, जिसको हमारे किसान भाइयों को ध्यान में रखना चाहिए, और अगर वो इसको ध्यान में रखते हैं तो निश्चित रूप से उनको हरी प्याज की जो खेती है उसको करने में उनको लाभ भी होता है और उनको उत्पादन भी अच्छा मिलता है।
0: बिल्कुल डॉक्टर साहब, लेकिन जब बात आती है कि हम किस प्रकार से उनकी किस्मों को चुनें, उत्पादन कितना होगा, तो ध्यान जाता है उन्नत किस्मों की ओर, जिनमें आज वैज्ञानिक अनुसंधान करके नई नई किस्में इजाद कर रहे हैं। इस जलवायु परिवर्तन में कोशिश होती है कि हमारी फसलें कम से कम प्रभावित हों और उत्पादन अच्छा मिले, लागत कम हो, तो उसके लिए कौन सी उन्नत किस्में किसान भाइयों को चुननी चाहिए?
1: देखिए, हरी प्याज की खेती के लिए सफेद रंग की जो प्याज है, बल्ब देने वाली किस्में हैं, उनका चयन करना है। और उसमें मैं बताना चाहूंगा कि दो किस्में तो भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा नई दिल्ली के शाखा विज्ञान ने विकसित किए हैं, पूसा व्हाइट फ्लैट, पूसा व्हाइट राउंड, और दो किस्में हमारे क्षेत्रीय केंद्र कटराइन में हैं, जो कुल्लू हिमाचल प्रदेश में, वहां से भी विकसित हुई है, अर्ली ग्रेनो और ब्राउन स्पेनिश। इसके अलावा पंजाब कृषि विश्वविद्यालय लुधियाना एक किस्म है पंजाब सफेद, और पुणे के अंदर एक संस्थान है राष्ट्रीय प्याज एवं लहसुन अनुसंधान संस्थान, DOGR बोलते हैं, उनकी भी भीमा सफेद के नाम से किस्म है, जिनको हमारे किसान भाई हरी प्याज की खेती के लिए इस्तेमाल करते हैं। अब आपके मन में निश्चित रूप से ये एक शंका आई होगी या विचार आया होगा कि सफेद किस्मों को ही क्यों हम हरी प्याज के लिए इस्तेमाल में लाएं। मैं अपने किसान भाइयों को बताना चाहूंगा कि जो सफेद रंग की किस्में हैं उनका जो तना जब तैयार होता है वो सफेद रंग का ही रहता है, और जो लाल रंग की प्याज होती है तो उनका तना लाल रंग का होता है और उसमें किसान को अतिरिक्त परिश्रम करना पड़ता है, उनके लाल रंग के छिलकों को छीलना पड़ता है ताकि वो आकर्षक बन जाए। तो ऐसे में पहले ही हमको इस बात की सावधानी रखनी है कि हम सफेद सलकंद उत्पादन देने वाली किस्मों का चयन करें, और ब्राउन स्पेनिश या ये जो अर्ली ग्रेनो है, एक किस्म और है हमने पूसा संस्थान में ही विकसित की थी, पूसा शोभा है और पूसा रिद्धि, वो लाल रंग की है लेकिन उसको हम हरी प्याज के लिए भी रिकमेंड करते हैं क्योंकि उसका तना भी मजबूत होता है और बाहर किसान को अच्छा मिलता है। तो ये किस्मों का चयन किसान भाई कर सकते हैं सफेद रंग की, उससे उनको बाजार में अच्छा मूल्य मिलने की संभावना है।
0: डॉक्टर साहब, जो आज हमारे किसान भाई बहन कार्यक्रम सुन रहे होंगे और मन में जिज्ञासा होगी, जो ये समय चल रहा है कि जैसे डॉक्टर साहब बता रहे हैं कि मैंने किस्में चुनूं और मैंने लगाना चाहूं, तो उन्हें पौध लगाने चाहिए क्या तरीका रहेगा, या पौध लगाने का समय निकल चुका है तो क्या सीधी
1: इसकी रोपाई कर सकते हैं? आपका प्रश्न बहुत व्यावहारिक है। प्याज दो प्रकार से उत्पादित होती है, एक तो होती है बीज की पौधशाला में बिजाई करें और पौध तैयार करें, उसमें लगभग बारिश के मौसम में 35 से 38 दिन का समय लगता है, उसके बाद पौधे रोपाई के लिए तैयार होते हैं। और दूसरी जो प्रचलित पद्धति है वो है कि गंठियों से भी हम हरी प्याज का उत्पादन ले सकते हैं, और मैं किसान भाइयों को सुझाव देना चाहूंगा कि अगर आप जल्दी और अधिक पैदावार लेना चाहते हैं तो आप गंठियों का इस्तेमाल करें, और गंठियों में भी सफेद किस्म की गंठियों का इस्तेमाल करें, लाल रंग की गंठियों का इस्तेमाल ना करें, और गंठियों को किसान भाई सीधे उनकी बिजाई कर सकते हैं, उसमें पौध तैयार करने की जरूरत है, बस एक ही बात का ध्यान रखना है कि वो सुसुप्तावस्था में नहीं होनी चाहिए। कई बार जो किसान है वो देर से खुदाई करते हैं तो उसमें सुसुप्त अवस्था रहती है और डोरमेंसी की वजह से उनमें जमाव नहीं हो पाता, और जमाव या बहुत धीमी गति से होता है, ऐसे में फसल की अवधि बढ़ जाती है। फसल अवधि बढ़ने से किसान का लागत बढ़ती है क्योंकि उसको पानी देना, निराई गुड़ाई करना, और उसका जो लक्ष्य है कि मुझे जल्दी 45 दिन के अंदर या 50 दिन के अंदर हरी प्याज बाजार में लेनी है, क्योंकि वो एक ऐसा समय होता है अगर किसान भाई अभी बिजाई करते हैं तो अक्टूबर के मध्य तक ये बहुत अच्छे भाव मिलने की संभावना रहती है। तो ये लक्ष्य रख के चलना है कि हमें गंठियों से ही बिजाई करनी है और अभी तुरंत बिजाई कर सकते हैं।
0: बिल्कुल डॉक्टर साहब, आपके द्वारा बताए गए लक्ष्य की ओर अग्रसर होते हुए जब हमारे किसान भाई बहन चाहते हैं कि हम गंठियों से बिजाई करें, तो बीज कहाँ से प्राप्त करें और किस मात्रा में बीज का प्रयोग हमें करना चाहिए?
1: देखिए, अगर गंठियों से इस्तेमाल करते हैं तो गंठियों का एक हेक्टेयर में 4 से 5 क्विंटल गंठियां लगती हैं सामान्य खरीफ प्याज के लिए
0: जी।
1: लेकिन यहाँ पे अगर हमारे किसान भाई 6 क्विंटल भी इस्तेमाल कर लेते हैं तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। एक हेक्टेयर में अगर लगाना चाहते हैं तो कम से कम 6 क्विंटल गंठियों का इस्तेमाल करें, और गंठियां मध्यम आकार की होनी चाहिए, बहुत मोटी भी नहीं।

0: जी बहुत छोटी नहीं होनी चाहिए, या अगर आपको बाजार में गंठियां मिलती हैं और वो ग्रेडिंग नहीं की हुई है तो आप उसको छलनी लगा करके छोटी गंठियों को निकाल सकते हैं और बड़ी गंठियों को और मध्यम आकार की गंठियों को रोपाई के लिए इस्तेमाल में ला सकते हैं। और गंठियां जो हैं आजादपुर मंडी में भी बहुत सारे बेचते हैं, नहीं तो हमारा जो अलवर भरतपुर का एरिया है यहाँ पे
1: जी
0: किसान व्यावसायिक रूप से गंठियों का उत्पादन करते हैं। बहुत सारे किसान गुजरात से भी गंठियां लेके आते हैं, महाराष्ट्र से भी लेके आते हैं, महाराष्ट्र के कई क्षेत्रों में गुजरात के किसान इसको एक उद्योग व्यवसाय के रूप में अपनाते हैं और गंठियां प्याज करते हैं, क्योंकि वो खरीफ उत्पादन के लिए प्याज अधिकतर हमारे देश में जो लगती है वो सारी गंठियों से ही लगती है।
1: डॉक्टर साहब, जैसा कि विषय है हरी प्याज का उत्पादन, तो कई बार हमारे किसान भाई बहन सोचते हैं कि आज सामान्य प्याज से बात हटकर हो रही है, तो हरी प्याज का उत्पादन किस प्रकार से लाभकारी किसानों को सिद्ध होता है?
0: देखिए कुछ लोग तो 15 जुलाई 20 जुलाई के आसपास रुपाई कर देते हैं
1: जी
0: और कुछ लोग अलग अलग समय पर करते हैं। उसका कारण ये होता है कि अगर सारी प्याज की रुपाई एक साथ कर देते तो बाजार में तैयार होकर के एक साथ आएगी,
1: जी
0: इससे बाजार में जब माल ज्यादा जाएगा तो उसके भाव कम मिलने की उम्मीद हो जाती है। तो एक तो ये है कि हमारे किसान भाई बाजार की मांग को समझते हुए उसको स्प्लिट प्लांटिंग करते हैं या स्टेगर्ड प्लांटिंग करते हैं अलग अलग समय, ताकि लंबे समय तक वो बाजार में हरी प्याज का उत्पादन निरंतर रूप से दे सकें। दूसरा ये है कि हरी प्याज में कीड़ों की संभावना इस समय कम होती है, क्योंकि बारिश का मौसम नमी रहता है और जहाँ पे हरी प्याज की किसान भाई खेती करते हैं वो लगभग सिंचित क्षेत्र होते हैं, तो उसमें थ्रिप्स आने की भी संभावना बिल्कुल कम होती है, तो कीड़ों से तो लगभग बचाव होता ही है। लेकिन साथ ही साथ तो इसमें ध्यान ये रखना पड़ता है कि बीमारियों की संभावना ज्यादा रहती है, क्योंकि बारिश है, ह्यूमिडिटी है, अधिक तापक्रम है, तो तापक्रम और नमी दोनों का जो समावेश है वो मिलकर के बीमारियों को बढ़ावा देता है। तो इसलिए किसान भाइयों को पहले ही इसके प्रति जागरूक रहना चाहिए कि उनकी फसल में बीमारियां ना आए, तो उसके लिए जो प्रिवेंटिव बचाव के रूप में जो उपाय हैं उनको अपनाने की आवश्यकता होती है।
1: बिल्कुल डॉक्टर साहब, लेकिन हमने बात करी थी कि हम सीधे बिजाई कर सकते हैं, गंठिया खेत में लगाएंगे तो उत्पादन अच्छा होगा और आवश्यकता अनुसार, लेकिन कई हमारे ऐसे किसान भाई बहन हैं कि जिन्होंने अपनी नर्सरी पहले से तैयार कर रखी और उनका विचार है कि रोपाई की जाए, तो उसके लिए क्या उचित समय है और रोपाई करते समय हमें क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए?
0: निश्चित रूप से जो सजग किसान हैं या इस व्यवसाय में जुड़े हुए हैं वो पहले से योजना बना लेते हैं और जून के अंत में या जुलाई के पहले सप्ताह में पौध डाल देते हैं
1: जी,
0: और वो पौध अब रोपाई के लिए तैयार है। पौध की रोपाई से जो तैयार करके हम रोपाई करते हैं उसमें भी किसान को अतिरिक्त मेहनत करनी पड़ती है। एक तो उसमें पौध तैयार करने में जो समय लगता है उसको लगाना पड़ता है, उसमें जो लागत बढ़ती है गंठियों की तुलना में। दूसरा, जिनको लगाई हुई है तो उनको ये ध्यान रखना है कि पौध को निकालने से पहले उसमें एक फफूंद नाशी का छिड़काव किया जा सकता है
1: जी,
0: ताकि कम मात्रा दवाई की लगेगी और कम प्रयासों में बचाव के रूप में स्प्रे कर सकते हैं। कई किसान भाई ऐसा भी समझते हैं कि जब बीमारी नहीं तो मैं क्यों छिड़काव करूं, लेकिन प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, बचाव बीमारी के इलाज से ज्यादा बेहतर है।
1: जी
0: तो बीमारी आने के बाद फिर ज्यादा दवाई लगती है, ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, खेत में रोपाई होने के बाद आपको अतिरिक्त प्रयास करने पड़ते हैं। तो नर्सरी में पौध को रोपाई करने से पहले ही उसमें फफूंदनाशी का किसी स्टिकर के साथ मिला करके छिड़काव कर दे। छिड़काव करते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि मौसम साफ होना चाहिए, बारिश नहीं होनी चाहिए, हवा की गति तेज नहीं होनी चाहिए। तो इन बातों को ध्यान में रखे हमारे किसान भाई फफूंदनाशी का छिड़काव करें, उसके 2-3 दिन बाद उनको निकाल करके खेतों में रोपाई करें। अब जैसा कि आप देख रहे हैं वर्षा का मौसम है और वर्षा के व्यवहार में बड़ा परिवर्तन आया, अचानक से बारिश आती है, एकदम से बहुत ज्यादा बारिश हो जाती है, इससे हमारी फसलों को बहुत नुकसान होता है। और दूसरा, उसमें जो खाद उर्वरक देना होता है रोपाई के 25 से 30 दिन के बाद, वो जो है आसानी से दिया जा सकता है। अगर हम मेड़ों के ऊपर रोपाई कर देते हैं और उसके बाद उसमें निराई गुड़ाई तो सुविधाजनक तरीके से की जा सकती है, लेकिन उसमें उर्वरक देने में बड़ी कठिनाई होती है, इससे वृद्धि विकास करना मुश्किल होता है। इसलिए बारिश के मौसम में हरी प्याज की रोपाई उथली क्यारियों पर करें और कम से कम 4 से 5 रो लगाएं और न्यूनतम क्यारी का रेज बेड का आकार होगा वो 15 सेंटीमीटर उठा हुआ होगा, 60 सेंटीमीटर वो चौड़ी होगी, और जो रुपाई करेंगे वो 5 से 7 सेंटीमीटर पे करेंगे किनारे पे, और फिर 10-10 सेंटीमीटर के अंतराल से 5 रो को लगा सकते हैं। यहाँ पे एक बात मैं और अपने किसान भाइयों को बताना चाहूंगा, हरी प्याज में जब आप रुपाई करते हैं, चाहे गंठियों की बिजाई करते हैं या पौध की रुपाई करते हैं, और उसके गंठियों के इमरजेंस में और इनके दोबारा खड़े होने में, प्लांट स्टैंड बोलते हैं अंग्रेजी में, पौधे रोपाई के बाद एक बार लुढ़कते हैं और उसके बाद खड़े हो जाते हैं, धान हो, आपने दूसरी फसलें भी देखी होगी, उसके लिए यहाँ बारिश का मौसम है, नमी ज्यादा है, तो खरपतवार एक चुनौती होते हैं। तो खरपतवार ना आए खेत में, गंठियों की बिजाई के बाद या पौध की रोपाई के तुरंत बाद, जैसे ही पानी लगा देते हैं उस

0: अगले दिन या तो लगा करके स्प्रे करके पानी दें, या लगाने के 3-4 दिन बाद ये स्प्रे किया जा सकता है। तो यहाँ प्रश्न आता है कि भाई कौन सा खरपतवार नाशी लगाएं, तो अनुभव और संस्कृति के आधार पर हम ये बताना चाहेंगे कि पेंडामेथिलीन 30 EC का 3 ml प्रति लीटर पानी में घोल बना करके छिड़काव किया जा सकता है, और 1 एकड़ के लिए 150 से 200 लीटर पानी पर्याप्त रहता है। और पेंडामेथिलीन 30 EC का है कि 1 किलोग्राम सक्रिय तत्व प्रति हेक्टेयर की सिफारिश की गई है कि भाई इतना हमको इस्तेमाल में करना है, और उसके बाद 25 से 30 दिन तक खरपतवारों की मात्रा कम होगी, और उसके बाद फिर किसान भाई एक गुड़ाई करके ताकि फसल वृद्धि की रफ्तार पकड़ लेगी और फिर धीरे धीरे खरपतवारों की संख्या को दबाने में सफल होगी।
1: यानी कि जब फसल की वृद्धि की बात आती है तो किसान सोचता है कि लागत कम से कम लगे और उत्पादन अच्छा हो, लेकिन उसमें उर्वरक प्रबंधन पर क्या ध्यान देना होगा?
0: देखिए, प्याज अधिक मात्रा में पोषक तत्वों का इस्तेमाल करती है। वैसे तो सामान्यतः सारी सब्जियां जो कम अवधि की हैं उनको छोड़ दें या दलहनी फसलों को छोड़ दें, तो सामान्यतः नत्रजन, फास्फोरस, पोटास तीनों ही प्रचुर मात्रा में इनकी आवश्यकता होती है। अगर हम हरी प्याज की बात करते हैं तो 120 किलोग्राम नत्रजन, 60 किलोग्राम फास्फोरस और 60 ही किलोग्राम पोटास, इसके अतिरिक्त 10 किलोग्राम सल्फर प्रति हेक्टेयर के हिसाब से किसान भाई अपने खेतों में इस्तेमाल करते हैं। अब ये जो मात्रा मैंने बताई ये तो एक वैज्ञानिक संस्तुति हुई, किसान 120 किलो नत्रजन कैसे देगा, 60 किलोग्राम फास्फोरस कैसे देगा, पोटास कैसे देगा। पोटास को और फास्फोरस को खेत की तैयारी के समय दिया जाता है, नत्रजन की जो आधी मात्रा है वो भी प्रारंभ में दी जाती है, लेकिन यहाँ थोड़ा सा बदलाव कर सकते हैं किसान भाई, आधी मात्रा नत्रजन की ना लेकर के उसमें 1/3 मात्रा का इस्तेमाल करें, और जो बची हुई 2/3 मात्रा है उसको 2 बार स्प्लिट डोज में इस्तेमाल करें ताकि पौधे की वृद्धि को रफ्तार दी जा सके। और जब हम सर्दी के मौसम में हम कहते हैं 50% मात्रा नत्रजन की बुआई के समय डालो, क्योंकि तब बारिश की संभावना कम होती है, लेकिन वर्षा के मौसम में अगर सारी मात्रा एक साथ दे देते हैं और तेज बारिश होती है तो पौधे को उपलब्धता कम होती है और पानी में घुल करके नष्ट हो जाती है या उसका डीनाइट्रिफिकेशन हो जाता है। तो इन दोनों प्रक्रियाओं से बचने के लिए हम ये कहते हैं खरीफ की जो प्याज है उसमें नत्रजन की 1/3 मात्रा पहले दो और फास्फोरस पोटास की पूरी मात्रा उसमें दो। अगर किसान भाई यूरिया से नत्रजन दे रहा है तो इनको 4 से 5 बैग इस्तेमाल करने पड़ेंगे, क्योंकि अभी बैग का आकार भी घट गया, पहले 50 किलो का आता था, 45 किलो का हो गया। फास्फोरस पोटास में 50 किलो का ही है, अगर हमें 60 किलो देना है तो उसमें लगभग 1.5 से 3 बैग का इस्तेमाल करना पड़ेगा 1 हेक्टेयर में, और यहाँ पे 2 बैग का इस्तेमाल करना पड़ेगा पोटास देने के लिए। और कई किसान भाई पोटास देने से संकोच करते हैं, किसान भाइयों को बताना चाहता हूँ ऐसे तो हम सिफारिश करते हैं कि भाई कोई भी फसल उगाने से पहले वर्ष में एक बार अपने खेत की मृदा में कितने उर्वरकों की मात्रा उसकी जांच करानी चाहिए, लेकिन अधिकतर किसान ऐसा नहीं करते हैं। लेकिन हमारी जो मृदाएं हैं उनमें नत्रजन की, फास्फोरस और पोटास की कमी है। पहले माना जाता था पोटास की कमी, लेकिन अभी धीरे धीरे पोटास की कमी भी बढ़ रही है। जब हम इंटेंसिव कल्टीवेशन की तरफ बढ़ रहे हैं, किसान एक फसल के बाद दूसरी, दूसरे के बाद तीसरी, और सब्जियों में तो कई बार किसान 4 से 5 फसल तक ले लेते हैं और लगभग एक ही नेचर की फसल होती, तो वो पोषक तत्वों का इस्तेमाल करते हुए जमीन में उसकी मात्रा कम हो जाती है। पोटास इसलिए महत्वपूर्ण मानता हूं मैं क्योंकि ये एक तो पौधे में चमक लाता है, दूसरा ये बीमारियों से बचने के लिए पौधे को क्षमता का विकास करता है, इसलिए पोटास की मात्रा का इस्तेमाल करना खरीफ के मौसम में हरी प्याज उत्पादन के लिए आवश्यक हो जाता है।
1: डॉक्टर साहब, जैसे किसान भाई बहन कृषि को पारिवारिक आवश्यकता के अनुरूप देखते हैं, लेकिन जब आज के हम समय में देखते हैं युवा साथियों को, तो वो कृषि में रोजगार के साधनों को देखते हैं, तो इसी प्रकार से हरी प्याज जो है ये रोजगार की संभावना हमारे साथियों को कैसे उपलब्ध करा?
0: देखिए, हरी प्याज की खेती में जैसे कई लोग ऐसा सोचते हैं कि भाई हमें निरंतर कार्य मिलना चाहिए
1: जी,
0: प्याज एक ऐसी फसल है जिसको पूरे साल हरी प्याज के रूप में इस्तेमाल में ला सकते हैं। मैं यहाँ ये कहना चाहूंगा कि प्याज के साथ दूसरी भी स्पीसीज हैं, जैसे प्याज को हम बॉटनिकली ये मानते हैं कि एलियम सीपा समूह की है तो प्याज लगाते हैं, दूसरी एक हमने पूसा संस्थान में हमने पूसा सौम्या एक किस्म विकसित की बंचिंग ऑनियन की, उसका विशेष रूप से विकसित करने का उद्देश्य यही था कि हम किस प्रकार से हरी प्याज की खेती को बढ़ावा दें और उसमें बीमारियां कीड़े भी नहीं लगते, उसको बीज से भी बना सकते हैं, और उसमें फायदा ये है कि बंचिंग ऑनियन में अगर पूसा सौम्या को लगाते हैं तो उसमें ना तो कोई थ्रिप्स आती ना कोई बीमारी, काफी हद तक उसमें रोग और कीड़ों को सहन करने की क्षमता है। अगर हम इस प्रकार की किस्मों का चयन कर लें तो हम निश्चित रूप से नुकसान से बच सकते हैं। और ये नहीं कि बंचिंग ऑनियन आप एक बार लगा सकते हैं, इसको अलग अलग अवधि पे 15-15 दिन के बाद, 20-20 दिन के बाद स्थानीय बाजार की मांग के अनुरूप कर सकते हैं।
1: बिल्कुल डॉक्टर साहब, आप कार्यक्रम में आते हो, जो आपके अनुभव जब आप साझा करते हो तो ये हमारे यूथ के लिए, युवा साथियों के लिए एक प्रेरणा होते हैं। हरी प्याज उत्पादन की उन्नत तकनीक, इस विषय पर आपने

0: बहुत बेहतरीन जानकारी हमारे सभी श्रोताओं को दी। डॉक्टर बीएस तोमर, आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत धन्यवाद।
1: और प्रतिमा, देखिए जानकारी तो हो गई, आप थोड़ा सा मनोरंजन भी हो जाए।
2: बिल्कुल, तो आइए सुनते हैं ये लोकगीत।

0: तो अभी हमने सुना ये लोकगीत।
1: और रजनीश देखिए, जो हमारे कृषि वैज्ञानिक होते हैं वो नई नई जानकारियां और कृषि सलाह लेकर आते हैं, तो आइए जानते हैं कुछ कृषि सलाह। किसान भाई बहनों, इस मौसम में धान की फसल को नष्ट करने वाली ब्राउन प्लांट होपर का आक्रमण आरंभ हो सकता है, और इसीलिए हमारे किसान भाई खेत के अंदर जाकर पौध के निचली भाग के स्थान पर मच्छरनुमा कीट का निरीक्षण करें। साथ ही यदि टमाटर, मिर्च, बैंगन, फूलगोभी, पत्ता गोभी की पौध तैयार है तो मौसम को मद्देनजर रखते हुए रोपाई मेड़ों पर ही करें।
0: साथ ही कद्दू वर्गीय एवं अन्य सब्जियों में मधुमक्खियों का बड़ा योगदान है, क्योंकि वे परागण में सहायता करती हैं, इसलिए जितना संभव हो मधुमक्खियों के पालन को बढ़ावा दें। कीड़ों एवं बीमारियों की निरंतर निगरानी करते रहें, कृषि विज्ञान केंद्र से संपर्क रखें, वह सही जानकारी लेने के बाद ही दवाइयों का प्रयोग करें, और कीटों की रोकथाम के लिए लाइट ट्रैप का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए एक प्लास्टिक के टब या किसी बड़े बर्तन में पानी और थोड़ा कीटनाशी मिलाकर एक बल्ब जलाकर रात में खेत के बीच में रख दें। प्रकाश से कीट आकर्षित होकर उसी घोल पर गिरकर मर जाएंगे।
1: तो रजनीश, ये थी बहुत ही उपयोगी जानकारी, और अब हम आजादपुर मंडी के फल और सब्जियों के ताजा भाव भी हम अपने किसान भाइयों से साझा करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं आलू की। आलू का जो मूल्य रहा वो 15 रुपए प्रति किलो, प्याज का रहा 20 रुपए प्रति किलो, टमाटर 40 रुपए प्रति किलो और बैंगन हमारा है 20 रुपए प्रति किलो।
0: और आजादपुर मंडी में आज जो फलों के भाव रहे वो इस तरह से रहे, जो सेब का भाव रहा वो है 100 रुपए प्रति किलो, केले का भाव 25 रुपए प्रति किलो, वहीं अमरूद जो बिका वो 60 रुपए प्रति किलो।
1: तो ये थे हमारे आजादपुर मंडी के फल और सब्जियों के ताजा भाव।
0: आज का कार्यक्रम आपको कैसा लगा, आप अपने सुझाव हमें ईमेल पर भेज सकते हैं।
1: हमारा ईमेल आईडी है feedback@gmail.com।
0: तो इस ईमेल पर अपने सुझाव हमें जरूर भेजें ताकि हम अपने कार्यक्रम को और बेहतर बना सकें।
1: और अब चलते चलते अपने किसान भाई बहनों से यही कहेंगे कि किसान भाई बहनों, आप दिन दूनी रात चौगनी उन्नति करें, कम लागत में ज्यादा उत्पादन आपको मिले और आपका चेहरा हमेशा मुस्कुराता रहे। और इसी के साथ अब दीजिए अनुमति, नमस्कार।

0: संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है।
1: अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं,
2: अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं,
3: क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा।
4: बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा,
5: योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी,
4: नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जनसेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण।
5: फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण।
4: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवरेज।
6: इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।

0: आकाशवाणी का न्यूज ऑन एयर ऐप है। लाइव रेडियो, लेटेस्ट न्यूज हेडलाइंस, न्यूज पॉडकास्ट्स, साथ में दूरदर्शन के लाइव चैनल्स भी। द बेस्ट ऑफ एंटरटेनमेंट, इन्फॉर्मेशन, एजुकेशन अब आपके एक उंगली के इशारे पर। कहीं भी कभी भी रहे हरदम अपडेट। आज ही डाउनलोड करें आकाशवाणी का न्यूज ऑन एयर ऐप।
1: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। और अब समय है कव्वाली का, तो आइए सबसे पहले सुनते हैं पंकज उदास की ये कव्वाली।

0: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, DRM 810 किलोहर्ट्ज़ पर। और आइए अब सुनते हैं प्रादेशिक समाचार।
1: अरे रीमा, सोलर पैनल लगवा ले, सोलर पैनल लगवा ले।
2: कब से मुझे सारे दोस्त बोलते थे, पर मैंने माना जब प्रधानमंत्री जी ने कहा
3: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
2: मैंने प्रधानमंत्री जी के कहने पर सोलर पैनल लगवाया और मेरा बिजली बिल जीरो आया। आप भी लगवा लो।
4: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
0: नमस्कार, आकाशवाणी दिल्ली से प्रादेशिक समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। दिल्ली सरकार ने स्वच्छ और सुरक्षित सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा देने के लिए 200 नई इलेक्ट्रिक बसों सहित कई पहल की घोषणा की। दिल्ली में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण की गणना का काम पूरा, 24 अगस्त से दावे आपत्तियां दर्ज होंगी। सर्वोच्च न्यायालय ने दिल्ली में हाल में हुए छात्र प्रदर्शन की जांच के लिए उच्च स्तरीय समिति गठित करने का फैसला किया। दिल्ली सरकार ने चिकित्सा शिक्षा के विस्तार के लिए स्नातक और स्नातकोत्तर स्तर पर नई मेडिकल सीटें बढ़ाने की योजना बनाई। दिल्ली लक्ष्मी योजना के अंतर्गत पात्र महिलाओं को पेंशन का आधिकारिक पत्र 27 अगस्त को सौंपा जाएगा। और नई दिल्ली में जारी बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप में त्रिशा जौली और गायत्री गोपीचंद की महिला डबल्स जोड़ी प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंची। अब समाचार विस्तार से। दिल्ली सरकार ने स्वच्छ और सुरक्षित सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा देने के लिए कई नई पहल शुरू करने की घोषणा की है। इनमें 200 नई पर्यावरण अनुकूल इलेक्ट्रिक बसें, दिल्ली करनाल अंतर्राज्यीय इलेक्ट्रिक बस सेवा, 56 महिला स्पेशल इलेक्ट्रिक बस सेवाएं और DTC राजघाट डिपो 1 में बेहतर क्षमता वाले सार्वजनिक EV चार्जिंग स्टेशन शामिल हैं। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
5: ये नई पहल राजधानी दिल्ली के सार्वजनिक परिवहन के आधारभूत संरचना को और अधिक मजबूत बनाने और शहर को साफ सुथरी और स्थायी गतिशीलता की तरफ ले जाने की दिशा में एक बेहद महत्वपूर्ण कदम है। दिल्ली के परिवहन मंत्री डॉक्टर पंकज कुमार सिंह ने कहा कि 200 नई इलेक्ट्रिक बसों के दिल्ली परिवहन निगम के बेड़े में शामिल होने से राजधानी में बसों की कुल संख्या लगभग 6,800 हो जाएगी। श्री सिंह ने कहा कि DTC ऐतिहासिक दिल्ली करनाल रूट पर इलेक्ट्रिक और वातानुकूलित बसें शुरू करेगा। श्री सिंह ने आगे कहा कि सार्वजनिक परिवहन में महिलाओं की सुरक्षा, सुविधा और पहुंच को और ज्यादा बेहतर बनाने के लिए DTC महिलाओं के लिए विशेष तौर पर 56 लेडीज स्पेशल इलेक्ट्रिक बस सेवाएं शुरू करेगी। इसके अलावा DTC ने राजघाट डिपो 1 पर एक सार्वजनिक EV चार्जिंग स्टेशन भी बनाया है। इस सुविधा में 240 किलोवाट क्षमता वाले 4 EV चार्जर लगे हैं, जो भारी व्यावसायिक इलेक्ट्रिक वाहनों और इलेक्ट्रिक कारों दोनों को चार्ज करने में सक्षम है। प्रादेशिक समाचार के लिए शिवांग मिश्रा।
0: दिल्ली में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के तहत गणना का काम पूरा हो गया है। दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय के अनुसार इस प्रक्रिया के अंतर्गत करीब 1,45,00,000 गणना प्रपत्र वितरित किए गए और 13,000 से अधिक बूथ स्तरीय अधिकारियों ने घर घर जाकर मतदाता सूची का सत्यापन किया। इस महीने की 24 तारीख से 23 सितंबर तक दावे और आपत्तियां दर्ज कराई जा सकती हैं। अंतिम मतदाता सूची 27 अक्टूबर को जारी की जाएगी। मतदाता www.voters.eci.gov.in पर ऑनलाइन गणना प्रपत्र भर सकते हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने आज कहा कि दिल्ली में हाल ही में छात्र प्रदर्शनकारियों पर पुलिस की कथित कार्रवाई और पुलिसकर्मियों के खिलाफ हिंसा के आरोपों की जांच के लिए उच्च स्तरीय समिति गठित की जाएगी। एक रिपोर्ट।
6: समिति में सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश, पूर्व पुलिस महानिदेशक और CBI के पूर्व निदेशक शामिल होंगे। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि समिति के अन्य सदस्यों के नाम पर विभिन्न पक्षों से सुझाव मिलने के बाद कल आदेश जारी किया जाएगा। न्यायालय ने कहा कि समिति महिला प्रदर्शनकारियों से जुड़े यौन उत्पीड़न और ऑनलाइन उत्पीड़न के आरोपों तथा सोशल मीडिया के जरिए अन्य संवेदनशील लोगों को निशाना बनाए

0: जाने के मामलों की भी जांच करेगी। अदालत ने कहा कि 20 जुलाई को दिल्ली में संसद मार्च के दौरान हुए हिंसा से संबंधित वीडियो फुटेज और सीसीटीवी रिकॉर्डिंग समिति को सौंपी जाएगी। शीर्ष अदालत कॉकरोच जनता पार्टी सीजेपी के नेतृत्व में हुए प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई और पुलिसकर्मियों के खिलाफ हिंसा के आरोपों से जुड़ी याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी। प्रादेशिक समाचार के लिए समाचार कक्ष से मैं जया भारती।
1: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। दिल्ली सरकार ने चिकित्सा शिक्षा की क्षमता बढ़ाने के लिए स्नातक, स्नातकोत्तर और सुपर स्पेशलिटी सीटों के चरणबद्ध विस्तार की योजना बनाई है। इसके तहत नए मेडिकल कॉलेजों की स्थापना, मौजूदा संस्थानों का विस्तार और उन्नत चिकित्सा पाठ्यक्रमों को बढ़ावा दिया जाएगा।
2: इंदिरा गांधी अस्पताल द्वारका और गुरु गोविंद सिंह अस्पताल से संबद्ध निर्माणाधीन मेडिकल कॉलेजों में 150 MBBS सीटें प्रस्तावित हैं। इससे स्नातक स्तर पर 300 नई सीटें जुड़ेंगी। इसके अलावा डॉक्टर BSA मेडिकल कॉलेज में MBBS सीटें 125 से बढ़ाकर 200 और मौलाना आजाद दंत विज्ञान संस्थान में BDS सीटें 50 से बढ़ाकर 70 करने का प्रस्ताव है। स्नातकोत्तर स्तर पर मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज में सीटें 260 से बढ़ाकर 295 और मौलाना आजाद इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंसेज में 22 से बढ़ाकर 42 करने का प्रस्ताव है। वहीं डॉक्टर BSA मेडिकल कॉलेज में 24 नई स्नातकोत्तर सीटें प्रस्तावित हैं। दिल्ली के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर पंकज कुमार सिंह ने कहा कि इस विस्तार का उद्देश्य दिल्ली के लोगों के लिए प्रशिक्षित डॉक्टरों और विशेषज्ञों की निरंतर उपलब्धता सुनिश्चित करना है। अमन यादव की रिपोर्ट के साथ प्रादेशिक समाचार के लिए समाचार कक्ष से वैष्णवी।
1: भारत ने नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों के 12वें सम्मेलन में जन केंद्रित और कार्यान्वयन आधारित पर्यावरण उपाय करने का आह्वान किया है। 2 दिवसीय सम्मेलन आज संपन्न हो गया। इसका आयोजन 2026 में भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता के तहत किया गया। बैठक में केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने सतत पृथ्वी के निर्माण की दिशा में प्रौद्योगिकी और जन भागीदारी को समन्वित करने के महत्व पर जोर दिया।
3: इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज, जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता का नुकसान और प्रदूषण, ये तीनों मिलकर एक बड़ा संकट पैदा कर रहे हैं। आपदाओं का बढ़ता खतरा भी दुनिया भर में पारिस्थितिकी तंत्रों को प्रभावित कर रहा है। ये चुनौतियाँ विकासशील देशों के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि वे पर्यावरण के प्रति संवेदनशीलता, गरीबी उन्मूलन, खाद्य सुरक्षा और समावेशी विकास जैसी व्यापक विकास प्राथमिकताओं से जुड़ी होती हैं।
4: फूड सिक्योरिटी एंड इंक्लूसिव ग्रोथ।
1: नई दिल्ली नगर पालिका परिषद NDMC के अध्यक्ष मनोज द्विवेदी ने आज 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की तैयारियों की समीक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में सम्मेलन की व्यवस्थाओं, समन्वय और समग्र तैयारियों पर चर्चा हुई। साथ ही इस अंतर्राष्ट्रीय आयोजन को सुचारू, समयबद्ध और सफल बनाने पर विशेष बल दिया गया। बैठक के दौरान सभी संबंधित विभागों के बीच बेहतर तालमेल सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए गए। बैठक में NDMC सचिव राहुल सिंह, संयुक्त सचिव शंभु हक्की सहित कई वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि देश में ऐसे कृषि उत्पाद तैयार किए जाने चाहिए जो वैश्विक बाजार के मानकों पर खरे उतरें। उन्होंने कहा कि इसके लिए किसानों को आधुनिक तकनीक और नए कृषि उपकरणों की जानकारी देना जरूरी है। श्री चौहान आज नई दिल्ली में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की 97वीं वार्षिक आम बैठक को संबोधित कर रहे थे। श्री चौहान ने किसानों की आवश्यकताओं के अनुरूप कृषि अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए वैज्ञानिकों को इस दिशा में काम करने पर बल दिया।
5: विकसित कृषि संकल्प अभियान के दौरान ऐसे 500 विषय आए जिसपे किसानों ने कहा कि हमें तो इस चीज पे रिसर्च की जरूरत है। उसके बाद हमने 52 टीमें बनाई वैज्ञानिकों की और हमने कहा कि रिसर्च उसमें करो जिसकी जरूरत देश को है, किसानों को है।
1: दिल्ली नगर निगम ने ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2026 के प्रभावी कार्यान्वयन और जन जागरूकता को लेकर आज एक विशेष कार्यशाला का आयोजन किया। इस कार्यशाला का उद्देश्य जन प्रतिनिधियों और संबंधित अधिकारियों को नए नियमों की प्रमुख विशेषताओं से अवगत कराना तथा जन प्रतिनिधियों के माध्यम से नागरिकों तक इन नियमों की जानकारी पहुंचाना था। दिल्ली नगर निगम की उप महापौर डॉ. मोनिका पंत ने कहा कि निगम द्वारा कचरे के स्रोत पर ही उसे अलग करने को विशेष प्राथमिकता दी जा रही है। उन्होंने कहा कि स्वच्छ

दिल्ली के लक्ष्य को हासिल करने के लिए नागरिकों की सक्रिय भागीदारी अत्यंत आवश्यक है। दिल्ली नगर निगम ने आज मटियाला और द्वारका क्षेत्रों में साफ सफाई का निरीक्षण करते हुए दिल्ली को कूड़े से आजादी अभियान चलाया। निगम के अनुसार अभियान का उद्देश्य सफाई और नागरिक सुविधाओं की स्थिति का जायजा लेना, स्थानीय समस्याओं की पहचान करना और उनके समाधान के लिए समय पर कार्रवाई सुनिश्चित करना है। निगम ने कहा कि इस अभियान के अंतर्गत किए जा रहे समन्वित प्रयासों से बेहतर सफाई व्यवस्था, त्वरित नागरिक सेवाएं और स्वच्छ मोहल्ले सुनिश्चित करने की दिशा में काम किया जा रहा है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। दिल्ली सरकार की दिल्ली लक्ष्मी योजना के अंतर्गत पात्र महिलाओं को पेंशन का आधिकारिक पत्र तालकटोरा स्टेडियम में 27 अगस्त को सौंपा जाएगा। सरकार ने बताया कि 1 सितंबर से पेंशन की राशि सीधे पात्र महिलाओं के बैंक खातों में पहुंचनी शुरू हो जाएगी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि सरकार योजना के आधिकारिक पोर्टल पर जल्द ऐसी व्यवस्था करने जा रही है जिसके अंतर्गत जिन महिलाओं ने आवेदन में गलत या अधूरी जानकारी दर्ज की है उन्हें उसमें सुधार करने का दोबारा अवसर दिया जाए। मुख्यमंत्री ने बताया कि योजना के शुभारंभ के बाद सिर्फ 18 दिनों में करीब 8 लाख महिलाओं ने पोर्टल पर पंजीकरण कराया है जबकि 5 लाख से अधिक आवेदन अंतिम रूप से जमा किए जा चुके हैं। कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स कैट के राष्ट्रीय महामंत्री प्रवीण खंडेलवाल ने कहा है कि इस वर्ष रक्षाबंधन के अवसर पर देशभर में लगभग 25,000 करोड़ रुपए के व्यापार का अनुमान है जो पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 45% अधिक है। श्री खंडेलवाल ने कहा कि कैट देश के विभिन्न शहरों में विशेष स्वदेशी मेले आयोजित करने जा रहा है जहां महिला उद्यमियों, स्वयं सहायता समूहों और स्थानीय कारीगरों द्वारा निर्मित राखियों और अन्य उत्पादों की बिक्री की जाएगी। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम NCRTC ने नमो भारत कॉरिडोर के पास पतंग उड़ाने और चाइनीज मांझे के संबंध में एक परामर्श जारी किया है। NCRTC ने लोगों से नमो भारत कॉरिडोर और इसकी विद्युत आपूर्ति व्यवस्था के आसपास पतंग न उड़ाने की अपील की है। आनंद विहार नमो भारत स्टेशन पर 14 अगस्त से 10 दिवसीय पुस्तक मेला चल रहा है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम के अनुसार मेले में 20,000 से अधिक पुस्तकें उपलब्ध हैं जहां लोग अपनी पसंद की किताबें देख, चुन और खरीद सकते हैं। ये पुस्तक मेला 23 अगस्त तक सुबह 9 बजे से रात 10 बजे तक खुला रहेगा। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने उत्तर प्रदेश, पंजाब और गुजरात के लिए नए प्रदेश प्रभारी नियुक्त किए हैं। विनोद तावड़े को उत्तर प्रदेश का प्रभारी और जगदीश ईश्वर भाई पटेल को सह प्रभारी बनाया गया है। डॉक्टर सतीश पूनिया को पंजाब और तरुण चुघ को गुजरात का प्रभारी नियुक्त किया गया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने इन नियुक्तियों पर सभी नेताओं को बधाई दी है। उन्होंने कहा कि नेताओं के व्यापक अनुभव, संगठन के प्रति समर्पण और सशक्त नेतृत्व से इन राज्यों में भाजपा को नई ऊर्जा और मजबूती मिलेगी। नई दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में BWF बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप में त्रिशा जौली और गायत्री गोपीचंद की जोड़ी महिला डबल्स की प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई है। लक्ष्य सेन और उन्नति हुड्डा ने भी सिंगल्स के दूसरे दौर में जगह बना ली है। त्रिशा और गायत्री की जोड़ी ने अमेरिका की लॉर्डन लैम और एलन क्विन ली को हराया। वहीं लक्ष्य सेन ने पुरुष सिंगल्स में ऑस्ट्रिया के कोलनेस फिलीमोन को हराकर दूसरे दौर में जगह बना ली है। दिल्ली में आज कुछ क्षेत्रों में हल्की वर्षा हुई। मौसम विभाग के अनुसार आज का अधिकतम तापमान 35.4 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 27.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। विभाग ने बताया कि कल आमतौर पर बादल छाए रहने के साथ कुछ स्थानों पर हल्की वर्षा हो सकती है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। दिल्ली सरकार ने स्वच्छ और सुरक्षित सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा देने के लिए 200 नई इलेक्ट्रिक बसों सहित कई पहल की घोषणा की। दिल्ली में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण की गणना का काम पूरा, 24 अगस्त से दावे आपत्तियां दर्ज होंगी। सर्वोच्च न्यायालय ने दिल्ली में हाल में हुए छात्र प्रदर्शन की जाँच के लिए उच्च स्तरीय समिति गठित करने का फैसला किया।
दिल्ली सरकार ने चिकित्सा शिक्षा के विस्तार के लिए स्नातक और

810 किलोहर्ट्ज़ पर। और अब समय है गीत मालिका का। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं आपकी दोस्त और होस्ट रैना तंवर और लेकर आई हूं आपके लिए आपका पसंदीदा कार्यक्रम गीत मालिका, जिसमें हम बातें करेंगे, साथ साथ हम सुनेंगे फिल्मी गीतों से आधारित प्यारे प्यारे गीत जो हमारी यादों को, हमारी चीज़ों को हमेशा ताज़ा रखते हैं। ऐसे गीत जो हमें हमेशा हर स्थिति पर बनी हुई गीत हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और हम यहाँ गीत के बाहर लेकर अलग अलग चीज़ों में, जैसे कि अब सावन चल रहा है तो सावन पे हम एक प्यारा सा नगमा आपको सुनाते हैं, और आशा करती हूँ कि आपको ये नगमा बेहद पसंद आएगा।

जी, सावन का महीना और जियरा जो है हमारा बिल्कुल झूम उठता है ना। हर जगह हरियाली ही हरियाली होती है, और जब मन उदास भी हो ना, तो अगर आप बारिश देखो तो मन अपने आप ही खुश हो जाता है, और गरम गरम चाय और पकौड़े मिल जाए तो उसकी बात ही क्या। क्यों, हाँ जी, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल, और मैं हूँ आपके साथ रैना तंवर, और कार्यक्रम है गीत मालिका। आपने अभी सुना 1967 का लता मंगेशकर और मुकेश की खूबसूरत आवाज में फिल्म मिलन का ये गीत सावन का महीना। और अब हम आपको एक अच्छी सी बात ये बताना चाहते हैं कि कभी कभी हमारी तमन्ना होती है कुछ करने की, लेकिन हम कर नहीं पाते। कोई बात नहीं, कर सकते हैं, कर लेंगे, इसमें हताश बिल्कुल ना होए, क्योंकि कई बार कुछ इच्छाएं होती हैं जो अधूरी रह जाती हैं। हम सोचते हैं कि वो कर लें, लेकिन हम शायद वो वक्त नहीं था उसे पूरा करने का। तो हताश ना होए, वक्त आगे आएगा, आशा हमेशा बनाए रखें और उम्मीद पर उसे आगे बढ़ते रहें, और वो मंजिल आपको जरूर मिलेगी। क्योंकि हमेशा एक इंसान को पॉजिटिव रहना चाहिए, चाहे मुसीबत आए, चाहे पहाड़ गिर जाए, चाहे जिंदगी, क्योंकि एक ही बार मिलती है। और तमन्नाएं अगर आपकी हैं, उसे पूरा करने की कोशिश, आपके अंदर जज्बा उतना होना चाहिए, तो वो जरूर पूरा होगा। बस अगले गीत की ओर बढ़ते हैं, SP बाला सुब्रमण्यम की आवाज का ये खूबसूरत सा नगमा।

जी हाँ, हमें भी आपसे मिलने की तमन्ना है। आप हमारे शो को सुनते रहें, हमारे कार्यक्रम को सुनते रहें और हौसला अफजाई करते रहें। कैसे? आप हमें ईमेल आईडी से भी हौसला अफजाई कर सकते हैं, हमारे प्रोग्राम सुनकर हौसला अफजाई कर सकते हैं। और हम आपको बस इतना ही कहेंगे कि ये हमारा प्यार आपके साथ इसी तरह से जुड़ा रहे, बना रहे, आप हमारे कार्यक्रम को इसी तरह से सुनते रहें। आज कहते हैं ना कि दोस्ती बहुत खूबसूरत होती है। अगर हम दोस्ती को निभाएं तो सबसे अच्छा रिश्ता जो है वो दोस्ती का ही होता है। हम अपने दोस्त को सब कुछ कह पाते हैं, प्यार से, हक से डांट भी पाते हैं, और उसे अगर वो रूठ जाए तो उसे मना भी लेते हैं। और दोस्ती अगर सच्ची हो तो दोस्त की कही बात कभी भी बुरी नहीं लगेगी, क्योंकि वही है जो आपको सही आईना दिखाता है। क्या मैंने गलत कहा? नहीं ना, क्योंकि दोस्ती ना बहुत ही खुश नसीब वालों को मिलती है। आजकल बनावटी दोस्ती बहुत सारी हैं, सोशल मीडिया बहुत सारा है, बहुत सारे दोस्त बन जाते हैं, लेकिन असली जो दोस्त होता है वो यही होता है जब हम आवाज़ दें, वो आपके सामने हो। अब सुनते हैं ये अगला खूबसूरत सा नगमा। दोस्ती अच्छे से निभाइएगा, और जब आपके दोस्त को आपकी ज़रूरत हो तब उसका साथ ज़रूर दीजिएगा।

ही खूबसूरत सा ये नगमा सुना। और आप सुन रहे हैं आपका ही पसंदीदा कार्यक्रम गीत मालिक का, फिल्म संगीत पर आधारित ये कार्यक्रम है और मैं हूँ आपके साथ दोस्त, आपकी होस्ट रहना। और हम बात कर रहे हैं बहुत सारी चीज़ों की, लेकिन आज अगर एक ख़ास बात कहें, ज़िंदगी। ज़िंदगी बहुत ही खूबसूरत है। ज़िंदगी में अगर आपका लाइफ में उतार चढ़ाव बहुत आते हैं, सभी के पास एक तराजू होता है ना, जिसमें एक गम एक खुशी दोनों ही तराजू के अंदर होते हैं, और वो कैसे मापा जाए। कभी लगता है कि हमारा गम बहुत ज़्यादा है और हमारी खुशियाँ कम, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। दूसरों के पास झांक कर अगर हम देखें तो उनके पास भी बहुत से ऐसी चीज़ें हैं जो हमें दिखाई नहीं देती, शायद वो दिखाते नहीं हैं और हमें सिर्फ उनकी खुशियाँ ही दिखती हैं, लेकिन सबके पास कोई ना कोई गम, कोई ना कोई परेशानी होती है। लेकिन उन परेशानियों से बाहर आकर हमें खुश रहना आना चाहिए। ज़िंदगी में खुशियाँ और गम दोनों ही होते हैं, और उसके साथ मुस्कुराकर चलना ही तो असली ज़िंदगी है ना। तो ऐसे ही चले, अब सुनते हैं ये हमारा खूबसूरत सा नगमा।

जी हाँ, ज़िंदगी बहुत कुछ कहती है और ज़िंदगी जब हमें कुछ कहती है तो हम उसकी आवाज़ शायद सुन नहीं पाते। हमें लगता है कि ये शायद गलत है, हमारा दिल ऐसे ही कह रहा है, लेकिन कभी-कभी जब दिल पहली बार कुछ कहता है तो सच कहें, कई बार लगता है कि ईश्वर ने ही हमें कुछ कहा है और हम उसे सुन नहीं पा रहे। तो कई बार हम ऐसी चीज़ें कर जाते हैं, इंसान को पछतावा हो जाता है, लेकिन हो जाता है, ऐसी चीज़ें होती रहती हैं। हम इंसान हैं, भगवान नहीं, गलतियाँ हमसे ही होती हैं, और अगर जो गलतियों को माफ़ कर दे वो भगवान का दर्जा पा जाता है। तो कहते हैं इंसान को माफ़ करने वाला दिल हमेशा रखना चाहिए, चाहे गलतियाँ किसी की भी हों, लेकिन दिल साफ रखें, दूसरों के प्रति गलत ना सोचें, गलत ना समझें उन्हें। और हालात कभी कभी किसी को गलत करने पर मजबूर कर देते हैं, तो उसकी गलतियों को नज़रअंदाज करें, अगर वो सच्चे दिल से आपके लिए माफ़ी मांगे तो। रूठना मनाना तो चलता ही रहता है, और धीरे धीरे प्यार को बढ़ाना ज़रूरी है। कम ना करें लोगों के लिए, अपनों के लिए, सबके लिए प्यार और प्यार रखें, क्योंकि ज़िंदगी बहुत ही छोटी सी है।

जी हाँ, कुमार सानू की आवाज़ का ये खूबसूरत सा नगमा धीरे धीरे प्यार को बढ़ाना है। बहुत ही खूबसूरत नगमा, मुझे उम्मीद है कि आपको ये कार्यक्रम बेहद पसंद आ रहा होगा। और कहते हैं कि जब हम माता पिता हमारे, कई बार होता है कि हमारे लिए बहुत सेक्रीफाइस करते हैं, लेकिन हमें उनकी सेक्रीफाइस कभी दिखते नहीं हैं। हमें लगता है ये तो उनकी जिम्मेदारी थी, उन्होंने कर दिया, उन्होंने पढ़ाना था, उन्होंने पालना पोषण करना था, वो कर चुके। लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों, हमारी भी जिम्मेदारी बनती है कि जब वो बूढ़े हो जाएं तो हम उनकी सेवा करें, हम उनके बारे में सोचें। कभी कभी आजकल बहुत ज्यादा हो गया है कि हम फोन पर लगे रहते हैं और हम अपने माता पिता से बहुत दूर रह हो चुके हैं। हमें उनके लिए वक्त निकालना बहुत भारी लगने लगा है, हमें फोन ज्यादा अपना दोस्त लगने लगा है। लेकिन दोस्तों सच बताएं, फोन से ज्यादा आप अगर अपने माता पिता को समय दें तो ये कीमती समय है। पता है, अगर हम वो चले जाएंगे जब हमारी जिंदगी से, तो हमें बहुत बुरा लगेगा और हमें लगेगा कि काश हम थोड़ा वक्त उनके साथ बिता पाते। वो काश ना काश ही रह जाता है, वो वापस लौट कर नहीं आएगा। तो याद रखिएगा दोस्तों, श्रोताओं, कि हमेशा अपने अपनों से दूर ना हो, और खासकर माता पिता से, क्योंकि उनका कर्ज हम जिंदगी भर नहीं उतार पाएंगे। उन्होंने जो हमारे लिए किया वो अपने से बढ़कर किया है, हमें बेशक कम लगता है, लेकिन उन्होंने अपने निवाले से हमें निवाला दिया है, ये याद रखिएगा। और उनसे दूरी ना बनाएं, उनसे प्यार से उनके साथ बैठें। और कुछ लोग जो विदेश में रह रहे हैं, जो अपने माता पिता से इतनी दूर हैं, वो ज़रूर ख्याल रखें कि दूर से ही सही, आजकल इतने माध्यम हैं कि आप अपने माता पिता से रोज़ मिल सकते हैं, मुलाकात कर सकते हैं वीडियो कॉल से। तो ज़रूर कीजिएगा और उन्हें याद रखिएगा, और कई बार ये गुनगुनाइएगा, जिए तो जिए कैसे बिन आपके।

जी हाँ, ऐसा ही होना चाहिए हर रिश्ते में, हर प्यार में, हर टकरार में। कहते हैं कि टकरार भी होती है, सब कुछ होता है, लेकिन हमारे अंदर ये होना चाहिए कि हम आपके बगैर नहीं जी सकते। चाहे वो माता पिता हों, बच्चे हों, हस्बैंड वाइफ हों, चाहे वो दोस्त हो, कोई भी हो, लेकिन कुछ ऐसी यादें बना के चलें, मीठी यादें बना के चलें सभी के साथ, ताकि आपके जाने के बाद वो लोग आपको याद कर सकें। कहते हैं ना, सूरत से ज़्यादा सीरत अगर आपकी अच्छी है तो दुनिया आपको आपके मरते दम तक याद रखेगी। तो ऐसे यादगार चीज़ें बनाते रखिए। और ये चलते चलते ये वाला आपको एक नगमा सुनाने जा रही हूँ कि यादें ऐसी बनाएं कि याद आती रहे हमेशा एक दूसरे की, और खुश रहें हम हमेशा इसी तरीके से, और मुस्कुराते रहें। मुझे दीजिए इजाज़त, रैना तंवर को दीजिए इस कार्यक्रम से यानी कि गीत मालिका से इजाज़त। फिर मिलेंगे नई सुर और नई आवाज़ के साथ, नई विषय के साथ, नई गानों के साथ। तब तक के लिए अलविदा। खुश रहें, मुस्कुराते रहें, दूसरों की मदद करते रहें हमेशा, जब तक आप कर सकते हैं, जितना आप कर सकते हैं दूसरों की मदद करें, क्योंकि दूसरों के दे पर चेहरे पर दे मुस्कुराहट और आपके दिल को दे सुकून, यही है असली जिंदगी। सुनते रहें आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल, क्योंकि हर आवाज कुछ कहती है मेरे दोस्त।

0: नगमे हैं, शिकवे हैं, किस्से हैं, बातें हैं। बातें भूल जाती हैं, यादें याद आती हैं। ये यादें,
1: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़ डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। आइए अब सुनते हैं हिंदी, इंग्लिश और उर्दू में समाचार।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं कनकलता।

0: ब्रिक्स देशों ने पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास के लिए अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। भारत ने कहा, पर्यावरण संबंधी कार्रवाई विकासशील देशों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए हो। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारत की चुनाव प्रणाली की प्रशंसा पर विदेश मंत्रालय ने कहा, देश की चुनाव प्रणाली की विश्वसनीयता सर्वविदित है। सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली में छात्र प्रदर्शनकारियों पर पुलिस की कथित कार्रवाई और पुलिस कर्मियों के विरुद्ध हिंसा के आरोपों की जांच के लिए उच्च स्तरीय समिति गठित करेगा। पाकिस्तान के शीर्ष न्यायालय ने जेल में बंद पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को चिकित्सा जांच के लिए अस्पताल भेजने का आदेश दिया। ईरान ने दोहराया, होर्मुज जलडमरू मध्य तब तक बंद रहेगा जब तक अमरीका के साथ हस्ताक्षरित सभी शर्तें पूरी नहीं हो जाती। गोल में भारत ने श्रीलंका को पहले टेस्ट क्रिकेट मैच में 372 रन का लक्ष्य दिया। मेजबान टीम ने दिन का खेल समाप्त होने तक 4 विकेट पर 84 रन बनाए। और भारत की महिला डबल्स जोड़ी त्रिशा जौली और गायत्री गोपीचंद बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप के प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंची। और अब समाचार विस्तार से। भारत ने इस बात पर जोर दिया है कि पर्यावरण से जुड़े प्रयास लोगों पर केंद्रित, टिकाऊ और विकासशील देशों की वास्तविकताओं के अनुरूप होने चाहिए। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने आज नई दिल्ली में ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की 12वीं बैठक में कहा कि ब्रिक्स की अध्यक्षता के दौरान भारत का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन से प्रेरित है। इसमें ग्लोबल साउथ की चिंताओं को एजेंडे में सबसे ऊपर रखा गया है और ब्रिक्स को सहयोग तथा स्थिरता के लिए समायोजन तथा नवाचार को बढ़ावा देने वाले मंच के तौर पर फिर से परिभाषित किया गया है। श्री भूपेंद्र यादव ने जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता के नुकसान, प्रदूषण और आपदा के खतरों जैसी बढ़ती वैश्विक पर्यावरणीय चुनौतियों पर प्रकाश डाला।
1: जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता का नुकसान और प्रदूषण, ये तीनों मिलकर एक बड़ा संकट पैदा कर रहे हैं। आपदाओं का बढ़ता खतरा भी दुनिया भर में पारिस्थितिकी तंत्रों को प्रभावित कर रहा है। ये चुनौतियाँ विकासशील देशों के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि वे पर्यावरण के प्रति संवेदनशीलता, गरीबी उन्मूलन, खाद्य सुरक्षा और समावेशी विकास जैसी व्यापक विकास प्राथमिकताओं से जुड़ी होती हैं।
2: फूड सिक्योरिटी एंड इंक्लूसिव ग्रोथ।
0: श्री भूपेंद्र यादव ने भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता की 4 प्राथमिकताओं को रेखांकित किया। टिकाऊ जीवन शैली को बढ़ावा देना, वनीकरण, जंगल की आग का प्रबंधन तथा आपदा से उबरने की क्षमता विकसित करना, सर्कुलर इकोनॉमी और अनुकूलन। बैठक का समापन संयुक्त मंत्री स्तरीय बयान की स्वीकृति के साथ हुआ। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने घोषणा की है कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक 2 अक्टूबर से 1 महीने का अभियान बैंकिंग फॉर यूथ शुरू करेंगे। आज शाम नई दिल्ली में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक सम्मेलन के समापन भाषण में उन्होंने कहा कि इस अभियान का प्राथमिक उद्देश्य युवाओं को वित्तीय क्षेत्र से जोड़ना और उनकी वित्तीय यात्रा में मार्गदर्शन करना होगा। उन्होंने बताया कि अभियान का लक्षित समूह 16 वर्ष और उससे अधिक आयु के युवा पेशेवर होंगे। वित्त मंत्री ने कहा कि ये अभियान युवा ग्राहकों के साथ निरंतर जुड़ाव के लिए एक मंच के रूप में कार्य करेगा, जिससे उनकी भावी उद्यमशीलता की यात्रा सुगम होगी। आज समाप्त हुए 2 दिन के सम्मेलन में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों और सार्वजनिक वित्तीय संस्थाओं के नेतृत्वकर्ता एक साथ आए। इस कार्यक्रम के दौरान प्रमुख प्राथमिकताओं, उभरते अवसरों और बैंकिंग तथा वित्तीय क्षेत्र के बदलते परिदृश्य पर विचार विमर्श किया गया। इस बीच क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों RRB ने पिछले 1 साल के दौरान ऋण वितरण में काफी बढ़ोतरी दर्ज की है। वित्त मंत्रालय ने बताया है कि वर्ष 2025-26 के दौरान कुल बकाया ऋण में 10.3% की वृद्धि हुई है। छोटे शहरों और गांवों का कुल बकाया ऋण 2024-25 में लगभग 5,24,000 करोड़ रुपए से बढ़कर वर्ष 2025-26 में 5,78,000 करोड़ रुपए से अधिक हो गया है। मंत्रालय ने बताया है कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों ने ऋण वितरण सुविधा का विस्तार करके और जरूरतमंद तबकों पर अधिक ध्यान केंद्रित करके ग्रामीण आर्थिक विकास तथा वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देना जारी रखा है। भारत ने इंडोनेशिया में आए भीषण भूकंप से हुई जानमाल की हानि पर गहरा शोक व्यक्त किया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि भारत इस त्रासदी से बेहद दुखी है। भारत इंडोनेशिया को राहत और बचाव कार्यों में हर संभव सहायता प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारत की चुनाव प्रणाली की प्रशंसा करने और अमेरिकी चुनावों में मतदाता पहचान पत्रों की कमी पर मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के टिप्पणी का जिक्र करने पर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि भारत की चुनाव प्रणाली की विश्वसनीयता सर्वविदित तथ्य है। बांग्लादेश से ऊर्जा संबंधी अनुरोध प्राप्त होने की खबरों पर श्री जायसवाल ने कहा कि भारत का बांग्लादेश के साथ ऊर्जा सहयोग जारी है। उन्होंने कहा कि अतिरिक्त अनुरोध के संबंध में भारत अपनी आवश्यकताओं, शोधन क्षमता और उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए इसकी जांच कर रहा है। शहजाद भट्टी आतंकी नेटवर्क को लेकर भारत के दावों पर पाकिस्तान की प्रतिक्रिया पर श्री जायसवाल ने कहा कि भारत सरकार अपने इस रुख पर कायम है। श्री जायसवाल ने कहा कि आतंकवाद से निपटने के लिए भारत का संघर्ष जारी रहेगा। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में हो रहे विरोध प्रदर्शनों पर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि इस क्षेत्र में स्थानीय आबादी को अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से सहानुभूति और एकजुटता की जरूरत है।
3: जैसा कि हमने बताया कि बहुत सारे लोगों की जाने गई हैं वहाँ, और साथ ही साथ बहुत सारे लोग वहाँ हताहत हुए, उसके अलावा बहुत लोगों को इंजरीज भी आई हैं, और कि वहाँ पर जो एसेंशियल कमोडिटीज है, जो आम चीजें हैं, आम वस्तुएं हैं रोजमर्रा के, उस पर भी काफी रोक लगाया गया है। और हालात ऐसी है कि जो वहाँ पर लोग हैं उनको अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से सिंपैथी की, सॉलिडेरिटी की जरूरत है और वो उनको मिलना चाहिए।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि दिल्ली में हाल में छात्र प्रदर्शनकारियों पर पुलिस की कथित कार्रवाई और पुलिस कर्मियों के विरुद्ध हिंसा के आरोपों की जांच के लिए उच्च स्तरीय समिति गठित की जाएगी। एक रिपोर्ट।
4: समिति में सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश, पूर्व पुलिस महानिदेशक और सीबीआई के पूर्व निदेशक शामिल होंगे। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि समिति के अन्य सदस्यों के नाम पर विभिन्न पक्षों से सुझाव मिलने के बाद कल आदेश जारी किया जाएगा। न्यायालय ने कहा कि समिति महिला प्रदर्शनकारियों से जुड़े यौन उत्पीड़न और ऑनलाइन उत्पीड़न के आरोपों तथा सोशल मीडिया के जरिए अन्य संवेदनशील लोगों को निशाना बनाए जाने के मामलों की भी जाँच करेगी। अदालत ने कहा कि 20 जुलाई को दिल्ली में संसद मार्च के दौरान हुए हिंसा से संबंधित वीडियो फुटेज और सीसीटीवी रिकॉर्डिंग समिति को सौंपी जाएगी। शीर्ष अदालत कॉकरोच जनता पार्टी सीजेपी के नेतृत्व में हुए प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई और पुलिस कर्मियों के खिलाफ हिंसा के आरोपों से जुड़ी याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी। समाचार कक्ष से मैं जया भारती।
0: प्रवर्तन निदेशालय कर्नाटक लोक सेवा आयोग परीक्षा में कथित प्रश्न पत्र लीक मामले में राज्य में कई ठिकानों पर तलाशी अभियान चला रहा है। आयोग के पूर्व अध्यक्ष शिवशंकरप्पा एस साहूकार पर प्रश्न पत्र लीक, ओएमआर शीट में छेड़छाड़ और सरकारी पशु चिकित्सा अधिकारियों की भर्ती के लिए प्रति उम्मीदवार 70 से 80 लाख रूपये की रिश्वत मांगने के आरोप है। महाराष्ट्र में विशेष गहन पुनरीक्षण के तहत मतदाता गणना प्रपत्र जमा करने की अंतिम तिथि कल समाप्त हो गई। इसके साथ ही राज्य में करीब 21.16% मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से हटाए जाने की आशंका है। मतदाता सूची का मसौदा 24 अगस्त को प्रकाशित किया जाएगा। मतदाताओं के पास दावे और आपत्तियां दर्ज करने के लिए एक महीने का समय होगा। अंतिम मतदाता सूची 27 अक्टूबर 2026 को प्रकाशित की जाएगी। पश्चिम बंगाल सरकार ने अपने कार्यकाल के पहले 100 दिन की उपलब्धियों पर एक रिपोर्ट जारी की है। रिपोर्ट में उद्योग, निवेश, रोजगार, स्वास्थ्य, शिक्षा, सुशासन, सुरक्षा और जनकल्याण के क्षेत्र में किए गए कार्यों का उल्लेख किया गया है। रिपोर्ट के अनुसार राज्य में नए औद्योगिक निवेश और रोजगार के अवसर पैदा हुए हैं। बुनियादी ढांचे और स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़ी परियोजनाओं में भी तेजी आई है। मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने कहा है कि कम समय में पश्चिम बंगाल के विकास की नई नींव रखी गई है। उन्होंने कहा कि सरकार के कामकाज का आकलन जनता करेगी। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने आज अधिकारियों को आदेश दिया है कि जेल में बंद पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को अगले कुछ दिनों के भीतर व्यापक चिकित्सा जांच के लिए इस्लामाबाद के शिफा अंतर्राष्ट्रीय अस्पताल में स्थानांतरित किया जाए। खबरों के अनुसार सुप्रीम कोर्ट की 3 सदस्यीय पीठ ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के संस्थापक इमरान खान को अस्पताल में भर्ती कराने और उनके परिवार से मिलवाने की मांग वाली कई याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए यह आदेश पारित किया। ईरान ने

0: दोहराया है कि होर्मुज डलडमरो मध्य समुद्र यातायात के लिए तब तक बंद रहेगा जब तक अमेरिका के साथ हस्ताक्षरित 14 सूत्री समझौता ज्ञापन के तहत ईरान की सभी शर्तें पूरी नहीं हो जाती। एक रिपोर्ट।
1: ईरान का कहना है कि विदेशी प्रतिबंधों को पूरी तरह हटाए जाने और सैन्य अभियानों को समाप्त किए जाने के बाद ही इस महत्वपूर्ण जलमार्ग को खोला जा सकता है। मोहम्मद बागेर गलिबफ ने चेतावनी देते हुए कहा कि उनका देश दुश्मन को उसके कार्यों और आक्रामकता के लिए करारा जवाब देने के लिए तैयार है। मोहम्मद बागेर गलिबफ ने राजनयिक प्रक्रिया का बचाव करते हुए कहा कि सैन्य शत्रुता को रोकने के लिए समझौता ज्ञापन में दी गई 60 दिनों की समय सीमा ने ईरान की राष्ट्रीय रक्षा और घरेलू अर्थव्यवस्था को मजबूत करने का एक महत्वपूर्ण अवसर प्रदान किया है। 60 दिनों की अवधि समाप्त होने के बाद भी ये मुख्य मतभेद अनसुलझे हैं। ईरान के लिए होर्मुज के माध्यम से यातायात को सामान्य बनाना नाकेबंदी की समाप्ति, सैनिकों की वापसी और मुआवजे पर निर्भर करता है। समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका की ईरान के साथ कोई वार्ता नियोजित नहीं है। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में ट्रंप ने कहा कि होर्मुज जलडमरू मध्य में अमेरिकी नाकाबंदी पूरी तरह से लागू है। विदेश मंत्रालय में सचिव श्रीप्रिया रंगनाथन ने फलस्तीन के विदेश मंत्री और प्रवासी मामलों के मंत्री वारसेन अघा बेकियन शाहीन से मुलाकात की। फलस्तीन में भारत के प्रतिनिधि कार्यालय ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि दोनों पक्षों ने भारत फलस्तीन द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की। इनमें विकास सहयोग से जुड़ी विभिन्न परियोजनाएं भी शामिल हैं। गोल में पहले क्रिकेट टेस्ट मैच में भारत के 372 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए श्रीलंका ने चौथे दिन का खेल समाप्त होने तक 4 विकेट पर 84 रन बना लिए थे। यहां से भारत को जीत के लिए 6 विकेट की जरूरत है, जबकि श्रीलंकाई टीम जीत से अभी भी 288 रन दूर है। नई दिल्ली में BWF बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप में त्रिशा जौली और गायत्री गोपीचंद की जोड़ी महिला डबल्स के प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई है। वहीं लक्ष्य सेन और उन्नति हुडा ने सिंगल्स के दूसरे दौर में जगह बना ली है। FIH हॉकी विश्व कप में आज भारतीय महिला टीम ने दक्षिण अफ्रीका को 6-1 के बड़े अंतर से हरा दिया। नीदरलैंड्स के अम्स्टरडैम में भारत के लिए नवनीत कौर, सुनेलिता तोपो, सुशीला चानू, दीपिका लाल रिमस्यामी और साक्षी राणा ने गोल दागे। अब भारतीय महिला टीम का अगला मुकाबला बृहस्पतिवार को इंग्लैंड से होगा। वहीं एक बहुप्रतीक्षित मुकाबले में कल अम्स्टरडैम में भारतीय पुरुष टीम का सामना चिर प्रतिद्वंदी पाकिस्तान से होगा। अरब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं निखिल कुमार।
2: घरेलू शेयर बाजार के मुख्य सूचकांक आज गिरावट के साथ बंद हुए। सेंसेक्स 0.63% यानी 493 अंक नीचे आकर 77,235 पर पहुंच गया। वहीं निफ्टी 0.55% यानी 133 अंक लुढ़क कर 24,155 पर बंद हुआ। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज $1 की तुलना में 7 पैसे कमजोर हुआ और 95.68 पर बंद हुआ।
0: मौसम विभाग ने कल पूर्वी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में मूसलाधार बारिश की संभावना व्यक्त की है। पूर्वोत्तर भारत, दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, बिहार, छत्तीसगढ़, तटीय कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, केरलम और माहे, पश्चिम बंगाल तथा सिक्किम के कुछ हिस्सों में भी कल मध्यम से तेज बारिश का अनुमान है। मौसम विभाग ने उत्तरी आंध्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कारैक्काल में कल बादल गरजने तथा बिजली गिरने की संभावना व्यक्त की है। आंध्र प्रदेश, बिहार, तटीय कर्नाटक, पूर्वी राजस्थान, जम्मू कश्मीर, मध्य प्रदेश, दक्षिणी आंध्र, कर्नाटक, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी इसी तरह का मौसम रहने का अनुमान है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। ब्रिक्स देशों ने पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास के लिए अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। भारत ने कहा पर्यावरण संबंधी कार्रवाई विकासशील देशों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए हो। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारत की चुनाव प्रणाली की प्रशंसा पर विदेश मंत्रालय ने कहा देश की चुनाव प्रणाली की विश्वसनीयता सर्वविदित है। सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली में छात्र प्रदर्शनकारियों पर पुलिस की कथित कार्रवाई और पुलिस कर्मियों के विरुद्ध हिंसा के आरोपों की जांच के लिए उच्चस्तरीय समिति गठित करेगा। पाकिस्तान के शीर्ष न्यायालय ने जेल में बंद पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को चिकित्सा जांच के लिए अस्पताल भेजने का आदेश दिया। ईरान ने दोहराया होर्मुज जलडमरू मध्य तब तक बंद रहेगा जब तक अमेरिका के साथ हस्ताक्षरित सभी शर्तें पूरी नहीं हो जाती। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी। आई एम साइरा मुज्तबा विद द न्यूज एट 9।

करें ताकि उनकी अगले कुछ दिनों में जामे तिब्बी जांच हो सके। मकामी मीडिया ने खबर दी है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ PTI पार्टी के बानी इमरान खान के इलाज और अपने घर वालों से मिलने से मुतालिक कई अर्जदाश्तों की समाअत करते हुए 3 मेंबरों पर मुश्तमिल सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने यह हुक्म मंजूर किया। अदालत ने कहा है कि इमरान खान की सेहत और जिंदगी और तिब्बी सहूलियात के लिए उनके हक की आइनी गारंटी के तहत ये हुक्म दिया गया है। ईरान ने आज कहा है कि जब तक अमेरिका के साथ दस्तखत किए गए 14 नुकाती मुफाहमत नामे के तहत ईरान की सभी शराइत पूरी नहीं हो जाती, उस वक्त तक आबनाए हुरमुज बहरी ट्रैफिक के लिए बंद रहेगी। तेहरान ने इस इंतहाई अहम आबी गुजरगाह को दोबारा खोले जाने की गैर मुल्की पाबंदियों को मुकम्मल तौर पर ख़त्म किए जाने और फौजी कार्रवाई को रोकने से बराह रास्त मुंसलिक कर दिया है। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाकर कालिबाफ ने मजीद महाज आरई के खतरनाक नतज की वार्निंग देते हुए जोर देकर कहा कि इस्लामी जमहूरिया दुश्मन की कार्रवाइयों और जारहियत का माकूल जवाब देने के लिए तैयार है। उनकी ये रायजनी तरफैन के दरमियान मुफाहमत नामे के तहत फौजी कार्रवाई रोकने की खातिर अमन बातचीत के लिए 60 दिन की मुद्दत खत्म होने के बाद सामने आई है। जनाब कालिबाफ ने सिफारती अमल का दिफा करते हुए कहा कि मुफाहमत नामे के तहत फौजी कार्रवाई रोकने के लिए 60 दिन की मुद्दत में ईरान के कौमी दिफा और घरेलू मीशत को मुस्तहकम करने के लिए एक अहम मौका फराहम किया है। मुनफरिद शनाख्त के मुतालिक भारत की अथॉरिटी UIDAI ने बायोमेट्रिक के लाजमी अपडेट्स के लिए अपनी मिशन की तर्ज पर चलाई गई मुल्कगीर मुहिम में एक बड़ा संगमील हासिल किया है और मुल्क भर में स्कूल जाने वाले 2 करोड़ से ज़्यादा बच्चों के बायोमेट्रिक अपडेट्स मुकम्मल कर लिए हैं। पिछले साल सितंबर में शुरू की गई इस खसूसी मुहिम के तहत अब तक 1,56,000 स्कूलों का अहाता किया गया है, जिसकी वजह से स्कूल जाने वाले बच्चे आधार का अपना बायोमेट्रिक मुकम्मल कर पाए हैं। मर्दों के क्रिकेट में गाले में पहले टेस्ट मैच के 4थे दिन का खेल खत्म होने पर भारत के खिलाफ मेज़बान श्रीलंका ने अपनी दूसरी इनिंग्स में 4 विकेट के नुकसान पर 84 रन बना लिए थे। आज शाम जब खेल खत्म हुआ तो सोनल धिनुसा और धनंजय डिसल्वा क्रीज पर मौजूद थे। भारत के लिए मानव सुथर ने 2 विकेट हासिल किए। इससे कबल दिन में भारतीय टीम अपनी दूसरी इनिंग्स में 193 रन पर ऑल आउट हो गई और श्रीलंका की जीत के लिए 372 रन का निशाना रखा। ऋषभ पंत ने सबसे ज्यादा 66 रन बनाए। वो टेस्ट क्रिकेट में 100 छक्के लगाने वाले भारत के पहले और दुनिया के 4थे खिलाड़ी भी बने। बैडमिंटन खिलाड़ी लक्ष्य सेन नई दिल्ली में जारी BWF बैडमिंटन आलमी चैंपियनशिप के मर्दों के सिंगल्स के दूसरे राउंड में पहुंच गए हैं। ख्वातीन के डबल्स में भारत की ट्रेसा जॉली और गायत्री गोपीचंद प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। भारत की जोड़ी ने अमरीका की लॉरेन और एलिसन की जोड़ी को सीधे सेटों में 21-15, 21-12 से हराया। और आखिर में इस बुलेटिन की खास खास खबरें एक बार फिर। ब्रिक्स मुल्कों ने माहौलियाती तहफ़ और पायदार तरक्की के अपने अज़्म की तौसीख की है। भारत ने जोर देकर कहा है कि माहौलियात से मुतालिक कार्रवाई में तरक्की पजीर मुल्कों की ज़रूरियात को पूरा करना लाजमी है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से भारत के इंतखाबी निज़ाम की सताइश के ताल्लुक से भारत ने कहा है कि उसकी इंतखाबी मशीनरी की भरोसेमंदी आलमी सतह पर पूरी तरह अपनी शनाख्त रखती है। सुप्रीम कोर्ट दिल्ली में तलबा के एहतजाज के दौरान पुलिस कार्रवाई के इल्ज़ाम और सिक्योरिटी अहलकारों के खिलाफ तशद्दुद के इल्ज़ाम की छानबीन के लिए एक आला इख्तियाराती कमेटी तश्कील देगी। पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने जेल में बंद साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान को तिब्बी जाँच के लिए अस्पताल मुंतकिल करने की हिदायत दी है। इसी के साथ खबरों का यह बुलेटिन ख़त्म हुआ।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं शक्ति सिंह। भारत ने इस बात पर जोर दिया है कि पर्यावरण से जुड़े प्रयास लोगों पर केंद्रित, टिकाऊ और विकासशील देशों की वास्तविकताओं के अनुरूप होने चाहिए। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने आज नई दिल्ली में ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की 12वीं बैठक में कहा कि ब्रिक्स की अध्यक्षता के दौरान भारत का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन से प्रेरित है। इसमें ग्लोबल साउथ की चिंताओं को एजेंडे में सबसे ऊपर रखा गया है और ब्रिक्स को सहयोग तथा स्थिरता के लिए समायोजन तथा नवाचार को बढ़ावा देने वाले मंच

0: एंड इंक्लूसिव ग्रोथ।
1: श्री भूपेंद्र यादव ने भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता की चार प्राथमिकताओं को रेखांकित किया, टिकाऊ जीवन शैली को बढ़ावा देना, वनीकरण, जंगल की आग का प्रबंधन तथा आपदाओं से उबरने की क्षमता विकसित करना, सर्कुलर इकोनॉमी और अनुकूलन। बैठक का समापन संयुक्त मंत्री स्तरीय बयान की स्वीकृति के साथ हुआ। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने घोषणा की है कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक 2 अक्टूबर से एक महीने का अभियान बैंकिंग फॉर यूथ शुरू करेंगे। आज शाम नई दिल्ली में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक सम्मेलन के समापन भाषण में उन्होंने कहा कि इस अभियान का प्राथमिक उद्देश्य युवाओं को वित्तीय क्षेत्र से जोड़ना और उनकी वित्तीय यात्रा में मार्गदर्शन करना है। उन्होंने बताया कि अभियान का लक्षित समूह 16 वर्ष और उससे अधिक आयु के युवा पेशेवर होंगे। वित्त मंत्री ने कहा कि यह अभियान युवा ग्राहकों के साथ निरंतर जुड़ाव के लिए एक मंच के रूप में कार्य करेगा, जिससे उनकी भावी उद्यमशीलता की यात्रा सुगम होगी। इस बीच क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों RRB ने पिछले एक वर्ष के दौरान ऋण वितरण में काफी बढ़ोतरी दर्ज की है। वित्त मंत्रालय ने बताया कि वर्ष 2025-26 के दौरान कुल बकाया ऋण में 10.3% की वृद्धि हुई है। भारत ने इंडोनेशिया में आए भीषण भूकंप से हुई जानमान की हानि पर गहरा शोक व्यक्त किया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि भारत इस त्रासदी से बेहद दुखी है और भारत इंडोनेशिया को राहत और बचाव कार्यों में हर संभव सहायता प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारत की चुनाव प्रणाली की प्रशंसा करने और अमेरिकी चुनाव में मतदाता पहचान पत्रों की कमी पर मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार की टिप्पणियों का जिक्र पर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि भारत की चुनावी प्रणाली की विश्वसनीयता सर्वविदित तथ्य है। बांग्लादेश में ऊर्जा संबंधी अनुरोध प्राप्त होने की खबरों पर श्री जायसवाल ने कहा कि भारत का बांग्लादेश के साथ ऊर्जा सहयोग जारी है। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में हो रहे विरोध प्रदर्शनों पर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि इस क्षेत्र में स्थानीय आबादी को अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से सहानुभूति और एकजुटता की आवश्यकता है।
2: जैसा कि मैंने बताया कि बहुत सारे लोगों की जाने गई हैं वहाँ, और साथ ही साथ बहुत सारे लोग वहाँ हताहत हुए, उसके अलावा बहुत लोगों को इंजरीज भी आई हैं, और कि वहाँ पर जो एसेंशियल कमोडिटीज है, जो आम चीजें हैं, आम वस्तुएं हैं रोजमर्रा के, उस पर भी काफी रोक लगाया गया है। और हालात ऐसी है कि जो वहाँ पर लोग हैं उनको अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से सिंपति की, सॉलिडेरिटी की जरूरत है और वो उनको मिलना चाहिए।
1: सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि दिल्ली में हाल ही में छात्र प्रदर्शनकारियों के खिलाफ पुलिस की कथित कार्रवाई और पुलिसकर्मियों के खिलाफ हिंसा के आरोपों की जांच के लिए एक उच्च स्तरीय समिति गठित की जाएगी। समिति में सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीशों के अलावा पूर्व पुलिस महानिदेशक और पूर्व CBI निदेशक शामिल होंगे। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने परीक्षा व्यवस्था में बड़ा बदलाव किया है। एजेंसी ने करीब 600 विशेषज्ञों को हटाकर नए विशेषज्ञों को शामिल करने का निर्णय लिया है। शिक्षा मंत्रालय के मुताबिक प्रश्न पत्रों की जांच के लिए 4 स्तर की व्यवस्था लागू की जाएगी। गोल में पहले क्रिकेट टेस्ट मैच में भारत के 372 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए श्रीलंका ने चौथे दिन का खेल समाप्त होने तक 4 विकेट पर 84 रन बना लिए थे। यहां से भारत को जीत के लिए 6 विकेट की आवश्यकता है, जबकि श्रीलंकाई टीम जीत से अभी भी 288 रन दूर है। मौसम विभाग ने कल पूर्वी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में मूसलाधार बारिश का संभावना व्यक्त की है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय साइरा मुज्तबा। BRICS nations today reiterated their commitment to strengthening collaboration on environmental protection and sustainable development. A joint ministerial statement adopted on the conclusion of the 12th BRICS Environment Ministers meeting in New Delhi today said, BRICS nations also reaffirmed their commitment to advancing the full and effective implementation of the 2030 Agenda for Sustainable Development, the UN Framework Convention on Climate Change and its Paris Agreement. The countries emphasized that enhanced international cooperation, including availability of finance from developed countries, is essential to enable developing countries to effectively address environmental and climate challenges while advancing sustainable development and poverty eradication. India is chairing BRICS this year with the theme Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability. The BRICS ministers also expressed their appreciation for India's leadership in advancing the circular economy as an enabler of sustainable development. Earlier speaking at the meeting, Union Minister for Environment, Forest and Climate Change, Bhupendra Yadav, emphasized that environmental action must

संजय भटनागर की आवाज में आप सुन रहे थे गजलें कार्यक्रम गुलदस्ता में। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडिया वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, DRM 810 किलोहर्ट्स पर। रात्रि के 10:30 हुए हैं। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम राग रंजन में आज हम आपको सुनवा रहे हैं भगवान दास शर्मा का राग यमन में संतूर वादन विलंबित गत रूपक ताल में निबद्ध है।

0: हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम राग रंजन में अभी आप सुन रहे थे भगवान दास शर्मा का राग यमन में संतूर वादन। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडिया वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, TRM 810 किलोहर्ट्स पर। आइए सुनते हैं समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मोहम्मद जुबैर। भारत ने इस बात पर जोर दिया है कि पर्यावरण से जुड़े प्रयास लोगों पर केंद्रित, टिकाऊ और विकासशील देशों की वास्तविकताओं के अनुरूप होने चाहिए। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने आज नई दिल्ली में ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की 12वीं बैठक में कहा कि ब्रिक्स की अध्यक्षता के दौरान भारत का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन से प्रेरित है। इसमें ग्लोबल साउथ की चिंताओं को एजेंडे में सबसे ऊपर रखा गया है और ब्रिक्स को सहयोग तथा स्थिरता के लिए समायोजन तथा नवाचार को बढ़ावा देने वाले मंच के तौर पर फिर से परिभाषित किया गया है। श्री भूपेंद्र यादव ने जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता के नुकसान, प्रदूषण और आपदा के खतरों जैसी बढ़ती वैश्विक पर्यावरणीय चुनौतियों पर प्रकाश डाला।
2: जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता का नुकसान और प्रदूषण, ये तीनों मिलकर एक बड़ा संकट पैदा कर रहे हैं। आपदाओं का बढ़ता खतरा भी दुनिया भर में पारिस्थितिकी तंत्रों को प्रभावित कर रहा है। ये चुनौतियाँ विकासशील देशों के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि वे पर्यावरण के प्रति संवेदनशीलता, गरीबी

0: होंगे। भारत ने इंडोनेशिया में आए भीषण भूकंप से हुई जानमाल की हानि पर गहरा शोक व्यक्त किया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि भारत इस त्रासदी से बेहद दुखी है और भारत इंडोनेशिया को राहत और बचाव कार्यों में हर संभव सहायता प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारत की चुनाव प्रणाली की प्रशंसा करने और अमरीकी चुनावों में मतदाता पहचान पत्रों की कमी पर मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार की टिप्पणी का जिक्र करने पर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि भारत की चुनाव प्रणाली की विश्वसनीयता सर्वविदित तथ्य है। बांग्लादेश से ऊर्जा संबंधी अनुरोध प्राप्त होने की खबरों पर श्री जायसवाल ने कहा कि भारत का बांग्लादेश के साथ ऊर्जा सहयोग जारी है। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में हो रहे विरोध प्रदर्शनों पर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि इस क्षेत्र में स्थानीय आबादी को अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से सहानुभूति और एकजुटता की जरूरत है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने भारत जापान साझेदारी को और मजबूत करने पर जोर दिया है। उन्होंने जापानी कंपनियों से भारत में निवेश और कारोबारी साझेदारी बढ़ाने का आह्वान किया। नई दिल्ली में जापानी प्रतिनिधिमंडल को संबोधित करते हुए श्री गोयल ने कहा कि दोनों देशों के संबंध शांति, प्रगति और समृद्धि की साझा सोच पर आधारित हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि दिल्ली में हाल ही में छात्र प्रदर्शनकारियों के खिलाफ पुलिस की कथित कार्रवाई और पुलिसकर्मियों के खिलाफ हिंसा के आरोपों की जांच के लिए एक उच्च स्तरीय समिति गठित की जाएगी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने परीक्षा व्यवस्था में बड़ा बदलाव किया है। एजेंसी ने करीब 600 विशेषज्ञों को हटाकर नए विशेषज्ञों को शामिल करने का फैसला किया है। शिक्षा मंत्रालय के अनुसार प्रश्न पत्रों की जांच के लिए 4 स्तर की व्यवस्था लागू की जाएगी। हॉकी इंडिया ने भारतीय महिला हॉकी टीम की फॉरवर्ड लाल रेमसियामी और पुरुष टीम के मिडफील्डर राजकुमार पॉल को अर्जुन पुरस्कार 2025 के लिए चुने जाने पर बधाई दी है। खेल मंत्रालय ने कुल 17 खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार के लिए चुना है। राष्ट्रपति भवन में आयोजित समारोह में राष्ट्रपति इन खिलाड़ियों को सम्मानित करेंगी। मिजोरम की लाल रेमसियामी 2017 से भारतीय महिला हॉकी टीम का हिस्सा है। उन्होंने टोक्यो ओलंपिक में भारत के ऐतिहासिक चौथे स्थान हासिल करने में अहम भूमिका निभाई थी। उत्तर प्रदेश के राजकुमार पॉल ने 2020 में अंतर्राष्ट्रीय पदार्पण किया। वह पेरिस 2024 ओलंपिक में लगातार दूसरी बार कांस्य पदक जीतने वाली भारतीय पुरुष हॉकी टीम का हिस्सा थे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by V.C. Pramod. BRICS nation today reiterated their commitment to strengthening collaboration on environmental protection and sustainable development. A joint ministerial statement adopted on the conclusion of the 12th BRICS Environment Ministers meeting in New Delhi today said, BRICS nations also reaffirmed their commitment to advancing the full and effective implementation of the 2030 Agenda for Sustainable Development, the United Nations Framework Convention on Climate Change, and its Paris Agreement. The countries emphasized that enhanced international cooperation, including availability of finance from developed countries, is essential to enable developing countries to effectively address environmental and climate challenges while advancing sustainable development and poverty eradication. India is chairing BRICS this year with the theme Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability. The BRICS ministers also expressed their appreciation for India's leadership in advancing the circular economy as an enabler of sustainable development. Union Agriculture and Farmers Welfare Minister Shivraj Singh Chauhan has emphasized the need to produce high-quality agricultural products that meet global market standards. He said it can be done by educating farmers about various modern technical tools. The minister was addressing the 97th Annual General Meeting of the Indian Council for Agricultural Research, ICAR, in New Delhi today. The minister also administered the Saptadhara of Shakti Pledge to officials of both ministries in national capital. Mr. Chauhan said, Through Shakti Ki Saptadhara, Prime Minister Narendra Modi has presented

जी हाँ दोस्तों, प्रेम की राह में दिल कब किसका हो जाए ये कोई नहीं जानता। बस एक नज़र मिलती है और दिल उम्र भर के लिए किसी का हो जाता है। उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाज़ में आप सुन रहे थे ये गीत फिल्म प्रेम दीवाने से। इस गीत की फरमाइश की थी बीडीए कॉलोनी करगे घेना बरेली उत्तर प्रदेश से बेनी सिंह सागर, पन्नीलाल, आशीष कुमार सागर, अमर सिंह, हितेश, राजेश, रूबी, एकता भारती, दिव्या भारती, रचना भारती, श्रीमती ओमवती भारती, कनक, शुगुन, सारांश, आयाश, अदिति वर्मा, शिवांश, पृथक सिंह ने साथ ही इस गीत की फरमाइश की थी। दिल्ली से प्रियाशी, वेदांशी, रणवीर, तनिष्का, नीलम, मनीष, गीतांजलि ने।

दोस्तों, कभी कोई अजनबी अचानक जिंदगी में आता है और पता नहीं कब वो चेहरा दिल में सबसे खूबसूरत याद बन जाता है। कुछ मुलाकातें छोटी होती हैं मगर उनका असर बहुत गहरा होता है। उदित नारायण और महालक्ष्मी की आवाज में आप सुन लेते हैं ये गीत फिल्म दिल से। इस गीत की फरमाइश की थी गाजियाबाद से शिशुपाल अकेला ने, गन्नौर से आदिल कुमार, तसदील अली, मुजफ्फर अली, और संबलपुर से फागुराम यादव, ज्योति और ओ जसपी ने।

मोहम्मद अजीज और अलका याग्निक की आवाज़ में आप सुन रहे थे ये खूबसूरत गीत फिल्म खुदा गवाह से। इस गीत की फरमाइश की थी इंदौर मध्य प्रदेश से नारायणा खर्चे, ललिता, कार्तिक, संजना, परी, स्वाति और लड्डू ने देविका। और साथ ही इस गीत की फरमाइश की है रघुवीर नगर से दिलावर खान, हसीना बानो, अलीजा नायाब और लड्डू ने। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम फिल्म संगीत। ये कार्यक्रम आपकी फरमाइश पर आधारित है। आप हमें मेल कर सकते हैं, मेल का पता है ip.radio.delhi@gmail.com। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम फिल्म संगीत। आइए सुनते हैं अगली पेशकश।

दोस्तों, कुछ रिश्ते नाम के मोहताज नहीं होते। बस एक इंसान का साथ हो तो दिल की पूरी दुनिया अपनी सी लगने लगती है। कभी-कभी दिल बस इतना ही कहना चाहता है कि तुम हमेशा मेरे साथ रहो। अरिजीत सिंह और आशीष कौर की आवाज़ में आप सुन रहे थे ये खूबसूरत गीत फिल्म केसरी से, और इस गीत की फरमाइश की थी गांव लोहागढ़ ठकुरा वाला से स्वर्ण सिंह गिल, दलजीत सिंह, राजदीप सिंह, गुरनूर, गुरलाल, अविराज, और साथ ही इस गीत की फरमाइश की है पंजाब से बब्बल मल्होत्रा, ओम प्रकाश मल्होत्रा ने।

तुमसे मिलके मैंने जाना ये प्यार भी अजीब चीज है। इंसान खुद को भूल जाता है, ऐसा क्यों होता है?

तुम्हें देखता हूँ तो लगता है कोई ऐसा भी मेरे पास तो है, अरे जिसको मेरी तन्हाई का एहसास तो है।

कभी कभी कोई यूं ही सामने से गुजरता है और दिल ठहर सा जाता है। ना कोई पहचान होती है, ना कोई बात, फिर भी उसका ख्याल बार बार आता है। शायद यही तो दिल की वो पहली सी हलचल है जिसे शब्दों में कहना आसान नहीं है। सोनू निगम और अलका याग्निक की आवाज में आप सुन रहे थे ये गीत। फिल्म का नाम है हर दिल जो प्यार करेगा, और इस गीत की फरमाइश की थी उत्तम नगर दिल्ली से कमला रानी बोधराज कोरवाल, गीतिका कोरवाल भानु प्रकाश, पंचकुला से आशु चुग, अश्वनी चुग, गोविंदा चुग, टॉनी दीवान, लव दीवान, राधे भाविका डिगरा।

जी हाँ दोस्तों, कभी कभी दिल की बातें कहने के लिए लफ्ज़ों की ज़रूरत नहीं होती। एक नज़र काफ़ी होती है, एक खामोशी काफ़ी होती है, और दिल दिल के सब कह जाता है। लता मंगेशकर और नितिन मुकेश की आवाज़ में आप सुन रहे थे ये गीत फिल्म आईना से। इस गीत की फरमाइश की थी चिरमिरी कुरसरिया कालरी से इंद्रभान सिंह, अनुभव ऋषभ, राम सरोदर, नारायण प्रसाद लहरे, दिनेश प्रसाद, और साथ ही इस गीत की फरमाइश की है गन्नौर से आदिल कमर, तस्दीक अली और मुजफ्फर अली ने।

बाबुल सुप्रिया और अलका याग्निक की आवाज़ में आप सुन रहे थे ये खूबसूरत गीत। फिल्म सात रंग के सपने से इस गीत की फरमाइश की थी थाना रोड बक्सर से ज्योत गुप्ता, आशीष सतीश, आयुष आरुषि और सानवी गुप्ता ने। साथ ही इस गीत की फरमाइश की है मध्य प्रदेश से AK।

0: अनुराधा पौडवाल और सुरेश वाडकर की आवाज़ में आप सुन रहे थे ये गीत फिल्म संगीत से। इस गीत के साथ कार्यक्रम फिल्म संगीत यहीं संपन्न होता है। मैं आपकी दोस्त प्रिया अब आपसे विदा लेती हूँ। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है, मीडिया वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, DRM 810 किलोहर्ट्स पर। 12 बजने को है इन मीटरों पर हमारे प्रसारण संपन्न होते हैं। सुबह 4:50 पर आपकी सेवा में हम फिर उपस्थित होंगे। AIR लाइव न्यूज़ 24/7 पर हमारे प्रसारण जारी हैं। अब कुछ ही देर में आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मोहम्मद जुबैर। भारत ने इस बात पर जोर दिया है कि पर्यावरण से जुड़े प्रयास लोगों पर केंद्रित, टिकाऊ और विकासशील देशों की वास्तविकताओं के अनुरूप होने चाहिए। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने कल नई दिल्ली में ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की 12वीं बैठक में कहा कि ब्रिक्स की अध्यक्षता के दौरान भारत का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन से प्रेरित है। इसमें ग्लोबल साउथ की चिंताओं को एजेंडे में सबसे ऊपर रखा गया है और ब्रिक्स को सहयोग तथा स्थिरता के लिए समायोजन तथा नवाचार को बढ़ावा देने वाले मंच के तौर पर फिर से परिभाषित किया गया है। श्री भूपेंद्र यादव ने जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता के नुकसान, प्रदूषण और आपदा के खतरों जैसी बढ़ती वैश्विक पर्यावरणीय चुनौतियों पर प्रकाश डाला।
2: इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज,
3: जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता का नुकसान और प्रदूषण, ये तीनों मिलकर एक बड़ा संकट पैदा कर रहे हैं। आपदाओं का बढ़ता खतरा भी दुनिया भर में पारिस्थितिकी तंत्रों को प्रभावित कर रहा है। ये चुनौतियाँ विकासशील देशों के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि वे पर्यावरण के प्रति संवेदनशीलता, गरीबी उन्मूलन, खाद्य सुरक्षा और समावेशी विकास जैसी व्यापक विकास प्राथमिकताओं से जुड़ी होती हैं।
2: फूड सिक्योरिटी एंड इंक्लूसिव ग्रोथ,
1: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने घोषणा की है कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक 2 अक्टूबर से 1 महीने का अभियान बैंकिंग फॉर यूथ शुरू करेंगे। कल शाम नई दिल्ली में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक सम्मेलन के समापन भाषण में उन्होंने कहा कि इस अभियान का प्राथमिक उद्देश्य युवाओं को वित्तीय क्षेत्र से जोड़ना और उनकी वित्तीय यात्रा में मार्गदर्शन करना होगा। भारत ने इंडोनेशिया में आए भीषण भूकंप से हुई जानमाल की हानि पर गहरा शोक व्यक्त किया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणदीप

0: मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि भारत के चुनाव प्रणाली की विश्वसनीयता सर्वविदित तथ्य है। इस बीच चुनाव आयोग ने कल देश की चुनाव व्यवस्था पर एक तथ्य पत्र जारी किया। आयोग ने बताया कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा और राज्य विधानसभाओं व विधान परिषदों के चुनाव स्वतंत्र संवैधानिक संस्था भारत निर्वाचन आयोग की देखरेख में होते हैं। मतदान फोटो पहचान पत्र के आधार पर कराया जाता है। करीब 1 अरब मतदाताओं को मतदाता पहचान पत्र जारी किए जा चुके हैं। मतदाता आयोग के मतदाता सेवा पोर्टल से डिजिटल पहचान पत्र भी डाउनलोड कर सकते हैं। आयोग ने कहा कि करीब 12 लाख मतदान केंद्रों के लिए मतदाता सूचियां तैयार की जाती हैं। ये तथ्य पत्र अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की भारत की चुनाव प्रक्रिया पर टिप्पणी के बाद जारी किया गया है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने भारत जापान साझेदारी को और मजबूत करने पर जोर दिया है। उन्होंने जापानी कंपनियों से भारत में निवेश और कारोबारी साझेदारी बढ़ाने का आह्वान किया। नई दिल्ली में जापानी प्रतिनिधिमंडल को संबोधित करते हुए श्री गोयल ने कहा कि दोनों देशों के संबंध शांति, प्रगति और समृद्धि की साझा सोच पर आधारित हैं। उन्होंने बताया कि वित्त वर्ष 2025-26 में भारत और जापान के बीच द्विपक्षीय व्यापार 27 अरब 50 करोड़ डॉलर तक पहुंच गया है। जापान भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का 5वां प्रमुख देश है। हॉकी इंडिया ने भारतीय महिला हॉकी टीम के फॉरवर्ड लाल रेमस्यामी और पुरुष टीम के मिडफील्डर राजकुमार पॉल को अर्जुन पुरस्कार 2025 के लिए चुने जाने पर बधाई दी है। खेल मंत्रालय ने 17 खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार के लिए चुना है। राष्ट्रपति भवन में आयोजित समारोह में राष्ट्रपति इन खिलाड़ियों को सम्मानित करेंगी। भारतीय फुटबॉल के दिग्गज खिलाड़ी आई अरुमेनायम को खेल मंत्रालय ने अर्जुन पुरस्कार लाइफटाइम 2025 से सम्मानित किया जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय वीसी प्रमोद। BRICS nation has reiterated their commitment to strengthening collaboration on environmental protection and sustainable development. A joint ministerial statement adopted on the conclusion of the 12th BRICS Environment Ministers meeting in New Delhi yesterday said, BRICS nations also reaffirmed their commitment to advancing the full and effective implementation of the 2030 Agenda for Sustainable Development. The countries emphasized that enhanced international cooperation, including availability of finance from developed countries, is essential to enable developing countries to effectively address environmental and climate changes. India is chairing BRICS this year with the theme Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability. Union Agriculture and Farmers Welfare Minister Shivraj Singh Chauhan has emphasized the need to produce high-quality agricultural products that meet global market standards. He said it can be done by educating farmers about various modern technical tools. The minister was addressing the 97th Annual General Meeting of the Indian Council of Agricultural Research, ICAR, in New Delhi today. The minister also administered the Saptadhara of Shakti Pledge to officials of both ministries in the national capital. Mr. Chauhan said, through Shakti Ki Saptadhara, Prime Minister Narendra Modi has presented a clear roadmap for building a developed India. The Supreme Court has said that it would constitute a high-powered committee comprising retired Apex Court and High Court judges, a former DGP and an ex-CBI director to examine allegations of police excesses against students during recent protests in Delhi and violence against police personnel. A 3-judge bench headed by Chief Justice Surya Kant said an order for constituting the committee would be released tomorrow after it receives suggestions from different parties on other members to be included in the panel. The top court further said that it will direct the handing over of video footage and CCTV recordings of the violence during the 20th of July Parliament March in Delhi to the high-powered committee for examination. National Testing Agency has revamped its examination team by removing 600 experts and onboarding new experts. In a social media post, Ministry

नमस्कार दोस्तों, सुरों की इस खूबसूरत महफिल में आपका स्वागत है। ये आकाशवाणी दिल्ली का AIR लाइव न्यूज़ 24/7 चैनल है और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सुरों का सफरनामा। दोस्तों, बॉलीवुड संगीत की दुनिया में कुछ आवाज़ें ऐसी होती हैं जिन्हें सुनते ही एक दौर, एक कहानी और एक पूरा सिनेमाई संसार आंखों के सामने उतर आता है। आज की आवाज़ भी ऐसी ही आवाज़ है, एक ऐसी आवाज़ जिस पे चुलबुलापन था, रोमांस था, शरारत थी और सबसे बड़ी बात उसमें थी एक बेहद ख़ास पारिवारिक संगीत विरासत। और दोस्तों, आज का सफ़र है उस गायक का जिसने अपनी पहचान सिर्फ इसलिए नहीं बनाई कि वो महान गायक किशोर कुमार साहब के बेटे हैं, बल्कि अलग आवाज़ और अंदाज से भी संगीत की दुनिया में जगह बनाई। जी हाँ, आज की FMR आज की जो कहानी है वो है अमित कुमार की। एक ऐसा नाम जिसके साथ जुड़ा है भारतीय सिनेमा के एक बेहद बड़े संगीत परिवार का इतिहास। तो आइए शुरू करते हैं आज का सुरों का सफरनामा।

दोस्तों, अमित कुमार का जन्म 3 जुलाई 1952 को हुआ। उनके पिता थे हिंदी सिनेमा के महान गायक, अभिनेता और संगीतकार किशोर कुमार साहब। और जब पिता किशोर कुमार साहब जैसा कलाकार हो तो संगीत से रिश्ता शायद विरासत में ही मिल जाता है। लेकिन अमित कुमार के लिए ये विरासत जितनी खूबसूरत थी उतनी ही ज़्यादा चुनौतीपूर्ण भी, क्योंकि जब आपके पिता देश के सबसे लोकप्रिय गायकों में से एक हों तो अपनी अलग पहचान बनाना इतना आसान नहीं होता। लोग आपकी आवाज़ में भी पिता की आवाज़ तलाशेंगे, आपकी तुलना भी होगी और सवाल भी उठेंगे कि क्या ये कलाकार अपने दम पर अपनी पहचान बना पाएगा। अमित कुमार ने इन सवालों का जवाब अपनी आवाज़ से दिया। उन्होंने गायकी में अपने अलग रंग तलाशे और धीरे धीरे फिल्म संगीत की दुनिया में अपनी बहुत ही मजबूत पहचान बनाई।

तो अमित कुमार जी का बचपन संगीत से घिरा हुआ था। घर में संगीत था, रिकॉर्डिंग स्टूडियो के किस्से थे, फिल्मी दुनिया के बड़े बड़े कलाकारों का आना जाना था। और सबसे बढ़कर जानते हैं, सबसे बढ़कर सामने थे किशोर कुमार साहब पापा के तौर पर। लेकिन अमित कुमार का संगीत का सफ़र सिर्फ पिता की छाया में नहीं चला। बताया जाता है बचपन से ही अमित कुमार की रुचि गायकी और संगीत में थी। कम उम्र में ही उन्होंने मंच पर गाना गाना शुरू कर दिया और बंगाली संगीत की दुनिया से भी उनका जुड़ाव बना। यही शुरुआत उनका अनुभव बना और आगे चलकर उनके एक फिल्मी करियर की नींव बनी।

दोस्तों, किशोर कुमार साहब की तरह अमित कुमार जी की आवाज़ में भी एक स्वाभाविकता थी। उनकी गायकी में बहुत ज़्यादा बनावटीपन कतई नहीं था। वे गीत को गाते नहीं थे, बल्कि उसे जीने की कोशिश करते थे, उसे महसूस करने की कोशिश करते थे, और यही बात उन्हें धीरे धीरे अलग पहचान दिलाने लगी। और ये तो उनका एक ऐसा गाना है जो हमारी हर याद में हमारे साथ ही चलता है ना।

और अब आते हैं उस सवाल पर जिसका इंतजार हर संगीत प्रेमी को रहता है। अमित कुमार जी को सबसे बड़ा पहला ब्रेक कब और कैसे मिला? अमित कुमार जी ने बहुत कम उम्र में ही फिल्म संगीत में कदम रख दिया था। उनका उनका शुरुआती जुड़ाव बंगाली फिल्मों और संगीत से रहा। जाहिर सी बात है, वो बंगाली थे। इसके बाद हिंदी फिल्म संगीत की दुनिया में उनका सफ़र आगे बढ़ा, लेकिन असली पहचान बनाने में थोड़ा समय लग गया, क्योंकि फिल्म संगीत की जो दुनिया होती है उसमें सिर्फ अच्छी आवाज़ ही जाहिर नहीं होती, काफ़ी नहीं होती। अच्छी आवाज़ ही आपको चाहिए होता है, सही गीत, सही संगीतकार, सही फिल्म और सही वक्त, सही टाइम, सही समय। और अमित कुमार को ये मौके धीरे धीरे मिले, और फिर आया वो दौर जब उनकी आवाज़ हिंदी सिनेमा के लोकप्रिय गीतों का हिस्सा बनने लगे। सुनिए ये गाना, आपको नहीं पता था ना अमित कुमार जी ने गाया है।

दोस्तों, अमित कुमार जी के करियर की सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक थी अपनी पहचान बनाना, क्योंकि हर बार जब उनका नाम आता तो लोगों के जहन में सबसे पहले आते थे किशोर कुमार साहब। लेकिन अमित कुमार जी ने अपने पिता की नकल करने की कोशिश नहीं की। उनकी आवाज़ में किशोर कुमार की स्वाभाविक मस्ती की झलक ज़रूर सुनाई देती है, क्योंकि वो उनके पापा थे तो जाहिर सी बात है आवाज़ का मिलना तो लाजमी ही है। लेकिन उनकी अपनी गायकी का भी अंदाज था। उनकी आवाज़ ख़ास तौर पर रोमांटिक, युवा और मस्ती भरे गीतों में खूब पसंद की गई, और धीरे धीरे श्रोताओं ने ये स्वीकार कर लिया कि किशोर कुमार जी की अपनी एक महान आवाज़ है और अमित कुमार जी की अपनी एक अलग पहचान। अब वक्त है अमित कुमार जी के उन गीतों को याद करने का जिन्होंने उन्हें लाखों लाखों श्रोताओं तक पहुंचा दिया। और आपको पता है दोस्तों, उनकी आवाज़ में खास युवा ऊर्जा थी। फिल्मी संगीत के उस दौर में जब रोमांस का अंदाज़ बदल रहा था, अमित कुमार की आवाज़ उस बदलाव के साथ खूब फिट बैठी। उनके कई गीत आज भी रेडियो और फिल्म संगीत प्रेमियों की प्लेलिस्ट का हिस्सा ज़रूर हैं, और लोग अपने दिन को रात को सुकून भरा बनाने के लिए उनकी आवाज़ का सहारा आज भी ले

दोस्तों कुछ गीत ऐसे भी अमित कुमार जी ने गाए हैं जो उनकी आवाज़ के रोमांटिक अंदाज़ को बखूबी समझाते हैं और बखूबी बताते हैं कि उनकी आवाज़ में कितना रोमांस था, आवाज़ में सादगी, अंदाज़ में अपनापन और शब्दों में एक बेहद खूबसूरत रोमांटिक एहसास। अमित कुमार के करियर में कई ऐसे गीत आए जिन्होंने उनकी आवाज़ को अलग अलग रंग दिए, फिर कभी रोमांटिक नज़र आए, कभी मस्ती के मूड में, कभी दोस्ती की आवाज़ बने तो कभी युवा दिल की धड़कन। उनके चर्चित गीतों में शामिल है जो आप लोग को सुनाया भी हमने, बड़े अच्छे लगते हैं, याद आ रही है। और कई फिल्मों में उनके गाए रोमांटिक और मस्ती भरे गीत, दोस्तों यही खासियत है अच्छे गायक की, वो सिर्फ शब्द नहीं गाता, वो शब्दों के पीछे छिपे एहसास को अपनी आवाज़ दे देता है और वो ही उन गानों की रूह बन जाते हैं।

और दोस्तों बात करते हैं उस रिश्ते की जिसे संगीत की दुनिया ने भी करीब से देखा। किशोर कुमार साहब और अमित कुमार जी का रिश्ता सिर्फ पिता और बेटे का नहीं था, दोनों के बीच संगीत की एक मजबूत कड़ी थी। और किशोर कुमार साहब खुद एक बेहद अलग किस्म के कलाकार थे। वे पारंपरिक अर्थों में सिर्फ गायक नहीं थे, वे अभिनेता थे, निर्देशक थे, निर्माता थे, संगीतकार थे और सबसे बढ़कर एक बेहद स्वतंत्र सोच वाले इंसान थे। ऐसे पिता के बेटे के रूप में अमित कुमार जी के सामने बहुत बड़ी विरासत थी, लेकिन उस विरासत को संभालने का मतलब उनकी नकल करना नहीं था। अमित कुमार ने अपनी राह बनाई और यही किसी भी कलाकार की अलग पहचान होती ही है। तो दोस्तों आज के शुरू का सफ़रनामा में हमने जाना उस आवाज़ का सफ़र जिसके घर में संगीत सांस लेता था, जिनके पिता थे किशोर कुमार साहब, लेकिन जिन्होंने अपनी पहचान अपने सुरों से बनाई अमित कुमार। उनकी आवाज़ हमें याद दिलाती है कि विरासत रास्ता दिखा सकती है, लेकिन मंजिल तक पहुंचने के लिए अपनी पहचान खुद बनानी पड़ती है। इस खूबसूरत गीत के साथ आज के कार्यक्रम को यहीं विराम देते हैं और आपसे फिर मुलाकात होगी संगीत के किसी और सितारे, किसी और कहानी और किसी और केसरों के सफ़रनामा के साथ। अब तक सुनते रहिए, गुनगुनाते रहिए और संगीत को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाए रखिए। नमस्कार।

0: ये आकाशवाणी दिल्ली का AIR लाइव न्यूज 24x7 चैनल है। अब समाचार होंगे, पहले हिंदी में और फिर अंग्रेजी में।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मोहम्मद जुबैर। भारत ने इस बात पर जोर दिया है कि पर्यावरण से जुड़े प्रयास लोगों पर केंद्रित, टिकाऊ और विकासशील देशों की वास्तविकताओं के अनुरूप होने चाहिए। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने कल नई दिल्ली में ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की 12वीं बैठक में कहा कि ब्रिक्स की अध्यक्षता के दौरान भारत का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन से प्रेरित है। इसमें ग्लोबल साउथ की चिंताओं को एजेंडे में सबसे ऊपर रखा गया है और ब्रिक्स को सहयोग तथा स्थिरता के लिए समायोजन तथा नवाचार को बढ़ावा देने वाले मंच के तौर पर फिर से परिभाषित किया गया है। श्री भूपेंद्र यादव ने जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता का नुकसान, प्रदूषण और आपदा के खतरों जैसी बढ़ती वैश्विक पर्यावरणीय चुनौतियों पर प्रकाश डाला।
2: The impact of climate change,
3: जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता का नुकसान और प्रदूषण, ये तीनों मिलकर एक बड़ा संकट पैदा कर रहे हैं। आपदाओं का बढ़ता खतरा भी दुनिया भर में पारिस्थितिकी तंत्रों को प्रभावित कर रहा है। ये चुनौतियाँ विकासशील देशों के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि वे पर्यावरण के प्रति संवेदनशीलता, गरीबी उन्मूलन, खाद्य सुरक्षा और समावेशी विकास जैसी व्यापक विकास प्राथमिकताओं से जुड़ी होती हैं।
2: फूड सिक्योरिटी एंड इंक्लूसिव ग्रोथ।
1: भारत ने इंडोनेशिया में आए भीषण भूकंप से हुई जानमाल की हानि पर गहरा शोक व्यक्त किया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि भारत इस त्रासदी से बेहद दुखी है और भारत इंडोनेशिया को राहत और बचाव कार्यों में हर संभव सहायता प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। बांग्लादेश से ऊर्जा संबंधी अनुरोध प्राप्त होने की खबरों पर श्री जायसवाल ने कहा कि भारत का बांग्लादेश के साथ ऊर्जा सहयोग जारी है। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में हो रहे विरोध प्रदर्शनों पर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि इस क्षेत्र में स्थानीय आबादी को अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से सहानुभूति और एकजुटता की जरूरत है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारत की चुनाव प्रणाली की प्रशंसा करने और अमरीकी चुनावों में मतदाता पहचान पत्रों की कमी पर मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार की टिप्पणी का जिक्र करते निर्णय पर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि भारत की चुनाव प्रणाली की विश्वसनीयता सर्वविदित तथ्य है। इस बीच चुनाव आयोग ने कल देश की चुनाव व्यवस्था पर एक तथ्य पत्र जारी किया। आयोग ने बताया कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा और राज्य विधानसभाओं व विधान परिषदों के चुनाव स्वतंत्र संवैधानिक संस्था भारत निर्वाचन आयोग

इस बीच वित्त मंत्रालय के अनुसार वित्त वर्ष 2025-26 में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों आरआरबी ने ऋण वितरण में मजबूत वृद्धि दर्ज की है। सरकार ने घरेलू पीएनजी कनेक्शन बढ़ाने के लिए प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दी है। ये योजना अगले महीने की पहली तारीख से लागू होगी। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अनुसार योजना का उद्देश्य देश के ज्यादा से ज्यादा घरों तक साफ, सुरक्षित और किफायती पाइप्ड गैस पहुंचाना है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ओमान को बमबारी की धमकी दी है। दो क्षेत्रीय अधिकारियों के मुताबिक राष्ट्रपति ट्रंप ओमान के ईरान के साथ होर्मुज जलडमरू मध्य में जहाजों की आवाजाही को लेकर समझौते के करीब पहुंचने से नाराज हैं। इस बीच ब्रिटेन की समुद्री निगरानी एजेंसी के अनुसार होर्मुज जलडमरू मध्य से बाहर निकल रहे एक जहाज पर एक मिसाइल से हमला हुआ। एक ईरानी अधिकारी ने कहा है कि जब तक अमरीका ईरान की शर्तों को पूरा नहीं करता तब तक जलमार्ग दोबारा नहीं खुलेगा। एफआईएच हॉकी विश्व कप में कल भारतीय महिला टीम ने दक्षिण अफ्रीका को 6-1 के बड़े अंतर से हरा दिया। अब भारतीय महिला टीम का अगला मुकाबला बृहस्पतिवार को इंग्लैंड से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

ये आकाशवाणी दिल्ली का AIR लाइव न्यूज 24x7 चैनल है। और दोस्तों आइए अब आपको पुराने पुराने बहुत पुराने दौर में लेकर चलते हैं। कार्यक्रम का नाम है गीत सुनहरे और उन गानों को हम सुनेंगे, उनको फिर से उस दौर में पहुंच जाएंगे सुन के जो बहुत बहुत बहुत साल पहले हमारे गायकों ने गाया था और हम तक अभी एक प्यारी सी आवाज़ सबसे पहले जो आ रही है वो है उमा देवी जी की और ये फिल्म है कहानी।

दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे फिल्म धूप छाँव का ये गीत, जिसे आवाज़ दी थी उमा देवी जी ने, जिन्हें हम टुन टुन के नाम से भी जानते हैं। और आइए अब सुनते हैं एक और खूबसूरत आवाज़ KL सहगल साहब की। फिल्म है जिंदगी।

दोस्तों, वक्त बदलने के साथ इंसानी जज्बात कभी नहीं बदलते और वो हमेशा वैसे ही रहते हैं। कुछ यही दर्द यही बात बयां करता है रफ़ी साहब की आवाज़ का ये गीत फिल्म हमराही से।

और दोस्तों, आप भी वो दिन याद कर सकते हैं जिनमें आप कभी ख़त लिखा करते थे, या कभी सुना तो होगा आपने कि पहले ज़माने में लोग ख़त लिखते थे, और इतना ज़्यादा ये मशहूर था ये बात, ख़तों का जो आना जाना था, चिट्ठियों का जो आना जाना था, वो इतना ज़्यादा फेमस था कि जब लोग नहीं मिल पाते थे तो एक दूसरे को चिट्ठियाँ लिखा करते थे। और इसी बात की बानगी है ये बहुत ही प्यारा सा गाना, एक बार फिर उमा देवी की आवाज़ में, फिल्म दर्द से।

दोस्तों, कुछ गीत ऐसे होते हैं जिन्हें सुनते ही लगता है जैसे वक्त ठहर गया हो और आवाज़ सीधे दिल के किसी पुराने से कोने में उतर गई हो। 1949 की फिल्म महल का ये गीत आएगा आने वाला भी एक ऐसा ही गीत है। मधुबाला जी पर फिल्माया गया ये गीत अपनी रहस्यमय धुन, खूबसूरत संगीत और लता मंगेशकर जी की यह जादुई आवाज़ की वजह से हिंदी सिनेमा के सबसे यादगार गीतों में शुमार है। तो आइए उस दौर की उसी रहस्यमय फिजा, वही इंतज़ार और वही मधुर आवाज़ फिर से महसूस करते हैं रात के इस पहर में, जबकि वक्त हो रहा है रात के 1:25 और पूरे

और दोस्तों, इसी कार्यक्रम में अगली प्रस्तुति हम आपको सुना रहे हैं गीत सुनहरे में फिल्म दिल लगी से। सुरैया और श्याम जी की आवाज़।

0: जाएगी।
1: दोस्तों चाहे ये दौर हो, चाहे बरसों पुराना दौर रहा हो, या आगे आने वाले कई सालों बाद कोई दौर आए, लेकिन हमेशा से यही हुआ है और आगे भी यही होता रहेगा कि मोहब्बत की शुरुआत, मोहब्बत का आगाज़ हमेशा आँखों से ही हुआ है और होता रहेगा। लता जी की आवाज़, फिल्म है बरसात।

सौ आंखों में बसे या कोई दिल में समा जाए, लेकिन अगर कोई चुप चुप खड़ा रह जाए तो फिर दोस्तों से रहा नहीं जाता, है ना।

दोस्त पहली मुलाकात के बाद अक्सर देखा गया है कि जिया बेकरार हो जाता है और उसी बेकरारी को जाहिर किया है लता जी की आवाज़ में। आइए हम सुनते हैं फिल्म बरसात का ये।

दोस्तों, वैसे कहते हैं कि प्यार सबके नसीब का हिस्सा नहीं होता, लेकिन मान लीजिए, यकीन जान लीजिए कि अगर किसी ने एक बार प्यार कर लिया ना, तो वो न जाने ज़िंदगी के कितने कितने कितने सारे एहसास को जान जाएगा, समझ जाएगा, पा जाएगा। इसलिए ज़िंदगी में कभी अगर मौका मिले तो प्यार ज़रूर कीजिएगा।

दोस्तों, अगर प्यार करना है तो आपको अपना दिल बहुत मजबूत करना पड़ेगा, ये हमारा कहना नहीं है जनाब। ये तो पुराने जमाने से, पता नहीं कब से हमारे संगीतकार, हमारे लिरिसिस्ट ये हमको समझाते आ रहे हैं। और ऐसी ही कुछ बात कही है इस फिल्म के इस गाने में। फिल्म का नाम है अंदाज और आवाज़ है लता मंगेशकर जी की।

दोस्तों, गाने भी हमारा सहारा बन सकते हैं। ज़िंदगी में हम आए हैं, दुनिया में रहने के लिए आए हैं, तो बहुत सी बातें भी सुननी पड़ेंगी लोगों की। लोग हमारा दिल भी तोड़ेंगे, लेकिन हमें हार नहीं माननी है। हर बार एक नए जोश के साथ, एक नई नए अंदाज़ के साथ तैयार होना है। और ये बात हम नहीं कह रहे हैं, न जाने कितने साल पहले, बहुत सालों पहले, करीब 1950 में गीता दत्त जी की आवाज़ में, बाजी फिल्म में, इस गाने ने कह दिया था हमें।

0: डार्लिंग।
1: दोस्तों, अगर पुराने जमाने के ये गाने नहीं होते ना, तो हम कभी नहीं समझ पाते कि आखिर जो पहले ज़माने में मोहब्बत होती थी वो कैसी होती थी, है ना। और इसी मोहब्बत को एक जाहिर करता है एक बहुत ही प्यारा सा गाना फिल्म अलबेला से, लता मंगेशकर जी और चितलकर जी की आवाज़ में।

0: ये आकाशवाणी दिल्ली का AIR लाइव न्यूज 24/7 चैनल है। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम गीत सुनहरे, और अब समाचार होंगे पहले हिंदी में और फिर अंग्रेजी में।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मोहम्मद जुबैर। भारत ने इस बात पर जोर दिया है कि पर्यावरण से जुड़े प्रयास लोगों पर केंद्रित, टिकाऊ और विकासशील देशों की वास्तविकताओं के अनुरूप होने चाहिए। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने कल नई दिल्ली में ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की 12वीं बैठक में कहा कि ब्रिक्स की अध्यक्षता के दौरान भारत का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन से प्रेरित है। इसमें ग्लोबल साउथ की चिंताओं को एजेंडे में सबसे ऊपर रखा गया है और ब्रिक्स को सहयोग तथा स्थिरता के लिए समायोजन तथा नवाचार को बढ़ावा देने वाले मंच के तौर पर फिर से परिभाषित किया गया है। श्री भूपेंद्र यादव ने जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता के नुकसान, प्रदूषण और आपदा के खतरों जैसी बढ़ती वैश्विक पर्यावरणीय चुनौतियों पर प्रकाश डाला। भारत ने इंडोनेशिया में आए भीषण भूकंप से हुई जानमाल की हानि पर गहरा शोक व्यक्त किया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि भारत इस त्रासदी से बेहद दुखी है और भारत इंडोनेशिया को राहत और बचाव कार्यों में हर संभव सहायता प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में हो रहे विरोध प्रदर्शनों पर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि इस क्षेत्र में स्थानीय आबादी को अंतर्राष्ट्रीय से सहानुभूति और एकजुटता की जरूरत है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारत की चुनाव प्रणाली की प्रशंसा करने और अमरीकी चुनावों में मतदाता पहचान पत्रों की कमी पर मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार की टिप्पणी का जिक्र करने पर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि भारत की चुनाव प्रणाली की विश्वसनीयता सर्वविदित तथ्य है। इस बीच निर्वाचन आयोग ने कल देश की चुनाव व्यवस्था पर एक तथ्य पत्र जारी किया। आयोग ने बताया कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा और राज्य विधानसभाओं व विधान परिषदों के चुनाव स्वतंत्र संवैधानिक संस्था भारत निर्वाचन आयोग की देखरेख में होते हैं। मतदाता फोटो पहचान पत्र के आधार पर कराया जाता है। करीब 1 अरब मतदाताओं को मतदाता पहचान पत्र जारी किए जा चुके हैं। ये तथ्य पत्र अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की भारत की चुनाव प्रक्रिया पर टिप्पणी के बाद जारी किया गया है। असम सरकार ने बच्चों की सुरक्षा और कल्याण के लिए असम राज्य बाल संरक्षण नीति 2026 को मंजूरी दी है। मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व सरमा ने बताया कि इससे बच्चों की देखभाल से जुड़ी सरकारी और निजी संस्थानों में एक समान सुरक्षा व्यवस्था लागू होगी। कैबिनेट ने असम औद्योगिक संबंध नियम 2026 को भी मंजूरी दी है। पश्चिम बंगाल सरकार ने अपने कार्यकाल के पहले 100 दिनों की उपलब्धियों पर एक रिपोर्ट जारी की है। रिपोर्ट में उद्योग, निवेश, रोजगार, स्वास्थ्य, शिक्षा, सुशासन, सुरक्षा और जनकल्याण के क्षेत्र में किए गए कार्यों का उल्लेख किया गया है। रिपोर्ट के अनुसार राज्य में नए औद्योगिक निवेश और रोजगार के अवसर पैदा हुए हैं। बुनियादी ढांचे और स्वास्थ्य

0: ये आकाशवाणी दिल्ली का AIR लाइव न्यूज 24x7 चैनल है। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम गीत बहार। अब समाचार होंगे पहले हिंदी में और फिर अंग्रेजी में।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मोहम्मद जुबैर। भारत ने इस बात पर जोर दिया है कि पर्यावरण से जुड़े प्रयास लोगों पर केंद्रित, टिकाऊ और विकासशील देशों की वास्तविकताओं के अनुरूप होने चाहिए। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने कल नई दिल्ली में ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की 12वीं बैठक में कहा कि ब्रिक्स की अध्यक्षता के दौरान भारत का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन से प्रेरित है। इसमें ग्लोबल साउथ की चिंताओं को एजेंडे में सबसे ऊपर रखा गया है और ब्रिक्स को सहयोग तथा स्थिरता के लिए समायोजन तथा नवाचार को बढ़ावा देने वाले मंच के तौर पर फिर से परिभाषित किया गया है। श्री भूपेंद्र यादव ने जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता के नुकसान, प्रदूषण और आपदा के खतरों जैसी बढ़ती वैश्विक पर्यावरणीय चुनौतियों पर प्रकाश डाला। भारत ने इंडोनेशिया में आए भीषण भूकंप से हुई जानमाल की हानि पर गहरा शोक व्यक्त किया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि भारत इस त्रासदी से बेहद दुखी है और भारत इंडोनेशिया को राहत और बचाव कार्यों में हर संभव सहायता प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। बांग्लादेश से ऊर्जा संबंधी अनुरोध प्राप्त होने की खबरों पर श्री जायसवाल ने कहा कि भारत का बांग्लादेश के साथ ऊर्जा सहयोग जारी है। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में हो रहे विरोध प्रदर्शनों पर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि इस क्षेत्र में स्थानीय आबादी को अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से सहानुभूति और एकजुटता की जरूरत है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारत की चुनाव प्रणाली की प्रशंसा करने और अमरीकी चुनावों में मतदाता पहचान पत्रों की कमी पर मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार की टिप्पणी का जिक्र करने पर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि भारत की चुनाव प्रणाली की विश्वसनीयता सर्वविदित तथ्य है। इस बीच निर्वाचन आयोग ने कल देश की चुनाव व्यवस्था पर एक तथ्य पत्र जारी किया है। आयोग ने बताया कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा और राज्य विधानसभाओं व विधान परिषदों के चुनाव स्वतंत्र संवैधानिक संस्था भारत निर्वाचन आयोग की देखरेख में होते हैं। मतदान फोटो पहचान पत्र के आधार पर कराया जाता है। करीब 1 अरब मतदाताओं को मतदाता पहचान पत्र जारी किए जा चुके हैं। ये तथ्य पत्र अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की भारत की चुनाव प्रक्रिया पर टिप्पणी के बाद जारी किया गया है। गृहमंत्री अमित शाह दक्षिण भारतीय मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन में भाग लेने के लिए आज से 2 दिवसीय दौरे पर चेन्नई जाएंगे। श्री शाह कल मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन को संबोधित करेंगे और शाम नई दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। इस सम्मेलन में तमिलनाडु, केरलम, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और पुदुचेरी के मुख्यमंत्री भाग लेंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने घोषणा की है कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक 2 अक्टूबर से 1 महीने का अभियान बैंकिंग फॉर यूथ शुरू करेंगे। कल शाम नई दिल्ली में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक सम्मेलन के समापन भाषण में उन्होंने कहा कि इस अभियान का प्राथमिक उद्देश्य युवाओं को वित्तीय क्षेत्र से जोड़ना और उनकी वित्तीय यात्रा में मार्गदर्शन करना होगा। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि दिल्ली में हाल ही में छात्र प्रदर्शनकारियों के खिलाफ पुलिस की कथित कार्रवाई और पुलिसकर्मियों के खिलाफ हिंसा के आरोपों की जांच के लिए एक उच्च स्तरीय समिति गठित की जाएगी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने परीक्षा व्यवस्था में बड़ा बदलाव किया है। एजेंसी ने करीब 600 विशेषज्ञों को हटाकर नए विशेषज्ञों को शामिल करने का फैसला किया है।

0: आकाशवाणी दिल्ली का ही IR लाइव न्यूज 24/7 चैनल है। रात के 3:10 हो चुके हैं। आइए सुनते हैं कार्यक्रम गीत और गजल।
1: हुजूर आप कभी एहत

0: इसके साथ ही भक्ति संगीत का कार्यक्रम अर्चना अब समाप्त होता है।
1: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का AIR लाइव न्यूज 24/7 चैनल। सुबह के 4:20 हो चुके हैं।

आइए सुनते हैं कार्यक्रम नाद ब्रह्म, कर्नाटक म्यूजिक का ये कार्यक्रम जिसमें आप सुनेंगे जी उमा का वायलिन वादन।

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीनी वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज पर। आज बुधवार है, शक संवत 1948 के श्रावण मास की 28वीं तिथि, तदनुसार 19 अगस्त 2026, सुबह के 4:53 और पूरे 45 सेकंड हुए हैं। अब हमारे कार्यक्रम आरंभ होते हैं।

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्ज, डीआरएम 810 किलो हर्ट्ज पर। श्रोताओं आइए सुनते हैं वो कार्यक्रम, जानते हैं जिसे आप आज इंद्रप्रस्थ पर सुन सकते हैं। अब से थोड़ी देर में यानी 5:10 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम आओ योग करें, जिसमें आज आप जानेंगे अश्वथासन और तितली क्रिया के बारे में। 5:20 पर वक्त होगा देशभक्ति गीत का, और 5:30 पर कार्यक्रम स्वर रंजनी में आज आप सुनेंगे उस्ताद मुश्ताक हुसैन खान का गायन राग पराज में। श्रोताओं सुबह 6:10 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम वंदना, जिसमें आज की कलाकार होंगी अनुराधा पौडवाल और हरिओम शरण। सुबह 6:40 पर कार्यक्रम चिंतन में आज आप सुनेंगे सुरेंद्र नाथ बैनर्जी का विचारों पर। हर रोज की तरह आज भी 6:45 पर आप सुनेंगे श्री रामचरितमानस से संगीत में पाठ।

यथा 6:55 पर संस्कृत में समाचार होंगे और उसके बाद 7:10 पर संगीतिका कार्यक्रम होगा, जिसमें आज आप सुनेंगे स्वास्तिक भारद्वाज के भजन। सुबह 7:30 पर गीतों भरी गुड मॉर्निंग होगी और 8:00 समाचार।

0: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्ज, डीआरएम 810 किलो हर्ट्ज पर। सुबह के 5 बजने को हैं। अब समाचार होंगे, पहले हिंदी में, उसके बाद आप अंग्रेजी में समाचार सुनेंगे। नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। भारत ने पर्यावरण से जुड़े प्रयासों को जन केंद्रित, टिकाऊ और विकासशील देशों की वास्तविकताओं के अनुरूप होने पर बल दिया है। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने कल नई दिल्ली में ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की 12वीं बैठक में ये बात कही। श्री यादव ने कहा कि ब्रिक्स की अध्यक्षता में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की परिकल्पना के अनुरूप विकासशील देशों की चिंताओं को एजेंडे में सबसे ऊपर रखा गया है। श्री यादव ने जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता के नुकसान, प्रदूषण और आपदा के खतरों की चुनौतियों का उल्लेख किया।
1: द इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज

0: जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता का नुकसान और प्रदूषण, ये तीनों मिलकर एक बड़ा संकट पैदा कर रहे हैं। आपदाओं का बढ़ता खतरा भी दुनिया भर में पारिस्थितिकी तंत्रों को प्रभावित कर रहा है। ये चुनौतियाँ विकासशील देशों के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि वे पर्यावरण के प्रति संवेदनशीलता, गरीबी उन्मूलन, खाद्य सुरक्षा और समावेशी विकास जैसी व्यापक विकास प्राथमिकताओं से जुड़ी होती हैं।
1: फूड सिक्योरिटी एंड इंक्लूसिव ग्रोथ।
2: भारत ने इंडोनेशिया में आए भीषण भूकंप से हुई जानमाल की हानि पर गहरा शोक व्यक्त किया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने नई दिल्ली में कल कहा कि भारत इंडोनेशिया को राहत और बचाव कार्यों में हर संभव सहायता प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में विरोध प्रदर्शनों पर प्रवक्ता ने कहा कि इस क्षेत्र में स्थानीय लोगों को अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से सहानुभूति और एकजुटता की आवश्यकता है। निर्वाचन आयोग ने कल देश की चुनाव व्यवस्था पर एक तथ्य पत्र जारी किया है। आयोग ने बताया कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा और राज्य विधानसभाओं तथा विधान परिषदों के चुनाव स्वतंत्र संवैधानिक संस्था निर्वाचन आयोग की देखरेख में होते हैं और मतदान फोटो पहचान पत्र के आधार पर कराया जाता है। आयोग ने कहा कि करीब 1 अरब मतदाताओं को मतदाता पहचान पत्र जारी किए जा चुके हैं। ये तथ्य पत्र अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की भारत की निर्वाचन प्रक्रिया पर टिप्पणी के बाद जारी किया गया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक 2 अक्टूबर से 1 महीने का अभियान युवाओं के लिए बैंकिंग शुरू करेंगे। नई दिल्ली में कल सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक सम्मेलन के समापन भाषण में उन्होंने कहा कि इस अभियान का प्राथमिक उद्देश्य युवाओं को वित्तीय क्षेत्र से जोड़ना और उनकी वित्तीय यात्रा में मार्गदर्शन करना है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने परीक्षा व्यवस्था में बड़ा बदलाव किया है। एजेंसी ने करीब 600 विशेषज्ञों को हटाकर नए विशेषज्ञों को शामिल करने का फैसला किया है। शिक्षा मंत्रालय के अनुसार प्रश्न पत्रों की जांच के लिए 4 स्तर की व्यवस्था लागू की जाएगी। इसके अलावा एजेंसी ने नए कार्यालय में CISF की तैनाती के साथ सुरक्षा व्यवस्था मजबूत की जाएगी। ये फैसला केंद्रीय शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी के निर्देश पर लिया गया। गृह मंत्री अमित शाह दक्षिण भारतीय मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन में भाग लेने के लिए आज से 2 दिन के चेन्नई दौरे पर हैं। श्री शाह कल मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन को संबोधित करेंगे। इस सम्मेलन में तमिलनाडु, केरलम, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और पुदुचेरी के मुख्यमंत्री भाग लेंगे। इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च ने वित्त वर्ष 2026-27 के लिए भारत की GDP वृद्धि दर का अनुमान बढ़ाकर 6.8% कर दिया है। मई में यह अनुमान 6.7% था। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने भारत जापान साझेदारी और मजबूत करने पर बल दिया है। उन्होंने जापानी कंपनियों से भारत में निवेश और कारोबारी साझेदारी बढ़ाने का आह्वान किया। नई दिल्ली में कल जापानी प्रतिनिधिमंडल को संबोधित करते हुए श्री गोयल ने कहा कि दोनों देशों के संबंध शांति, प्रगति और समृद्धि की साझा सोच पर आधारित हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ओमान को बमबारी की धमकी दी है। 2 क्षेत्रीय अधिकारियों के मुताबिक राष्ट्रपति ट्रंप ओमान के ईरान के साथ होर्मुज जलडमरू मध्य में जहाजों की आवाजाही को लेकर समझौते के करीब पहुंचने से नाराज हैं। इस बीच ब्रिटेन की समुद्री निगरानी एजेंसी के अनुसार होर्मुज जलडमरू मध्य से बाहर निकल रहे एक जहाज पर मिसाइल से हमला किया गया है। भारतीय पुरुष हॉकी टीम आज नीदरलैंड्स के एम्स्टलफिन में FIH पुरुष हॉकी विश्व कप के पूल डी मुकाबले में पाकिस्तान का सामना करेगी। अगले दौर में जगह बनाने के लिए दोनों टीमों के लिए यह मुकाबला महत्वपूर्ण है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 386.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़ पर, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़। आइए सुनते हैं कार्यक्रम आओ योग करें, जिसमें आज आप जानेंगे अश्वथासन और तितली क्रिया के बारे में।

नमस्कार, मैं योगाचार्य सुनील गौतम ऐसे आसन के बारे में बात करेंगे जिसको करने से हमारी कमर का दर्द दूर होता है। किसी भी प्रकार के कार्य को करते हुए, ऑफिस में बैठे हुए चेयर पर, पढ़ाई करते हुए, किचन में काम करते हुए हम थकान अनुभव करने लगते हैं, पीठ में अकड़न या जकड़न अनुभव करने लगते हैं, तो इस आसन का अभ्यास ऑफिस में भी किसी भी कार्य स्थिति में होते हुए थोड़ी देर के लिए खड़े हो जाएं, एक दो लंबी गहरी श्वास भरें, दोनों हथेलियां थाइस के बराबर में रखें और श्वास भरते हुए धीरे धीरे

बाएं हाथ को सीधा ऊपर उठाएं, कान के बराबर में ले जाएं, सांस छोड़ते हुए दाहिना हाथ 90 डिग्री पर अपने कंधे की सीध में लाएं, पुनः सांस भरते हुए दाहिना पांव यानी कि जो पैर हम जो हाथ साइड में किया है उसी पांव को पीछे ले जाना है, धरती से ऊपर उठाना है बिना मोड़े यथासंभव, और तीन लंबी गहरी सांस लें। चेस्ट ऊपर की ओर फूली हुई रहेगी, गर्दन हल्का सा पीछे की ओर, हाथ भी पीछे की ओर, और पूरे पीठ में तनाव अनुभव करें। अनुभव करेंगे लोअर बैक में इमीडिएटली हमको तनाव आता है, अर्थात लोअर बैक का पेन दर्द दूर करने में मदद मिलेगी। धीरे धीरे तीन सांस पूरी होने के बाद वापस आएं और इसी आसन को दूसरी तरफ से दोहराएं, अर्थात सांस भरते हुए दाहिना हाथ ऊपर की ओर सीधा ले जाएं, बायां हाथ 90 डिग्री कंधे के सीध में लाएं और बाएं पैर को पीछे की ओर ले जाएं, शरीर में तनाव देते हुए लंबी गहरी तीन सांस का अभ्यास करें, और उसी अवस्था में अभ्यास के दौरान लंबी गहरी सांस प्रभाव को अनुभव करते रहें, कहां शरीर के किस भाग पर इम्पैक्ट है, प्रभाव है, और धीरे धीरे तीन सांस के बाद सांस छोड़ते हुए वापस अपनी पुरानी स्थिति में आ जाए। यह हुई हमारी एक आवृत्ति, इसी आवृत्ति को दो तीन बार दोहरा लें तो देर तक बैठे रहने की थकान, कमर का दर्द दूर हो जाएगा। बल्कि मैं सबको सलाह देना चाहूँगा, जो विद्यार्थी हैं, पढ़ने लिखने का काम करते हैं, जो ऑफिस में बैठकर लिखाई, कंप्यूटर, कोई भी काम करते हैं, और मेरी माता बहनें जो किचन में काम करते करते कमर में दर्द कर लेती हैं, वो कभी भी इस आसन को अवश्य दोहराएं। आपका कमर का दर्द निश्चित रूप से दूर होगा और लंबी गहरी सांस से आपका शरीर और मन स्वस्थ व शांत रहेगा। धन्यवाद।

नमस्कार, मैं योगाचार्य सुनील गौतम हापुड़िया। आज बात करेंगे सबसे सरल और आवश्यक योग क्रिया की। योग में आसन भी होते हैं, क्रियाएं भी होती हैं। जहां स्थिरता आती है वहां आसन होते हैं, और जहां मूवमेंट रहता है वहां क्रिया होती है। आज एक ऐसी क्रिया के बारे में बात करने जा रहे हैं जो हमारे लोअर बॉडी के हिप्स के नीचे के हिस्से को, वेस्ट से नीचे के हिस्से को सक्रिय रखती है, अकड़न जकड़न से दूर रखती है। अर्थात आप सब समझ गए होंगे, हम बटरफ्लाई की बात कर रहे हैं, तितली अभ्यास की बात कर रहे हैं। तितली आसन नहीं कहा जा सकता क्योंकि इसमें मूवमेंट है। तितली वाला अभ्यास हम करने का प्रयास करेंगे। तो इसके लिए कुर्सी पर तो हम बैठ नहीं सकते, आवश्यक है एक प्लेन स्थान का चुनाव करके सीधे बैठ जाएं। अपने दोनों पैरों को आगे फैलाएं, दोनों हथेलियों को जंघा के बराबर में रखें, पैरों को थोड़ा हिला लें, आगे पीछे मूव कर लें, पैरों में थोड़ी शिथिलता दूर हो जाएगी, रिलैक्स हो जाएंगे। एक दाहिने पैर को बाईं जंघा के ऊपर उठा के रखें और धीरे धीरे घुटने को पकड़ के एक दाहिने हाथ से दाहिने घुटने को पकड़ें और बाएं हाथ से पंजे को पकड़ के ऊपर नीचे हिलाएं, ऊपर नीचे करें। श्वास के साथ श्वास लेते हुए नीचे की ओर दबाएं, श्वास लेते हुए ऊपर की ओर लाएं। कम से कम 15 आवृत्ति ऊपर नीचे 15 बार उसको घुमाएं, ऊपर नीचे करें। ऊपर करते समय अपने वक्ष तक मिलाएं और नीचे ले जाते समय धरती से मिलाएं। 15

0: प्रवृत्ति के बाद वापस आ जाएं, इसी क्रिया को फिर दूसरे पैर से दोहराएं, यानी कि दाहिना पैर सीधा और बायां पांव आप उठा करके दाहिनी जंघा के ऊपर रखें। दाहिने हाथ से पैर के पंजे को पकड़ें और बाएं हाथ से घुटने के ऊपर दबाएं, प्रेशर डालें, अर्थात श्वास लेते हुए नीचे की ओर ले जाएं घुटने को और श्वास छोड़ते हुए अपने वक्ष की तरफ लाएं। इस आवृत्ति को भी कम से कम 15 बार दोहराएं। ऊपर नीचे करेंगे तो आप अनुभव करेंगे कि खुलने लगा है हमारी जंघाओं का पेल्विक हिस्सा, पेल्विक फ्लोर। फिर पैर को सीधा कर दें। अब दोनों पैर के पंजों को मिलाएं, धीरे धीरे खींचते हुए अपने पेल्विक रीजन की तरफ, जंघाओं की तरफ लाएं, पैर मोड़ दें, सुखासन जैसे अवस्था, लेकिन दोनों पैर के अग्रभाग मिले हुए, और दोनों हाथों से पकड़ लें अग्रभाग को, पैर के अग्रभाग को दोनों हाथों से पकड़ लें, अपने पेल्विक फ्लोर के ज्यादा से ज्यादा एड़ियों को करीब लाएं और सामान्य श्वास के साथ अपने घुटनों को नीचे ऊपर हिलाएं, अर्थात थोड़ी देर के लिए तितली बन जाएं। अपने घुटनों को ऊपर नीचे हिलाएंगे, धीरे धीरे आपकी जंघा की मांसपेशियां स्वस्थ होती जाएंगी, पैरों की अकड़न जकड़न दूर होती जाएगी। और मैं विशेष रूप से कहना चाहूंगा अपने देश और विदेश की माता और बहनों से कि उन्हें तो यह अभ्यास रोज करना चाहिए। ये महिला जनित रोगों से मुक्ति दिलाने वाला अभ्यास है। जो महिलाओं को, मेरी माताओं बहनों को प्रॉब्लम होती है मेंसुरेशंस के दौरान, पीरियड के दौरान, और भी कोई महिलाओं के रोग हो सकते हैं, गायनी प्रॉब्लम हो सकती है, उन सब में लाभकारी अभ्यास है ये तितली का अभ्यास। तितली की क्रिया आप दोहराएं और अपने पेल्विक फ्लोर को ज्यादा से ज्यादा शक्तिशाली बनाकर पूरे जंघा को, पैरों को शक्तिशाली बनाएं और जीवन का शक्तिशाली होते हुए ही आनंद उठाएं। धन्यवाद।
1: महीने का आखिरी रविवार जब बजते हैं सुबह के 11, एक साथ होता है पूरा देश सुनने मन की बात।
2: मेरे प्यारे देशवासियों, नमस्कार। मन की बात में आप सबका स्वागत है।
1: यह होती है मैं नहीं हम की बात, सामूहिकता की शक्ति के साथ, मोदी जी के साथ देश का संवाद और जन जन से सीधा जुड़ाव। साथ आते हैं करोड़ों दिल और होती है देश के छोटे कस्बों गांव में उभरते इनोवेटिव आइडियाज की बात। अपनी सेवा से समाज बदलने में जुटे साइलेंट हीरोज की बात। भाषा और परंपरा, विज्ञान और विरासत की बात। विदेश में भारतीय संस्कृति की बात। अन्नदाता की मेहनत, नारी शक्ति की लगन, खेल का जज्बा, युवाओं की आकांक्षा, भारतीय श्वान से लेकर पेड़ और प्रकृति की बात, योग और आयुर्वेद से आरोग्य की बात, स्वच्छता से लेकर हर घर तिरंगा की बात, आत्मनिर्भर बनते विकसित होते विश्व बंधु भारत की बात, मन की बात जिसमें है एक भाव, नेशन फर्स्ट, जहां हर कहानी बनती है किसी और के लिए हौसला। बात देश की, सबके मन की।
2: मेरे लिए मन की बात ये एक कार्यक्रम नहीं है, मेरे लिए एक आस्था, पूजा, व्रत है।
1: तभी तो रहता है इंतजार आए महीने का आखिरी रविवार और देश कहे चलो सुने मन की बात, आकाशवाणी और दूरदर्शन के नेटवर्क पर।

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 386.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, जीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। सुबह के 5:30 और पूरे 15 सेकंड हो चुके हैं। आइए सुनते हैं कार्यक्रम स्वर रंजनी। हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक के इस कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे मुश्ताक हुसैन खान का राग पराज में गायन।